FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 18वीं तिथि, तदनुसार 7 जून सन 2026। इस समय सुबह के 5:56 हो चुके हैं। हमारी आज की ये सभा आरंभ होती है।

भव्य है कि अपने देश की गरिमा, संस्कृति और एकता को बनाए रखें तथा इसके विकास में हम अपना योगदान दें। अभिनंदन करते हैं हम अपनी मातृभूमि का।

सर्वप्रथम नमन वंदन अपने देश को, इस देश की माटी को, हमारे भारत देश को। हमारा देश विविध संस्कृतियों, भाषाओं, परंपराओं और मूल्यों का अद्भुत संगम है। हम सभी का कर्तव्य

बुद्धि ज्ञान और शुभता के देव गणेश जी की पूजा हम सबसे पहले करते हैं। वे विघ्नों को दूर कर हर बाधा से पार लगाते हैं। सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। उनका आशीर्वाद जीवन में सुख समृद्धि और मंगल लाता है।

देवी माँ जगदीश्वरी शक्ति करुणा और ममता का प्रतीक है। वे अपने भक्तों की रक्षा कर उन्हें सही मार्ग दिखाती है। उनकी भक्ति जब हम पूरे उत्साह के साथ करते हैं तो उनका आशीर्वाद जीवन में सुख शांति और समृद्धि प्रदान करता है।

हनुमान जी की शक्ति, भक्ति और निष्ठा ये अद्भुत प्रतीक हैं। उन्होंने भगवान श्री राम की सेवा को अपने जीवन का सर्वोच्च धर्म माना। संकट के समय उनका स्मरण भक्तों को साहस और आत्मविश्वास प्रदान करता है। हनुमान जी की कृपा से जीवन में ऊर्जा, सफलता और रक्षा का भाव बना रहता है।

भगवान राम मर्यादा, सत्य और आदर्श जीवन का प्रतीक है। उन्होंने अपने आचरण से धर्म और कर्तव्य का महत्व बताया। उनका जीवन त्याग, प्रेम और न्याय की प्रेरणा देता है। उनके स्मरण मात्र से मन में शक्ति, शांति, सद्भाव और आत्मबल जागता है।

अभी आप सुन रहे थे वंदना FM 102.2 MHz पर हम बोल रहे हैं। आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान। लीजिए सुनिए इस श्रृंखला का ये 8वां भाग। कलाकार हैं राम किशन चंदेश्री और शोभा जोशी। संगीत निदेशक हैं सतीश भाटिया।

श्री राम की प्रभुता असीम है, ऐसा समझकर गोस्वामी तुलसीदास अपने को उनका गुणगान करने में सर्वथा असमर्थ पाते हैं। अपनी विनयशीलता के अनुरूप गोस्वामी जी अपने को न तो कवि कहलाने योग्य मानते हैं, न ही सच्चिदानंद भगवान के गुणगान में चतुर और सक्षम पाते हैं। फिर भी मति अनुरूप राम गुण गावं। अपने पूर्ववर्ती बुद्धिमान प्राकृत कवियों का, जिन्होंने अपनी समर्थ भाषा में प्रभु चरित्रों का वर्णन किया है, तथा उनका भी जो वर्तमान में हैं और भविष्य में होंगे, उन सबको नमन करते हुए तुलसीदास ने रघुनाथ गाथा का आरंभ किया है।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। आज आपने सुना इस श्रृंखला का भाग्य आठवां। इसके साथ ही संपन्न होता है कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आप सुनेंगे आज का ये चिंतन। वाचक है शैलेंद्र जोगी।
1: यदि मनुष्य समय और परिस्थिति के अनुसार अपनी सोच में परिवर्तन नहीं लाता है तो असफलता की स्थिति बने रहने की

0: संभावनाएं सदैव बनी रहेगी। आप कुशाग्र बुद्धि के हैं, प्रतिभावान हैं और पूरी ईमानदारी के साथ सफलता पाने के लिए कार्य करते हैं, किंतु असफल होने पर अपने भाग्य को सदैव कोसते रहते हैं। यह नकारात्मक सोच आपको जीवन भर कष्ट और दुख देती रहेगी। इससे आपको बाहर निकलना होगा। इसके लिए जरूरी है कि आप कोई नए विचार यानी सकारात्मक विचार करने के पूर्व अपने कार्यों पर एक बार पुनर्विचार करें। अपने विचारों, क्रियाओं और मनोभावों के संबंध में स्वयं से प्रश्न करें और निष्कर्ष प्राप्त करें, तो आप पाएंगे कि अपनी क्रियाओं और परिणामों पर ही आपका ध्यान अधिक रहा, उन पर पूरा विश्वास आपको नहीं रहा। संकल्प के साथ विश्वास जुड़ने से ही सफलता मिलती है, यही सकारात्मक सोच को जन्म देती है। एक सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति यह विश्वास करता है कि जीवन बहुत खूबसूरत है और जीवन में इस खूबसूरती का आनंद उठाने के बहुत मौके हैं। जीवन में सफलता और असफलता हमारे विचारों और मान्यताओं से जुड़ी रहती है। अतः किसी कार्य के लिए जब हम विचार करें तो वह पूर्व अनुभव, मान्यताओं और विश्वास से परिपूर्ण हो। इससे सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होगा, कार्य में उत्साह और सफलता के प्रति विश्वास बढ़ेगा। विपरीत परिस्थितियों में हार मानने की बजाय उन बाधाओं को दूर करने का दृढ़ निश्चय भी आप में जागृत होगा। इससे भीतर एक नई शक्ति तैयार होगी जो आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगी। किंतु यह सब कुछ तभी संभव हो सकता है जब व्यक्ति शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ हो। हमारा शारीरिक स्वास्थ्य उन विचारों और मान्यताओं से जुड़ा रहता है जो हम दिन भर खुद से करते हैं। यही हमारे स्वास्थ्य में उत्साह और उत्तेजना या फिर तनाव पैदा करता है। ऐसी स्थिति में हमें अपने मन को तनाव मुक्त रखना होगा। इसके लिए सकारात्मक सोच की शैली को हमें पूरी तरह अपनाना होगा। यह हमें उत्साह, बल और आशा से भरकर विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल बनाने में हमारी मदद करती है। कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है। मन चंचल होता है, किंतु इसे कार्य विशेष के लिए विचार प्रक्रिया में लगा देने से हमेशा अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। मानसिक स्थिरता आत्मबल बढ़ाती है। विपरीत स्थितियों में सही सोच यानी सकारात्मक सोच ही हमें बाहर निकालने में सहायक साबित होती है। जो व्यक्ति स्वस्थ शरीर और मन से नए विचारों को प्रश्रय देता है वही आगे बढ़ता है और इससे सकारात्मक सोच का सामर्थ्य भी बढ़ता है। विचारों में दृढ़ता, विश्वास और सफल परिणाम की आशा भी जागती है। यह तभी संभव है जब जिस कार्य को आप सफल बनाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपको सफलता मिले, उस पर गहन विचार विमर्श कर एक उसकी सुदृढ़ नींव तैयार करें। वे सभी साधन जो कार्य की सफलता के लिए बेहद जरूरी हैं, उनका एकत्रीकरण करें। अपना मानसिक धरातल इतना मजबूत बनाएं कि विपरीत परिस्थितियों में भी असफलता मिलने की कोई गुंजाइश न रहे। न आप डिगें, न झुकें, न ही पलायन करें, बस जुट जाएं और जीवन में सफल हो।
1: अभी आप सुन रहे थे ये चिंतन। लेखक थे शिवदत्त वाजपेयी और वाचक थे शैलेंद्र जोगी। आकाशवाणी छिंदवाड़ा से लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण।

कुछ ही देर में यानी 6:50 पर होगा हेलो छिंदवाड़ा और देश गान। हेलो छिंदवाड़ा में आप सुनेंगे आकाशवाणी के 90वें वर्ष के अवसर पर आकाशवाणी के प्रबुद्ध श्रोता श्री हरिराम साहू से उनके जीवन में आकाशवाणी का योगदान व उनके जीवन में

आकाशवाणी की यादों और इतने वर्षों के आकाशवाणी के साथ सफर पर अमोल शेंडे की बातचीत। सुबह 7:20 पर सजेगी फिल्मी गीतों की महफिल गीत गंगा में। सुबह 8:30 पर होगा हमारे नन्हे मुन्नों का कार्यक्रम बाल सभा। इसमें सुनो और गुनो क्रम में हमारे नन्हे मुन्ने सुनेंगे घर का खाना सबसे अच्छा। साथ ही चर्चा होगी पेड़ पौधों के महत्व पर। इसके अलावा शामिल है आज की पहली और अगले क्रम के आकर्षण फिल्म संगीत।

सुबह 9:10 पर आप सुनेंगे प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। ये कार्यक्रम हम दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। सुबह 10:05 पर जुड़िएगा हमारे स्टूडियो से और सुनिएगा हेलो आकाशवाणी। आज प्रस्तुति है अमित सोनी की। आज शाम 5:30 पर युववाणी में आप सुनेंगे आज की बात, स्वच्छ भोजन और अच्छा स्वभाव, अच्छा स्वास्थ्य। ये आज की बात होगी स्वस्थ भोजन और अच्छे स्वास्थ्य पर। साथ ही आप सुनेंगे आकाशवाणी के जो 90 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं, इस अवसर पर आकाशवाणी छिंदवाड़ा की युवा श्रोता श्रीमती निधि दुबे से वार्ता के संपादित अंश। साथ ही शामिल है एक फिल्म एक फनकार में, सुनिएगा गुलदस्ता महेंद्र कपूर को। साथ ही सुनिए आज का इतिहास, कल के आकर्षण अमृतवाणी। शाम 6:00 सुनिएगा अगैर फिल्मी गजलें। शाम 6:30 पर हम फिल्म संगीत का प्रसारण करेंगे। शाम 6:45 पर सुनिएगा आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं, इस अवसर पर आप सुनेंगे छिंदवाड़ा के यानी छिंदवाड़ा ज़िले के कलेक्टर श्री हरेंद्र नारायण से विशेष बातचीत। शाम 7:20 पर सुनिएगा आकाशवाणी के 90वें वर्ष के अवसर पर किसानों की प्रतिक्रियाओं पर आधारित विशेष चौपाल। रात 8:00 आनंद लीजिएगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का आपकी पसंद में। एल्बम गीत सुनिएगा रात 8:30 पर। रात 9:00 दिल्ली से हम अनुप्रसारित करेंगे केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर विशेष द्विभाषीय कार्यक्रम। विषय है वंचितों को वरीयता। आज आप सुनेंगे इस श्रृंखला का भाग 7। विविध भारती सेवा के कार्यक्रम हम अनुप्रसारित करेंगे मुंबई से सुबह 9:00 से 9:10 तक, दिन में 11:00 से 2:00 तक, दिन में 2:30 से शाम 5:30 तक और रात 9:35 से रात 11:00 तक। और इसके साथ ही संपन्न होता है कार्यक्रम विवरण।

FM 102.2 MHz पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से। आप सुनेंगे हलो छिंदवाड़ा व देशगान। पहले आप सुनेंगे हलो छिंदवाड़ा, इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं आकाशवाणी के 90वें वर्ष के अवसर पर आकाशवाणी के प्रबुद्ध श्रोता श्री हरिराम साहू से उनके जीवन में आकाशवाणी का योगदान व उनके जीवन में आकाशवाणी की यादों और इतने वर्षों के आकाशवाणी की

0: साथ सफ़र पर अमोल शेंडे की ये बातचीत।
1: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में अपने सभी श्रोताओं से
0: क्षमा कीजिए, ये बातचीत आप सुन रहे हैं दीपांकर तिवारी जी के साथ।
1: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में अपने सभी श्रोताओं से बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं, आपको अपने श्रोताओं से रूबरू करा रहे हैं, जिनके पत्र और संदेश आप हमारे सभी कार्यक्रमों में सुनते हैं। श्रोताओं से संवाद के क्रम में आज आकाशवाणी स्टूडियो में उपस्थित हैं हमारे नियमित और प्रबुद्ध श्रोता, जिनके पत्रों

0: होते रहते हैं। ये हैं न्यूटन चिखली नंबर 11 के हमारे श्रोता श्री हरिराम साहू जी।
1: जी नमस्कार।
0: हरिराम साहू जी, देखते हैं कि आप हमारे सभी कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपनी दिनचर्या में रेडियो को कहाँ रखते हैं, कितना रेडियो सुनते हैं?
2: हम सब सुबह उठते हैं 5:55 से जो चालू होता है, मतलब रेडियो जो रहता है बिस्तर के सिरहाने पे रहता है।
0: अच्छा, तो रेडियो इतना अधिक सुनते हैं
2: जी,
0: तो इतना अधिक रेडियो सुनने के कारण क्या आप काम अपना कर पाते हैं?
2: जी जी,
0: कैसे?
2: ये काम भी होता है, अब मंजन भी होता है सर, और ज्ञानवर्धक बातें भी सुनने को मिलती है।
0: जैसे हम देखते हैं कि आप जो हमारे सभी फरमाइशी कार्यक्रम हैं या फिर ऐसे कोई भी कार्यक्रम जिनमें श्रोता शामिल हो सकते हैं, उनमें आपके संदेश जरूर आते हैं।
2: जी जी।
0: तो पत्र कब से लिखना प्रारंभ किया आपने?
2: 12 मई 1996 से चालू है सर।
0: तब आपने पहली बार हमारे कार्यक्रम में पत्र लिखा?
2: जी जी।
0: पत्र लिखने में कभी कोई दिक्कत आई है?
2: जी नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है।
0: अच्छा, तो जैसा आप संदेश लिखते हैं उसे भेजते हैं, हमारे कार्यक्रमों में शामिल होता है, उस वक्त आपको कैसा लगता है?
2: उस समय बहुत अच्छा लगता है, यह जान खुशी होती है कि मतलब हमारा पत्र और जब मतलब जो भी कार्यक्रम संबंधी जो बातें लिखी है मतलब दूर दूर तक आवाज जाती है।
0: बहुत अच्छी बात है, आपकी दिनचर्या में भी ये सहायता करता है। बहुत दिनों से आकाशवाणी छिंदवाड़ा के कार्यक्रमों से जुड़े हैं। वैसे आप अपनी आजीविका के लिए क्या करते हैं?
2: जी कृषि कार्य करते हैं सर।
0: कृषि कार्य करते हैं, तो खेती में रेडियो आपको कोई सहयोग देता है?
2: जी मतलब मोबाइल है। हाँ। मोबाइल से मतलब सुनते हैं, मतलब मोबाइल रख देते हैं, कार्यक्रम चलता है और अपने कार्य भी करते जाते।
0: अच्छा, जो मनोरंजन वाला कार्यक्रम तो सुनते हैं वो ठीक है, जो हमारा कृषि आधारित कार्यक्रम है हमारा किसान वाणी
2: जी,
0: जो हम केवल किसान भाइयों के लिए बनाते हैं
2: जी,
0: वो कार्यक्रम कैसा लगता है?
2: ये बहुत अच्छा लगता है, मतलब उसमें भी ज्ञानवर्धक बातें सुनने को मिलती है और जो नई तकनीकों द्वारा खेती में कार्य बताया जाता है उसे हम ध्यान से सुनते हैं।
0: अगर हम ये कहें कि किसान वाणी कार्यक्रम में कुछ और चीजों को शामिल किया जाए जिससे किसान भाइयों को बहुत फायदा हो, तो हम अपने कार्यक्रम में ऐसा क्या करें कि उसको लोग बहुत और अधिक सुने, साथ ही अपने जीवन में अपनाए भी?
2: रेडियो के प्रसारण में ज्यादा ध्यान दिया जाए और कृषि कार्य के संबंध में जो जानकारी जो दी जाती है उसे अधिक से अधिक और प्रचार किया जाए।
0: चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, आप इतने दिनों से रेडियो सुन रहे हैं, आपको 30 वर्षों से अधिक हो चुका है
2: जी।
0: और जब आपने पहली बार यहाँ संदेश भेजा है, हम ये जानना चाहेंगे कि आपका इन 30 वर्षों में सबसे पसंदीदा कार्यक्रम कौन सा रहा?
2: कार्यक्रम तो सर ऐसे तो फरमाइश कार्यक्रम अच्छे रहे और सुबह के जो मतलब भक्ति संगीत जो आता है
0: जी
2: और चिंतन आता है तो ये हमें बहुत अच्छा लगता है
0: जी। भक्ति संगीत और चिंतन
2: जी।
0: वैसे चिंतन तो पूरी तरह से एक दार्शनिक कार्यक्रम है जिसमें हम दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को बहुत ही आसान, बहुत ही सरल और सहज शब्दों में अपने श्रोताओं के समक्ष रखते हैं। चिंतन में सबसे अच्छा क्या लगता है?
2: चिंतन में जो है कि मतलब कि ज्ञानवर्धक बातें जो होती हैं, मतलब जो मनुष्य के जीवन में उतारा जा सके
0: जी,
2: ये बहुत अच्छा लगता है हमें।
0: अच्छा, हम ये तो अब आपने उसकी बात की जो भक्ति गीतों के कार्यक्रम थे, चिंतन थे और फरमाइशी गीतों की, किसानवाणी भी आपको अच्छा लगता है
2: जी।
0: और हम अपने मंच से लोक गीत भी प्रसारित करते हैं जो छिंदवाड़ा की मिट्टी के गाने हैं।
2: हाँ, माटी स्वर
0: जो यहीं से बनते हैं, तो वो गाने आपको कैसे लगते हैं?
2: बहुत अच्छे लगते हैं, वो गाने भी अच्छे लगते हैं, भजन भी रहता है और लोकगीत होता है।
0: हाँ,
2: वो भी बहुत अच्छा लगता
0: है। लोकगीतों में कोई लोकगीत है जो ऐसा लगा कि हमारे छिंदवाड़ा के जो गायक है उन्होंने गाया और वो गाना बहुत अच्छा लगा, ऐसा कोई गीत है?
2: ध्यान नहीं है सर, लेकिन सुनते हैं
0: जी,
2: जो बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा, अब हम ये जानना चाहेंगे कि जो हमारा युवाओं का कार्यक्रम है युववाणी
2: जी,
0: कैसा लगता है आपको?
2: ये भी बहुत अच्छा लगता है, मतलब बच्चों के लिए और जो नव युवा जो हैं तो उनके उनके लिए बहुत बढ़िया मार्गदर्शन मिलता है उसमें।
0: अच्छा, जब आप सुबह उठकर रेडियो सुनते हैं तो आपकी उस दिन रेडियो से क्या अपेक्षाएं होती हैं?
2: रेडियो से अपेक्षा ये होती है कि मतलब और भी नई जानकारी मिले
0: जी,
2: और भी बातें सुनने को मिले जो कि हमें अच्छा लगे और लोगों को भी अच्छा लगे।
0: तो कौन से कार्यक्रम ऐसे आकाशवाणी छिंदवाड़ा को करने चाहिए जो श्रोताओं को बहुत पसंद आए, आपकी तरफ से कोई सलाह?
2: वैसे तो सभी कार्यक्रम अच्छे हैं, इसमें कोई दोमत नहीं है कि मतलब और भी मतलब अच्छे किया जा सके। वैसे हमारे उद्घोषक जो भी महिला हैं पुरुष जो हैं अपनी मेहनत से अच्छे कार्यक्रम पेश करते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
0: अच्छा, अब उद्घोषकों को आप क्या कहना चाहेंगे जो हमारे कार्यक्रम की लाइफ लाइन हम कह सकते हैं कि हमारे जो प्रस्तुति है, हमारी प्रस्तुति की आत्मा है उद्घोषक है हमारे, तो उद्घोषक और जो हमारे समानुदेशित हैं अन्य कार्यक्रमों के जो कंपेयर्स हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे?
2: उनके लिए तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अच्छी तरह से कार्यक्रम पेश करें।
0: अच्छा, हमने पत्रों के बाद अब ये जो व्हाट्सएप से भी हम अपने श्रोताओं की प्रतिक्रिया लेने लगे
2: जी,
0: तो इसके संबंध में आपके क्या विचार हैं?
2: व्हाट्सएप में ऐसा कि जो संदेश जो होता है बहुत जल्दी चल जाता है और पत्रों में ज़्यादा लेट होता है,
0: तो ये एक लाभ जो है व्हाट्सएप से मिलता है कि हम इसमें अपने संदेशों को पहुंचाने की गति जो है वो बढ़ा सकते हैं।
2: हाँ।
0: हरिराम साहू जी, बहुत ही अच्छी बातें आपने बताई हैं और आकाशवाणी के 90 वर्ष जो हैं वो 8 तारीख को पूर्ण हो रहे हैं, इस अवसर पर आप आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: हम यही कहना चाहेंगे सर कि

0: से जुड़ें ताकि बच्चे बड़े लोग भी ज्ञानवर्धक बातें स्वीकार करें और अपना मनोरंजन भी करें।
1: चलिए, बहुत ही अच्छी बातें बताई आपने हरिराम साहू जी। आज आप आकाशवाणी स्टूडियोज़ में आए, अपना बहुमूल्य समय हमें प्रदान किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुना आकाशवाणी के 90वें वर्ष के अवसर पर आकाशवाणी के प्रबुद्ध श्रोता श्री हरिराम साहू से उनके जीवन में आकाशवाणी का योगदान, उनके जीवन में आकाशवाणी की यादों और इतने वर्षों के आकाशवाणी के साथ सफर पर दीपांकर तिवारी की ये बातचीत। और इसके साथ ही संपन्न होता है हेलो छिंदवाड़ा। आइए आपको जोड़ते हैं देशगान से, लीजिए सुनिए समूह सुरों में ये देशगान।

0: अभी आपने सुना ताराचंद बी शाह का लिखा ये देशगान जो समोसरों में था। इसके साथ ही संपन्न होता है हलो छिंदवाड़ा व देशगान। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से। सुबह के 7 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में हिंदी में समाचार होंगे। आइए समाचारों के लिए हम आपको लिए चलते हैं दिल्ली।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री की कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में सीमा सुरक्षा बल BSF के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य की सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। श्री शाह ने पिछले 5 वर्ष के जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच कराने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बैठक में भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं।

0: और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में कल विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं के आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री की खबरों का खंडन किया है। NTA ने कहा कि ये छात्रों उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। NTA ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर आधारित हैं।
1: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका है। साथ ही दक्षिणेश्वर और कालीघाट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुविधाओं में भी सुधार किए जाएंगे। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बनाए। न्यू चंडीगढ़ में खेल समाप्त होने तक कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। KL राहुल ने 100 रन की पारी खेली। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। आज पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में तेज हवा के साथ बिजली चमकने की भी आशंका है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर में आगे बढ़ा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 102.2 MHz पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से। आप सुनेंगे कुछ संदेश।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। So easy.
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: UPSC, MPPSC, SSC तैयारी कहाँ से शुरू करूँ यार?
5: चिंता छोड़, सीधे निधिश्री एकेडमी चल, छिंदवाड़ा की बेस्ट कोचिंग।
4: पर नए बैचेस कब से हैं?
5: इसी 1 जून से, अनुभवी टीचर्स और बेहतरीन नोट्स के साथ। आज ही अपनी सीट पक्की करें। पता, निधिश्री एकेडमी, ट्राइबल म्यूजियम के पास, छिंदवाड़ा।
6: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ। पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: ये संदेश आप सुन रहे थे आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से। सुबह के 7:10 होने वाले हैं, कुछ ही देर में होंगे प्रादेशिक समाचार। आइए इसके लिए हम आपको लिए चल रहे हैं भोपाल।
3: इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:10 हुए हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
4: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गा।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। इंदौर में भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार एवं निवेश मंच का शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधियों से प्रदेश में निवेश की अपील की। स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों के स्थानांतरण की गाइडलाइन जारी की। समान नागरिक संहिता के अध्ययन के लिए बनी उच्च स्तरीय समिति की जन परामर्श बैठक आज झाबुआ में। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से।

0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश तेजी से भारत के नए वैश्विक निवेश एवं निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कल इंदौर में भारत लैटिन अमरीका और कैरिबियन व्यापार एवं निवेश मंच 2026 में प्रतिनिधियों को मध्य प्रदेश में निवेश, उत्पादन और नवाचार के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि हम आपके साथ एक ठोस और दीर्घकालिक साझेदारी के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश देश के मध्य में होने के कारण व्यापार और व्यवसाय के लिए सबसे अनुकूल स्थान है। यहाँ औद्योगिक कुशल श्रमिकों की कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदौर में ब्रिक्स के कृषि मंत्रियों का सम्मेलन भी होने वाला है और इस तरह के सम्मेलन प्रदेश के विकास में अहम योगदान देंगे।
1: ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन भी इंदौर में 1-9 से 11 और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन 12-13 जून को होने वाला है, जिसके आधार पर ऐसे में ये भविष्य की दृष्टि से होने वाला आयोजन भी मध्य प्रदेश के विकास के साथ माननीय प्रधानमंत्री के उस सपने को साकार करने की दिशा में बढ़ेगा, जिसके आधार पर ब्रिक्स के इस प्रकार के आयोजन प्रधानमंत्री के माध्यम से देश भर में हो रहे हैं।
0: स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए प्रशासनिक एवं स्वैच्छिक स्थानांतरण की गाइडलाइन जारी कर दी है। स्थानांतरण प्रक्रिया कल 8 जून से शुरू होकर 15 जुलाई तक चलेगी। सामान्य प्रशासन विभाग की तबादला नीति के बाद विभाग ने अपनी अलग स्थानांतरण पॉलिसी लागू की है, जिसके तहत ऑनलाइन आवेदन होंगे। विभागीय आदेश के अनुसार प्रशासनिक स्थानांतरण प्रस्तावों का पंजीयन 8 जून से शुरू होगा। अंतर जिला स्थानांतरण के लिए 8 से 15 जून तक आवेदन किए जा सकेंगे। जिला कैडर संभाग और राज्य कैडर स्थानांतरण के लिए 8 से 17 जून तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंकों की जांच और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है। बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि छात्र अब रविवार आधी रात तक अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। CBSE ने कहा कि ये फैसला छात्रों के हित में लिया गया है, ताकि उन्हें आवेदन प्रक्रिया पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिल सके। आवेदन जमा करने की पहले की अंतिम तिथि इस महीने की 6 तारीख थी। भोपाल में जनजाति संग्रहालय की स्थापना के 13वें वर्षगांठ समारोह के अवसर पर कल 5 दिवसीय महुआ महोत्सव का भव्य शुभारंभ किया गया। 10 जून तक आयोजित इस महोत्सव की शुरुआत में संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने कहा कि विभाग द्वारा प्रदेश की संस्कृति और उनकी कलाओं को लोकव्यापी बनाने के प्रयत्न निरंतर किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर प्रसारित हो रही NEET UG 2026 पुनर्परीक्षा के प्रश्नपत्र के कथित रूप से लीक, अग्रिम पहुंच या बिक्री से संबंधित अफवाहों का खंडन किया है। एजेंसी ने कहा कि एक छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने जोर देकर कहा कि परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता पूरी तरह से बनी हुई है। उम्मीदवारों के लिए निष्पक्ष और सुरक्षित परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय किए गए हैं। एजेंसी ने कहा कि सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म और साइबर अपराध अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के लिए सूचना उपलब्ध करा रही है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है, जिससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है, जिसके तहत ताड़ का तेल, पामोलिन, सोयाबीन तेल, सूरजमुखी तेल, सरसों का तेल, मूंगफली तेल और चावल की भूसी के तेल तथा कपास के बीज के तेल और मक्का के तेल सहित प्रमुख खाद्य तेलों के लिए मानक पैक आकार निर्धारित किए गए हैं, जिसके अंतर्गत स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलोग्राम, 15 किलोग्राम और 20 किलोग्राम रखे गए हैं। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता के अध्ययन के लिए बनी उच्च स्तरीय समिति की जन परामर्श बैठक आज झाबुआ में आयोजित की जाएगी। समिति की सदस्य एवं शिक्षाविद डॉक्टर शोभा पैठणकर विभिन्न वर्गों से सुझाव लेंगी। ये खुला मंच होगा, जिसमें जन प्रतिनिधि, राजनीतिक दल, सामाजिक और धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि, अधिवक्ता, पत्रकार और आम नागरिक भाग ले सकते हैं। जिला प्रशासन ने नागरिकों से बैठक में आकर अपने सुझाव देने की अपील की है। वहीं मंदसौर में भी समान नागरिक संहिता के अध्ययन एवं परीक्षण के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन कल किया गया। भोपाल में आज तंदुरुस्ती के लिए साइकिल चलाने का संदेश देते हुए संडे ऑन साइकिल अभियान के तहत लोगों ने साइकिल चलाई। TT नगर स्टेडियम से शुरू हुए इस आयोजन में खेल मंत्री

कैलाश विश्वास सारंग भी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर पूरे देश को हिट करने के लिए लोगों का फिट रहना काफी जरूरी है, जिसके तहत इस अभियान का आयोजन प्रत्येक संडे को किया जाता है। जापान के काकामेगाहारा में भारत की अंडर 18 लड़कों की टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में कल भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूर्ति ने 3 गोल किए और कप्तान केतन कुशवाहा ने भी 1 गोल किया। इस ऐतिहासिक सफलता में मध्य प्रदेश पुरुष हॉकी अकादमी के 6 खिलाड़ियों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गोवा के मडगांव में खेले गए सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। वहीं शतरंज में ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंद ने ओस्लो में नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रज्ञानंद ने अपने अंतिम दौर में जर्मनी के विंसेंट कीमर को हराया। ये खिताब जीतने वाले वह पहले भारतीय बन गए हैं। तीसरे स्थान से दिन की शुरुआत करने के लिए के बाद प्रज्ञानंद ने महत्वपूर्ण क्लासिकल जीत से 3 अंक प्राप्त किए और 18 अंकों के साथ खिताब अपने नाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडर 18 एशिया कप हॉकी में भारतीय अंडर 18 पुरुष और महिला हॉकी टीमों के शानदार प्रदर्शन पर उन्हें बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि पुरुष टीम ने चैंपियनशिप का खिताब जीता है, जबकि महिला टीम ने कांस्य पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि ये परिणाम देश के युवा खिलाड़ियों के समर्पण, अनुशासन और दृढ़ संकल्प को दर्शाते हैं। वहीं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने नॉर्वे शतरंज 2026 का खिताब जीतने पर आर प्रज्ञानंद को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये शानदार उपलब्धि उनकी निरंतर उत्कृष्टता को दर्शाती है। वहीं मुख्यमंत्री ने भी सभी भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धि पर उन्हें बधाई दी है। प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का शैक्षणिक रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित और एक ही जगह पर उपलब्ध हो, इस उद्देश्य से स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश में अपार आईडी निर्माण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश के सभी स्कूलों में प्रत्येक शनिवार को मेगा अपार दिवस का 30 जून तक आयोजन किया जाएगा। इस कड़ी में कल स्कूलों में पहले अपार दिवस का आयोजन किया गया। अपार आईडी का निर्माण के अंतर्गत प्रदेश में लगभग 1,39,38,000 स्कूली विद्यार्थियों की आईडी बनाई जानी है, जिसके तहत अब तक 93,97,000 विद्यार्थियों की अपार आईडी का निर्माण हो चुका है। अब रुख करते हैं मौसम का। पूरे प्रदेश में मानसून की दस्तक से पहले ही प्री मानसून गतिविधियां जोर पकड़ चुकी हैं। पिछले 24 घंटे में 20 से अधिक जिलों में बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने गुना, अशोकनगर सहित 7 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जहां पर तेज आंधी गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभागों के कई जिलों में आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। धार में 2 दिवसीय गृह उद्योग व्यापार एक्सपो एवं मेले का शुभारंभ क्षेत्रीय सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग सावित्री ठाकुर के द्वारा किया गया। भोपाल के गोविंदपुरा इंद्रपुरी की लेबर कॉलोनी में सड़क किनारे के अतिक्रमण को हटाकर दुकानों और झुग्गियों को हटाया गया और शासकीय भूमि को मुक्त कराया गया। आईटीआई इंदौर में सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। आगर मालवा में स्वच्छ गांव सुरक्षित जलवायु अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। डिंडौरी कलेक्टर ने पशुपालन एवं डेयरी विभाग की बैठक में पशु चिकित्सकों एवं अधिकारियों को फील्ड में सक्रिय होकर कार्य करने के निर्देश दिए। और राजगढ़ में विश्व पर्यावरण दिवस पर कलेक्ट्रेट परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से। आप सुनेंगे फिल्मी गीत, गीत गंगा में।

कार्यक्रम का आगाज़ हम कर रहे हैं फिल्म भाई भाई से। इस गीत को गाया है गीता दत्त ने, लिखा है इस गाने को राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत दिया है मदन मोहन ने। भोर की पहली किरण के साथ जब मन किसी की याद का दीप जलाए तो दिल भी मुस्कुराकर

0: टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: अगला गाना आप सुनने जा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में। लिखा है इस गाने को हसरत जयपुरी ने और संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने। फिल्म का नाम है दिल एक मंदिर है। इश्क वो दरिया है जिसमें डूबकर किनारा नहीं मिलता, बस एक नाम, एक एहसास, और उसी में सारा जहां मिल जाता है।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में। कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: पेश है ये अगला गाना फिल्म खामोशी से। गाया है लता मंगेशकर ने, हेमंत कुमार के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा है गुलजार ने। हमने देखी है इन आँखों की महकती खुशबू, जैसे ख्वाब में बसा है कोई रूहानी जादू।

0: कॉलेज की फीस ज्यादा है।
1: मिठा
2: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
1: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
3: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो
0: कहाँ
1: एडमिशन कराने हैं,
3: खाता हुआ एक्टिव।
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: अगला गाना फिल्म अनुपमा से, गाया है लता मंगेशकर ने, कैफी आजमी के शब्दों को संगीत में ढाला है हेमंत कुमार ने। कुछ दिल ने कहा कुछ लबों तक ना आ सका, खामोशी ने हर एहसास का किस्सा कुछ यूं सुनाया।

अगला गाना आप सुनने जा रहे हैं फिल्म छाया से। इस गाने को गाया है लता मंगेशकर और तलत महमूद ने, राजेंद्र कृष्ण के शब्द, संगीत सलील चौधरी का। इतना न मुझसे प्यार बढ़ा कि इबादत बन जाए, दिल में ऐसे रहो कि मोहब्बत ताकत बन जाए।

आइए अब आपको सुनवाते हैं ये अगला गाना फिल्म इंतकाम से। आवाज़ एक बार फिर लता मंगेशकर की है। इस गाने को शब्दों में ढाला है राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने। गीत तेरे साज का तेरी आवाज़ में ढल गया, हर लम्हा वो मोहब्बत का पल बन गया।

आइए अब चलते हैं गीत गंगा के आखिरी पड़ाव की तरफ। ये गाना हमने लिया है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में, फिल्म है धरती। इस गाने को लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने। ये अलबेली प्यार की राहें यूं ही मुस्कुराती रहे, तेरे मेरे साथ के किस्से हवाएं गुनगुनाती रहे।

0: और अब आज की ये जो गीत गंगा है इसे ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए गीतांजलि को। ये आकाशवाणी का छिंदवाड़ा केंद्र है, सुबह के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में हिंदी में समाचार होंगे और 8:15 बजे होंगे अंग्रेज़ी में समाचार। तो आइए चलते हैं दिल्ली।
1: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने कहा, वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और फुटबॉल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों के खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में BSF के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट।
5: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ

0: कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वस्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। NTA ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी। NTA ने उम्मीदवारों, अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यक्तिगत रूप से धन के लेन देन को सुगम बनाने के लिए UPI समन्वय का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। बैठक के दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और नेपाल अपनी लंबी और विशिष्ट रूप से खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग करते हैं और दोनों देश हमेशा आवश्यकता के समय एक दूसरे के साथ खड़े हैं।
2: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
1: नेपाल के विदेश मंत्री श्री शिशिर खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि नेपाल और भारत केवल दो देश नहीं बल्कि एक गौरवशाली प्राचीन सभ्यता के साझेदार हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में विमानन के विकास में भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। इस क्षेत्र में 2044 तक भारतीय यात्रियों की संख्या लगभग 4 अरब तक पहुंचने का अनुमान है।
3: अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ के एशिया प्रशांत क्षेत्र के उपाध्यक्ष शेल्डन ही ने कल ब्राजील में बताया कि भारत पिछले कई वर्षों से एशिया प्रशांत क्षेत्र के विमानन विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते घरेलू नागर विमानन बाजारों में से एक है। श्री शेल्डन ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में पिछले 5 से 10 वर्षों में मजबूत वृद्धि हुई है और भविष्य में भी इसके मजबूत बने रहने की आशा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ 370 से अधिक एयरलाइनों का प्रतिनिधित्व करता है या वैश्विक हवाई यातायात का लगभग 85% हिस्सा है। 82वीं अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ वार्षिक आम बैठक और विश्व हवाई परिवहन शिखर सम्मेलन 6 से 8 जून तक ब्राजील में आयोजित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका है, साथ ही दक्षिणेश्वर और कालीघाट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुविधाओं में भी सुधार किए जाएंगे। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। श्री अधिकारी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस शासन की सरकार ने विकास के बजाय तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस की कीमत 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए हो जाएगी। रूस ने कहा है कि यूक्रेन ने सेंट पीटर्सबर्ग और उसके आसपास के इलाकों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। रूस ने लेनिनग्राद क्षेत्र के आसपास 140 से अधिक ड्रोन मार गिराए गए।
4: गवर्नर अलेक्जेंडर ड्रोज डेंको ने निवासियों से घरों के अंदर रहने का आग्रह किया है। श्री ड्रोज डेंको ने कहा है कि किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली है, हालांकि कई जिलों में ड्रोन का मलबा गिरने की सूचना

0: मिली है। इससे आवासीय भवनों को मामूली नुकसान हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी ड्रोनों ने सेंट पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक की दूरी तय की और दुश्मन नौसेना के शस्त्रागार और क्रोनस्टेड में एक अड्डे को निशाना बनाया। ज़ेलेंस्की के आज ब्रिटेन का दौरा करने और यूक्रेन के निकट यूरोपीय सहयोगियों प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत की आशा है। समाचार कक्ष से मैं राजेश कुमार मीणा।
1: इसराइल के हमले में 2 महिलाओं सहित कम से कम 7 फलस्तीनी मारे गए। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि कल काहिरा में मध्यस्थों ने हमास और अन्य गुटों के साथ तनावपूर्ण युद्ध विराम समझौते को सुरक्षित रखने के लिए बातचीत फिर से शुरू की। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से हुआ युद्ध विराम इसराइल के हमलों को रोकने में विफल रहा है और इसराइल ने गजा के आधे से अधिक हिस्से पर नियंत्रण बनाए रखा है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो भारत पहुंच गए हैं। श्री सुगियानो नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान दोनों मंत्री भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में कल भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। 7 साल बाद भारतीय टीम ने ट्रॉफी अपने नाम की है। एक रिपोर्ट।
2: गोवा के मडगांव में खेले गए सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही भारतीय महिला टीम ने 7 साल बाद इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को फिर अपने कब्जे में लिया। खिताबी मुकाबले की शुरुआत में ही दोनों टीमों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली। पहले हाफ में भारत की ओर से प्यारी झागसा गोल करके टीम को बढ़त दिलाई। पहले हाफ की समाप्ति तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर थी। दूसरे हाफ में भारतीय टीम पूरी तरह हावी नजर आई। संतफिदा ने शानदार गोल कर भारत को फिर बढ़त दिलाई जबकि लिंडा कॉम ने 3री गोल दाकर जीत पर मुहर लगा दी। इसके बाद बांग्लादेश की टीम वापसी नहीं कर सकी और भारत ने 3-1 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम ने फाइनल में भी अपना दबदबा कायम रखा और ब्लू टाइग्रेस ने एक शानदार जीत के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी से निखिल उपाध्याय।
1: और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं वीरेंद्र कौशिक।
3: भारत एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में अफगानिस्तान के साथ नया चंडीगढ़ में आज दूसरे दिन अपनी पहली पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 368 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा। केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल के शतक के बदौलत भारतीय टीम मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। कप्तान गिल 103 रन और ऋषभ पंत अर्धशतक बनाकर क्रीज पर हैं। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। ये एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। उधर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कल इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। हॉकी में जापान के काका मिगाहारा में भारत की अंडर-18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में कल भारत ने जापान को 4-1 से हराया।
1: केरलम के 7 जिलों त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के शेष 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।
4: केरलम में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार कल भी केरलम में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। खराब मौसम और ऊंची समुद्री लहरों को देखते हुए केरलम के तटीय क्षेत्रों में मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथि एम पुलुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: विभाग ने कर्नाटक के तटीय इलाकों माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, कोंकण तथा गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, हिमालय के तटीय क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ हिस्सों में भी आज वर्षा की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर आज गरज के साथ बिजली गिरने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश के भाग और ओडिशा के कुछ हिस्सों में आज लू चलने की संभावना है। ओडिशा में आज रात गर्म मौसम रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आर्थिक रफ्तार को तेज करने की खबरें सभी अखबारों में हैं। लोकसत्ता की सुर्खी है, आर्थिक मोर्चे पर निपटने के लिए बनाई गई रणनीति।

0: पत्र ने इसी विषय पर डील, मौसम और चुनौतियां शीर्षक देकर संपादकीय में लिखा है कि सवाल केवल तेल का नहीं, बाकी बहुत सी चीजें हैं जिन पर भारत निर्यात में अग्रणी है। पत्र आगे लिखता है, मॉनसून अच्छा रहे, युद्ध के बादल छट जाएं, इससे बड़ा सुकून भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए और क्या हो सकता है। अमर उजाला की खबर है, नेपाल की नई सरकार के साथ नई गर्माहट, नेपाल के विदेश मंत्री बोले, भारत के साथ संबंध सर्वोच्च प्राथमिकता। पत्र ने इस खबर को शीर्षक दिया है, अतीत का कोई भी बोझ भारत से रिश्तों में बाधा नहीं। दिल्ली से सिलीगुड़ी तक दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, 6 घंटे में ही तय हो जाएगा सफर, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय का असर रेल परियोजनाओं पर दिखने लगा है। राजस्थान पत्रिका की खबर है, भारत में छोटे परिवार की चाहत से बूढ़ा हो रहा युवा भारत। पत्र ने ढलान पर जलमदर की खतरे की घंटी बताते हुए लिखा है कि अगले 20-30 साल बाद युवा कामगारों की संख्या घटेगी। अखबारों ने खेल जगत की 3 महत्वपूर्ण खबरों को एक साथ दिया है। नवभारत टाइम्स ने प्रज्ञान नंदा के नॉर्वे शतरंज का खिताब जीतने, वैभव सूर्यवंशी के सबसे कम उम्र में भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बनाने और रूस की 19 वर्षीय मीरा आंद्रीवा के फ्रेंच ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीतने की खबरें एक साथ दी हैं। दैनिक ट्रिब्यून कहता है, खेलों का शानदार शनिवार, हॉकी से शतरंज तक युवाओं की बिसात। हिंदुस्तान ने लद्दाख के प्रति पर्यटकों की बढ़ती रुचि पर लिखा है, लोगों को भा रहा है ठंडा रेगिस्तान। पत्र के अनुसार 2020 में अटल टनल खुलने के बाद से पर्यटकों की पहुंच बेहतर हुई।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिसंघ ने कहा, वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार सैफ महिला चैंपियनशिप जीती। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। होम मिनिस्टर अमित शाह कॉल्स फॉर शार्पर विजिल ऑन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड सेल एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टीज अलोंग इंटरनेशनल बॉर्डर्स। National Testing Agency dismisses claims of NEET UG 2026 re-exam paper leak as false, warns of strict action against those spreading such content. West Bengal government to undertake major development initiatives to upgrade facilities at key religious sites across the state. India hands over 72 health facilities and 12 cultural heritage projects to Nepal. International Air Transport Association says India will be a significant player to air traffic boom in Asia-Pacific region by 2044. And in football, India beat defending champions Bangladesh 3-1 to win SAF Women's Championship for record 6th time. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah has called for a sharper vigil on financial transactions, constructions of buildings and sale and purchase of properties along the international borders. The directive came during a meeting chaired by Mr. Shah at BSS Tripura Frontier Headquarters regarding the border areas of the northeastern state. More from our correspondent.
3: Home Minister directed that an examination of land records of the last 5 years be conducted. Mr. Shah said frequent operations against drug and arms trafficking must be conducted and the entire chain of contributors to drug trafficking must be dealt with the ruthless approach. He said that ensuring financial discipline in the border districts is the responsibility of the states. Mr. Shah directed that collectors and GST officials be trained and that the Central Board of Direct Taxes, CBDT, conduct a survey on fake currency. Home Minister said that camps must be organized to train people living along the border to tackle the threats of narcotics and firearms and instructed that the presence of Patwari sentinels, local police and PSF personnel be ensured in these camps.
4: For Akashvani.

कार्यक्रम सुन रहे सभी नन्हे दोस्तों को भी आपकी अभिलाषा दीदी का ढेर सारा प्यार। नन्हे मुन्नो, अभी चल रही है छुट्टियां, कोई नानी के घर में है तो कोई दादी के घर में, तो कोई अपने ही घर में कर रहा है मौज मस्ती, है ना भाई। वर्ष भर पढ़ाई के उपरांत ये गर्मी की छुट्टियां ही होती हैं हमें तरोताजा करने के लिए। फिर नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति के साथ नए सत्र की पढ़ाई जारी रखने के लिए। बच्चों, एक और बात, तरोताजा रहने के लिए नियमित दिनचर्या, उचित खानपान, अनुशासित जीवनचर्या बेहद जरूरी है। स्कूल के चलते हमारी दिनचर्या नियमित हो जाती है करीब करीब, परंतु खान पान की बात करें तो एक नया ही ट्रेंड चल रहा है बच्चों के बीच। घर का खाना तो उन्हें अच्छा लगता ही नहीं, हर दो चार दिनों के बाद बाहर के खाने, बाहर जाना ही है या बाहर का खाना।

बुलाकर खाना ही है, और इसमें मददगार हो जाते हैं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। लेकिन बच्चों, क्या आपको पता है कि घर का खाना ज़्यादा बेहतर होता है? तो आइए आज के क्रम सुनो और गुनो में हम चर्चा करेंगे घर का खाना सबसे अच्छा विषय पर। और वैसे भी आज यानी 7 जून को मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। तो चलिए अपने क्रम की शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ।

जी हाँ बच्चों, अब जुड़ते हैं हम आज के अपने क्रम सुनो और गुनों से, जिसका विषय है घर का खाना सबसे अच्छा। बच्चों, बाहर मार्केट में आज सब कुछ मिलता है, खाने की वैरायटी का तो कहना ही क्या, बस बाहर गए और जो खाना है एकदम तैयार है। परंतु क्या इसके पीछे का सच आपको पता है? सबसे पहले तो हमें यह पता नहीं होता कि वह खाना ताज़ा है या बासा। खोमचे वाले होटल या रेस्टोरेंट वाले अपने

0: बचे हुए खाने को फेंकते थोड़े ही हैं, वे तो उसे बड़े संभाल कर फ्रिज में रखते हैं और अगले दिन पुनः गर्मा गर्म परोस देते हैं। दूसरी बात, हम अपने घरों में उपयोग आने वाले मसालों की करें तो मसालों को हम घर में ही तैयार करते हैं और उनमें किसी तरह की मिलावट भी नहीं होती। नन्हे मुन्नो, क्या होटल, रेस्टोरेंट या खोमचे वाले इस तरह घर के मसालों का उपयोग करते हैं? बिल्कुल नहीं। वे तो बाजार के रेडीमेड और सस्ते मसालों का या अन्य खाद्य सामग्रियों का उपयोग करते हैं जो उन्हें सस्ती पड़ती है। इसी तरह हम अपने घरों में सब्जियों, भाजियों, फलों को धोकर इस्तेमाल करते हैं, सड़ी गली सब्जियों आदि को छांटकर अलग कर देते हैं। परंतु क्या बाहर बनने वाली चीजों में इस बात का ध्यान दिया जाता है? बिल्कुल नहीं। कभी आप मौके पर जाकर देखिए अंदर का सच। उन्होंने धनिया, पालक, पुदीने जैसी चीजों की झुंडी ली और बिना धोए, बिना साफ किए नीचे रखकर काट दी फटाफट। इसी तरह कटी हुई सब्जियों का, जैसे प्याज आदि का उपयोग तुरंत करना चाहिए, रखी हुई नहीं खाना चाहिए। परंतु बाहर इस बात का ध्यान कहाँ रखा जाता है? सुबह से तैयार खाद्य सामग्री को हम रात्रि तक बड़े चाव से खाते हैं, जो अनेक रोगों का कारक होते हैं। इसी प्रकार नन्हे मुन्नों, साफ सफाई का ध्यान भी बाहर कहाँ रखा जाता है? हमारे घरों में हमारी मम्मी नहा धोकर, स्वच्छ वस्त्र पहनकर, स्वच्छता का पूरा ध्यान रखते हुए खाना बनाती हैं। परंतु बाहर गर्मी हो या बारिश, पसीने वाले हाथों से गंदे कपड़ों, गंदे जूतों, चप्पलों को पहने हुए खाना बनाया जाता है और परोसा भी जाता है। इसी प्रकार नन्हे मुन्नों, हमारा घर, ख़ास तौर से हमारा रसोई घर, हमारी मम्मी बहुत साफ रखती है, समय समय पर सफाई करती रहती हैं। वहाँ कॉकरोच, चूहे या अन्य कोई कीड़े मकोड़े पनप ही नहीं पाते। लेकिन क्या बाहर होटलों आदि में इस बात का ध्यान रखा जाता है? बिल्कुल नहीं। बाहर से सजा धजा, साफ सुथरा दिखने वाला होटल के रसोई घर में कभी जाकर आप देखिएगा, अधिकांश होटलों का खाना हम खाना छोड़ देंगे। अनेक उनके बनाने के बर्तनों को यदि हम देख लेंगे तो भी खाना छोड़ देंगे। एक खास बात और बच्चों, होटल वाले व्यापारिक दृष्टिकोण से खाद्य सामग्री तैयार करते हैं। उनके मन में सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाना होता है, इसलिए उनमें, उनके कर्मचारियों में, उनके शेफ या अन्य लोगों में वह भावनात्मक जुड़ाव नहीं होता जो माँ के हाथ के बनाए भोजन में होता है। माँ हो या हमारी नानी दादी, एक प्यार, एक अपनत्व की भावना से हमारे लिए भोजन बनाती हैं, इसीलिए उनके हाथों से बने भोजन में स्वाद होता है और एक अलग ही मिठास होती है। बाहर जो स्वाद हमें भोजन में मिलता है वह बनावटी है बच्चों। अलग अलग तरह के रसायनों, मिलावटों, रंगों आदि का प्रयोग हमारे लिए स्वाद तो देता है परंतु हमारे लिए जानलेवा भी हो सकता है। यह तो नन्हे मुन्नों मीठा जहर है जो धीरे धीरे हमारे जीवन के लिए खतरा बन जाता है। इसलिए एक बार नहीं, बार बार हम कहेंगे कि घर का खाना सबसे अच्छा होता है। और एक बात नन्हे मुन्नों विशेष रूप से आपको ध्यान देनी चाहिए कि जब कभी हम बाहर से खाकर आते हैं तो कई बार हमें उल्टियां होती हैं या फूड पॉइजनिंग हो जाती है, तो यह भी दूषित खाने और पानी की वजह से होती है। तो भाई, पुनः पुनः हम बार बार यह दोहराएंगे कि घर का खाना खाएं, माँ के हाथों का खाना खाएं और घर का खाना ही सबसे अच्छा होता है। तो यही संदेश देता हुआ सुनते हैं ये गीत और विराम देते हैं अपनी।
1: ये समझो और समझाओ थोड़ी।

इन संदेशों के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है नन्हे मुन्नो आपके अपने कार्यक्रम बाल सभा में। अब बारी है हमारे अगले क्रम यानि आज की चर्चा की। अभी अभी 5 जून को हमने मनाया विश्व पर्यावरण दिवस। उस दिन एक वीडियो मेरे व्हाट्सएप पर आया बच्चों, जिसमें 2 व्यक्तियों ने धूप से बचने के सारे उपाय कर लिए, छाता, पंखा, कूलर, एसी सब आजमा लिया, परंतु राहत नहीं मिली। और अंत में उन्होंने सूरज का सामना एक पेड़ से कराया तो धूप से राहत मिल गई। कितना अच्छा संदेश था यह कि पेड़ पौधे ही हमें गर्मी से राहत दे सकते हैं। हम जब घर से बाहर निकलते हैं ना बच्चों, और धूप में कहीं गाड़ी पार्क करना हो तो सबसे पहले पेड़ की छांव ढूंढते हैं, है ना? यही पेड़ तो बारिश लाते हैं। और बचपन में हमने पढ़ा भी है कि पेड़ पौधे मिट्टी का कटाव रोकते हैं, उसकी जड़ें मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं। कभी कोई पौधा जब उखाड़ा जा रहा हो तो देखना आप भी बच्चों कि उसकी जड़ों में मिट्टी जकड़ी हुई रहती है। और भी कई फायदे हैं पेड़ पौधों से, और यही तो है हमारा आज का विषय, यानी हम जाने पेड़ पौधों के महत्व को। नन्हे मुन्नो, हमने अपनी किताबों में पढ़ा है कि पेड़ पौधे हमें प्राणवायु ऑक्सीजन देते हैं और हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। तो भाई, ये वातावरण को स्वच्छ रखने का काम करते हैं, यानी पर्यावरण प्रदूषण, वायु प्रदूषण को कम करते हैं। यही पेड़ पौधे नन्हे मुन्नो भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने में मदद करते हैं, क्योंकि इसकी जड़ें पानी का अवशोषण करती हैं। फल, फूल, औषधि, इमारती और जलाऊ लकड़ी ये हमें देते हैं। ये सारी चीज़ें बच्चों किसी भी उद्योग या कुटीर या लघु उद्योगों के लिए कच्चा माल का काम करती हैं। बांस से कागज़ बनाया जाता है, अनेक तरह की दवाइयों में इनका उपयोग होता है, बल्कि ये कहें कि सारी वनस्पतियों को हम औषधि के रूप में उपयोग कर सकते हैं। पेड़ पौधे नन्हे मुन्नो हमारे पर्यावरण को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अनेक तरह की प्रजातियों का ये आश्रय स्थल होते हैं। चींटी, चींटे, मकड़ी, दीमक, मधुमक्खी, अनेक तरह के पक्षियों के घोंसले, सांप के बिल, बंदरों का रहवास इन्हीं पेड़ पौधों पर रहता है। अनेक तरह की वनोपज जैसे अचार, तेंदू, हरफर रेवड़ी, छीन, शहतूत, जामुन, गोंद, कत्था आदि इन्हीं पेड़ पौधों से हमें प्राप्त होते हैं। यदि ये पेड़ पौधे नहीं होते तो प्रकृति के इतने रंग, इतने स्वाद, इतनी सुंदरता हमें कभी देखने नहीं मिलती। बहुत ही दुख की बात है नन्हे मुन्नो कि आज विकास के नाम पर मल्टी स्टोरीज बनाने, रोड बनाने, मॉल बनाने, बड़े बड़े पेड़ों को यूं ही सेकंड्स में काट दिया जाता है, और पेड़ों की कमी, कंक्रीट के जंगलों से हमारा वातावरण लगातार गर्म होता जा रहा है। इस वर्ष आपने महसूस भी किया होगा, जो बेहद चिंतनीय विषय है। अतः आप बच्चों से हम विशेष अनुरोध करेंगे नन्हे मुन्नो इस कार्यक्रम के माध्यम से कि अपने जीवन के

हर ओकेज़न, हर अवसर में पेड़ अवश्य लगाएं। और हाँ, हमेशा याद रखें, पेड़ सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने के लिए नहीं, बल्कि सच्चे पुरुषार्थ से लगाएं, उसे बड़ा करें, पाले पोसें। तो नन्हे मुन्नों, ये थी हमारी चर्चा पेड़ पौधों के महत्व पर। तो इस चर्चा को विराम देते हैं इस गीत के साथ।

0: बोल बोल के थक गया।
1: क्या हुआ?
0: नया किडबैग चाहिए।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
0: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक, फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर।
1: चले ले आ गया नया किडबैग।
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक, फिर RBI ओम्बुड्समैन।
5: नन्हे मुन्नो, इस संदेश और प्यारे से गीत के बाद फिर स्वागत करते हैं आपका आपके अपने कार्यक्रम बाल सभा में। और भाई, जिसका है आपको इंतज़ार वह है अगला क्रम, यानी आज की पहेली। तो नोट करिए ये पहेली। एक कहानी मैं कहूँ सुन ले मेरे पूत, एक कहानी मैं कहूँ सुन ले मेरे पूत, बिन परों के उड़ जाए वो बांध गले में सूत। पहली एक बार फिर सुन लीजिए। एक कहानी मैं कहूँ सुन ले मेरे पूत, बिन परों के उड़ जाए वो बांध गले में सूत। तो भाई, हमें इंतज़ार रहेगा इस पहली के उत्तर का, कार्यक्रम की समीक्षा का, आपके सुझावों और शिकायतों का। तो हमें पत्र लिखना ना भूलिए या फिर SMS करना ना भूलिए। तो भाई, घड़ी कर रही है।

0: ये कार्यक्रम था बाल सभा, प्रस्तुति थी अभिलाषा भांगरे की। ये आकाशवाणी का छिंदवाड़ा केंद्र है, सुबह के 9 बजने वाले हैं। आप सुनेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम। आइए आपको ले चलते हैं मुंबई।
1: कार्यक्रम चित्रलोक के कुछ और गीत बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।

विविध भारती का ये कार्यक्रम है चित्रलोक। अपने सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में एक बार फिर हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जावेद अली की आवाज़, फिल्म राज 3।

गीत और संगीत था राशिद खान का, जावेद अली को आपने सुना, फिल्म थी राज थ्री। श्रोताओं, आज सुप्रसिद्ध अभिनेत्री अमृता राव का जन्मदिन है, उन्हें विविध भारती परिवार की ओर से जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। फिल्मों में आने से पहले उन्होंने कई टीवी विज्ञापनों और संगीत वीडियोस में भी काम किया। उन्होंने 2002 में फिल्म आपके बरस से अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें बेस्ट फिल्म फीमेल रिव्यू का फिल्म फेयर नामांकन भी मिला। 2003 में आई फिल्म इश्क विश्क में उनकी कॉलेज गर्ल की जो भूमिका थी उसने घर घर उन्हें लोकप्रिय बना दिया। मैं हूं ना जो 2004 में रिलीज हुई, इस ब्लॉकबस्टर फिल्म में संजना के उनके किरदार ने दर्शकों का दिल जीता और उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए नामांकित भी किया गया। 2007 में उन्होंने तेलुगु फिल्म अतिथि में महेश बाबू के साथ काम किया और अपनी पहचान बनाई। उन्होंने मस्ती जो 2004 में रिलीज हुई, वेलकम टू सज्जनपुर जैसी फिल्मों में अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। 2016 में प्रसिद्ध रेडियो जॉकी अनमोल सूद से अमृता राव परिणय सूत्र में बंधी।

0: एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर विजय सिंह आपके साथ, और हम एक गाना सुन लेंगे इस प्रोग्राम में, लेकिन उससे पहले हम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ सुनते हैं। बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम, छोटा सा कार्यक्रम, जानकारी भरा कार्यक्रम,
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
2: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत सुनिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित छत्तीसगढ़ की सरढ़ी पंचायत के सरपंच रामजी भगत के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रहे हैं निखिल कुमार।
3: श्रोताओं नमस्कार। ग्रामीण विकास, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। आपको बता दें, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा घोषित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 में जशपुर जिले की सरढ़ी ग्राम पंचायत को स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है। आज हमारे साथ हैं श्री राम जी भगत, जो कि सरपंच हैं सरढ़ी ग्राम पंचायत के। भगत जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
4: थैंक यू सर, धन्यवाद आपको।
3: भगत जी, राष्ट्रीय स्तर पर आपको एक पुरस्कार मिला है, जिसकी उपलब्धि आपकी पंचायत को देश भर में एक अलग पहचान दिलाती है। तो जब इस पुरस्कार की घोषणा हुई थी, तब आपके मन में किस तरह की भावनाएं थी, कैसा महसूस हुआ आपको?
4: मैं तो सरपंच हूँ, लेकिन मेरे ग्राम और जितने भी हमारे जन प्रतिनिधि हैं, वो भी खुशी के झूम उठे, और मेरे जनपद के अधिकारी, जिले के अधिकारी ने भी इस राष्ट्रीय लेवल का तृतीय स्थान, जो कि हम छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान ग्राम पंचायत सरडी विकासखंड बगीचा जिला जशपुर को मिला, उसके लिए पूरा अधिकारी भी झूम उठे, और ग्रामवासी भी, और क्षेत्र के समस्त अधिकारी कर्मचारी और जन प्रतिनिधि, सभी हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश वासियों को मैं धन्यवाद देता हूँ, और इस मुकाम पे पहुंचे उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आने वाला समय में जो हम लोग का बचा खुचा है, आने वाला फर्स्ट प्राइज का अवार्ड हमको मिले, उस आधार से हम जो बचा खुचा काम है या हम लोग नहीं पहुंच पाए, उसके लिए भी हम लोग काम करना चाहते हैं।
3: सरपंच जी, जब आपने इस काम को करना शुरू किया, तो वहाँ पर किस तरह की परिस्थितियाँ थी, और फिर आपने स्वच्छता और कचरा प्रबंधन के लिए किस तरह की गतिविधियों को संचालित किया? और ये भी जानना चाहूंगा कि वित्तीय संसाधन या फिर जागरूकता या फिर तकनीकी स्तर पर किस तरह की बातें आपके सामने आ रही थी, कोई कठिनाई थी या सब कुछ सामान्य था?
4: बहुत सारा कठिनाई था, कठिनाई को झेलते हुए। हम लोग के आदिवासी क्षेत्र है, पहाड़ी कुरवा लोग रहते हैं हमारे पास, हमारे गांव में, और जंगल है, पहाड़ है, फिर भी हम लोग जैसे साथ में समूह को मिलाकर, हम लोग का जन प्रतिनिधि और महिला समूह सब साथ मिलके मेरा सपोर्ट किए, और उनका मैं सपोर्ट लिया, और हर मोहल्ला में लोककर सभा किए, बैठे चर्चा किए कि हमको कचरा का भी प्रबंध करना है, मतलब कचरा के इकट्ठा करना है, कहीं नहीं फेंकना है, और कचरा का कलेक्शन के लिए हम लोग महिला स्वर समूह को दिए, और समूह द्वारा प्रत्येक शनिवार को महीने में 4 बार, और हम लोग पूरे गाँव जनभागी के द्वारा सहयोग, पूरे गाँव के हम लोग साफ सफाई करते हैं, और ये चुनौती बहुत ज्यादा थी, लेकिन हमारे सपोर्ट में जन प्रतिनिधि और पूरे जनता भाई मेरे को साथ दिए, इसलिए इस मुकाम तक हम लोग पहुंचे हैं।
3: यानी कचरा प्रबंधन पर आपने काफी बड़े स्तर पर काम किया, लोगों का सहयोग लिया और लोगों ने बढ़ चढ़कर आपकी
4: बढ़ चढ़कर मेरा सहयोग दिया।

0: अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जो खुले में शौच से मुक्ति वाली बात है, तो शत प्रतिशत सफलता आपने हासिल की है, इसके लिए आपने किस तरह से काम किया, कौन सी चुनौती आपके सामने थी?
1: मेरे पास बहुत चुनौती थी। आदिवासी क्षेत्र है, कोई नहीं मान रहे थे कि ये शौचालय क्या चीज को बोलते हैं, शौचालय के बारे में उनको पता नहीं था। काहे कि हम लोग को आदिवासी ट्रेवल क्षेत्र के हैं, पहाड़ी कुरवा लोग निवास करते हैं, और धीरे धीरे हम लोग लोकर सभा, जैसे हम लोग बोलते हैं छोटा छोटा बैठक, हर मोहल्ला में समूह के माध्यम से, अब हम लोग पंच के माध्यम से। अब मैं पिछले बार भी जनपद सदस्य था, तो मेरे को इसके बारे में कुछ जानकारी था कि हमको आगे कैसे बढ़ाना है और शौचालय शौच मुक्त कराना है। उस आधार से हम लोग बहुत मेहनत किए, लगन किए, तभी हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं।
0: जल संरक्षण के लिए आपने कौन कौन से काम किए हैं?
1: जल संरक्षण के लिए केरड़ा विभाग मेरा सहयोग किए, और पिछले बार 5 साल जनपद सदस्य था, उस समय मैंने केरड़ा विभाग से 109 पंप लगवाया, इस हिसाब से पानी उपलब्ध हो पाया, इसलिए रबी के फसल और खरीफ का फसल दोनों फसल ले सकते हैं।
0: अच्छा, जल संरक्षण के क्षेत्र में आपने तालाबों के पुनर्जीवन पर काम किया, भूजल पुनर्भरण पर काम किया, ड्रिप सिंचाई प्रणाली की हम बात करते हैं उस पर भी आपने काम किया, तो इस तरह के जो कदम आपने उठाए हैं, इनमें भी कुछ चुनौतियां आपके सामने आई थी, आपने उनको हल किया?
1: सर, बहुत सारा चुनौती है, जैसे पानी की कमी के कारण ही, तो मैं जैसे हम लोग पहले हैंडपंप लगवाए, उसके बाद पानी की जहाँ कमी रहती है, इसकी हम लोग पानी की बचत करने के चक्कर में उसमें हम लोग ड्रिप सिस्टम टपका विधि से हम लोग खेती करना शुरू किए, और पिछले 5-10 साल टपका विधि से खेती हो रहा है ड्रिप के माध्यम से, तो उसमें पानी की बचत हो रही है। और पानी का बचत के लिए और अभी हम लोग ये दूसरा प्लान किए हैं, एक सोखता गड्ढा जो बोलते हैं, अभी घर घर हर घर हर परिवार में एक गड्ढा खोद रहे हैं, 2.5 मीटर का, 2 मीटर का, 1 मीटर का, उसमें हम लोग जितना बरसात का पानी चाहिए, अभी वाला जो हम लोग बर्तन उर्तन धोते हैं, नहाते धोते हैं, उस पानी को इकट्ठा सीधा गड्ढा में जा रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग का जल स्तर जो है जो घटने के बजाय बढ़ रहा है।
0: तो मतलब ये जो पानी का दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सोच आपके अंदर कैसे आई कि इस तरह से पानी का दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है?
1: सर, मैं पहले माइक्रो वाटर शेड में काम किया था, जल ग्रहण समय में माइक्रो वाटर शेड में काम किया, माइक्रो वाटर शेड कर ही मतलब है कि तो वाटर पानी को इकट्ठा करना, और पानी को इकट्ठा जब मतलब कि गांव का पानी को गांव में ही मतलब कि उसको इकट्ठा करके नीचे करेंगे, उसमें क्या है कि पानी का पर्कुलेशन नीचे जाएगा, तो वही पानी हम लोग को मतलब कि उसमें कुआं है, तालाब है, डबरी है, चाहे नलकूप है, चाहे हैंडपंप है, उसमें पानी वही पानी आता है, बरसात का पानी।
0: अच्छा सरपंच जी, एक बात ये कही जाती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो खाना बनाने का काम है वो लकड़ियों पर किया जाता है, चूल्हे पर खाना बनाया जाता है, आपने इस दिशा में भी काम किया है गैस कनेक्शन के लिए?
1: सर, पहले हम लोग के यहाँ भी लकड़ी से खाना बना रहे थे, क्या है कि पुरवा लोग कहाँ से बनाते हैं, लकड़ी से बनाते हैं, वो जंगल में रहते हैं। हम लोग जन आंदोलन चलाया कि लकड़ी हमको बचाना है, आने वाला पीढ़ी के लिए, हम जब लकड़ी नहीं बचाएंगे तो सांस कहाँ से लेंगे, ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे, हम उस हिसाब से हमने उनको भी हम लोग बैठक करके बताए, और हम लोग उस स्थिति में भी अभी हम लोग लगभग 453 परिवार के पास गैस कनेक्शन है।
0: और भगत जी, पर्यावरण संरक्षण में वृक्षारोपण का एक बड़ा योगदान रहता है, मैंने ये भी सुना है कि आपको वृक्षारोपण से बड़ा लगाव है, तो आपने किस तरह से वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया है अपनी पंचायत में?
1: सर देखिए, मैं जनपद सदस्य ही था उस समय, हम लोग पहले जैसे माइक्रो वाटर शेड में काम किया था, उस समय भी प्लांटेशन हमने लगाया था, उसके बाद में जनपद सदस्य से पिछले पहले वर्ष था, उस समय भी हम लोग प्लांटेशन लगाए, उनमें से हमको जिला प्रशासन की सहयोग से पैसा दिए, और जनपद से भी कुछ पैसा, और अपने तरफ जो मनरेगा उसके माध्यम से हम लोग वृक्षारोपण लगाए।
0: कुछ इलाकों में बंजर जमीन जैसी समस्याएं आती है, उनके लिए आपकी क्या योजना है, उन पर आप कैसे काम करेंगे?
1: सर, आपने बहुत सवाल मेरे से अच्छा किए, अगर बंजर भूमि मेरे को अगर मिल जाता आने वाला समय में, वो बंजर भूमि में उसको हम लोग वृक्षारोपण आने वाला समय में लगाएंगे,
0: मतलब उसके लिए भी अपने कार्य योजना
1: तैयार कर रहे हैं।
0: और सरपंच जी, एकल उपयोग प्लास्टिक जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो भी एक बड़ी समस्या माना जाता है, इस पर आपने काम किया है, तो किस तरह से गतिविधियों को संचालित किया, कैसे लोगों को मोटिवेट किया कि इन चीजों से हमें बचना चाहिए?
1: प्लास्टिक तो हम एकदम मुक्त नहीं कर सकते हैं, कहा कि उसको हम लोग बनाते नहीं, उसको हम खुद नहीं बनाते हैं, तो हमको उसको मुक्त नहीं करा सकते हैं, लेकिन हम प्रयास किए और प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग प्लास्टिक इकट्ठा करें, कुछ मिनी बैंक के माध्यम से हम लोग को इकट्ठा हर चौराहे पर, हर कहीं दुकान है, किराना दुकान है, वहाँ पर लगा दिए, वहाँ हम लोग का मतलब कि गांव में कोई प्लास्टिक मुक्त तो है, वास्तव में है, बाकी पंचायत में है नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ है, हमारे पंचायत में है।
0: इस तरह की जो गतिविधियां है, खासतौर पे ये कचरा प्रबंधन की जहाँ पर बात है, साफ सफाई की बात है, तो इसमें ग्रामीण लोग जो है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनकी भूमिका किस तरह है, वो लोग किस तरह से आपका सहयोग करते हैं?
1: उसमें भी हम लोग समूह को लिए जिम्मेदारी दिए हैं, स्वर सहायता समूह को, उसमें 11-12 जन उसमें कचरा कनेक्शन सप्ताह में करते हैं, और कचरा कनेक्शन करके उनको महीने का 30 रुपया देते हैं हर परिवार, और उनका निजी जिंदगी थोड़ा बेहतर हो रहा है,
0: अच्छे रिजल्ट वहाँ से सामने आ रहे हैं।
1: और सप्ते में हम जैसे हम लोग पूरे गांव वासी

0: मिल के बाकी गली का सफाई करते हैं, रोड का सफाई करते हैं।
1: सरपंच जी, आपने हरित अधोसंरचना यानी कि ग्रीनरी को तो बढ़ावा दिया ही, साथ में सौर ऊर्जा पर भी आपका काफी फोकस रहा है, इसके बारे में हमें बताएं।
0: सर, केडा के माध्यम से जो भारत सरकार ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो केडा का पूरे राज्य में उसका किसानों के फायदे के लिए सिंचाई के लिए पंप कनेक्शन दे रहे हैं
1: जी,
0: और दिया है, मैं तहे दिल से श्री सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि किसानों के लिए उतना बड़ा सोच रखते हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि किसानों के हित में काम कर रहे हैं और किसानों को लाभ मिल रहा है।
1: सिंचाई पंप की क्या योजना रही आपके लिए
0: विगत आने वाला समय में, और अगर किसान जो छूटे हुए हैं उनके लिए और अगर सिंचाई पंप मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता,
1: यानी प्रयास आपके जारी है। अच्छा, ग्रामीणों ने आपकी काफी मदद की होगी तब जाकर के आपको ये सफलता प्राप्त हुई है, तो उनकी किस तरह की उपलब्धियां रही, कैसे लोगों ने आपको बढ़ चढ़ करके सपोर्ट किया कि आपको लगा कि हाँ इनके साथ मिलकर अब हम ये काम और भी ज्यादा बड़े पैमाने पर कर सकते हैं।
0: सर, उनको तो मैं जितना मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे ग्रामवासियों के लिए और जनप्रतिनिधियों को, और मेरे जनपद के शासन प्रशासन और जिले के सभी टीमों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरा सहयोग जनपद से और जिले से सहयोग जो मिला उसके लिए भी सभी समस्त अधिकारी कर्मचारी और पंचगण या आम जनता को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ।
1: आपकी पंचायत के जो भी लोग हैं, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ समस्याएं हर किसी के सामने आ ही जाती हैं, तो वो अपनी समस्याएं लेकर आपके पास आते हैं या किसी भी तरीके से आप तक अपनी समस्याएं पहुंचाते हैं, तो उसमें किस तरह से आप एक्शन लेते हैं, कैसे लोगों की समस्याओं को दूर करते हैं?
0: सर, हमारे पास बहुत सारा समस्या है, काहे कि हमारे आदिवासी क्षेत्र है, मेरे पास सुबह टाका लग जाता है, एकदम सुबह जब मैं सो के नहीं उठता हूँ 5 बजे आदमी आ जाते हैं और सारा समस्या का हल मैं इस मिनट से उठता हूँ, बैठने के लिए उनको बोल देता हूँ बैठिए मैं आ रहा हूँ, उसके बाद उनका समस्या को देता हूँ क्या कौन सा समस्या क्या है, तो मैं इस मिनट से उनका समस्या को हल करने का कोशिश करता हूँ। मेरे से नहीं बनता है, जो ऊपर स्तर से चाहे ब्लॉक स्तर से चाहे जिला स्तर से उनका काम को करने के लिए प्रयास करता हूँ।
1: तो कोई खास दिन निर्धारित कर रखा है उनसे मिलने के लिए या प्रत्येक दिन सभी लोग आते हैं जहाँ पर अपनी समस्याएं वो आपके सामने रखते हैं?
0: हमारे यहाँ प्रत्येक शुक्रवार को भी है, जो लगता है सचिवालय उस दिन अलग है, वो तो सरकारी क्रम शासन अच्छा। है मेरा सोमवार मंगल बुध भी फिर मेरा 3 दिन लगातार बैठक अपने घरे में बैठता हूँ और तीनों दिन घर में बैठता हूँ और 3 दिन पंचायत भवन में बैठता हूँ, अब तीनों दिन मेरा काम हो जाता है,
1: यानी लगातार व्यस्त रहते हैं।
0: मतलब हमेशा व्यस्त रहता हूँ, किसी पब्लिक को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है,
1: यही कारण है कि आपके पंचायत को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
0: जी सर।
1: अच्छा, एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा कि अब आपको क्या लगता है कि जो भी बुनियादी ढांचा आप लगातार बना रहे हैं उससे वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरह का परिवर्तन देखने को मिल रहा है, खासतौर पर जब गाँव में सड़कों की बात करते हैं, स्ट्रीट लाइट की बात करते हैं या मुख्य सड़क से कनेक्टिविटी की बात होती है, आते जाते हैं कहीं दूर दराज के क्षेत्रों में जाते हैं, उसके लिए किस तरह के प्रबंध है?
0: सर, उसके लिए अभी हम लोग और प्रयास कर रहे हैं, कुछ बहुत काम बचा है, उस काम को भी हम लोग प्लान बना के उसको शासन प्रशासन को अवगत कराएंगे, जो बचा कुचा है उस काम को आगे बढ़ाएंगे और आने वाला समय जहां हम लोग का कार्य जो बचा है उसको पूर्ण कर सके।
1: तो सरपंच जी, आपने ये जो सफलता हासिल की है, इस उपलब्धि तक आप पहुंचे हैं, तो इसमें आपकी सबसे बड़ी कार्य योजना क्या रही, आपका माइंडसेट क्या था, कैसा आपने सोचा कि इस योजना पे मुझे चलना चाहिए, इससे मुझे काफी कुछ प्राप्त हो सकता है?
0: सर, हम लोग के यहाँ जैसे सबसे पिछड़ा पहाड़ी कोरवा लोग रहते हैं, ना आदिवासी लोग रहते हैं, ना उनको समझाना तो बड़ी मुश्किल था, फिर भी हम लोग सोचे कि पूरे गांव के बैठक करके सोचे और शासन से सहयोग लिए, जिला प्रशासन ने हमको सहयोग दिया, जनपद ने भी मुझे सहयोग दिया, उसी कारण से ODF मतलब पंचायत बना, जैसे शौचालय मुक्त है ना, उसमें 453 हम लोग शौचालय बनाए।
1: सरकार के सहयोग की जब बात आती है तो आजकल सरकार डिजिटल होने पर ज्यादा ध्यान दे रही है, लगातार फोकस कर रही है कि हर एक चीज पर डिजिटल तरीके से काम होना चाहिए, आपको इससे कितना फायदा और आपने अब तक कितना इसे अपनाया है?
0: सर, डिजिटल एक आज के आधुनिक जमाना में बहुत ही अच्छा है, हम बैठे बैठे अपने कार्य को जिला का हुआ चाहे राज्य, हम अपने बैठे बैठे अपने आम जनता को फैसिलिटी दे सकते हैं
1: जी,
0: चाहे जिसे का महिला KYC वगैरह कराते हैं, चाहे और बैंक जाना पड़ता है, बैंक वाला जितना काम धाम होता है उसको हम लोग अपने पंचायत में बैठ के उसका काम को निपटा सकते हैं। और हमारे यहाँ भी आने वाला समय में उसको प्रस्ताव मैंने भेज चुका है कि अटल डिजिटल सेवा केंद्र का स्थापना होने वाला है, मतलब का उसके लिए मकान बनने वाला है।
1: तो सरपंच जी, सरकारी योजनाओं का लाभ आपके गांव के हर एक व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए कोई खास व्यवस्था की आपने?
0: जिन्होंने मतलब के जागरूक नहीं तो उसको हम मैंने उनको जगाया, ग्राम सभा में बुला के सब भाइयों को आप लोगों का क्या कमी है, सरकार का एक एक जो भी योजना है उसको सारा योजना का लाभ मैंने उनको बताया कि इस योजना में ये चीज करना है, उस योजना में जो भी लाभ है उस योजना को लाभ आप लोग लीजिए, शासन आपको दे रहा है, उस योजना को कभी भी इधर उधर मत कीजिए, उसका फायदा उठाए, उसका लाभ उठाए।
1: भगत जी, अब आपको राष्ट्रीय पुरस्कार मिल

0: चुका है, तो आपको क्या लगता है कि आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं या लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई, या दोनों चीजें बढ़ गई हैं?
1: सर, राष्ट्रीय स्तर से मेरे को पुरस्कार मिला है तो मेरा भी जिम्मेदारी बनता है और जनता का भी जिम्मेदारी बनता है और शासन का भी जिम्मेदारी बनता है। जो मेरा जब मैं कुछ मेरा जिस लेवल तक नहीं पहुंचा उस लेवल तक मेरे को भी पहुंचना है और जनता को भी पहुंचना है। प्रशासन प्रशासन को भी ध्यान देना है कि मेरा कहीं कमी बेसी है उसमें फोकस ज्यादा दे तो मैं फिर आगे बढ़ जाऊँ।
0: आपने एक ऐसा काम किया है जो मतलब देश की अन्य पंचायतों के लिए एक तरह से आदर्श बन सकता है, तो मैं ये चाहूंगा कि आप हमारे देश की जो अन्य पंचायतें हैं उनके लिए भी अपना संदेश दें कि आप भी इस तरह से काम कर सकते हैं।
1: मैं तो पूरा भारत के सभी पंचायत चाहे देशवासियों को मैं अपील करना चाहता हूँ कि अपने भी पंचायत के बारे में जन प्रतिनिधि हैं या जनता आपको वहाँ तक पहुँचाया है तो गांव का समस्या के बारे में उन लोग भी सोचे जैसे मैंने सोचा उनको, और मेरे से बेहतर सोचना चाहिए और उनको भी ऐसा करना चाहिए।
0: तो भगत जी, आपने तमाम प्रश्नों का उत्तर दिया, काफी बातें हुई आपसे, तो हम आपका धन्यवाद करते हैं आपने इस चर्चा में भाग लिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: आपको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार सर।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित छत्तीसगढ़ की सरडी पंचायत के सरपंच रामजी भगत के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
4: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

श्रोताओं, चित्रलोक कार्यक्रम की यही है आखिरी पेशकश। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ लेते हैं इजाजत कार्यक्रम चित्रलोक से। आज का ये प्रोग्राम आपने सुना संगीता श्रीवास्तव के साथ। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया, सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो, आई जंजीर की झनकार खुदा खैर कर। तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती

0: दीजिए पेश है प्रोग्राम आज के फनकार। आप सभी को नमस्कार।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है।
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम।
0: साथियों, आज मुझे कुछ नहीं बहुत कुछ कहना है। निर्देशक, लेखक, पटकथाकार, पत्रकार और उपन्यासकार ख्वाजा अहमद अब्बास के बारे में।

7 जून 1914 को पानीपत हरियाणा में जन्म हुआ ख्वाजा अहमद अब्बास का। ख्वाजा अहमद अब्बास बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। फिल्म, साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका एक समान दखल था, इसलिए ये बड़ी मुश्किल सी बात है कि हम आज उनकी प्रतिभा के किस पहलू पर ज्यादा बात करें।

0: पुलिस वाला दिल का हाल सुने दिल वाला सीधी सी बात न मिर्च मसाला कह के रहेगा कहने वाला दिल का हाल सुने दिल।
1: बात शुरू करते हैं अब्बास साहब के जन्म के समय की, जबकि वो अंग्रेजों के शासन का समय था। तब 1914 में अब्बास साहब का जन्म पानीपत के एक मशहूर उर्दू शायर ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली साहब के यहाँ हुआ, जो कि मिर्जा गालिब के शिष्य थे।

0: ये फिजाए बुला रहे।
1: ख्वाजा अहमद अब्बास यानी के ए अब्बास के दादा ख्वाजा गुलाम अब्बास ने 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। ख्वाजा अहमद अब्बास ने अपनी शुरुआती स्कूली शिक्षा हाली मुस्लिम हाई स्कूल में ली और फिर 1933 में अंग्रेजी में बीए और 1935 में एलएलबी की डिग्री अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ली।

के ए अब्बास साहब ने अपने करियर की शुरुआत पत्रकार के रूप में की और फिर 1936 में वो पार्ट टाइम पब्लिसिस्ट के रूप में जुड़ गए बॉम्बे टॉकीज से, और इसी प्रोडक्शन हाउस के लिए उन्होंने 1941 में पहली बार स्क्रीन प्ले लिखा। फिल्म थी नया संसार।

0: रात बदलते।
1: फिल्मों से जुड़ने के साथ साथ अब्बास साहब उस दौर के लगभग सभी बड़े अखबारों में कॉलम लिखा करते थे और साथ ही उन्होंने फिल्मों में भी काम अपना शुरू कर दिया था। चेतन आनंद की पहली होम प्रोडक्शन फिल्म नीचा नगर और वी शांताराम की फिल्म डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी उन्हीं ने लिखी थी।
2: अपने मरीजों में एक नई बीमारी फैल रही है फोड़े की तरह, अगर ये ज्यादा फैल गई तो इसका नतीजा निहायत खौफनाक होगा। अपने जिसमें दाखिल करूंगा जिससे पता चल जाएगा कि मेरी तबीयत पर इसके जहर का कैसा असर होता है।
3: ची, ची।

मेरा जख्म अच्छा हो रहा है, नई दवा कारगर साबित हुई। मिल गया, मिल गया, सालिम फोड़े का इलाज मिल गया।

0: ख्वाजा अहमद अब्बास ने 1945 में पहली फिल्म निर्देशित की धरती के लाल। 1951 में ख्वाजा अहमद अब्बास ने अपना बैनर स्थापित किया नया संसार, जिसके अंतर्गत लगातार फिल्मों का निर्माण किया जाता रहा। 1953 में अनहोनी, मुन्ना और राही ये फिल्में बनी। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाली उनकी 1964 की फिल्म थी शहर और सपना। 1969 में ख्वाजा अहमद अब्बास ने बनाई फिल्म सात हिंदुस्तानी, जिसने जीता नरगिस दत्त अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन। और यहां हम अपने सभी श्रोताओं को याद दिला दें कि यही वो फिल्म थी जिसके जरिए आज के महानायक अमिताभ बच्चन का फिल्मी सफर शुरू हुआ था।
1: ख्वाजा अहमद अब्बास साहब से मेरी पहली मुलाकात मुंबई में हुई, ये उस सिलसिले में हुई जिसमें वो कुछ नए कलाकारों को ढूंढ रहे थे, नए चेहरों को ढूंढ रहे थे अपनी आने वाली फिल्म सात हिंदुस्तानी के लिए। मैं उन दिनों कलकत्ते की नौकरी छोड़ करके दिल्ली आया हुआ था और जब मुझे ये सूचना मिली तो मैं अब्बास साहब से मिलने यहाँ बम्बई आया, जुहू तारा रोड पर उनके अपार्टमेंट में जहाँ पर वो अपना लेखन वगैरह किया करते थे, वहाँ उनसे मिलने गया। एक आधा घंटा मिलने के बाद मैं जब नीचे आया तो उनके असिस्टेंट थे तीनू आनंद, जो कि बाद में जाकर के सत्यजीत रे के असिस्टेंट बने, उन्होंने आकर के मुझे नीचे बताया कि अब्बास साहब ने आपकी जो तस्वीर देखी और आपसे जो मुलाकात हुई वो उनको पसंद आई और मेरी शुरुआत जो है वो फिल्म इंडस्ट्री में ख्वाजा अहमद अब्बास के साथ। उनकी सोच जो थी वो एक बहुत ही आम आदमी की सोच होती थी। उनके मन में ये था कि ये जिस तरह से उनके किरदार या जो चरित्र उन्होंने लिखे थे इस फिल्म के बारे में, जिस तरह से वो गुजरे होंगे या जिस तरीके से उन्होंने अपना ये जीवन व्यतीत किया होगा, उसी तरह से उनके कलाकारों को भी फिल्म में जीवन को व्यतीत करना चाहिए। तो हम लोग यहाँ से एक थर्ड क्लास के कंपार्टमेंट में गाड़ी में बैठ करके हम लोग गोवा गए और रास्ते में जहाँ जहाँ हमें मौका मिलता गया, अगर किसी सर्किट हाउस में जंगल के बीच कहीं एक मकान मिल जाता था तो वहाँ पर हम लोग रहते थे। एक ही हॉल में पूरा कास्ट और पूरे वर्कर्स सब एक साथ वहाँ ज़मीन पे हम लोग सोते थे और सभी एक किस्म का खाना खाते थे, एक ही कमरे में सब लोग रहते थे एक ही साथ, कोई भेदभाव नहीं था। एक उनका एक बहुत ही सोशलिस्टिक और मॉरल इशू था ये उनके जीवन में।
0: राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तमाम पुरस्कारों से ख्वाजा अहमद अब्बास साहब को नवाजा गया। 1969 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। ख्वाजा अहमद अब्बास ने फिल्मी दुनिया में जहां अनेकों फिल्मों के लिए लेखन किया, उन्हें पायनियर ऑफ इंडियन पैरेलल सिनेमा या न्यू रियलिस्टिक सिनेमा कहा जाता है, वहीं ये बताना भी जरूरी हो जाता है कि अब्बास साहब की ट्यूनिंग फिल्मकार राज कपूर के साथ बहुत अच्छी थी।
2: मुंबई में सब बहरे बसते हैं क्या?
3: बहरे भी और अंधे भी, इनके कान कुछ नहीं सुन सकते सिवाय रुपयों की झनकार के। मेरे भाई बम्बई, यहाँ बिल्डिंगें बनती हैं सीमेंट की और इंसानों के दिल पत्थर के। यहाँ एक ही देवता पूजा जाता है और वो है पैसा। मगधरा सामने से हटके खड़े हो, मेरे भाई धंधे का टाइम है। माई
2: धंधा यानी कि काम ना है? काम जो भाई तुम्हारे शहर में पेट भरने के लिए क्या करना चाहिए?
3: जो मैं करता हूँ भीख मांगनी चाहिए।
2: नहीं कोई काम बताओ मुझे, काम बताओ।
3: तो समझना पड़ेगा, कुछ पढ़ा लिखा है?
2: ये पास सच कर, ये देखो मेरी डिग्री, साथ साथ ये फिरता हूँ मैं, ये देखो ये देखो।
3: ईमानदार हो?
2: सच्चाई और ईमानदारी का सबसे पहला इनाम मुझे मिला है, सोने का मेडल, ये देखो।
3: जवान हो, मेहनत कर सकते हो?
2: डबल जवान, 24 घंटे दिन में काम कर सकता हूँ, कोई करा के देख ले।
3: तो तुम्हें काम नहीं मिल सकता?
2: काम नहीं मिल सकता? पढ़े लिखे ईमानदार मेहनती जवान को काम नहीं मिल सकता? क्यों नहीं?
3: ये कि ये बम्बई है मेरे भाई बम्बई, बड़ा शहर, यहाँ सच बोलकर पेट भरने का रास्ता ढूंढने से नहीं मिलता और झूठ बोलकर पैसे बनाने के रास्ते हैं 420।
2: थैंक यू बॉस, थैंक यू।

0: लिया
1: कोई ना,
0: एक की मैं कुफर तो लिया
1: कोई ना,
0: एक की मैं जहर को लिया
1: कोई ना, भाई कोई ना, भाई कोई ना। ओ हट के पला जी बच के,
2: के ए अब्बास ने राज कपूर की चर्चित फिल्मों में से जागते रहो, आवारा, श्री 420, मेरा नाम जोकर, बॉबी और हिना फिल्में लिखी।

ख्वाजा अहमद अब्बास की कलम कभी रुकी नहीं। अपने जीवन के अंतिम समय तक वो मुंबई के लोकप्रिय अखबारों ब्रिट्स और क्रॉनिकल के लिए कॉलम लिखते रहे। 1 जून 1987 को 72 वर्ष की उम्र में मुंबई में उनका निधन हो गया।

0: लेखक निर्देशक पटकथाकार उपन्यासकार ख्वाजा अहमद अब्बास पर केंद्रित इस कार्यक्रम के लिए शोध आलेख और स्वर था अमरकांत का, प्रोड्यूसर रमेश गोखले। अब इजाजत दीजिए, नमस्ते।
1: आज के फनकार।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे,
1: चिट्ठी।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है मंदसौर जिले की चिट्ठी। आलेख है दीपक शर्मा का, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। मंदसौर जिले में ये महीना विकास, जनकल्याण, स्वास्थ्य जागरूकता, पर्यावरण संरक्षण और रोजगार सृजन के अनेक महत्वपूर्ण प्रयासों का साक्षी रहा। जिले में प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और विभिन्न विभागों के समन्वित प्रयासों से कई योजनाएं धरातल पर उतरती दिखाई दी। जिले में नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए 27 न्यायिक खंडपीठों का गठन किया गया। बीते दिनों हुई इस लोक अदालत में न्यायालयों के 656 तथा प्री लिटिगेशन के 1048 सहित कुल 1704 प्रकरणों का निराकरण किया गया, जिसमें मोटर दुर्घटना दावा, विद्युत अधिनियम एवं चेक बाउंस से संबंधित मामलों का भी सफलतापूर्वक निपटारा किया गया। मंदसौर जिले के भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन बीते दिनों किया गया, जिसके तहत वैदिक मंत्रोच्चार, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का लाइव प्रसारण किया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने भारत के गौरवशाली इतिहास, सांस्कृतिक विरासत और विकसित भारत के संकल्प पर प्रकाश डाला। किसानों को नवीन तकनीकों से जोड़ने के लिए कृषक कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत किसान रथ अभियान का शुभारंभ बीते दिनों जिले में किया गया, जिसके तहत जिले के विभिन्न विकास खंडों में 10 दिवसीय भ्रमण के दौरान किसानों को प्राकृतिक खेती, फसल विविधीकरण, बीज उपचार, मृदा परीक्षण, कृषि यंत्रीकरण और विभागीय योजनाओं की जानकारी दी गई। राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर गुदरी टोला क्षेत्र में जागरूकता रैली निकालकर नागरिकों को डेंगू से बचाव के उपाय बताए गए। देखें साफ करें ढके थीम पर आधारित इस अभियान में आमजनों को घरों में जमा पानी की नियमित जाँच और सफाई का संदेश दिया गया। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जिले में अब तक 417 खेत तालाब तैयार हो चुके हैं, जबकि 820 तालाबों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इन तालाबों से वर्षा जल का संरक्षण होगा, भूजल स्तर तथा किसानों को सिंचाई के लिए स्थायी जल स्रोत उपलब्ध होंगे। इससे कृषि उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत सांसद निधि से निर्मित निक्षय वाहन को बीते दिनों जिले में रवाना किया गया। यह विशेष वाहन 905 गांवों एवं नगरीय क्षेत्रों में भ्रमण कर टीबी रोग के प्रति जागरूकता फैलाने, जाँच सुविधा उपलब्ध कराने तथा मरीजों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुँचाने का कार्य करेगा। इसके साथ ही जरूरतमंद मरीजों को पोषण सहायता भी प्रदान की जा रही है। जिले में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की दिशा में आंगनवाड़ी केंद्र लालाखेड़ा में बीते दिनों आयुष्मान आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसके तहत शिविर में ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच, एक्सरे, टीबी जांच, हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर एवं रक्तचाप के परीक्षण किए गए तथा लोगों को स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक जानकारी दी गई। जिला स्तरीय लघु उद्योग संवर्धन समिति की बैठक में बीते दिनों औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास, भूमि आवंटन की प्रक्रिया में तेजी तथा स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया। वर्ष 2025-26 के दौरान जिले में 283 नए उद्योग पंजीकृत हुए हैं, जिनसे 1428 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। बीते दिनों विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत नगर वन में अधिकारियों, विद्यार्थियों और खिलाड़ियों ने विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उद्यानिकी महाविद्यालय में क्लीन एंड ग्रीन गतिविधि आयोजित कर विद्यार्थियों को स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन एवं पर्यावरणीय जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक किया गया। वहीं गंगा दशहरा के अवसर पर पशुपतिनाथ मंदिर स्थित शिवना घाट पर सामूहिक श्रमदान और स्वच्छता अभियान चलाया गया। जिला स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति की बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत इस वर्ष 6,650 हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराने की जानकारी दी गई है, जिसके साथ ही प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत लगभग 5,000 युवाओं को प्रशिक्षण और लाभ भी प्रदान किया गया है। जिले में 39,000 से अधिक किसानों से 2.28 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है। किसानों को समर्थन मूल्य एवं बोनस सहित 2,625 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान भी किया गया है, जिसका कुल भुगतान 600 करोड़ से अधिक रहा है। महिलाओं और किशोरियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए माहवारी स्वच्छता दिवस पर बीते दिनों जिला चिकित्सालय में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत कार्यशाला एवं रैली के माध्यम से स्वच्छता, पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां प्रदान की गईं। वहीं पुलिस विभाग द्वारा नुक्कड़ नाटक, पोस्टर प्रदर्शनी एवं विशेषज्ञों के व्याख्यानों के माध्यम से युवाओं और नागरिकों को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराया गया। मंदसौर जिले के सीतामऊ में रोजगार, स्वरोजगार एवं अप्रेंटिसशिप मेले में 220 युवाओं ने पंजीयन कराया, जिसमें 149 युवाओं का प्राथमिक चयन विभिन्न निजी कंपनियों के लिए किया गया। इसके साथ ही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के

0: हितग्राहियों को 15 लाख रुपए के चेक भी इस अवसर पर वितरित किए गए। जिला चिकित्सालय एवं सहयोगी संस्थाओं के प्रयासों से अब तक क्लब फुट से ग्रसित 34 बच्चों का सफल उपचार जिले में किया जा चुका है। वहीं मलेरिया निरोधक माह के तहत बीते दिनों मलेरिया जागरूकता प्रदर्शनी का आयोजन जिले में किया गया, जिसके तहत नागरिकों को मलेरिया के लार्वा की पहचान, रोकथाम और उपचार की जानकारी दी गई तथा बुखार से पीड़ित प्रत्येक मरीज की जाँच कराने के निर्देश भी दिए गए। मंदसौर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे मंदसौर जिले की चिट्ठी। आलेख दीपक शर्मा का था और वाचन स्वर अभिषेक कटिहार का।
2: एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से। आप सुनेंगे साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। आज प्रस्तुति है अमित सोनी की।

0: बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम में, जिसमें आज आपके साथ हूं मैं आपका रेडियो दोस्त अमित सोनी। आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, उम्मीद और इंतजार तो जैसे साथ साथ ही चलते हैं। जहां इंतजार होता है वहां उम्मीद भी होती है, उसके आने की या होने की जिसके इंतजार में हम होते हैं। जैसे अभी हर कोई बस बारिश का ही इंतजार कर रहा है, इस उम्मीद के साथ कि जल्द ही बारिश आकर जमीन को, हमारे तन मन को तर बतर कर दे और फिर से हवा में मिट्टी की सुगंध खुल जाए। फिलहाल आपके इंतजार को खत्म करते हैं और शुरू करते हैं आज का हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम। लेते हैं ये पहला फोन कॉल। हेलो आकाशवाणी।
1: जी सर नमस्ते।
0: नमस्ते, आप कौन बोल रही हैं?
1: जी मैं अर्पिता गुप्ता न्यूटन से।
0: अर्पिता जी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम हेलो आकाशवाणी में। न्यूटन से आप हमसे जुड़ रही हैं, कैसी हैं आप?
1: हम बहुत अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: हम बहुत अच्छे हैं। इस समय क्या हो रहा है?
1: बस इस टाइम भी गर्मी बहुत है और
0: जी
1: सब ठीक है।
0: गर्मी बहुत है, लेकिन देखिए जून शुरू हो चुका है, एक हफ्ता बीत चुका है, लेकिन अभी भी बारिश का कोई नामो निशान नहीं है।
1: जी जी
0: तो सभी को इंतजार है बारिश का।
1: जी बारिश का तो इंतजार है ही, अब गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है और लू भी इतनी चल रही है,
0: जी
1: तो इससे थोड़ा सा बारिश से राहत मिलेगी लोगों को।
0: तो बस थोड़ा सा और इंतजार, एक हफ्ता और रुकना पड़ेगा, उसके बाद तो बारिश को आना ही है।
1: जी जी
0: बताइए गीत कौन सा सुनेंगे आज?
1: सर दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाया।
0: तो लीजिए आज हेलो आकाशवाणी में आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत। आपने फोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: सर नमस्कार
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? अपना नाम बताइए।
1: जी। मैं पालाखेड़ से कमलेश गोडबोले बात कर रहा हूँ।
0: कमलेश जी, स्वागत है आपका हेलो आकाशवाणी में। कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया सर, आप सुनाइए, आप लोग कैसे हो?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं, आपकी सेवा में लगे हुए हैं।
1: सर मैं बहुत पहले से आपका नियमित श्रोता रहा हूँ।
0: क्या बात है कमलेश जी, बहुत पुराने आप श्रोता हैं हमसे, आकाशवाणी लगातार सुन रहे हैं। और आपको पता ही होगा आकाशवाणी अपने 90 वर्ष पूर्ण कर चुका है।
1: सर मैं क्या कहूँ इस बारे में, अब तो बहुत डिजिटल जमाना हो चुका है। आज के समय में रेडियो तो बहुत कम ही दिखा करते हैं
0: जी।
1: और अधिकतर हम लोग भी ऐप के माध्यम से सुनते आ रहे हैं। और 90 वर्ष के लिए मैं क्या कहूँ, मेरे पास तो शब्द नहीं सर। इतना बढ़िया और इतने आप लोग इतने सुंदर सुंदर प्रोग्राम प्रस्तुत करते हैं जिसको सुन के ही दिल खुश हो जाता है।
0: बहुत धन्यवाद भाई। कमलेश जी देखिए, रेडियो आज भी वही है, बस वो आप तक जिस माध्यम से पहुंच रहा है वो माध्यम बदल गया है, और बदलना भी चाहिए क्योंकि समय भी बदल रहा है, तकनीक बदल रही है।
1: बिल्कुल सर, आप
0: बताइए कमलेश जी, गीत कौन सा सुनना चाहेंगे आज?
1: तो मैं अखियों की झरोखों से जो फिल्म है उसका टाइटल सॉन्ग सुनना चाहता हूँ जो हिमलता जी की आवाज में।
0: बहुत ही सुंदर गीत है, तो कमलेश जी आज आपको हम सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत। आपने हेलो आकाशवाणी में फोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो आकाशवाणी,
1: हेलो आकाशवाणी जी,
0: कौन बोल रहे हैं आप और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: लक्ष्मण सिंह चंदेलवास खरा सर, ग्राम बोतराई, तहसील पथरिया, जिला दमोह।
0: बहुत बहुत स्वागत है लक्ष्मण जी आपका, दमोह से जुड़ रहे हैं। आप कैसे हैं?
1: बिल्कुल बढ़िया है सर, आप बताइए। आप
0: हम भी बहुत अच्छे हैं।
1: और सर मौसम वहाँ का?
0: मौसम तो बस यहाँ पर अभी गर्मी है, कुछ बूंदे पड़ी हैं अभी, लेकिन अभी भी उस बारिश का इंतजार है जो सब कुछ मन तन सबको तर बतर कर दे।
1: जी जी बिल्कुल, यहाँ तो 1 घंटे के लिए हो गई सर बारिश परसों,
0: चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं इस बात के लिए।
1: और थोड़ी थोड़ी ओलावृष्टि भी हुई। लेकिन
0: ये चिंता का विषय है। फिर भी जब बारिश पहली बार आती है गर्मी के बाद, तो जो सुकून जो ठंडक देती है उसका आनंद ही कुछ और होता है। बताइए गीत कौन सा सुनना चाहते हैं?
1: वतन की रखवाली का कोई भी गीत सुना देंगे।
0: तो लक्ष्मण जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। आपकी पसंद का गीत हम भेज रहे हैं हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम के माध्यम से आप तक। सुनिए, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: नमस्कार सर,
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं ग्राम सामर वो तहसील बिछुआ जिला छिंदवाड़ा से बोल रहा हूँ सर, साहेब राव पवार बोल।
0: साहेब राव जी, बहुत बहुत स्वागत है। काफी दिनों बाद आज आपका फोन लगा है।
1: जी,
0: कितने दिनों बाद फोन लगाया आज आपने?
1: 2 महीने से ज्यादा हो गए होंगे सर।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपने दूसरे श्रोताओं को भी मौका दिया।
1: हाँ सर, यही होना चाहिए। अब हम तो पुराने श्रोता है, हम लगाए पर नए लोगों को मौका नहीं मिल पाता सर।
0: चलिए, अच्छी बात है। और बताइए साहेब राव जी, इन दिनों क्या हो रहा है?
1: इन दिनों सर मेरा स्वास्थ्य खराब चल रहा है 15-20 दिनों से
0: अच्छा,
1: सर, और गेहूं खरीदी चल रही सर। अब गेहूं खरीदी तो खैर बंद हो गई अब हमारी,
0: चलिए, सारे काम तो
1: और
0: चलते रहते हैं, लेकिन सबसे पहले स्वास्थ्य है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए।
1: हाँ सर, और अभी इस समय में हम खाद का वितरण कर रहे हैं सर, ई टोकन के माध्यम से किसानों को।
0: अच्छा, आपूर्ति पर्याप्त हो रही है, सभी को सभी चीजें मिल रही हैं?
1: हाँ सर बिल्कुल, इस बार कोई दिक्कत नहीं है सर। ई टोकन के माध्यम से जो है न कोई भीड़ हो रही है और न कुछ नहीं, बस ई टोकन जनरेट हुआ और उसके बाद हम आसानी से खाद दे रहे हैं सर।
0: चलिए, तो बहुत अच्छी बात है हमारे सभी कृषक मित्रों के लिए कि खाद बीज पर्याप्त
1: जी
0: मात्रा में
1: जी
0: उपलब्ध है।
1: हाँ, और शासन ने पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाया है इस बार खाद में, बहुत
0: बहुत
1: बढ़िया सुचारू रूप से चल रहा था
0: बहुत अच्छी बात है ये। बताइए साहेब राव जी, गीत कौन सा सुनना चाहते हैं आज?
1: सर। आज दोस्ताना का सुना दीजिए सर,
0: कौन सा गीत?
1: बने जाए दुश्मन जमाना हमारा,
0: सलामत रहे
1: सलामत
0: दोस्ताना
1: रहे
0: हमारा,
1: दोस्ताना हमारा।
0: और आपका और हमारा दोस्ताना यूं ही बना रहे, और इसी आशा के साथ आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत हेलो आकाशवाणी में। फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार, अपना शुभ नाम बताइए।
1: विकास बोल रहे हैं,
0: विकास जी कहाँ से बोल रहे हैं?
1: प्रयागराज से।
0: प्रयागराज से बोल रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो आकाशवाणी में, छिंदवाड़ा आकाशवाणी में। कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं?
0: हम भी अच्छे हैं। और बताइए, इस समय क्या हो रहा है?
1: जी, हम लोग आपकी आकाशवाणी बहुत सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमें आकाशवाणी देने
0: चलिए,
1: वाला कार्यक्रम।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन दिनों खास कौन सा कार्यक्रम पसंद कर रहे हैं आप हमारा?
1: इसमें सर दिन भर जितने भी कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं सारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं सर हमें।
0: चलिए, क्या बात है, बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आज इस कार्यक्रम में आपका फोन लगा है, कौन सा गीत पसंद किया है आज सुनने के लिए?
1: जी सर, इसमें एक गीत है अनुराधा पौडवाल जी के आवाज में, वो गाना है दिल एक मंदिर प्यार है पूजा। जी सर।
0: विकास जी, और कुछ कहना चाहेंगे?
1: जी सर, यही कहना चाहेंगे सर, कार्यक्रम आप अच्छे अच्छे करते रहे, हम लोग और हम आपको जानकारी ऐसे ही देते रहेंगे, बहुत अच्छा लगता है आपके कार्यक्रमों से जुड़ते हुए हमें।
0: चलिए, आपका प्यार और आपका साथ बना रहेगा तो हम और अच्छे अच्छे कार्यक्रम आकाशवाणी से प्रसारित करते रहेंगे। आज आपने हेलो आकाशवाणी छिंदवाड़ा में फोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लीजिए, अब आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो आकाशवाणी
1: आकाशवाणी रेडियो छिंदवाड़ा जी।
0: जी। हाँ आकाशवाणी छिंदवाड़ा से बात कर रहे हैं, कौन बोल रहे हैं आप और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं जी पिंड मावड़ खुर्द जिला बठिंडा तो जगजीत मट्टू बोलता, पंजाब तो बोलता जी, पंजाब तो सर जी। ठीक
0: जगजीत जी का बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी छिंदवाड़ा में, कैसे हैं आप?
1: ठाक जी। पहला तो जी तुम्हारी फैमिली नू सारे स्टाफ दे श्रोते वीरां नू प्यार ते सत्कार भी सत श्री अकाल बुलाउणा जी पंजाब वालों जी।
0: सत श्री अकाल, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप?
1: ठीक ठाक जी, तुसी दसो जी, खैर सुखा जी? वधिया,
0: हम भी बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
1: साढ़े ठीक है जी। कल पंजाब में बारिश हुई है जी,
0: चलिए बहुत बहुत बधाइयां आपको बारिश की।
1: तुहानू भी बधाई जी। तुहाडे इत्थे छिंदवाड़ा बारिश हुई है कला जी?
0: छुटपुट बारिश हो रही है लेकिन अभी भी वैसी बारिश नहीं हो रही जैसी हम चाहते हैं।
1: अच्छा कोई नहीं जी, कोई नहीं, इधर पंजाब तो भेजा जी थोड़े कनी, जो बारिश हम पंजाब में होती है जी तुम्हारे गाँव में भेज देंगे जी, हमारे देश में।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, बारिश को हमारे यहाँ भेजेंगे।
1: हाँ जी साहब जी, फिर थोड़ा थोड़ा शरीर कूल कूल हो जाएगा जी, ठंडा ठंडा हो जाएगा। हाँ
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपके द्वारा भेजी गई बारिश का तो हमें बिल्कुल इंतजार रहेगा। भाई
1: साहब जी, हमको गर्मी नहीं लगती जी, तो तुम पूछो कैसे के नहीं लगती।
0: कैसे गर्मी नहीं लगती आपको?
1: हम जी तुम्हारे साथ बड़े भाई के साथ बात कर रहे हैं, सर जमी नहीं गर्मी लगती जी।
0: अरे क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: हाँ जी
0: तो जगजीत जी, आप जो बारिश भेजेंगे उसका तो हम इंतजार कर ही रहे हैं, लेकिन अभी आप गीत जरूर भेज दीजिए आपकी पसंद का।
1: क्या बात है, क्या बात है सर जी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है जी, गीत लिखा है आनंद बख्शी साहब ने जी, फिल्म है जी खतरों के खिलाड़ी।
0: अच्छा
1: गीत गुणगुना के सुनो जी फिर मैं तो
0: बिल्कुल तरन्नुम के साथ।

0: जय जी सर जी। सर जी एक बेनती है जी।
1: जी बताइए।
0: मैं जी मेरे दार दोस्तों को ना ले लीजिए, तुम्हारा हुक्म हो भाई।
1: अरे हुक्म क्या, जरूर लीजिए जरूर लीजिए।
0: मेरे मान जो बल्ले बड़ा है जी, सुखपाल सिंह नेशनल कॉलोनी बठिंडा तो जी। हाँ जी, ते दविंदर सिंह तगड़ साहब है जी, अपने खन्नाथ मंडी तो जी। परमजीत सिंह बाघा पुराना जी, मलकीत सिंह घड़ी साहब, प्रगट सिंह ढिलों साहब, आपको सत श्री अकाल बुलाते हैं जी पंजाब वालों जी।
1: उनको भी हमारा सत श्री अकाल।
0: सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी। मेगा रॉयल पूरी विद फैमिली एंड विद स्टाफ जी, सत श्री अकाल जी।
1: तो लीजिए जगजीत जी, आपके सभी दोस्तों के साथ सुनवा रहे हैं आपको खतरों के खिलाड़ी, इस फिल्म का आपकी पसंद का ये गीत। आपने आकाशवाणी छिंदवाड़ा के हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम में फोन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।

0: हेलो आकाशवाणी,
1: नमस्कार सर। सर राजू लवानिया बोल रहा हूँ, आगरा उत्तर प्रदेश से। बिल्कुल
0: आगरा उत्तर प्रदेश से राजू लवानिया जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आकाशवाणी छिंदवाड़ा में। कैसे हैं आप?
1: सर, एकदम फर्स्ट क्लास है। और हम जानना चाहेंगे हमारी आकाशवाणी छिंदवाड़ा टीम कैसी है
0: आकाशवाणी छिंदवाड़ा की टीम बहुत अच्छी है।
1: और मौसम कैसा है आजकल छिंदवाड़ा में।
0: छिंदवाड़ा में मौसम अभी कुछ दिनों से, एक दो दिनों से कुछ बारिश हुई है और लेकिन उमस अभी भी बरकरार है।
1: बारिश तो सर हो रही है, लेकिन साथ ही ये जो आंधी तूफान का दौर है ये बहुत खतरनाक स्तर का है इस बार।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: जहाँ एक और लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है, वहीं जनहानि और धनहानि भी बहुत हो रही है। तो ये सब जो प्रकृति का बिगड़ता हुआ संतुलन है, ये उसी का परिणाम है कि हमें आज ये सब भुगतने को मिल रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग जागरूक नहीं होना चाहते कि प्रकृति का दोहन छोड़ सके तो बड़ी अच्छी बात नहीं। तो आने वाले जो और समय है, आगे जो समय आने वाला है, इससे भी ज्यादा भयंकर परिणाम हमें भुगतने पड़ सकते हैं।
0: तो इससे पहले कि प्रकृति विकराल रूप धारण करे हमें सतर्क हो जाना चाहिए। तो राजू जी गीत कौन सा सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है स्वामी, यशोदास की आवाज में।

0: चलिए, अच्छा गीत आपने पसंद किया है। आप इधर साजन का
1: बस
0: इंतजार कर रहे हैं और हम बारिश का इंतजार कर रहे हैं।
1: जी सर, बारिश तो ज्यादा नहीं है, लेकिन अभी तूफान बहुत ज्यादा तेज गति से आ रहा है आजकल। बिल्कुल
0: तो उम्मीद है कि ये आंधी तूफान बंद हो, अच्छी बारिश हो।
1: सर, यही उम्मीद है, सब सुरक्षित रहें, सलामत रहें, यही हमारी कामना है। लेकिन हम लोगों को इस सुरक्षा के लिए जागरूक होना बहुत जरूरी है।
0: चलिए, तो आपकी ये शुभकामनाएं हमारे सभी सुनने वाले सभी दोस्तों तक पहुंच रही है आपके इस गीत के माध्यम से। आपने आकाशवाणी छिंदवाड़ा में फोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो आकाशवाणी,
1: आकाशवाणी छिंदवाड़ा सर केशवराव शिमरे बोला
0: केशव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी छिंदवाड़ा में। कहाँ से बोल रहे हैं?
1: इंदौर जो बात कर रहा था।
0: इंदौर से आप हमसे जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम में। कैसे हैं आप और मौसम कैसा है इंदौर का?
1: बस बढ़िया सर, 2-3 दिन से थोड़ा सा माहौल बन रहा है, पानी वानी बारिश हो गया था, बट थोड़ा थोड़ा आ रहा है, बारिश इतना नहीं आ रहा है जितना आना चाहिए।
0: मध्य प्रदेश के कई इलाकों में छुटपुट बारिश हुई है अभी कुछ दिनों में,
1: बिल्कुल सर, बिल्कुल
0: लेकिन अभी भी झमाझम बारिश का इंतजार तो है ही।
1: बिल्कुल है सर, ताकि थोड़ी गर्मी कम आए और ठंडा और थोड़ा आए, ताकि सबको परेशानी से बचाओ।
0: गीत कौन सा सुनना चाहते हैं आज?
1: सर फिल्म का नाम है कुर्बान, धरती चांद सितारे। हाँ जी सर, और मेरे कुछ बच्चे का नाम लेना चाहूंगा,
0: जी लीजिए।
1: सृष्टि चंद्र, अवनी चंद्र और अन्य वाइफ का नाम अनिता चंद्र।
0: चलिए, आपने आकाशवाणी छिंदवाड़ा में फोन लगाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: जी सर, नमस्कार सर।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? अपना नाम बताइए और ये बताइए कि आप कहाँ से बोल रहे हैं।
1: जी, सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ सर, मैहर एमपी से। जी
0: मैहर से बोल रहे हैं, माता शारदा की
1: जी
0: नगरी
1: जी
0: से।
1: जी जी जी सर।
0: बताइए अपने शहर के बारे में, वहाँ का मौसम कैसा है?
1: जी जी हमारे यहाँ तो सर अभी तो कल शाम को बारिश हुआ था, तो अभी उमस थोड़ा ज्यादा है सर। जी जी जी सर।
0: अच्छा, मतलब बारिश अभी नहीं हुई है आपके यहाँ भी?
1: नहीं सर,
0: तो क्या चाहते हैं, बारिश अभी हो जाए या अभी थोड़ा सा और गर्मी का मजा लेना है?
1: जी सर, थोड़ा गर्मी।

0: थोड़ा वो मजा लेना था, थोड़ा उमस थोड़ा रहेगा तो अच्छा रहेगा अभी
1: अच्छा,
0: वो नौ दिन बाद में तो बारिश का तो मजा लेंगे ही सर 15 दिन बाद।
1: बढ़िया है, अच्छा है। आपकी बातों से हमें
0: जी
1: ये लगता है कि भाई जैसा भी हो मज़ा तो गर्मी का ही लेना पड़ेगा आपको अभी। उसको आप मज़ा समझें
0: गर्मी
1: या
0: तो
1: सज़ा
0: गर्मी में
1: समझें,
0: मजा लेंगे, ठंडी में ठंडी का मजा लेंगे,
1: बिल्कुल।
0: और हर सीजन का एक ही मजा होता है सर।
1: चलिए क्या बात है, गीत कौन सा सुनना चाहते हैं?
0: जी आज हमको सुनवा दीजिएगा, राज फिल्म सा कोई सा भी गाना चलेगा सर।
1: इसका भी अपना एक अलग मजा है।
0: जी।
1: चलिए तो राज फिल्म का ये गीत आपको सुनवा रहे हैं। हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम में आपने फोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

और दोस्तों अब वक्त कार्यक्रम से चलने का। अगर आप भी इस कार्यक्रम के माध्यम से हमसे जुड़ना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं और अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर 8989116346 पर कॉल कर सकते हैं। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं हर रविवार को सुबह 9:15 से 9:45 तक। आज के कार्यक्रम को आप तक भेजने में तकनीकी सहयोगी रहे प्रेमलाल बट्टी और राजेश भारद्वाज, और इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया आपके दोस्त अमित सोनी ने। अब दीजिए अनुमति, नमस्कार।

0: विविधा के सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। श्रोताओं, इस अंक में आज हम आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में विविध भारती की मासिक गतिविधि सृजन भारती के अंतर्गत आयोजित लोक संगीत संध्या लोक रंग के संपादित अंश आपके लिए लेकर आए हैं। आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष 21 मई को संपन्न हुई इस विविध लोकरंगी संध्या में प्रतिभागी कलाकार थे डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव, विभा रानी, प्रोफेसर प्रशांत मोरे, ममता वर्मा और नरोत्तम बेन। सहभागी कलाकार थे तबला पर शशांक नीलेश प्रभु, हारमोनियम पर सिद्धार्थ मेस्ता, ढोलक पर सुधीर जंगम और सहवाद्य पर थे जयंत पात्रिकर। इस विविध रंगी लोक संगीत संध्या में नगर सेवक शिवा शेट्टी, निदेशक अभियांत्रिकी राजेश बेलदार, सहायक कार्यक्रम निदेशक डॉ. संतोष जाधव, विविध भारती के अधिकारी व कर्मचारी और जाने माने साहित्यकार कलाकार उपस्थित थे। कार्यक्रम का सूत्र संचालन किया ममता सिंह और यूनुस खान ने। तो आइए सुनते हैं आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष 21 मई को संपन्न हुए लोकरंग कार्यक्रम के संपादित अंश।
1: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जैसे कि आप जानते हैं कि आकाशवाणी अपनी स्वर यात्रा के 90 वर्ष पूरे करने की ओर अग्रसर है और इस मौके पर विविध भारती के सृजन भारती के अंतर्गत हमने लोक रंग का आयोजन किया है। लोक रंग के जरिए आप ये देखेंगे कि देश के अलग अलग राज्यों का जो संगीत है उसके भीतर एक अंतरधारा है जो हम सबको आपस में जोड़ती है और जो ये दिखाती है कि भारत विविधता में एकता का देश है। तो आज के इस कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक कलाकार हैं और देश के अलग अलग राज्यों के लोक संगीत की बेमिसाल प्रस्तुति के लिए आप सभी तैयार रहिएगा। ये सृजन भारती का लोक रंग क्या कार्यक्रम है, इसका परिचय देने के लिए मैं विविध भारती के कार्यक्रम प्रमुख डॉक्टर संतोष जाधव को आमंत्रित कर रहा हूँ।
2: नमस्कार, आज के इस महफिल में सारे कलाकार और उपस्थित सभी संगीत प्रेमी, रेडियो प्रेमी, विविध भारती प्रेमी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आकाशवाणी भारत की गौरवशाली प्रसारण परंपरा की एक प्रतीक है। आकाशवाणी ने अपनी 90 बरस की प्रेरणादायी अविस्मरणीय यात्रा पूर्ण की है। इस 90 बरस में आकाशवाणी ने भारतीय संस्कृति, साहित्य और संगीत जन जन तक पहुंचाने का महान कार्य किया है। इस गौरवशाली स्मरणोत्सव के अंतर्गत विविध भारती द्वारा इस लोक रंग महफिल का आयोजन किया गया है। इस महफिल में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। भारत विविधता से समृद्ध देश है। यहाँ की लोक संस्कृति, लोकगीत और लोक धुनों में हमारी मिट्टी की खुशबू है। सांस्कृतिक विरासत का आनंद लेने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। मैं सभी कलाकारों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आज के इस मंच पर उपस्थित कलाकार अपनी मधुर प्रस्तुतियों से लोक संगीत पेश करेंगे। तो आइए लोक रंग की इस सुरमय शाम में हम शामिल होते हैं। आकाशवाणी के 90 बरस की एक गौरवशाली यात्रा को नमन करते हुए मैं बस इतना ही कहूँगा, भारत की जितने लोगों तक पहुँचता है पानी, भारत के जितने लोगों तक पहुंचता है पानी, उनसे भी ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है आकाशवाणी। धन्यवाद।
1: बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर संतोष यादव। और अब अतिथियों के स्वागत की बारी है। आज के इस कार्यक्रम में आपने ध्यान दिया होगा कि हम लोग पुष्प गुच्छ के जरिए स्वागत नहीं कर रहे, बल्कि हम एक पौधा भेंट कर रहे हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि फूल तो मुरझा जाते हैं पर पौधा कायम रहता है। आज के इस कार्यक्रम में जो कलाकार मौजूद हैं, एक एक करके मैं उनका जल्दी से परिचय देता हूं और उसके बाद इस कार्यक्रम का आगाज करेंगे। डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव माननीय राष्ट्रपति के हाथों संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित हैं। बीते बरस वे पोर्ट ऑफ स्पेन, नेल्सन आइलैंड और सेंट लूसिया में परफॉर्म कर चुकी हैं। हाल ही में उन्हें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा माटी सम्मान से सम्मानित किया गया है। विभा रानी हिंदी और मैथिली की जानी मानी साहित्यकार हैं। 20 से ज़्यादा किताबें उनकी आ चुकी हैं, जिनमें कहानी संग्रह, नाटक, उपन्यास और लोक कथा

अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। आज प्रस्तुति थी अमित सोनी की। इसके साथ ही संपन्न होता है ये कार्यक्रम। FM 102.2 MHz पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से। 11 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे विविध भारतीय सेवा के कार्यक्रम। आइए इस कार्यक्रम के लिए हम आपको लिए चल रहे हैं मुंबई।

0: संग्रह शामिल हैं। वे एक सक्रिय थिएटर और फिल्म कलाकार हैं। लाडली मीडिया सम्मान और नेमी चंद जैन नाट्य लेखन सम्मान से सम्मानित की जा चुकी हैं। मोहन राकेश सम्मान, इंडियन ऑयल वीमेन अचीवर सम्मान उन्हें मिल चुका है। लाल कप्तान, छमशेरा, महारानी, माँ जैसी फिल्में और वेब सीरीज उन्होंने की हैं। उनकी मशहूर किताबें हैं मधुबन की मुनिया, प्रेग्नेंट फादर, दूसरा आदमी, पीर पराई, आवतनिक प्रेम करें, अगले जन्म मोहे, बिटिया न कीजो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने अपना करियर रेडियो से शुरू किया था। प्राध्यापक प्रशांत मोरे एक बहुत मशहूर लोक कवि हैं। कथा, तिच्चा, लग्नाची और स्पर्श जैसी फिल्मों में उन्होंने गीत लिखे हैं, गाए हैं और स्वरबद्ध किए हैं। हिंदी, उर्दू, मराठी मुशायरे में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व तो प्रशांत जी ने किया है। आईचा कविता नाम की उनकी प्रस्तुति के भारत भर में 5600 शो हो चुके हैं। कमाल का रिकॉर्ड। नामदेव ढसाल पुरस्कार जैसे अनेक पुरस्कार हैं। उनकी कृतियां हैं वेदना सातारकर, कबीरांची दीन, माय अर्थात आईची कविता, खंड एक और खंड दो, अभिवादन बा भीम। नरोत्तम बेन विगत 33 वर्षों से सतत रंगकर्म कर रहे हैं। जबलपुर से रंगकर्म की शुरुआत की थी और इस वक्त मुंबई में भी रंगकर्म जारी है। एक नाटक की रिहर्सल से सीधे इस मंच पर पदार्पण किया है उन्होंने। अभिनय कार्यशालाओं का संचालन करते हैं। कई नाटकों का निर्देशन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और मध्य प्रदेश कला परिषद द्वारा महेश्वर में सन 1994 में आयोजित अभिनय कार्यशाला में अभिनेता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। कई विज्ञापनों, धारावाहिकों, फिल्मों और वेब सीरीज में अभिनय किया है और बुंदेली लोकगीतों के लिए प्रसिद्ध हैं। नरोत्तम बेन यहाँ बुंदेली लोकगीत प्रस्तुत करेंगे। ममता वर्मा बागेश्वर उत्तराखंड में पैदा हुई, 2021 से मुंबई आई हैं और कई सांस्कृतिक गतिविधियों में उन्होंने प्रस्तुति की है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज पहली बार विविध भारती के लिए वो मंच पर गीत प्रस्तुतियाँ करने वाली हैं। तो ममता का बहुत हौसला बढ़ाने की ज़रूरत है। ये हमारे कलाकार हैं और इसके अलावा बहुत ही काबिल कलाकार हारमोनियम, तबला और ढोलक पर मौजूद हैं और इसके अलावा डफ और घुंघरू जैसे सहायक वाद्यों पर मेरे अपने साथी विविध भारती के मशहूर उद्घोषक जयंत पात्रीकर साथ देंगे। तो ये हमारा जमावड़ा है और इस कार्यक्रम का संचालन ममता सिंह करेंगी। तो आइए ममता सिंह, कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए।
1: सभी अतिथियों को नमस्कार और सभी का स्वागत। आज की जो संध्या समर्पित है हमारे मिट्टी की उस मीठी खुशबू को जो लोकगीतों की स्वर लहरियों में बसती है। लोकगीत यानी हमारी परंपराओं की धड़कन, हमारे गांवों की मुस्कान, माँ की लोरी, खेतों की गूंज, त्योहारों की रौनक और रिश्तों की मिठास। जब लोकगीत गूंजते हैं तो सिर्फ सुर नहीं बजते। तो चलिए फिर इस रंगारंग संध्या में हम सब मिलकर स्वागत करते हैं उन सुरों का जो पीढ़ियों से दिलों को जोड़ते आए हैं। लोकगीत में पूरी परंपरा है, पूरी संस्कृति है, रिश्ते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले विदुषी शैलेश श्रीवास्तव जी का हम स्वागत करते हैं और चलते हैं उत्तर प्रदेश के लोक संगीत में। ज़रा ज़ोरदार तालियों से स्वागत। वैसे तो देश के सभी राज्य में लोकगीत की अलग परंपरा है, अलग छटा है, अलग रंग है, लेकिन उत्तर प्रदेश का लोकगीत एक ख़ास रंग लिए होता है क्योंकि हम किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत देवी गीत से करते हैं जो उत्तर प्रदेश की परंपरा रही। विवाह गीत जब गाते हैं तो उससे पहले देवी गीत गाते हैं, तो माँ सरस्वती की आराधना से शुरू करते हैं।
2: आप सभी के हमार प्रणाम स्वीकार करें। अपने माटी की सेवा खातिर यहाँ बुलावल गई है आज। ने याद किया है अपने लोक रंग त्रिजन भारती की श्रृंखला में, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ उसमें आकाशवाणी की अहम भूमिका है। मुझे गढ़ने में हर समय मुझे आकाशवाणी ने एक सर्वोत्तम मंच दिया और आज मैं आप सबके समक्ष हूँ। तो सरस्वती का हम लोग क्या भोग में सुरस्वती कहीं लजा, तब सुनावत है आप सबके
1: सुरस्वती मैया की जय।
2: हाँ।

0: क्या बात है।
1: जाने माने सभी जो उपस्थित गण हैं सबका मैं मंच से स्वागत करती हूँ, बहुत आभारी हूँ विविध भारती की।
0: शुक्रिया शैलेश जी। अभी यहाँ पर लोकगीतों की जो परंपरा है वो बड़ी समृद्ध है।
1: देखिए विविध भारती आपका 90 वर्ष,
0: तो उस पर कुछ गा रही।
1: हाँ, सुनाई गाती हूँ इतना।

0: क्या सुंदर अंदाज में आपने पेश किया। तो ये भी बता दीजिए कि इन मौकों पर इस ये लोकगीत गाया जाता है। इस
1: ये तो सोहर है, 150-200 वर्ष पुरानी हमारी परंपरा है। जब जब प्रसव पीड़ा में नारी होती है तो सोहर इसका नाम ही है। तो इसके स्वर ऐसे हैं कि जिनसे वो अपने सारे कष्ट को भूल जाती है, मतलब वो हर लेता है, क्योंकि म्यूजिक और स्वर जो ईश्वर तक जाने का इतना एक सहज माध्यम, इसीलिए माना गया है कि इसके जो भाव हैं, इसके जो लगाव हैं सुरों के, वो ऐसे होते हैं कि वो आपको एक दूसरी दुनिया में लेके जाते हैं।
0: तो अब लोकगीत का कौन सा वाला रंग छेड़ रही हैं, जिस रंग में हम अभिभूत होने जा रहे हैं?
1: अब देखिए, मैं तो बलिया की हूँ, बागी बलिया, और वहाँ की मैं पहली गायिका महिला कलाकार हूँ, बलिया की पहली जी, महिला गायिका कलाकार हूँ। तो कितनी सारी वहाँ पे मुझे हमारे शब्दों में कहते ताने वगैरह भी सुनने को मिलते थे, लड़की के गवाओ तरन के ब्याह करी इनका घर के लड़की से। आज तो सब लोग, हर दूसरा घर का बच्चा या बच्ची कहता है देखिए देखिए हमारी बच्ची गा रही है, इधर देखिए कितना अच्छा गा रही है, उसको इतने सारे एक्सपोजर हैं। पर हम लोग जहाँ से आते हैं वहाँ तो बहुत मुश्किल था। हमारी माँ कहती थी हम नहीं शादी करके आए हैं, इनको लड़का बना के घुमा रहे हैं, कैसे होगा इनका शादी ब्याह कायस्थ के घर में। हाँ, तो घर में ही इतनी दुविधा थी। अगर मैं बलिया से सीधे भैया बम्बई ये नहीं बतावा, यहाँ देखा था सब बदल, मेट्रो गाड़ी चल रहा है, यहाँ देख के बड़ा घबराएगा भैया कहाँ सही आए, जगह आए कि नहीं आए। अच्छा, तो देखे कि भाई अब उनके पति तो मेट्रो में नौकरी कर रहे हैं, तो उनको साड़ी भेजे एक नहीं दुई ठो, मेट्रो में नौकरी कर रहे हैं, भरारू घूमने आ रही है, पहन के घूमो यार, लोग देखें। तो देखिए वो कैसे चल रही है।

0: गाड़ी की यात्रा तो बड़ी मजेदार रहल है।
1: शैलेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। अब लोक संगीत की जो छटा है, उत्तर प्रदेश से हम महाराष्ट्र की संस्कृति की ओर ले चलेंगे। हम महाराष्ट्र के लोक रंग की ओर चलते हैं, जहां महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र खानदेश अपनी सरलता, लोक भाषा और लोक संगीत के लिए विशेष रूप से जाना जाता है, पहचाना जाता है। वहां के लोकगीतों में खेत है, खलिहान है, पूरी संस्कृति है, परम्परा है, बाकी मैं नहीं बोलती हूँ। प्रशांत मोरे जी जो प्राध्यापक भी हैं और संगीत के बहुत जानकार हैं, संगीतकार भी हैं, तो प्रशांत मोरे जी आपको माइक दे रहे हैं, जरा महाराष्ट्र के लोक रंग के बारे में बताइए और सुनाइए, कुछ प्रस्तुति दीजिए।
2: सर्वांना नमस्कार। भाषा कळते ना, जरी भाषा कळली नाही तरी भावना कळेल, आणि भावना ह्या सगळ्याच ठिकाणी भाषा बदलतात पण भावना बदलत नाही।
1: बिलकुल
2: है क्या ना, भाषा बदलते भावना बदलत नाही। भावना काय असते? भावना तीच असते। सैमा

0: हाँ कि मैथिली लोकगीत आप सुनते ही होंगे, लेकिन कुछ अलग तरह की प्रस्तुति विभा रानी देंगी। खास तौर से एक गायन का प्रकार है झिझिया। झिझिया के बारे में बताइए विभा जी, क्या होता है, और फिर वो गायन का प्रकार भी प्रस्तुत कीजिए। जोरदार तालियां एक बार हो जाए।
1: बिहार के उत्तरी भाग मिथिला से छी, मैथिली भाषा है। सृजन भारती सब कार्यक्रम में एहिठाम हमरा आमंत्रित कयल गेल है। हम विविध भारती के बहुत बहुत आभारी छी। हमर करियर के शुरुआत आकाशवाणी से भेल है, तो बुझाइए जे आकाशवाणी हमरा लेल नैहर माने मायका अछि। अभी लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत है, संकट है। एक तरफ भोजपुरी की जोरदार आवाज, दूसरी तरफ महाराष्ट्र का रणझुंझार शिशाई। अब उसके बीच में मैथिली बड़ी मीठी मीठी भाषा है, इतनी मीठी भाषा है कि लोग कहते हैं कि उसमें मैथिली में लड़ते भी हैं तो लोगों को लगता है कि प्रेम ही करते हैं।
0: क्या बात है।
1: एक बार एक कवि सम्मेलन में एक भोजपुरी के कवि और मैथिली के कवि भी बैठे हुए थे। भोजपुरी के कवि पूरी वीर रस की कविताएं सुना गए, उसके बाद मैथिली के एक कवि आए, उन्होंने प्रेम रस की कविता सुनाई, तो भोजपुरी के कवियों को भी चढ़ा कि मैं भी प्रेम कविता सुनाऊंगा, तो वो उठे और कहा हम प्रेम करब, हम प्रेम करब।
0: वाह वाह।
1: तो हरिमोहन झा जी जो मैथिली के बहुत बड़े व्यंग्यकार थे, वो बोले वहीं से बैठे बैठे हम माहुर लौ कर मर रहब, मतलब मैं जहर खा करके मर जाऊंगा अगर ऐसा प्रेम होगा तो। तो ऐसी मीठी और ऐसी छोटी छोटी इस तरह की भाषा है मैथिली, तो आपको दोनों के बीच में जरा संतुलन बना करके चलना होगा। ममता, आपने कहा कि झिझिया, शैलेश ने अभी सुनाया था देवी गीत सरस्वती वंदना। झिझिया दशहरे के समय में गाया जाने वाला, नृत्य किया जाने वाला एक लोक नृत्य है, और उसमें देवी की आराधना की जाती है, दुर्गा की आराधना की जाती है और भगवती की आराधना की जाती है। भगवती के भाई हैं, भैरव ब्रह्म उनके बोलते हैं, उनकी आराधना की जाती है।

बहुत बहुत आभार प्रशांत जी, बहुत सुंदर गाया और ऐसे लग रहा था कि भले इसमें समझ में आता है कि भाषा बोली कोई भी हो, लेकिन संगीत में इतनी ताकत है कि आपको मोहित कर लेती है और झूमने पर मजबूर कर देती है। अब हम नाट्यकर्मी और गायिका और अभिनेत्री विभा रानी जी को बुला रहे हैं मंच पर। बिहार के लोकगीतों की छटा हम देखेंगे और बिहार का लोक संगीत भी बहुत समृद्ध है।

लोकगीतों में कहानी किस्से होते हैं, मनुहार होता है, नोकझोंक होती है, तकरार होती है। तो एक जाट और जटिन जब बात करते हैं

0: उस बातचीत को लोकगीत में कैसे पिरोया जाता है, जरा बताइए विभाजी।
1: जट जटिन मिथिला का एक खेल है, ये भी एक नृत्य है और जिसे बारिश के समय में खेला जाता है। इसके पीछे की कहानी ये है कि एक बार अकाल पड़ा, सूखा पड़ा और उस सूखे के कारण कहीं बारिश नहीं हो रही थी, फसल सूख रही थी फसल, तो जट वो चला विदेश कि हम तो परदेश जा रहे हैं। जटिन उसकी पत्नी उसको वो कह के गया कि जैसे ही तुम्हें आकाश में मेघ दिखे तुम मुझे आवाज़ देना और मैं वहाँ से आऊँगा। 12 बरस हो गए, इस बीच बारिश नहीं हुई, जट परदेश में था, कमाता रहा, जटिन के संदेश का इंतज़ार करता रहा। जटिन भी अकेली थी, वो अपने मायके चली गई। 12 साल के बाद उसने देखा कि आकाश में काले काले मेघ आए हैं, तो उसने वहीं से आवाज़ दी

जट्टा को आवाज सुनाई थी, उसने वहीं से कहा, एलियोगे जट्टिन एलियो, एलियोगे जट्टिन एलियो, आइब गेलियोगे जट्टिन आइब गेलियो। और जट्टा आ गया, जटिन भी मायके से आ गया। अब जब 12 साल के बाद पति पत्नी मिले हैं तो थोड़ा सा मान मनोबल तो होगा ना। तो जटिन कहती है, तुमसे मैंने जब जब टीका मंगवाया, गहने मंगवाए, तुम कभी भी जो है ले करके नहीं आए। मेरी बाली उम्र जो है, क्योंकि बचपन में तब शादी हो जाती थी, वो बर्बाद हो गई। तो जटा भी कहता है, मैंने जब तुमको दिया तो तुम तो मायके में जाके बैठी थी, नैहर में जाके बैठी थी, तो कैसे पहनोगी। तो ये इस जट जटिन की कथा और उसके बीच ये गीत है।

0: वाह वाह वाह, क्या बात है विभादी, बहुत अच्छा आपने गाया है, बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत बहुत आभार विभाजी, और बहुत कम समय में बहुत सारी प्रस्तुतियां दी, शुक्रिया आपका।
1: बहुत देर से हम सुन रहे थे आप लोगों की, अब हम लोगों के गाने गावे की बारी है। नानू भैया बहुत ही हो गई, चलो आ जाओ अब अपनी बुंदेली को झंडा फहरावे। बुंदेलखंड की खासियत ये है कि वहां अगर आप किसी का नाम पूछें, कहे भैया तुम्हारा नाम क्या है, तो जवाब आएगा तुम्हें क्या करने, मतलब नाम बताने से पहले व्यक्ति ये सवाल पूछेगा कि तुम्हें करना क्या है, नाम से क्या करना है। लेकिन बुंदेलखंड में बहुत प्रेम है, नरोत्तम बेन बुंदेलखंड के बहुत प्रसिद्ध गायक हैं। तो भैया नानू भैया इसी के साथ शुरू करो आज की महफिल, फिर तुम्हारी मर्जी जो तुम गावे चाहो।
2: तो प्रणाम पहले सभी जनों को, नरम देहर, जय महाराष्ट्र जय भारत।
3: ये बम्बुलिया और एक लमटेरा, ये बहुत ही अद्भुत चीज है बुंदेलखंड के। बुंदेलखंड का सबसे फेमस फॉर्म है राई। बुंदेलखंड के फोक की आप बात करेंगे तो राई के बिना मामला अधूरा होता है, ऐसा ही है बम्बुलिया और लमटेरा। लमटेरा यानी लंबी टेर, लंबी टेर लंबी आवाज। तो बहुत अच्छे जानकारी लोगों के से हमें इनके बारे में मिली कि पहले क्या होता था कि लोग गांवों में रहते थे, गांवों से जाते थे, खेत के रास्ते से गुजरते थे, मेला देखने जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं तो एक साथ निकला करते थे वो लोग, और एक बंदा कहीं बहुत दूर है, बहुत दूर है बैलगाड़ी में, उसने वहां से कुछ एक लाइन

बोल दी। कुछ एक लाइन उसने गा दिया, फिर पीछे का कोई भी बंदा है जिसने सुना बैलगाड़ी पर चला रहा है तो वो उसकी एक लाइन सुनकर जो है उसका जवाब दिया करता था। फिर किसी और छोर पे कोई दूसरा बंदा होता था, उसने सुना, उसको जवाब सूझा तो ऐसा फिर वो गाता था, तो उसको लमटेरा कहते थे। इसी से मिला हुआ है बम्बुलिया, वो भी लंबी लमटेरा का ही एक रूप है। उसमें देवी महिमा, खासकर नर्मदा जी, इन सबका जो जिक्र होता है उसके लिए मामला है। भाई चंग पैटर्न पे आप चलते चलिएगा।

0: थैंक यू।
1: वाह वाह क्या बात है। नरोत्तम जी बहुत बढ़िया आप गा रहे हैं। अगर बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा गाया और ज़ोरदार तालियां नानू जी के लिए, ज़ोरदार तालियां, क्योंकि ये जो पूरी कहानी मध्य प्रदेश की, बुंदेलखंड की कहानी थी इनके गाने में। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं उत्तराखंड की ओर। आमंत्रित कर रहे हैं ममता वर्मा को, जो वैसे पहाड़ों पर हम जब सैर करने जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। बर्फ़ की बारिश में भीगना बड़ा सुखद लगता है, लेकिन वहाँ का जीवन कितना कठिन है ये हम में से शायद ही कोई सोचता है। लेकिन पहाड़ों का लोकगीत बहुत ही सुंदर है, बड़ी मिठास है। भले ही आपको समझने में कठिनाई हो, लेकिन मीठी आवाज़ में ममता वर्मा बहुत बढ़िया गाती हैं। तो ममता से हम उनसे कुछ पहाड़ों के बारे में कुछ जानकारी भी चाहते हैं। ममता, हम आप गाएं इससे पहले हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। हमने सुना है कि उत्तराखंड जहाँ की आप रहने वाली हैं, वहाँ का जीवन काफ़ी कठिन है और कमाई का जरिया बहुत कम है, तो वहाँ का जो पुरुष समुदाय है वो कमाने के लिए शहरों की ओर चले जाते हैं और महिलाएं अकेली रह जाती हैं। महिलाएं अपना जीवन यापन खुद करती हैं, खेती किसानी से लेकर जो भी काम होता करती हैं, और बड़ी निडर होती हैं। तो हम ममता से पूछते हैं वहाँ के जीवन के बारे में, बताइए कि जब पुरुष घर में नहीं होते तो डर नहीं लगता है वहाँ के जो?
2: नहीं, वहाँ की महिलाएं जो होती हैं बहुत निडर महिलाएँ होती हैं, शक्तिशाली होती हैं, कभी कभी भालू और बाघ से भी वो लड़ जाती हैं। नमस्कार, प्रणाम। पहलाद, मैं ममता वर्मा उत्तराखंड कुमाऊँ से।

0: बिलोंग करती हूँ। मैं आपके सामने जो गाना प्रस्तुत करना चाहती हूँ, उस गाने में ही एक लड़की और एक औरत का दुख पीड़ा जो होता है वो उस गाने में व्याख्यान किया है। ये प्रहलाद मेहरा जी ने ये गाना गाया है, एक लड़की के दुख और उसके पीड़ा, वो जो घर में काम करती है वो उस काम का व्याख्यान इस गाने में किया है।
1: तो वो गा के सुनाइए।

वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब एक हमने सुना है दर्शकों की ओर से फरमाइश भी आई है कि एक गाने पर आप नृत्य भी करती हैं, और वो नृत्य भी थोड़ा सा अगर आप चार लाइन भी गाते हुए सुना सकती हैं तो सुनाइए। और आपकी जो पोशाक है, वेशभूषा है, हम अपने दर्शकों को और अपने रेडियो के श्रोताओं को बता दें कि ममता वर्मा ने जो पोशाक पहनी है, बाकायदा उत्तराखंड की एक जो महिला होती है वहाँ की पोशाक पहन रखी है, जो बहुत खूबसूरत लग रही है।

0: वाह, बहुत सुंदर प्रस्तुति और नृत्य के साथ गाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन पूरे सुर में, सुर के साथ और भाव के साथ आपने प्रस्तुत किया। ममता वर्मा, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ये थी लोक संगीत संध्या की विविध रंगी प्रस्तुति। कार्यक्रम के अंत में सभी कलाकारों ने और वहां उपस्थित दर्शकों ने मंच पर जैसे धमाल मचा दी, और इसके बाद वरिष्ठ उद्घोषक जयंत पात्रिकर ने धन्यवाद ज्ञापित किया।
0: आखिर में दो लाइन, चलत मुसाफिर मोहलियो रे, इस गाने पे सारे दर्शक खड़े होके नृत्य करेंगे और यहाँ पर मंच पर सारे कलाकार हम सब उसमें शामिल रहेंगे।
2: उड़ उड़ बैठी पनवनिया दो कनिया, पनवा के सबर सले।

0: दुकनिया उड़ उड़ बैठी बजा जिया दुकनिया है उड़नी के सब रस ले पिंजड़े वाली मुनिया है उड़नी के सब रस ले ली और पिंजड़े वाली मुनिया।
1: थैंक यू विविध भारती,
2: धन्यवाद।
1: मुंह से रिदम जिन्होंने बजाया, मुझे तौफीक भाई की याद आ गई, एक जोरदार तालियां।
3: शैली जी, एक कमाल की बात यह है कि साज नहीं थे, लेकिन इस बीच में ये नानू और जयंत जी ने जिस तरह से बीट बॉक्सिंग की है वो बहुत कमाल का था, बहुत ही गजब।
2: विविध भारती की ओर से आयोजित सृजन भारती के इस लोकरंग कार्यक्रम में आज की इस शानदार प्रस्तुति के लिए विविध भारती परिवार आप सभी का आभार व्यक्त करता है। इस विविध रंग की शाम में शामिल होकर और उसमें नए रंग भरने के लिए, इन लम्हों को यादगार बनाने के लिए और इस कार्यक्रम की शोभा में चार चांद लगाने के लिए दिल से आप सभी का विविध भारती परिवार आभार व्यक्त करता है, शुक्रिया अदा करता है। हम सभी आभार व्यक्त करते हैं हमारे नगर सेवक शिवा शेट्टी जी के प्रति, हरीश छेड़ा साहब अध्यक्ष बोरीवली सांस्कृतिक केंद्र, ये ऑडिटोरियम हमें उपलब्ध करवाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। राजेश बेलदार जी साहब हमारे निदेशक अभियांत्रिकी विविध भारती के, आपका तहे दिल से शुक्रिया। ताड़े साहब और सभी इंजीनियरिंग के साथियों का, विशेषकर मंगेश सांगड़े जी और विनायक रेणके जी, सक्रिय सहयोग देने के लिए हम उनके आभारी हैं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। साउंड सिस्टम के लिए डीजे जस्सी और उनकी टीम का आभार, और हमारे आज के कलाकारों का हम तहे दिल से आभार व्यक्त कर रहे हैं, डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव, विभा रानी, ममता वर्मा, प्रोफेसर प्रशांत मोरे, नेहा जी और नरोत्तम बेन जी, आप सभी का इस लोकरंगी कार्यक्रम में आपकी शानदार प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत आभार। संगत करने वाले सभी साथी सिद्धार्थ मेस्ता, सुधीर जंगम साहब और बाकी साथी थे, उन सभी का हम आभार व्यक्त करते हैं, और आप सभी का एक बार फिर से हम अमूल्य वक्त देने के लिए और बहुमूल्य वक्त देने के लिए दिल से आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में विविध भारती की मासिक गतिविधि सृजन भारती के अंतर्गत आयोजित लोक संगीत संध्या लोक रंग के संपादित अंश। इस कार्यक्रम का संपादन और प्रस्तुति तेजश्री कांबले। और अब आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर। वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
3: राम कुमार वर्मा उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले एक झलक में देख लूं जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
3: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे। दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे। बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
3: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है। छुटकी को आया बुखार है। आंखें जैसी की तैसी है। गठिया की हालत वैसी है। अब तो बिटवा है ये लगता मौत ही जैसे अंतिम हल है। शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
4: परेशान हूं मैं।
0: फैटी लिवर इन्फेक्शन एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
5: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जी आई प्रॉब्लम इज एजुकेशन न्यूट्रिशन एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
5: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजे का समय होने जा रहा है। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार।

0: सांस्कृतिक सहयोग समेत द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर गहन चर्चा के लिए उत्सुक हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में सीमा सुरक्षा बल के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया है। हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट।
1: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वास्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया।
0: सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों में मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और टीडीपी सोशल मीडिया विंग प्रमुख चिंतकयाला विजय को उम्मीदवार बनाया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फाइनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापे मारे। ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रुपये के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तारीख है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन भरकर जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में भारत ने आज अफगानिस्तान के खिलाफ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन के लंच तक 6 विकेट पर 475 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 126 रन और ऋषभ पंत 81 रन बनाकर आउट हो गए। वॉशिंगटन सुंदर और मानव सुथार लंच तक क्रीज पर मौजूद थे। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। मैं हूँ आज आपके साथ पूजा नारायणिया। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। और इस कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं इस गीत के साथ, जिसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। फिल्म का नाम है आंधी, गुलजार के बोल, संगीत आर डी बर्मन का।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हो रही है। उन्होंने कहा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। विदेश मंत्री ने नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए ये प्रारंभिक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पिछले साल द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वे राजनीतिक, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, स्वास्थ्य, फार्मास्यूटिकल्स, खाद्य सुरक्षा और पर्यटन, शिक्षा तथा

0: सुनिए एक खुशखबरी,
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
3: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और अब आपको सुनवाते हैं ब्लैकमेल फिल्म से ये गीत। लता मंगेशकर ने इसे गाया है, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, तर्ज बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

इस अंतराल के बाद आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में एक बार फिर से स्वागत है। अब आपको सुनवा रहे हैं सुहाना सफर, इस फिल्म का गीत आनंद बख्शी की रचना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बनाई धुन पर, और इस गीत को गा रहे हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी।

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक मैं देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए अब आपको सुनवाते हैं शकील बदायूनी की रचना, हेमंत कुमार के संगीत से सजा ये गीत। गीता दत्त ने इस गीत को गाया है और फिल्म का नाम है साहिब बीबी और गुलाम।

ये गीत सुना आपने अभी गीता दत्त की आवाज़ में। लीजिए अब आपको सुनवा रहे हैं यादों की बारात। इस फिल्म का गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की युगल आवाज़ें हैं, युगल स्वर हैं। मजू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा है और संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम चल रहा है यादों की महफिल और अब आपको सुनवाने जा रहे हैं नीरज का लिखा गीत। शंकर जयकिशन की बनाई धुन पर मोहम्मद रफी ने इस गीत को गाया है। कन्यादान फिल्म से ये गीत है।

प्रेम कहानी इस फिल्म का गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। आनंद बख्शी की रचना है, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

अब आपको सुनवाने जा रहे हैं बालिका वधू फिल्म से अमित कुमार का गाया गीत। आनंद बख्शी ने इसे लिखा है, आजी बर्मन ने संगीतबद्ध किया।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में शक्ति फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं। आनंद बख्शी ने ही इस गीत को लिखा है और तर्ज बनाई है आर डी बर्मन ने।

ये है देश का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर हम बस कुछ ही पलों में हाजिर होंगे।

जी हाँ श्रोताओं, आज की इबारत तो आपने पढ़ ही ली है ना? जी हाँ, मैंने कहा था कि जरा प्यार से पढ़िएगा। प्यार से पढ़ा ना आपने, मुझे यकीन है कि बहुत उलझाया नहीं होगा आज की इबारत ने आपको, क्योंकि बहुत ही सामान्य शब्दों से सरल भाषा में कविता के रूप में ये इबारत हमने आपके लिए, सिर्फ आपके लिए तैयार की है। हाँ तो हम सफर पर जा रहे हैं ना, तो उलझन में क्यों फंसाना? प्यार से लिखा है और प्यार से पढ़ा है, तो प्यार से ही इस सफर को तय भी तो करेंगे हम और आप मिलकर साथ में। तो तैयार है ना आप सभी मेरे साथ आज के इस सफर पर जाने को? हाँ, मैं पहली बार आपसे इस कार्यक्रम के माध्यम से मुखातिब होने जा रही हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी का तहे दिल से आपके अपने कार्यक्रम सुरीला सफर में। हमारे सभी प्रिय श्रोताओं ने मुझे आज पहली बार सुरीला सफ़र शुरू करने की बहुत शुभकामनाएं बड़े प्यार से, बड़े सम्मान के साथ दी है। मैं दिल की गहराइयों से आप सभी को इसके लिए धन्यवाद अर्पित करती हूँ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मुझे भी अपना साथी स्वीकारने के लिए।

लीजिए श्रोताओं, सुरीला सफर कार्यक्रम लेकर हम हाजिर हैं। आज आपके साथ आपके सुरीले सफर की हमराही बनेगी आपकी ये साथी पूजा नरानिया। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

कुछ साथियों ने तो मुझे पायलट घोषित किया है। जी हाँ, क्योंकि हम सुरीला सफ़र लेकर जो चलने वाले हैं ना, इस सफ़र की पायलट उन्होंने मुझे बना दिया है। मुझे बड़ी खुशी है कि आपने मुझे इस तरीके से इस नाम से नवाजा है। और देखिए कुछ श्रोता मुझे किस तरह से आज मेरा स्वागत करते हुए हमें संदेश भेज रहे हैं कि देश की सुरीली धड़कन पर पहली बार जब नए उद्घोषक की जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है कि कहीं ये पूजा जी तो नहीं। देखिए उन्होंने मेरा नाम भी इसमें शामिल कर लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बार सुरीला सफ़र लेकर आ रही हैं तो स्वागत। और विविध भारती का प्रसारण हवा के संग संग जब होता है तब खुशियां ही खुशियां दामन में समा जाती है। जिया बेकरार होने के साथ बहार छा जाती है, भंवरे भी गुनगुनाने लगते हैं, बाग की हर कली खिलने लगती है, तब ये गीत गूंज उठते हैं। कुछ गीतों के बारे में उन्होंने कहा, जैसे कि इन हवाओं में इन फिजाओं में आजा आजा रे तुझको विविध भारती का प्यार पुकारे। क्या बात है,

तो श्रोताओं, सबसे पहले आपके लिए हम इबारत भी तो पढ़कर सुना देते हैं, है ना? क्योंकि हाँ, आपने तो पढ़ ली है, पर फिर भी हम आपको पढ़कर ज़रूर सुनाएंगे। कुछ श्रोता जो कुछ देरी से जुड़ पाए हैं, उनके लिए भी कुछ आसानी हो जाएगी, है ना? तो पढ़ देते हैं आपके लिए हम आज की इबारत। प्यार की गली में जब से तेरी आहट उतरी है, हवा भी गीत गुनगुनाए, पानी भी कहानी सुनाए, आँख चुराए फिरती हूँ मैं सबसे तेरे नाम पर। आंचल में भर ली है मैंने खुशियाँ इस संसार की, कलियाँ खिला दी तूने मेरे गोरे अंग में, जियरा ने तेरी यादों में कैसी सांवरी महफिल सजाई है। दो मन थे जो दूर दूर

तक अपनी राहों में भटके, आज मोहब्बत ने दोनों की एक डोर बंधाई है। आग ओढ़कर पिघले जवानी, चांदनी भी शर्मा जाए, किसी के होठों पर मेरा नाम 100 बार उभरा है। आंखें चार हुई तो जैसे थम गई पुरवैया भी, तकदीर ने चुपके से प्रेम दीपक वारा है। जा रे जा कहकर भी तुझको जाने कब जाने देती हूँ, हर इनकार के पीछे मैंने एक इकरार उतारा है। संगमरमर सा चेहरा तेरा, पानी सा निर्मल मन है, हवा ने तेरी खुशबू को हर सू आकर बिखेरा है। हम जोली छेड़ रहे हो क्यों दिल के कोमल तारों को, इंतजार की लंबी रातों ने सपना सवारा है। सीने के सुर्ख बाग में अब तेरी चाहत खिलती है, हर पंखुड़ी पर तेरे नाम का रंग गहरा है। प्यार की गली से होकर जो तेरे दिल तक पहुंची हूँ, अब मेरी हर धड़कन ने बस तुझको ही पुकारा है।

जी हाँ श्रोताओं, ये थी आज की इबारत एक कविता के रूप में, प्यार से ओतप्रोत। हाँ, प्यार से भरी बातें, प्यार से भरी है इबारत। एक स्त्री का मन जब प्यार से भर जाता है तो हवा, पानी और मौसम कैसे उसे सताने लगते हैं, बस हर पल मिलन का इंतज़ार रहने लगता है। अनछुआ सा प्यार जो सिर्फ नज़रों से ही ऐसी छुवन दे जाता है कि वो शर्म से पानी पानी हो जाती है, मन बस में नहीं रहता, बदन का तार तार पिघला देता है। वैसे प्यार तो है ही इस इबारत में, पर साथ ही क्या और है जो हमें प्यारा है, जिसके आने का हमें इंतजार है अब बेसब्री से, है ना, जिसके बिना हमारी अगन कम नहीं होने वाली है। आप बताते चलिए, सुरीले सफ़र का सुरीली शुरुआत हम करने जा रहे हैं इस गीत के साथ, जिसे सुनकर आपको पता लग ही जाएगा कि मैंने पूछा है कि वो क्या है जिसका हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए, हमारी एक श्रोता कह रही हैं कि प्यार की गली बहुत सक्रिय होती है, एक बार व्यक्ति पहुंच तो जाता है लेकिन वापस आना मुश्किल होता है, और कभी वह आ भी गया तो इश्क में डूबी ठंडी हवा उसे पुरानी आहट लिए चुभने लगती है, उनकी प्रेम कहानी आंखों द्वारा खारा पानी बन बहने लगती है, अपने आप से आंखें चुराने लगते महबूब के नाम का आंचल ओढ़ फिरते हैं, फिर चमन में कलियाँ खिले या कांटे मिले उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। और उन्होंने एक गाना भी हमें यहाँ पर बताया है, देखते हैं कि क्या वो आगे इस सफर में शामिल होने वाला है। फिलहाल इस इबारत से जो शब्द है उससे रिलेटेड ये जो है हम गाना आपको सुनवाने वाले हैं उसी शब्द पर आधारित। जी तो, लेकिन मैं उससे पहले आपको प्रश्न सौंप रही हूँ, वाद्य यंत्रों के साथ इस गीत में ऐसी कौन सी क्रिया है जो ताल से ताल मिला रही है, बस उसी का नाम हमें लिख भेजिए। और इस फिल्म में ये एक और सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, बहुत ही सीधा सा सवाल है कि इस फिल्म में मनोज कुमार जो कि अभिनेता और जया भादुड़ी अभिनेत्री हैं, इनका आपस में क्या रिश्ता है, क्या है जो इन्हें आपस में जोड़ता है।

जी हाँ साथियों, पानी रे पानी, इसी का तो इंतज़ार है हम सभी को, बिल्कुल बेसब्री से, है ना। पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा? वैसा ही तो रंग है जिसमें भी ये घुल जाता है, मिल जाता है, बस वैसा ही हो जाता है। शरबत में घुल जाए तो वैसा, भूख को दबा के और प्यास बुझाए ऐसा, प्यास में प्यार में पानी प्यार के तरह ही बन जाता है। तभी तो पानी के बिना प्यार की बातें ही अधूरी होती हैं। और हम सभी को प्यारा है ये पानी, और पानी शब्द हमारी इबारत में हमने शामिल किया था, है ना। और हमारे कुछ श्रोताओं ने हमें लिख भी भेजा था ये गीत, पानी रे पानी, बिल्कुल सही। जो कब आएगा, कितना इंतज़ार है पानी का हमें, बरसात का पानी जो तपती धरती को ठंडा कर जाएगा, हमें शीतलता दे जाएगा। बस हम कर रहे हैं पानी का इंतजार। श्रोताओं, आप बताते चलिए, हम आपके संदेशों को शामिल करते जाएंगे। बहरहाल आपका एक आपके संदेश हमें मिल रहे हैं और कुछ कमेंट्स हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। हमारे श्रोता कहते हैं कि सुरीला सफ़र का कार्यक्रम हम सफ़र बनने के लिए उन्होंने स्वागत कहा है, और ज़िंदगी की ट्रेन में अब हम काफ़ी आगे के डब्बे में सवार हैं, जहां प्यार के मायने बदल जाते हैं। हमारा प्यार अब बच्चों तक सीमित रह गया है, पुराने प्यार के किस्से याद करने की चीज़ भी नहीं रह गई। वो रह गुज़र, वो कश्मकश, वो जज्बात, वो अफसाने, वो अनसुलझे सवाल, वो अनकहे इजहार अब हमारे लिए बेमानी है। ये सारी बातें हमारे युवा श्रोताओं के लिए हैं, ऐसा वो लिख रहे हैं। वैसे ये गाने सुकून देने वाले हैं जो आज प्यार से भरे हुए हैं। वैसे ऐसा तो नहीं है कि आप इन जज्बातों को भूल जाएं। आज हम इस कार्यक्रम में जो बात करने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है आपको आज वो याद आने वाले हैं, सारे प्यार भरे लम्हे जिन्होंने आपको कभी गुदगुदाया था।

जी श्रोताओं, हमने आपसे पूछा था वाद्य यंत्रों के साथ इस गीत में ऐसी कौन सी क्रिया है जो ताल से ताल मिला रही है, और हमने एक और सवाल पूछा, इस फिल्म में मनोज कुमार और जया भादुड़ी को ऐसा उनका क्या रिश्ता है और ऐसा क्या है जो उन्हें आपस में जोड़ता है। जी हाँ, प्यार ही तो है वो रिश्ता जो दो लोगों को आपस में जोड़ देता है। और वाद्य यंत्रों के साथ जो क्रिया है वो है ताली। ताली बजाकर इस क्रिया के साथ इस गीत में वाद्य यंत्रों के साथ ताल से ताल मिलाया जा रहा है, और कितना खूबसूरत गीत हमें ये मिला है ना।

तो हम आपके संदेशों को साथ ही साथ पढ़ते चले जाएंगे। देखिए हमारे एक श्रोता क्या लिख रहे हैं। जी, उन्होंने स्वागत किया है और एक श्रोता लिख रहे हैं कि प्रेम की गली में आहट यानी किसी के आगमन का पहला एहसास रहस्यवाद और प्रेम के प्रारंभिक चरण होता है, जहां प्रेमी के मिलन की कल्पना में पूरी प्रकृति, हवा, पानी सभी आनंदित हो उठते हैं। साथ ही प्रकृति का सजीव और संवेदनशील रूप उजागर होता है, जैसे हवा का गुनगुनाना और पानी का कहानी सुनाना मानवीकरण का उत्कृष्ट उदाहरण है। जी हाँ, बिल्कुल सही फरमाया आपने। ऐसे ही हमारी एक श्रोता कहती हैं कि जिस भी उम्र में जो चीज़ दिल को छूती है वही यादों में शामिल हो जाती है, जैसे तुम्हारी आहट मेरी यादों में ही शामिल नहीं है, वो तो हवा की सरसराहट

में किसी गीत की धुन में ऐसे बस गई है कि जैसे ही जरा सी हवा लहराती है लगता है कि तुम आए हो। कोई गहरी संवेदना मन को छू जाती है जब तुम पुकारते हो। तुम्हारे दिल की गली तक पहुंचना कितना मुश्किल था, मगर जिंदगी के हर पड़ाव को जीते हुए बस यही चाहती हूँ, मेरी हर धड़कन पर बस तुम्हारा नाम हो। क्या बात है, बहुत खूब आपने लिखा है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज फिर एक बार कविता को पढ़ने का मौका मिला है और पूरे भाव को अगर देखा जाए तो दिल की धड़कनों में छिपी एक मीठी सी हलचल जो किसी खास व्यक्ति की मौजूदगी, उनकी मुस्कान या उनकी यादों से जुड़ी होती है, उसे उभारने का प्रयास हुआ है। प्यार ऐसा एक शब्द है जो मानव जीवन के सबसे गहरे और जटिल भावनाओं में से एक को व्यक्त करता है। फिर भी प्यार को आमतौर पर एक गहरी भावना, लगाव और निस्वार्थता के रूप में परिभाषित किया जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने।

एक श्रोता कह रहे हैं कि आज की काव्यमय इबारत मन को मोह लेती है, प्यार की कोमल सुंदर भावनाओं को दोहरा देती है। बिल्कुल सही बात है, आज हमने प्यार के साथ हवा, पानी और प्रकृति को भी शामिल किया है। आपको लगभग सारे ही गीतों में आज अगर देखा जाए ना इन गीतों को, तो उसमें प्रकृति कहीं ना कहीं शामिल है, पानी और हवा कहीं ना कहीं शामिल है। चलिए अगला गीत हम आपको अब सुनवाने जा रहे हैं। इस गीत को सुनकर बताइएगा कि इस गीत में हेमा मालिनी जी किसे कह रही हैं, जा री जा। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि हमने आपको जो गीत सुनाया कार्यक्रम की शुरुआत में, वो था फिल्म शोर से लता मंगेशकर और मुकेश साथियों की आवाज़ों में। इंद्रजीत सिंह तुलसी का लिखा गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस गीत को संगीत से सजाया था। और अब ये अगला गीत।

श्रोताओं, ये जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म पड़ोसन से, इस गाने में जो आपको बताना है वो ये प्रश्न है कि ये हसीनाएं किसकी सवारी कर रही हैं।

और श्रोताओं, ये भी बताइए कि क्या आप आज के समय में साइकिल का उपयोग करते हैं। साथ ही साझा कीजिए आपके प्यार के लम्हों में साइकिल ने क्या योगदान दिया।

जी श्रोताओं, आपको हेमा मालिनी वाला गीत भी हम बस थोड़ी ही देर में सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हमने आपको सुनवाया है पड़ोसन फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर, आशा भोसले और साथियों के स्वरों में। और इस गीत में ये हसीनाएं साइकिल की सवारी कर रही हैं, और हमने आपसे पूछा कि साइकिल का उपयोग क्या आप करते हैं, और साथ ही हमें आप ये भी बताइए कि आपके प्यार के लम्हों में साइकिल किस तरह से आपका योगदान देती रही है।

साइकिल उस जमाने में सिर्फ सवारी ही नहीं थी, ये प्यार के लम्हों की साथी भी बनती थी। साइकिल पर प्यार के लम्हों को ज़्यादा जिया जा सकता था, है ना। मोटर बाइक या कार में अगर हम जाते हैं तो इसकी बजाय, क्योंकि क्या होता है कि वक्त इसमें बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, साइकिल पर तो हम धीरे चलते हैं ना, और लम्हे सीमित हो जाते हैं। वैसे आज के ज़माने में और परिस्थितियों को देखकर साइकिल के महत्व को ज़्यादा समझा जा सकता है। किसी ऊर्जा की खपत नहीं हो रही है इसमें, सिवाय शारीरिक ऊर्जा की। हमारे साथियों ने हमारे पहले गीत के साथ हमने जो प्रश्न पूछे थे उसकी जवाब बिल्कुल सही हम तक पहुंचाए थे। पानी ही था जिसका हमने बेसब्री से इंतज़ार किया, और ये शोर फिल्म का गाना है। इस तरह से हमें हमारे श्रोता बताते ही चले जा रहे हैं कि हाँ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने इसे संगीतबद्ध किया था और ये शोर फिल्म का गीत है। वेरी गुड, बहुत शुक्रिया आपके संदेशों के लिए। एक श्रोता कहते हैं कि पूरी भारत में प्यार ही प्यार भरा पड़ा है।

क्या बात है, एक श्रोता ने तो हमारी ही कविता की कुछ लाइनें यहाँ पर हमें लिखकर भेजी हैं। हाँ, और इसका जवाब यह आ गया कि पड़ोसन फिल्म का ये गीत और सायरा बानो जी अपनी सहेलियों के साथ में साइकिल की सवारी कर रही है, क्या बात है। जी हाँ, हेमा मालिनी जी वाला गाना ये नहीं था, लेकिन हम आपको बस अब सुनवाने जा रहे हैं वो गीत फिल्म अभिनेत्री से।

यहाँ भी गीत में बारिश है, पानी है, प्यार का इकरार है। पानी, घटा, हवा सब कैसे प्यार के साथ जुड़ जाते हैं, ये हमें हमारे पुराने हिंदी फिल्मी गीतों से पता चलता है।

0: एक स्त्री कैसे खिल उठती है, प्यार ही प्यार लुटाने लगती है जब उसे बहुत प्यार मिलता है। जी हाँ श्रोताओं, आपके जवाब हमें मिलते जा रहे हैं। आप सभी ने बहुत अच्छे से हमारे सवालों को सुना। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सामान्य से सवाल आज हम आपसे पूछ रहे हैं। जी, शोर फिल्म का जो गीत आपने सुना था उसका जवाब भी सभी ने दिया है कि प्रेम का रिश्ता है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। और पानी रे पानी गीत से आगाज होना भी बहुत भाया है। आप सभी को धन्यवाद। जी हाँ, मैंने संदेशों को शामिल करने की कोशिश में कुछ अभी गीत कम ही सुनाए थे, लेकिन मैं अब सिर्फ आपको गीत ही सुनवा रही हूँ। आगे इसे और सुरीला जो बनाना है इस सफ़र को। चलिए ले लेते हैं एक संदेश और फिर इस सफ़र को हम आगे बढ़ाते हैं।
1: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
2: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
1: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
2: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
1: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
2: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं सुरीला सफर। आइए अब आपको सुनवाते हैं मिलन फिल्म का ये गीत। और इस गीत में जो अभिनेत्री हैं, यानी स्त्री जो प्यार से ओतप्रोत है, जिन्हें प्यार तो है इस संगीत सिखाने वाले गुरु से, अपने मन की बातों को वो उनके साथ सुर में पिरोकर गा रही हैं, वो कौन है?

0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

कई श्रोताओं ने गीत लिख भेजे हैं, उनमें से कुछ गीत बिल्कुल हमारी इबारत से संबंधित शब्दों पर आधारित हैं और वो शामिल है हमारी भी लिस्ट में और आपकी भी लिस्ट में।

जी हाँ श्रोताओं, ये गीत भी प्यार से भरा हुआ था। सावन के महीने की बात हो रही थी और हमने आपसे पूछा था कि कौन है ये स्त्री, ये अभिनेत्री जो प्यार में है और संगीत सिखाने वाले गुरु से प्यार करती हैं और मन की बातों को उनकी साथ सुर में पिरो रही हैं। जी हाँ, वो है नूतन। आप सभी के जवाबों के लिए बहुत शुक्रिया। हमारे कई श्रोताओं ने कहा है कि बहुत आग बरस रही है तो हमें सिर्फ पानी का ही इंतज़ार है। बिल्कुल सही, इसलिए तो हमने पानी शब्द को अपनी इबारत में शामिल किया था। कई श्रोताओं ने कई कवि

कविताएं लिखकर और कुछ पंक्तियां भेजी हैं हमें लिखकर, जो कि लंबी लंबी हैं। तो हमने शुरू में कोशिश तो की उन्हें शामिल करने की, लेकिन उससे वक्त बढ़ा चला जाता है। तो हाँ जी, देखिए उसके लिए तो मुझे माफ़ कीजिएगा कि मैं उन्हें पूरी तरीके से यहाँ शामिल नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है आपके सभी संदेश इसमें शामिल हो जाएं।

अगला गीत अब आपको हम सुनवाने जा रहे हैं। देखिए, झुक गया आसमान फिल्म से है। इससे पहले हमने मिलन फिल्म से आपको गीत सुनवाया लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोल थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा गीत। और अब ये गीत आप सुनने जा रहे हैं, बताइए किस फिल्म का गीत है।

0: जी हाँ, हमने आपसे पूछा था कि इस फिल्म का जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, कौन है अभिनेत्री? जी हाँ, सायरा बानो जी। प्यार के एहसास से लबरेज वो बातों को याद कर रही हैं प्यार की, और अपनी खुशी जता रही हैं। हमारे कई श्रोता हमें संदेश भेजते जा रहे हैं, उनके कुछ गीत इस इबारत के शब्दों के साथ उन्होंने पहचाने हैं और कुछ नहीं पहचाने हैं। कोई बात नहीं, चलिए हम आपको सुनवा रहे हैं हीर रांझा फिल्म का ये गीत। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि झुक गया आसमान फिल्म का गीत अभी आपने सुना उनसे मिली नजर, लता मंगेशकर ने इसे गाया था। हसरत जयपुरी के बोल थे शंकर जयकिशन के संगीत से सजा। अब जो गीत सुनवा रहे हैं उसे आप बताइए कि इसमें जो अभिनेता राजकुमार ने दुपट्टा बांधा है उसका क्या रंग है।
1: मिलो।

जी हाँ, हीर ने कहा कि मिलो ना तुम तो हम घबराए, मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया है। जी हाँ, ये प्यार ही तो है, प्यार उन्हें हो गया है रांझे से, और उन्होंने अपनी बात उन्हें बता दी है।

मिल हुए हैं, वो हमें गीत लिखकर भेज रहे हैं। और साथ ही देखिए, अब कार्यक्रम में हम ये आखिरी गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं। इससे पहले आपने ये गीत सुना हीर रांझा फिल्म से, अब ये गीत है चुपके चुपके इस फिल्म से। और आप बताइए कि इसमें शर्मिला जी जिन्हें छुपा रही हैं सबसे, वो उनके क्या लगते हैं?

सभी श्रोता हमें कह रहे हैं कि बिल्कुल ये गीत उनके इसमें शामिल

बस श्रोताओं, ये गीत हम आपको इतना ही सुनवा पाएंगे क्योंकि अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप सभी ने हमारा स्वागत किया बहुत सम्मान के साथ, बहुत प्रेम के साथ। लेते हैं अब आपसे विदा। आपके संदेशों के लिए भी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब दीजिए आज्ञा पूजा नारायणिया को। नमस्कार।

0: मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सुनिए शहनाई फिल्म का ये गीत, राजेंद्र किशन का संगीत और गीत रवि का। उल्टा
1: न झटको जुल्फ से पा

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबा से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी

0: कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात, जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आपके साथ।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 2:10 होने को हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हो रही है। उन्होंने कहा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। विदेश मंत्री ने नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए ये प्रारंभिक टिप्पणी की।
1: मैं आप सभी के साथ व्यापक और सार्थक चर्चा की अपेक्षा करता हूं। हमारी बातचीत द्विपक्षीय सहयोग के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगी, जिनमें राजनीतिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार तथा निवेश, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषय शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि हम सहमति से तय किए गए एजेंडा के अनुसार आगे बढ़ते हुए इन सभी विषयों पर सकारात्मक और रचनात्मक विचार विमर्श करेंगे।
0: केंद्र सरकार ने आज कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ता है और अमेरिकी, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है। मंत्रालय ने आगे कहा कि व्यवधान की अवधि के दौरान घरेलू एलपीजी उत्पादन में 60% से अधिक की वृद्धि हुई है, जबकि निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और अल्जीरिया सहित अन्य देशों से भी आपूर्ति की गई। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जाँच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन भरकर जमा कर दें। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर आज राजधानी भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम से शुरू हुए संडे ऑन साइकिल अभियान में हजारों युवाओं, खिलाड़ियों, महिलाओं और आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। साइकिलों की लंबी कतारों ने शहरवासियों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने हरी झंडी दिखाकर किया। राजधानी भोपाल के लालघाटी इलाके में आज सुबह एक 3 मंजिला कमर्शियल बिल्डिंग में आग लग गई। बिल्डिंग में 6 छोटे बड़े रेस्टोरेंट संचालित होते हैं, जो आग की चपेट में आ गए। इमारत से उठता काला धुआं करीब 5 किलोमीटर दूर तक दिखाई दिया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 8

0: निकले और तीन वाटर टैंकर मौके पर पहुंच गए और करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। प्रदेश में मानसून के तय समय से पहले पहुंचने की संभावना बन रही है। केरल से देश में प्रवेश करने वाला मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है और शनिवार तक कर्नाटक, तमिलनाडु होते हुए गोवा पहुंच चुका है। इसके बाद जल्द ही महाराष्ट्र में इसकी एंट्री होने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश में मानसून 20 जून से पहले दस्तक दे सकता है। प्रदेश में मौसम का मिजाज लगातार बदला हुआ है। पिछले एक सप्ताह से कई जिलों में तेज आंधी और बारिश का दौर जारी है। नर्मदापुरम, सिवनी, सीहोर, खरगोन समेत कई इलाकों में बारिश दर्ज की गई, जबकि तेज हवाओं के कारण पेड़ और टीन शेड गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने नागरिकों से स्वस्थ खानपान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया। जबलपुर हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर विज्ञान भर्ती परीक्षा 2024 के परिणाम घोषित करने के संबंध में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को सशर्त अनुमति दे दी है। मध्यप्रदेश के सिंगरौली में एनटीपीसी विंध्याचल ने जेम 2026 की प्रतिभागी बालिकाओं के लिए विशेष साइकिल वितरण समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर 150 बालिकाओं को साइकिलें प्रदान की गईं। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगले बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:15 होने को है। थोड़ी ही देर में दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी। व्यापक रणनीतिक साझेदारी और द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेन देन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12 के पुनर्मूल्यांकन आवेदन पोर्टल को आज रात बंद कर देगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कोच्चि में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देशभर में तेज बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच में पहली पारी 564 रन पर घोषित की। और अब समाचार विस्तार से। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हो रही है और ये मानना होगा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पिछले वर्ष द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 साल पूरा करने का उत्सव मनाया है।
3: मैं आप सभी के साथ व्यापक और सार्थक चर्चा की अपेक्षा करता हूं। हमारी बातचीत द्विपक्षीय सहयोग के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगी, जिनमें राजनीतिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार तथा निवेश, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषय शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि हम सहमति से तय किए गए एजेंडा के अनुसार आगे बढ़ते हुए इन सभी विषयों पर सकारात्मक और रचनात्मक विचार विमर्श करेंगे।
2: हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक में दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की जाएगी और द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी।
4: भारत और इंडोनेशिया के बीच सांस्कृतिक संबंध, औपनिवेशिक शासन का साझा अनुभव और स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक संप्रभुता, आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा स्वतंत्र विदेश नीति जैसे समान लक्ष्य रहे हैं। समय के साथ दोनों देशों के संबंध राजनीति, अर्थव्यवस्था, रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में और मजबूत हुए हैं। जनवरी 2001 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के स्तर पर संयुक्त आयोग की स्थापना हुई।

0: 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जकार्ता यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। दोनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग पर साझा दृष्टिकोण को भी अपनाया, जिससे विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को अधिक मजबूती मिली है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेनदेन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया।
2: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वस्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
1: सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं और अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कैनेडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम हैं।
3: पश्चिम एशिया में हाल के संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए सरकार ने कहा है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा जिसने समुद्री यातायात में गंभीर बाधाओं के बावजूद होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखा। सरकार के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं हुई और एलपीजी की वितरण व्यवस्था भी सामान्य रूप से चलती रही। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी को 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर पर विशेष राहत मिल रही है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी पहले 4 रिफिल पर प्रतिवर्ष 300 रुपए की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी सहायता प्राप्त करते हैं। इसके बाद उन्हें एक सिलेंडर के लिए प्रभावी रूप से 642 रुपए का भुगतान करना पड़ता है, जबकि दिल्ली में सामान्य उपभोक्ताओं के लिए इसी सिलेंडर की खुदरा कीमत 942 रुपए है। मंत्रालय के अनुसार आपूर्ति में व्यवधान की अवधि के दौरान घरेलू एलपीजी उत्पादन में 60% से अधिक की वृद्धि की गई। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: वहीं आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई। दिल्ली में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की। पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और टीडीपी सोशल मीडिया विंग के प्रमुख चिंतकयाला विजय को अपना उम्मीदवार बनाया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की

0: चेतावनी दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फाइनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापे मारे। ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रुपए के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम में गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स को शामिल किया गया है। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक नए व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनन में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है।
1: संघर्ष के 100वें दिन भी होर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव बना हुआ है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के अनुसार सेना ने ईरान के 2 हमलावर ड्रोन मार गिराए हैं। शुक्रवार को अमरीका ने ईरान के 4 ड्रोन नष्ट कर दिए थे और ईरान के गोरुक तथा केशम द्वीप स्थित रडार और निगरानी ठिकानों पर हमले किए थे, जिसके जवाब में ईरान ने शनिवार को कुवैत और बहरीन में अमरीकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए। अमरीकी अधिकारियों ने कहा कि अधिकांश मिसाइलों को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही कर दिया गया। इस संकट का असर पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में भी दिखाई दे रहा है। दक्षिणी लेबनान के नबातियह क्षेत्र के पास इसराइल के एक सैन्य अभियान के दौरान लेबनानी सेना के एक वाहन को निशाना बनाया गया जिसमें सेना के कुछ जवान घायल हो गए। वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में संघर्ष रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास लगातार जारी हैं, लेकिन अभी भी कई बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कल रात कोच्चि में निधन हो गया। वे 57 वर्ष के थे। उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। सलीम कुमार ने शुरू में मिमिक्री स्टेज और टेलीविजन कॉमेडी शो से अपनी पहचान बनाई और 1996 में सिद्दीक शमीर के निर्देशन में फिल्म इष्टमानु नूरुवट्टम से सिने जगत में प्रवेश किया। 3 दशक के करियर में उन्होंने करीब 350 फिल्मों में काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिनेता सलीम कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं अभिनेता के परिवार और उनके अनगिनत प्रशंसकों के साथ हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 77वें संस्करण में भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साइकिल चलाने से पर्यावरण स्वच्छ रहता है और यातायात जाम की समस्या से भी छुटकारा मिलता है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय है समस्या से समाधान तक हर जगह सुरक्षित भोजन। ये दिवस खाद्य सुरक्षा को एक अधिकार और सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में एक सशक्त अवसर प्रदान करता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। इस अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने नागरिकों से स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान का आग्रह किया। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिमी मॉनसून आगे बढ़ रहा है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश भर में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति भी बनी हुई है। विभाग के अनुसार मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु के शेष हिस्सों, दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, उत्तर बंगाल की खाड़ी और कुछ अन्य इलाकों में अगले 2-3 दिनों के दौरान मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। सैफ महिला चैंपियनशिप 2004

0: 20 के फाइनल मुकाबले में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड छठी बार खिताब अपने नाम किया। ये मैच कल गोवा के मडगांव में खेला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला फुटबॉल टीम को सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 जीतने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत से आने वाले समय में युवाओं को फुटबॉल खेलने की प्रेरणा मिलेगी। क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच के आज दूसरे दिन 8 विकेट के नुकसान पर 564 रन बनाकर अपनी पारी घोषित कर दी। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने पहली पारी में छठे ओवर में 1 विकेट खोकर 28 रन बना लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक अधिवक्ता पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेन देन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12 के पुनर्मूल्यांकन आवेदन पोर्टल को आज रात बंद कर देगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कोच्चि में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश भर में तेज वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच में अपनी पहली पारी 564 रन पर घोषित कर दी है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: समाचारों के बाद आप सभी का स्वागत है। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं आशा भोसले की आवाज़ में वक्त फिल्म से। साहिल लुधियानवी के बोल हैं, धुन सजाई है रवि ने।

सदाबहार नगमे इस कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वरों में। साहिल लुधियानवी के ही बोल हैं, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, फिल्म का नाम इज्जत।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूं मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
4: मैं और मेरी तन्हाई,
3: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे और अब आपको सुनवाते हैं आंखें फिल्म का ये गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, साहिल उद्यानवी ने लिखा है और संगीतबद्ध किया है रवि ने।

अब आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में अगला गीत। साहिर लुधियानवी के बोल हैं, संगीतकार रवि, फिल्म का नाम काजल।

0: है वो सबसे हसी इनाम है ये, छू लेने दो नाजुक हो तुमको।
1: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली, बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
2: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
1: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
2: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
1: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
2: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी हैं, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे, और यह अगला गीत दिल ने फिर याद किया, इस फिल्म से मोहम्मद रफी, सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाजों में। जीएल रावल ने इस गीत को लिखा, सोनिक ओमिका संगीत।

त्रिशूल फिल्म का गीत सुन रहे थे आप। साहिर ने इसे लिखा था, संगीत बत किया था खयाम ने। और आइए अब आपको सुनवा रहे हैं इस कार्यक्रम का आखिरी गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम है राज। शमीम जयपुरी के बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

ये तन्हाई कालम और इस पर आपका गम, ये तन्हाई

लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम मनचाहे गीत। मनचाहे गीत इस कार्यक्रम में हम करते हैं शामिल आपके उन पत्रों को जिनमें आप लिख भेजते हैं हमें आपकी मनचाहे गीत। लीजिए हम पहला पत्र शामिल कर रहे हैं इस कार्यक्रम में, जिसे हमें लिख भेजा है छतरी तालाब अमरावती से साधना रानी गुप्ता, नेहा गुप्ता और कोमल गुप्ता ने। इन्होंने फरमाइश की है छोटी बहन फिल्म के इस गीत की, जिसे गाया है लता मंगेशकर और साथियों ने, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। तो सुनिए अपना मनचाहा गीत।

मनचाही गीत कार्यक्रम में लीजिए अब अगला खत हमने शामिल किया है खंडवा रोड सनावद मध्य प्रदेश से अशोक वर्मा रमेश चंद्र वर्मा निर्मला वर्मा अनुज आयुषी अर्चना वर्मा और समस्त वर्मा परिवार के सदस्यगण इन्होंने हमें लिख भेजा है सिर्फ तुम फिल्म का ये गीत पहली पहली बार मोहब्बत गायक कलाकार अलका याग्निक और कुमार सानू लीजिए आपको सुनवा रहे हैं ये गीत समीर के बोल धुन बनाई है नदीम श्रवण ने

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूं मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: मनचाही गीत कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लीजिए हम अगला खत शामिल कर रहे हैं। नेहरू चौक पेठन से ये खत हमें आया है। सुरेश जाधव, अनीता जाधव, प्रसाद जाधव, बेबी सोनल जाधव, इन्होंने इस गीत की फरमाइश की है जो कि है फिल्म दोस्ती से, राही मनवा दुख की चिंता। इस गीत को गा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी, उन्हीं की आवाज़ में ये गीत आप सुनेंगे। मजरू सुल्तानपुरी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
4: दुख हो या सुख जब सदा संग रहे ना

कभी कभी इस फिल्म का गीत सुनना चाहा है। पंचकुला सेक्टर 9 से इन्होंने हमें खत लिख भेजा है। आशु चुग, अश्विनी चुग और गोविंद चुग ने, साथ ही गांधी चौक रोपड़ पंजाब से भी हरदेव मीका, बलविंदर मीका, बलविंदर बिरक, जेते बिरक और मीका बिरक।

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी हैं, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम मनचाहे गीत में अगला खत हमने शामिल किया है कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान और खानपुरी खान फैमिली का। इन्होंने हमें गीत की गुजारिश की है हाथ की सफाई फिल्म से। और इन्हीं के साथ ऊपर कोट बुलंदशहर से भी इसी गीत की फरमाइश मोहम्मद सईद अब्बासी और पूरा अब्बासी परिवार कर रहा है। साथ ही पुराना तालाब डुमरो से वली उल्ला अंसारी, आसमा नाज अंसारी, वसीम अकरम, अजीम वकार और उनकी बिटिया प्यारी सोनम। इंदिरा विहार दिल्ली से वसीम अकरम, अजीम वकार, डब्लू डब्लू अंसारी और बेबी

أنساري. गुलशन बावरा की बोर, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

लीजिए, अगला पत्र हम शामिल कर रहे हैं। राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क MP शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत, राशि रक्षित, चितरंजन कमल, उमेश सरोज, आरती रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी सागर, रिया रीत, ऋषभ राजावत और समस्त राजावत परिवार का। और साथ ही इन्होंने जो गीत की फरमाइश की है वो है फिल्म पतंग से, और इसी गीत की फरमाइश हमें भेजी है राजा रामनगर देवास से राजेश अग्रवाल, शांति महाजन, मुकेश महाजन ने। साथ ही घंटाघर चौक खंडवा से भी संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और समस्त सन्मति पंचोलिया परिवार और सन्मति पंचोलिया ने। और उसके अलावा शीशगढ़ बरेली से इलियास इद्रिसी, नईम इद्रिसी और नदीम इद्रिसी, इन्होंने हमसे फरमाइश की है पतंग फिल्म के इस गीत की। लता मंगेशकर का गाया गीत, राजेंद्र कृष्ण के बोल, चित्रगुप्त की बनाई धुन।

लीजिए, अब मनचाही गीत कार्यक्रम का ये आखिरी खत हम शामिल कर रहे हैं। कुंडलेश्वर वार्ड खंडवासी योगेश गुजराती और रेखा गुजराती का, इन्होंने फिल्म चिराग के इस गीत की फरमाइश की है। मोहम्मद रफ़ी ने इस गीत को गाया है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, मदन मोहन का संगीत।

मोहम्मद रफ़ी के गाए चिराग फिल्म के इस गीत के साथ ही मनचाहे गीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हो रहा है। आप इसी तरह मनचाहे गीत कार्यक्रम में अपनी फरमाइशों के, अपने मनचाहे गीतों के पत्र हमें लिखते रहिए, वो ज़रूर शामिल होंगे। और अब दीजिए आज्ञा पूजा नारायणिया को। नमस्कार।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। श्रोताओं, नाट्य तरंग में आइए आज सुनते हैं नाटक गुलाब की पंखुड़ियां, इसका दूसरा और अंतिम भाग। लेखक सुरेंद्र कांत, निर्देशक मुमताज शकेब।
1: ठहरो, कौन है?
2: मैं हूं नजीबाबाद का नवाब जाब्ता खां। वालिये का नाल राजा साहब से अभी मिला है, इत्तला करा दो, कहो जाब्ता खां आया है।
1: आप यहीं ठहरिए, मैं अभी इत्तला करके आता हूं।
3: आहा, ओ बल्ले बल्ले, आइए नवाब साहब आइए। क्या ये खुशकिस्मती है कि आपके दीदार हुए।
2: जनाबे अली, खुशकिस्मती तो मेरी है जो अपने अजीजों से एक अरसे बाद मुलाकात हो रही है।
3: हाँ हाँ जी, काफी अरसा हो गया, आपसे कोई 5 साल पहले मिले थे। चलो, कल की सी बात लगती है।
2: जी हाँ जी, कल की सी ही बात लगती है।
3: कहिए, कैसे आड़ा हुआ? कुछ परेशान से नजर आते हैं।
2: किबला?
3: अरे भाई, किबला शिबला छोड़ो, सीधे से चचा कहो चचा। मैं आपके वालिद का दोस्त था और वो मुझे अपना छोटा भाई मानते थे।
2: जी चचा जान, इस वक्त मैं बहुत मुसीबत में हूँ।
3: मुसीबत? अब मुसीबत आए तुम्हारे दुश्मनों पर? हाँ तो बताओ क्या मुसीबत है।
2: अब आपको क्या बताऊं चचा जान, बादशाह से मुकाबला किया था मगर हमारी फौज की शिकस्त हो गई। नजीबाबाद के बहल लुट गए, बेगमें गिरफ्तार कर ली गई, सारे इलाके में लूट खसोट मची है। मेरे लड़के गुलाम कादिर की जा बख्शी तो हो गई चचा जान, लेकिन उस मासूम को भी वो दिल्ली ले गए हैं।
3: तेरे की हार हो गई, जंग का तो हमें पता लग गया था मगर आपकी हार के बारे में अभी मालूम हुआ। हाँ तो के करना आयुब?
2: जी, आपके पास पनाह और फौजी इमदाद की उम्मीद से आया हूँ।
3: बरखुरदार, बादशाह के खिलाफ पनाह देना बगावत तो है, लेकिन सिख कभी पनाह के लिए आए हुए को ना उम्मीद नहीं करता। आप यहीं रहे।
2: बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन चचा जान वो फौजी इमदाद
3: है? हाँ जरूर जरूर। और लक्ष्मण, जरा सरदार मन बहार सिंह को इत्तला करो हमसे मिले।
4: जी हुजूर।
5: सत श्री अकाल जी।
3: सत श्री अकाल मन बहार, सत श्री अकाल।
5: हजूर ने मैंने याद किता ही है।
3: जी हाँ सरदार जी, आपको एक खास काम सौंपना है।
5: सौंपो जी सौंपो।
3: ये है नजीबाबाद के नवाब जाब्ता खान, इन्हें आपकी मदद की जरूरत होगी।
5: साड़ी मदद?
3: बस यही कि आप मैं अपने 150-200 सवारों के इनके साथ रहें और जी जान से इनकी इमदाद और हिफाजत करें।
5: जो हुक्म हुजूर, जो हुक्म, मैं उन्हीं जान दी तैयारी करता हूँ।
3: और देखो बरखुदार, मैं आपकी इमदाद के लिए एक निहायत बहादुर, नेक और वफादार सरदार को लगा रहा हूँ। इनकी वफादारी की अनगिनत मिसालें हैं हमारे पास।
2: जी चचा जान, मैं भी इन्हें अपने भाई के मानिंद ही रखूंगा।
3: जी जी, यही मैं चाहता हूँ। ये सरदार ऐसे हैं कि

0: जिंदगी आपकी पुश्त दर पुश्त वफादारी करेंगे, जान पर खेल कर भी आप लोगों की हिफाजत करेंगे।
1: तो चचा जान, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल सकूंगा।
0: और जाओ, गम ना करो, वाहे गुरु खैर करेंगे।
2: मोहतरमा दादी जान, आपने याद फरमाया?
3: हाँ, ये तुम्हारा चहेता गुलाम खादिर तो बहुत हराम ज्यादा निकला।
2: क्यों, क्या हुआ?
3: अभी बताती हूँ, लेकिन लेकिन पहले वादा करो कि इससे माहौल सजा मिलेगी।
2: दादी जान, पहले से वादा क्यों करा रही हो? क्या आपको हमारे इंसाफ या हम पर भरोसा नहीं?
3: हाँ, इसलिए कि शहंशाह हिंदुस्तान बहुत रहम दिल है। उस दिन हमने लॉन्ड्री को पंखा नहीं खींचते रहने पर सजाए ताजियाना दी थी, लेकिन लेकिन जनाब ने उसे माफ।
2: उफ़ दादी जान,
3: हम बराबर देख रहे हैं कि हरम में भी बारह दखल अंदाजी और हमारी तौहीन होती रहती है।
2: मोहतरमा दादी जान, हमारा ये इरादा तो कभी नहीं रहा। लीजिए, मैं वादा करता हूँ। हाँ, फरमाइए, क्या बात है?
3: गुलाम कादिर की शहजादियों से ये छेड़छाड़, तौबा तौबा।
2: उसकी ये जुर्रत, उसका हरम में आना बंद क्यों नहीं कर दिया? अब तो वो बड़ा भी, हमारा मतलब है जवान हो गया है।
3: वो तो हमने आज ख्वाजा सराओं को हुक्म दिया है कि वे अब हमारे हरम में ना आए।
2: दादी जान, आपको क्यों कर इल्म हुआ?
3: हमसे शहजादी ने खुद शिकायत की है।
2: उसने किस शहजादी से गुस्ताखी की, जरा बुलाइए उसे।
3: उफ़, तो अब शहजादियां भी शहंशाह के रूबरू बयान देंगी, एक मामूली कनीस की तरह।
2: अच्छा, कुछ तफसील तो मिलनी चाहिए।
3: तफसील तो यही है कि गुलाम कादिर शहजादी ज़ैनब की तरफ गुस्ताख निगाहों से ताक रहा था और बेहुदा इशारे भी कर रहा था।
2: उस कमीने की ये मजाल, इस्माइल, उस कमीने बदज़ात कादिर को हमारे हुजूर में पेश करो।
4: जो हुक्म आ लीजा। आलमपना, गुलाम कादिर हाजिर है।
2: बदज़ात, तेरी जान बचाकर दिल्ली से लाए और इतने नाजो अंदाज से रखा, तेरी ये मजाल की तू शाही हरम में।
5: हुजूर, हुजूर, रहम।
2: अब भी हमसे रहम की उम्मीद? इस हराम खोर की कोड़ों से खाल उधेड़ दी जाए।

उफ, कितने साल हो गए मुझे इस शिकस्ता हाली में। इस दरमियान क्या क्या हद से गुजरे, कोड़े लगवाए गए, जानवरों की तरह सलूक किया गया। मेरे साथ इस वक्त हरम की एक कनीज भी कितनी खौफनाक लगती है, और बेगमें खूंखार। वो तो अच्छा हुआ कि तिकोजी होलकर ने अब्बा हुजूर का कसूर माफ करवाकर उन्हें मीर बख्शी का ओहदा और अमीरुल उमरा का खिताब अता करने के लिए शहंशाह को मजबूर कर दिया। तब कहीं जाकर मुझे निजात मिली इनके जुल्मों से। लेकिन अब्बा हुजूर भी अल्लाह को प्यारे हुए और मुझ बदनसीब को छोड़ गए। बस अब तो चचा मनबहारी सिंह का ही सहारा है। अब्बा हुजूर ने मेरा हाथ उन्हीं को तो थमाया था, अब किले में रहने से मुझे क्या फायदा। क्यों ना आजाद होकर कोई इलाका फतह करूं, दुआबे के शहरों में फौज कशी करके अपनी कुव्वत बढ़ाऊं। कोल, जलेसर, सादाबाद, यहीं से शुरुआत करनी चाहिए। चचा से मशवरा करके बहुत जल्द अपने मंसूबों को अमली जामा पहनाऊंगा।

0: नामवर, किसने भेजा है ये खत?
1: हुजूर, ये खत पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा।
0: तुम बाहर जाओ।
1: जी अच्छा हुजूर।
0: तो ये है वो खत। अजीज
2: नवाब गुलाम कादिर, बात तस्लीमात से तहरीर है कि किले और हरम की हालत फिलहाल बहुत नाजुक।

0: चल रही है। किले में हमारी बार बार तौहीन होती है। बादशाह अक्सर बदसलूकी करने लगे हैं। अगर तुम अपनी फौजी ताकत से किले पर कब्जा कर लो और शाह आलम सानी को तख्त से हटाकर बेदार बख्त को तख्त नशीं कर दो तो हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। साथ ही तुम्हें 12 लाख रुपहली सिक्के बतौर इनाम अता करेंगे। इसके अलावा हम लोगों को अपना मददगार ही समझो। किले तक पहुंचने के बाद जो कुछ इमदाद हम और हमारे वफादार खादिम कर सकेंगे जरूर करेंगे।
1: तो ये खत बादशाह की दादी जान और बेगम महल साहिबा की तरफ से है। ये वही जमानी बेगम है जिन्होंने मेरे कोड़े लगवाए, जलील किया और आज मुझसे इमदाद की तालिब है। कहीं कोई दगा तो नहीं? नहीं नहीं, कोई दगा नहीं। इतने दिन किले में रहा, बेगमों की मुहरें अच्छी तरह पहचानता हूं, क्यों ना इससे फायदा उठाया जाए। हर तरफ हमारी फतह हो रही है, हमारा सितारा बुलंदी पर है। अब दिल्ली की तरफ कूच करना हमारे हक में होगा।

0: मियाँ शमशेर खां, किली की हालत बिगड़ती जा रही है। सुना है हरम में भी काफी साजिशें चल रही हैं।
1: हाँ लाला जी, क्या बताऊँ, मुझे तो रात दिन फिक्र लगा रहता है। हालांकि हर मजहब के लोग शहंशाह के फरमा बरदार हैं, लेकिन पता नहीं चलता कि
0: कल कौन गद्दारी कर बैठे। कुछ भी हो, हमें तो इस नेक और रहमदिल शहंशाह की जान की बाजी लगा कर भी नमक हलाली करनी है। अभी अभी पता चला है कि गुलाम कादिर ने सिंधिया के जनरल लेसनो को भी हरा दिया है।
1: हुजूर, फिर तो उसका हौसला बहुत बढ़ गया होगा।
0: क्यों नहीं, लगता है अब वह दिल्ली पर भी चढ़ाई जरूर करेगा।
1: उसे सिख सरदार मन बहार सिंह से बड़ी भारी मदद मिली है।
0: हाँ, वैसे वो सरदार बड़ा नेक और संजीदा है। जाब्ता खान ने मरते वक्त कादिर का हाथ उसे थमा दिया था। सुना है उसकी ठंडी फौलाद जैसी आंखों के सामने गुलाम कादिर भी बदकारी करने से डरता है।
1: जी हाँ, सुना तो यही है, शायद ऐसा शख्स आड़े वक्त में कुछ मदद कर सके।
0: हाँ, लेकिन हमें किले में कारगुजारियों पर कड़ी निगाह रखनी चाहिए।
1: आप ठीक कहते हैं लाला जी।

वाह, तो नाजिर मंजूर अली ने अपना वादा पूरा कर दिखाया। एक दो नहीं, पूरे 250 छकड़े बारूद का इंतजाम कर दिया। बहुत खूब, वाह नवाब गुलाम कादिर, अब तुम्हारी फतेह याबी में कोई शक नहीं। तुम्हारी क्या, या तो ये पैसे की फतह है या चचा सरदार की फतह है। अब किसी को भी मैं बच्चों के खरौंदों की तरह तोड़ मरोड़ सकता हूं। पैसा फेंको, काम बनाओ। पैसा पैसा पैसा, हर किसी का माई बाप पैसा ही तो है। हमने अकबराबाद, कोल, सादाबाद, जलेसर, कहां कहां से पैसा लूटा, और बुजुर्ग बेगमों ने भी तो हमें पैसे की दावत दी है। अब सारी दिल्ली नवाब गुलाम कादिर के पैरों तले होगी। आहा!

0: उधर जा बना हरम में जा चुके हैं।
1: उफ मियां शमशेर खां, फिर तो मुझे वहीं जाकर जहां पना को आगाह करना होगा।
0: हुजूर बादशाह सलामत आपको इतनी इज्जत देते हैं कि आप किसी भी वक्त उनसे मुलाकात कर सकते हैं। इस गुलाम कादिर से उन्हें खतरे के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता।
1: देखो मैं जाता हूँ, अगर वक्त मिला तो दस्तखत कराने के बहाने कादिर से ही वह दस्तावेज हत्या लूंगा, तब शहंशाह को आगाह करा पाऊंगा।
2: कहिए लाला जी, कैसे आना हुआ?
1: जहां पना गुस्ताख ही माफ हो, वैसे बंदा इस वक्त हुजूर को कतई जहमत नहीं देता, मगर जरूरत कुछ ऐसी।
2: बोलो लाला जी, क्या बात है?
1: हुजूर गुलाम कादिर किले में दाखिल।
2: हाँ हाँ, वो हमसे मिल चुका है।
1: जहां पना वह एक दस्तावेज पर दस्तखत कराना चाहता है, मैंने दस्तखत कराने से पहले उसे पढ़ने की गुस्ताखी कर ली है।
2: पढ़ लिया तो अच्छा ही किया, लेकिन तुम इतना परेशान क्यों नजर आ रहे हो?
1: अलीजा मुझे तो इसमें दगा का अंदेशा हो रहा है।
2: दगा? कैसी दगा? देखें क्या है दस्तावेज में। लेकिन इसमें दगा क्या हो सकती है? ये सब बातें तो वो पहले ही तय कर चुका है। लाला जी अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। गुज़िश्ता वक्त में वो लड़ाई पर आमादा था, मगर अब उसकी अक्ल ठिकाने आ गई है। वो हमारे हुजूर में माफी के लिए पेश हो चुका है और हमने उसे माफ भी कर दिया है।
1: आलम पना वादे का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर हो तो अभी भी बहुत कुछ सकता है। अभी हमारे लाल पलटन किले में मौजूद है, जहां पना के हुक्म के देर है, अभी इसके टुकड़े टुकड़े करवा दूंगा।
2: लाला शीतलदास ये हमारी जानिब से दगा होगी, हिंदुस्तान की तरफ से गुलाम कादिर जैसे नाचीज के साथ दगा। तवारीख के सफ़े लहू से रंगीन हो जाएंगे और हजार हजार जुबानों से हमें आने वाली पीढ़ियां लानत देगी। लीजिए ये दस्तखत शुदा दस्तावेज कादिर को दे दें।
1: जी बहुत अच्छा।
3: जनाब ने कैसे याद किया?
2: कादिर हमें तुमसे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने गुस्ताख निकलोगे। शाही दरबार के सलीके तो जैसे तुमने बालाए ताक रख दी।
3: जनाब अभी हुजूर का गुस्ताखी से साबका पड़ा ही कहां है, गुस्ताखी तो अब मुलाहजा कीजिए।
2: क्या कहा?
3: हुजूर ये गुलाम कहने में नहीं करने में एतकाद रखता है। गुलामों देख क्या रहे हो, इस बादशाह को पकड़कर बंद कर दो।
2: नहीं कोई आगे नहीं बढ़ेगा।
3: नहीं लेकिन जरा ठहरो, इसे भी बेदार वक्त की तख्त नशीनी का चश्मदीद गवाह बन जाने दो और इसकी आंखें निकलवा दो। आहा।

0: मजदूर के बच्चे नालायक लासम्मान कहाँ छुपा रखा है?
1: हुजूर, मैंने तो आपकी मदद ही की है।
0: रक्तार देता है कि छुरा पार कर दूं।
1: अभी सब देता हूँ हुजूर, अभी सब देता हूँ।
0: ला निकल।

0: दरबार में नाच रहा हूँ। कोई रहम नहीं, नाचो।
1: नहीं, नहीं, नहीं। इन शहजादियों से भला ये कैसे हो सकता है कि ये आज लाल किले के इस भरे दरबार में नाचे।
0: अब दिल्ली के तख्त पर मेरा कब्जा है, बादशाह मैं हूँ।

तुम सब मुगल शहजादियों और बेगमात को आज मेरे सामने भरे दरबार में नाचना होगा।

0: हुजूर, सिंधिया की फौजें फरीदाबाद तक आन पहुंची हैं।
1: है? फरीदाबाद तक?
0: जी सरकार, इधर फरीदाबाद तक और उधर पलटने गुड़गांव से आगे निकल गई हैं।
1: हमें इसकी खबर पहले क्यों नहीं दी गई?
0: हुजूर, अभी जासूस ने कहा।
1: ठीक है ठीक है, पहले हमें खजाने से जवाहरात ले आने दो, बाकी बाद में देखेंगे। अब तो जान बचाना जरूरी है। ये बला कैसे आन तक की?

0: बीसा जी, इतनी जल्दी करते करते भी रास्ता लंबा होता जा रहा है। सरदार इंगले,
1: श्रीमंत,
0: अभी कितनी दूर और है दिल्ली?
1: श्रीमंत, यही कोई 10 कोस और होगी।
0: काश ग्वालियर और दिल्ली के बीच की जमीन एक हो जाती। पता नहीं गुलाम कादिर क्या क्या जुल्म उठा रहा होगा शहंशाह पर। हे भगवान, हमारे लश्कर और दिल्ली के बीच की दूरी को गारत कर दे।
1: श्रीमंत, अब ज्यादा देर नहीं लगेगी। उधर फरीदाबाद की तरफ से भी हमारा लश्कर शायद पहुंच चुका होगा।
0: भगवान को ना जाने क्या मंजूर था कि हमें ऐसी समझ दी कि दिल्ली को छोड़कर राजपुताना में जा फंसे, फिर ग्वालियर चले गए, वरना ये मुसीबत क्यों खड़ी होती। जहां बना बस मेरे पहुंचने भर की देर है।

0: जहां बना किले की ये दुर्दशा।
1: बड़ी बड़ी देर लगा दी मेरे फरिश्ते, लेकिन लेकिन देर आया दुरुस्त आया।
0: जहां पना सचमुच कहर बपा कर दिया उस कमबख्त ने। हुजूर का चेहरा देखकर रोना आता है। हाय रे नसीब, मुझे इतनी देर से खबर मिली।
1: मेरे मसीह, तुमने आकर हमें नई जिंदगी बख्शी है।
0: हुजूर, वो कमीना भी जल्दी पकड़ा जाएगा और माकूल सजा पाएगा। अब मुझे इजाजत बख्शें, मैं उस चंडाल चौकड़ी की खबर लेता हूं। किले के इंतजाम और हुजूर की सेवा के लिए सरदार शिंदे को छोड़ जाऊंगा।
1: खुदा हाफिज।

0: Wat Pip heet je?
1: Oh, इंग्ले हमें आज जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हासिल हुई है। हाथ लगाकर देखूंगा। ओह, ये उस कमीने की आंखें हैं। ये कान, हाँ, दोनों कान। ये नाक, ये उंगलियां, वाह, ये शायद उसके होंठ हैं। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। इन्हें हरम में भेजो और कहो कि सब इस पर थूकें और उसके बाद इन्हें कुत्तों के सामने डलवा दें।
0: और ये हैं हुजूर के गद्दार कारकुन नाजिर मंजूर अली और इस्माइल बेग।
1: इन बदसातों को हाथियों से कुचलवा दिया जाए अभी इसी वक्त।
2: नहीं
0: सरदार मनबहार सिंह, श्रीमंत की तरफ से आखिरी तोहफा। ये कादिर के मददगार, उसके मुंह बोले चचा है।
3: हुजूर,
1: बोलो बोलो लाला शीतलदास, क्या कहना चाहते हो?
3: आलम भना, मैंने शहजादियों की उस रूहेले से इज्जत बचाई, शहजादों की जानें बचाई और जामा मस्जिद का सोना चांदी लूटने से बचाया।
1: हाँ हाँ, हमें इल्म हो चुका है लाला जी। बोलो क्या इनाम चाहते हो?
3: हुजूर, मैं ये सब इसी सरदार मनबहार सिंह की मदद से कर सका।
1: ओहो, बहुत नेक है सरदार। इसे 1,000 अशरफियां और 1 घोड़ा दिया जाए ताकि ये अपने वतन पंजाब तक महफूज पहुंच सके। इस गुलाब के फूल को अगरचे हम देख नहीं सकते हैं, मगर इसकी पंखुड़ियां कितनी दिलकश हैं। इन्हीं पंखुड़ियों में हमारा फरमाबरदार अजीज दोस्त माधोजी सिंधिया भी शामिल है।

0: बोलो सरदार इंगले, क्या तोहफे भेजे हैं माधव जी सिंधिया ने?
1: जहांपनाह, सबसे अहम तोहफा है इस पिटारी में उस नीच कादिर के आंख, कान, नाक, होंठ और उंगलियां। उसे श्रीमंत सिंधिया ने फौजी दरबार में तड़पा तड़पा कर जिंदा खाल उतारने की सजा दी और ये हुजूर की

लाला शीतलदास, होली करीब है। किले में टेसू के फूल देगों में डलवाकर कसूमी रंग तैयार किया जाए, ताकि हमेशा की तरह होली का जश्न किले में ही मनाया जा सके।

गुलाब की पंखुड़ियाँ, इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग अभी आपने सुना। लेखक थे सुरेंद्र कांत, निर्देशक मुमताज शकेब। इसी के साथ अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले

0: नमस्कार श्रोताओं, उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज ऐसे कलाकार की बातें जो पुराने जमाने के महान गीतकार और पार्श्व गायक हैं।
1: आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की।
0: जिनके गीतों में ऐतिहासिक कहानियां सुनाई देती हैं और स्वतंत्रता संग्राम की गाथा भी।
2: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।
0: जिनके गीतों में धार्मिकता भी है और सामाजिकता भी।

0: तो कभी छान।
1: जी हाँ, अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप की मंदाकिनी जोशी से बातचीत हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज सुनिए इस बातचीत का दूसरा भाग।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मंदाकिनी जोशी। आज उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में हम कवि और गीतकार प्रदीप जी को याद कर रहे हैं, इसीलिए आज विविध भारती के स्टूडियो में ठीक हमारे सामने बैठी हैं गीतकार और कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप। स्वागत है आपका मितुल जी विविध भारती के इस स्टूडियो में।
3: बहुत बहुत आभार जो आज आपने मुझे यहाँ बुलाया।
2: मितुल जी, जब बात चल रही है प्रदीप जी की, तो 5 दशक के अपने इस फिल्मी सफर में प्रदीप जी ने कई फिल्मों के लिए गीत लिखे। चल चल रे नौजवान, या आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, या दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, न जाने कितने ऐसे बहुत सारे देशभक्ति गीत हैं। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों की श्रद्धांजलि में भी उन्होंने जो गीत लिखा वो आज भी हम भूल नहीं पाते हैं, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। तो इस गीत की रचना कैसे हुई, राष्ट्रभक्ति का ये अमर गीत प्रदीप जी द्वारा कैसे लिखा गया, क्या माहौल था आपके घर का, क्या माहौल था? और स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने इस गीत का तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में 26 जनवरी 1963 को दिल्ली के रामलीला मैदान में सीधा प्रसारित किया गया इस गीत को, जो कि एक ऐतिहासिक घटना बन गई, इसके बारे में आप हमें बताइए।
3: जैसे मैंने कहा कि उनको देशभक्ति उनके रग रग में थी। जब ये चीन के साथ हमारा ये जो लड़ाई हुई और तब हमारे बहुत सारे सैनिक शहीद हो गए, वो चीज़ उन्हें बहुत मन तक बहुत झकझोर गई, है ना। और उसमें उनको लगा कि ये इतने हमारे शहीद हो रहे हैं, हमारे ये जो लड़ाई में हमारे जवान, उनके बारे में हम क्या सोच रहे हैं, क्या हम लोग सोच रहे हैं क्या होगा उनके परिवार का, कुछ कुछ सोच रहे हैं हम लोग के नहीं। तो वो चीज़ें उनको बहुत मन में दुख दे रही थी। तो ये अचानक से उन्होंने लिखा गाना था, है ना। और वो एक शैतान सिंह नाम के, मेजर शैतान सिंह, जिनकी वहाँ पर शहादत हुई रिजांगला में, और वो चीज़ से भी उनको बहुत वो आहत हुए। वो जा रहे थे कहीं, रास्ते पे चल रहे थे, और चितलकर काका सी रामचंद्र, उनका घर माहिम में था, तो वहाँ पर उनको मिलने जा रहे थे। तो वहाँ चलते चलते उनको लगा कि ये देखिए क्या हो रहा है देश में, हमारा क्या होगा, हमारे जवानों का क्या होगा। उन्होंने एक लाइन लिखी, उनको मन

0: में आई और उनको मन में ये आई कि जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी, शहीद शहीद शहीद जो शहीद हुए हैं उनकी याद करो कुर्बानी। अब ये गीत तो उस वक्त तो उनको दिमाग में ये लाइन ही आई, उनको लगा मैं भूल जाऊंगा जब तक मैं घर जाऊंगा, हो सकता है मैं ये लाइन भूल जाऊं। रास्ते पे उन्होंने एक देखा कि एक पान पट्टी की एक दुकान थी पान वाले की, उन्होंने कहा भैया कुछ मिलेगा लिखने के लिए? बोलते यहाँ कहाँ मिलेगा भैया, ये एक सिगरेट का बॉक्स है खाली, इस पे कुछ लिख सकते हैं, आपके पास पेन है? बोलते मेरे पास तो पेन नहीं है। पास में कोई भाई खड़े थे, उन्होंने कहा ये ले लीजिए पेन, उन्होंने उस पे वो लाइन लिख दी और वो घर आ गए। वहाँ पर जाके वो जो अपनी मीटिंग ख़त्म करके घर आने के बाद फिर इसके ऊपर जो मंथन चला उनका, और मंथन में से धीरे धीरे धीरे धीरे ये गीत शेप अप हुआ। और मंथन कैसा चला कि दिनों दिनों उन्होंने घर में बैठ के लाइन की लाइनें अलग अलग स्टाइल में लिखते रहे, और फिर जाके ये गीत एक गीत के रूप में बना। अब वो तो गीत तो बन गया, लेकिन वो तो उनको पता नहीं था, उन्होंने तो जैसे कवि थे तो अपने आप से लिखते थे।
1: जी
0: उसी दौरान महबूब खान ने एक प्रोग्राम तय किया था दिल्ली में, जैसे फंड रेजिंग का प्रोग्राम रखा था नेशनल स्टेडियम में।
1: जी
0: महबूब खान आए घर पे और प्रदीप जी से कहा कि आपको एक गाना देना है, क्योंकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री के सभी लोग वहाँ पर एक एक गीत देने वाले हैं और हम वहाँ पर लाइव परफॉर्मेंस करने वाले हैं, तो आपकी तरफ से भी एक गीत हमें चाहिए। मेरे बापू को लगा कि अभी जो गीत मैंने लिखा है उसी को थोड़ा ठीक करके इसी को दे सकता हूँ, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी।
1: कुर्बानी
0: तो वो गीत तो उन्होंने बहुत लंबा लिखा था अपनी स्टाइल में,
1: बिल्कुल
0: तो फिर बैठ के उन्होंने तराशा और उसको कम किया, जैसे बहुत लंबा था उसमें से काट छाट के। महबूब खान ने कहा कि मुझे ये गाना उसमें सुवीनियर में लिखना है, क्योंकि हम सभी लोग सुवीनियर में हम लोग क्या गाने वाले हैं, हमारे परफॉर्मेंस क्या है, वो हम लिखने वाले हैं। इन्होंने कहा कि मैं ठीक है मैं कल आपको देता हूँ। उन्होंने चितलकर काका को घर पे बुलाया, मतलब सी रामचंद्र, कि देखो भाई हमको ये गाना वहाँ पर देना है, और महबूब खान बोल रहे हैं कि हमको ये गीत का पूरा उसमें लिख के देना है,
1: ठीक
0: तो
1: है
0: मैं नहीं चाहता हूं कि ये गीत जब तक वहां पर गाए नहीं कोई तब तक ये खुलना नहीं चाहिए कि ये गीत क्या है।
1: जी
0: तो चितलकर काका ने कहा ठीक है, अब सुवीनियर में देना है लाइन्स। तो उन्होंने महबूब खान को चार लाइनें दी। ए मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। ये लाइनें दी कि भैया ये मेरी लाइनें हैं और जब तक मैं इसको ठीक करके दूंगा तब तक ये चार लाइनें आप इसमें छाप दीजिए। तो ये खुला नहीं कि इसमें गीत में क्या है, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। ठीक है, मतलब ये होगा कि हाँ शुभ दिन है, ये है वो है, सब लोग खुश हो जाओ, हम लोग सब अच्छे हैं, मतलब वॉट एवर। तो उस प्रकार का उन्होंने साइलेंट रहे कि हमारे उसमें गीत में क्या है।
1: जी
0: अब जब तक गाने का रिहर्सल होना था, लता दीदी गाने वाली थी, उसके पहले ये भी था कि आशा दीदी और लता दीदी दोनों गाएंगे। ठीक है, अब तब चितलकर काका का थोड़ा सा लता दीदी के साथ संबंध ठीक नहीं थे, तो लता जी ने कहा कि मैं गाना नहीं गाऊंगी, मैं श्री रामचंद्र के साथ गाना नहीं गाऊंगी, ये तो ओपन सीक्रेट है। तो फिर ठीक है आशा दीदी गाएगी। फिर ये तय हुआ कि आशा दीदी और लता दीदी दोनों गाएंगी साथ में। अब उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसमें तो हमको पता नहीं है, हम तो बहुत छोटे थे, लेकिन आखिरी में लता दीदी ने गाया। तो वो तो तब रिकॉर्डिंग कुछ नहीं हुआ था, रिकॉर्डिंग तो उसके बाद में
1: बाद
0: हुआ,
1: में हुई
0: ये तो लाइव वहाँ पर गाया उन्होंने,
1: दिल्ली
0: तो
1: में।
0: रिहर्सल कैसे करेंगे। एक बार घर पे आके रिहर्सल करके गए लता दीदी, एक ही बार चले गए दिल्ली, है ना। लेकिन वो इतनी अच्छी और उत्कृष्ट गायिका थी कि उनको तो समय नहीं लगा उसको उठाने
1: पकड़ने
0: में,
1: में। हाँ
0: और चितलकर काका और उनका तो संबंध ठीक नहीं थे, फिर भी दोनों ने साथ में खड़े होके स्टेज पे ये गाना पेश किया। प्रदीप जी को नहीं बुलाया गया था, नो इनविटेशन। हाँ, तो ये भी अजीब सी बात है, देखिए कि जिस इंसान का गाना वहाँ बज रहा है, वहाँ गा रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री के दूसरे सभी गीतकार थे, प्रदीप जी को ये लोग भूल गए बुलाना, तो इनवाइटेड नहीं थे तो वो नहीं जाएंगे, वो नहीं गए। गीत वहाँ पर पेश हुआ, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गंवाए।

0: तो माहौल चेंज हो गया। पर मत भूलो, सीमा
1: लो
0: पर वीरों ने प्राण गंवाए। लोग एकदम सुनना
1: स्तब्ध रह
0: शुरू
1: गए।
0: किया कि
1: हाँ
0: ये क्या है। जवाहरलाल नेहरू जैसे एक ज्ञानी व्यक्ति बैठे हुए थे, राधा कृष्णन जैसे बहुत ज्ञानी थे, मतलब ऐसे हमारे वहाँ पर नेता बैठे थे जो समझ पा रहे थे कि ये क्या है। और पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई कुछ ना बोले, और लता दीदी की आवाज़ में ये गाना वहाँ पर गूंजा। लोगों की आंखों में आंसू भरे, और ये हकीकत है, वहाँ पर जितने लोग वहाँ मौजूद थे, एक इंसान ऐसा नहीं था जिसकी आंखों में पानी ना
1: नहीं
0: हो।
1: था
0: और जवाहरलाल जी रोए, वो तो पता है सबको,
1: जी,
0: क्योंकि
1: बिल्कुल
0: उनके मन में भी ग्लानि बहुत थी कि हमारे कितने शहीद हो गए, हमारे जवान, हमारे ऑफिसर्स, हमारी आर्मी। तो वो चीज़ को सुन करके सभी बहुत दुखी थे, मन में बहुत ग्लानि थी,
1: जी
0: गिल्ट फीलिंग।
1: जी
0: पूरा हो गया कार्यक्रम, जवाहरलाल जी ने पूछा कि बेटी तुमने तो रुला दिया, लेकिन कवि कहाँ है, ये
1: अच्छा
0: लिखा किसने है?
1: जी
0: तो लता दीदी ने कहा, नहीं वो तो नहीं आए हैं, कवि प्रदीप ने लिखा है, वो नहीं आए हैं। तो वहाँ पर यशवंतराव चव्हाण खड़े थे, है ना, वो अपने डिफेंस मिनिस्टर थे तब, यशवंतराव चव्हाण। उनको जवाहरलाल जी ने कहा कि चव्हाण जी आपके वहाँ के हैं, ये तो बम्बई के लोग हैं ये सब, तो आप जब बम्बई जाएंगे तो आप प्रदीप जी को ज़रूर कहिए कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो ये बात हो गई। दूसरे दिन अखबारों में छपा कि इतना सारा हुआ, जवाहरलाल जी की आंख में पानी आ गया। मुझे याद है क्योंकि मैं भी बैठी हुई थी, मैं तो
1: जी
0: छोटी बच्ची थी, लेकिन मुझे याद है। हम लोग चाय पी रहे हैं बाहर बैठ के बरामदे में, हमारे देखते हैं कि बाहर रास्ते पे से दौड़ते हुए लक्ष्मीकांत आ रहे हैं,
1: जी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जोड़ी के लक्ष्मीकांत
0: लक्ष्मीकांत जी।
1: जी।
0: वो आए, दौड़ के मेरे पिता के पैरों में पड़ गए, बोलते प्रदीप जी आपने तो पूरे देश को रुला दिया, बोलते आप छा गए, आपका वहाँ पर आपका गीत जो बजा है, तो हम नहीं, हम तो म्यूजिशियन थे, वो तो म्यूजिशियन थे तब, मैंडोलिन बजाते थे उसी गीत में,
1: अच्छा
0: बोलते हम सब तो थे, लेकिन हमने देखा कि पूरा माहौल जो है पूरा चार्ज हो गया था, और आंखों में आंसू के साथ लोगों ने इस गाने को
1: सुना।
0: सुना। तो लक्ष्मीकांत आके बोले खुद, है ना, इट वॉज एब्सोल्युटली, मैं तो कहूँ कि मैं समझ नहीं पा रही थी, मैं बहुत छोटी थी,
1: जी जी
0: लेकिन मैंने लक्ष्मीकांत जी को आते हुए देखा, उनको पैर पड़ते हुए देखा, और उनको ये कहते हुए सुना,
1: सुना।
0: ये मैं आज तक भूल नहीं पाती हूँ।
1: और इस वक्त आपसे बात करते हुए ये घटना सुनते हुए हमारी आंखों में भी पानी सा आ गया है कि कितना उम्दा गीत उन्होंने लिखा। पर बड़ा अफसोस हुआ कि उन्हें नहीं बुलाया गया। और इसके पीछे का कारण क्या कभी सामने आया?
0: नहीं, ये हो सकता है कि भूल गए, और नेचुरली भूल गए, लेकिन हो सकता है कोई पॉलिटिक्स होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता है। ठीक है, जो भी हुआ अच्छा हुआ। क्यों अच्छा हुआ? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वहाँ पर वो होते तो जवाहरलाल नेहरू उनको बधाई देते कि आपने बहुत अच्छा गीत लिखा, और बात ख़त्म हो जाती। लेकिन जवाहरलाल जी जब 2 महीने के बाद मुंबई आए,
1: जी
0: उन्होंने खास बोला यशवंतराव चव्हाण को फिर से कि आपने कहा था ना मैं मिलवाऊंगा वो कवि से, तो अब मुझे उनसे मिलना है। राजभवन में प्रदीप जी को बुलाया गया, वहाँ पर बैठ के जवाहरलाल जी ने बहुत सारी उनकी कविताएं सुनी 2-3 घंटे तक। और अच्छा ये गीत भी आपका है, दूर हटो ये दुनिया वालों, आपने लिखा है? अरे ये तो हम गाते थे, हम जेल में थे, तब हमको आके बताया किसी ने कि ये गीत चल रहा है और लोग खुशी होके वापस वापस से इसको सुन रहे हैं,
1: जी
0: आपका लिखा गीत है, चल चल रे नौजवान आपका है, अरे ये तो इंदु भी गाती थी।
1: बताइए
0: ऐसी बातें कहाँ होती थी अगर वो
1: जी
0: जाते थे दिल्ली,
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: ये भी एक नसीब और डेस्टिनी है,
1: कि जो होता है अच्छे
0: अच्छा
1: के
0: होता
1: लिए
0: है।
1: होता है जी
0: उसके बाद में उनको कहा गया, मतलब जवाहरलाल जी ने कहा कि हमारा एक प्रोग्राम है कल यहीं पर, तो हम चाहते हैं कि आप लोगों के सामने ये गीत सुनाइए,
1: अच्छा इसी गीत को
0: इसी गीत
1: आप
0: को।
1: सुनाएं।
0: तो प्रदीप जी ने कहा कि मैं तो कवि हूँ, मैं तो साजिंदे के साथ तो गा नहीं सकता हूँ, अपनी तरीके से सुनाऊंगा। वो कहते हैं कि हाँ हम आपकी तरीके से ही सुनना चाहते हैं, जैसे आप गाएंगे। फिर वहाँ पर बहुत बड़ी प्रोग्राम था, एक मीटिंग थी, वहाँ पर प्रदीप जी ने ये गीत सुनाया, और सुनाने के बाद जवाहरलाल जी ने कहा कि ये आपने जो हाथ में लिखा है ना गाना, वो मुझे दे दीजिए, आपकी लिखाई का गीत मैं रखूंगा। तो उनकी लिखी

0: हुई हस्तलिपि में आज भी आनंद भवन में वो गीत सुरक्षित है।
1: वाह, बहुत सुंदर। तो कहना चाहिए कि जो कवि प्रदीप जी की कलम से निकले जो गीत थे, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम और उसके बाद में देश की रक्षा में सैनिकों का मनोबल बढ़ाया,
0: जी
1: और साथ ही उनके गीतों में राष्ट्रीयता थी, अध्यात्म था और मानवता का गहरा समावेश देखने को मिला। और तभी ये गीत लिखा गया जिसका जिक्र अभी हम कर रहे हैं। तो अगर आप इजाजत दें तो क्या ये गीत हम सुन लें?
0: हम सुनने से पहले एक बात और बता दूं
1: जी।
0: कि ये गीत की जितनी भी रॉयल्टी आई वो सभी हम लोगों ने और मेरे पिता ने जवानों की विधवाओं के लिए दान कर दी है।
1: जी,
0: ए मेरे वतन के लोगों की
1: लघु
0: जो भी
1: रॉयल्टी आई।
0: रॉयल्टी आती हैं वो वहाँ पर जाती है उनके घर वालों को, उनके परिवार को।
1: और
0: वो
1: एक
0: मेरे पिता की इच्छा थी तो इसको हमने आज तक हमने निभाया है।
1: ये गीत सुन ले, ऐ मेरे वतन के
0: जी
1: लोगों,
0: ज़रूर
1: जरा
0: ज़रूर।
1: आंख में भर लो पानी।

0: तो देखिए, हमारी आंखों में भी पानी है और हमारी आंखें भी नम है आज इस बातचीत को जब हम कर रहे हैं। मिथुल जी, कवि प्रदीप जी की रचनाओं पर हम बात कर रहे हैं, उनके जो देशभक्ति रचनाएं हैं उनके बारे में हम इतनी विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि मिली उस देशभक्ति गीत के बाद ही, जिसका जिक्र अभी हमने थोड़ी देर पहले ही किया था, ऐ मेरी वतन की लोगों।
1: जी
0: और उन गीतों को लोग आज भी सुनते हैं और उनके लिखे गीतों को आज भी हम देशभक्ति से ही जोड़ते हैं। उनका पूरा जीवन लेखन, देश प्रेम, राष्ट्रवाद और मानवीय संवेदनाओं को समर्पित रहा और वे देशभक्त के पर्याय बन गए।
1: जी
0: एक समय ऐसा भी आया। आप इस बात को कैसे कहेंगी? आप किस तरह का माहौल लगता था? कौन कौन से लोग उनसे मिलने आया करते होंगे?
1: हाँ, मैं आपको एक खास बात ये बताऊं कि प्रदीप जी कभी भी दूसरे प्रोड्यूसर्स या म्यूजिक डायरेक्टर्स के घर पे या ऑफिस में कभी गए नहीं। जो भी उनसे बात करना चाहे वो हमारे घर पे आते थे।
0: जी
1: तो ये नहीं है कि कभी वहाँ पर बैठे हुए हैं उनकी ऑफिस में या उनके रिकॉर्डिंग रूम में, कभी नहीं। जो भी रिहर्सल होते थे गानों के, वो हमारे घर पे होते थे। तो ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी बात थी कि बड़े बड़े लोग आते थे,
0: जी
1: आशा दीदी, लता दीदी, मन्ना डे, महेंद्र कपूर, मोहम्मद रफ़ी, इन सबको सुनने का रिहर्सल्स में हमको मौका मिलता था।
0: बिल्कुल
1: तो हम छोटे छोटे बच्चे कान लगा के खड़े रहते थे दरवाजे के पास, और कभी कभी ऐसा होता था कि अचानक दरवाजा खुल जाता था तो हम पकड़े जाते थे, हम लोग खड़े।
0: जी
1: तो ये बात थी, एक तो ऐसा था कि लोग आते थे। और जो भी प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने पिताजी को, कवि प्रदीप जी को, पूरी छूट दे के रखी थी कि आप जैसा लिखना चाहें वैसा लिखिए, हम आपको नहीं कहेंगे कि आप इस लाइन पे लिखिए। तो कई उनके ऐसे गीत थे जो आज इतने पॉपुलर हैं, कौन सी फिल्म है लोगों को नहीं पता, लेकिन गीत लोग जानते हैं। जैसे जागृति फिल्म या नास्तिक फिल्म, उसमें इतने सारे अच्छे अच्छे गीत हुए और उसमें पूरी छूट दे के रखी थी कि आपको जो लिखना है आप लिख सकते हैं। तो वो छूट के कारण भी उनकी एक स्वतंत्रता कभी बाधित नहीं हुई, और वो एक कारण था कि आज भी कई गाने पॉपुलर हैं।
0: जी
1: दूसरा ये कि हमारे घर पे और कौन कौन आते थे, तो कई नेता भी आते थे, अभिनेता भी आते थे हमारे घर पे, मनोज कुमार, राजेंद्र कुमार, उस वक्त

0: लोग
1: जी
0: काफी आते थे, जो उनके साथ कभी काम नहीं किया हो वैसे लोग भी आते थे सिर्फ मिलने के लिए।
1: जी
0: और म्यूजिक डायरेक्टर्स तो रिहर्सल होता था इसीलिए आते थे। तो उनका बातचीत सभी से थी, लेकिन वो कभी भी अपने आप को उन्होंने झुकाया नहीं, ना वो किसी विचारधारा के साथ गए।
1: जी
0: उनकी अपनी विचारधारा क्या थी? राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र सबसे ऊपर।
1: बिल्कुल
0: कोई भी आए जाए नेता, उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। नेता कोई आते भी थे तो उनको बहुत खुली तरह से बोलते थे कि आप लोग ये गलत काम कर रहे हो, और वो सुन भी लेते थे। ऐसा माहौल था तब, वो सुन भी लेते थे।
1: क्योंकि उनकी गीतों से वो बात निकली, उनकी कलम में वो जादू
0: हाँ,
1: था।
0: तो जैसे कई ऐसे नेता थे जो हम मैंने देखा था कि वो आके बैठते थे, उनसे बात करते थे और कुछ सुन के ही जाते थे कि आपने ये गलत काम किया, ये अपनी पॉलिसी गलत है। तो इस प्रकार से उनका बातचीत का दौर चलता रहता था। उनको क्या पसंद था? न्यूज़, अखबार, मतलब जो अखबार सुबह आए तो 4-5 अखबार पढ़े बिना उनकी सुबह नहीं होती थी, पूरी नहीं होती थी। चाय और अखबार वो सबसे पहले सुबह उनके साथ में, उनके या तो कमरे में हो या हमारा अच्छा बरामदा है वहाँ पर।
1: कौन कौन से अखबार हुआ करते थे, कुछ याद है आपको?
0: हाँ, अभी अभी भी याद, टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस, क्योंकि वो बोलते थे कि इंडियन एक्सप्रेस लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसमें सही समाचार आते हैं। फिर नवभारत टाइम्स, मतलब हिंदी अखबार, इंग्लिश अखबार और मराठी अखबार,
1: जी
0: वो मराठी भी पढ़ते थे। तो वो चाहते थे कि सभी तरह की उनको जो समाचार मिलता रहे, क्योंकि मराठी अखबार में लोकल ज़्यादा आएंगे न्यूज़, हिंदी अखबारों में हिंदी प्रदेशों के न्यूज़ आएंगे और इंग्लिश में तो सब कुछ आएगा ही आएगा। तो ये 6 अखबार हमारे वहाँ रोज़ आते थे, और गुजराती, मतलब गुजराती भी, क्योंकि मेरी माँ गुजराती थी।
1: इतनी भाषाओं का
0: इतनी भाषाओं के हमारे वहाँ अखबार
1: आते
0: आते
1: थे और
0: थे
1: उसे पढ़ा
0: और
1: जाता था।
0: आज भी आते हैं, वो मैंने
1: जी
0: बंद नहीं किए।
1: जी
0: तो मुझे भी वो आदत है कि सुबह सुबह अखबार के सिवाय हमारी सुबह नहीं
1: नहीं
0: होती।
1: होती।
0: बीबीसी न्यूज़, उनका रोज़ का सवेरे का 5:45 बजे का न्यूज़ वो सुनते थे। ऑल इंडिया रेडियो के न्यूज़, मतलब समाचार जो हिंदी में आएंगे, अंग्रेजी में
1: जी
0: आएंगे,
1: हाँ,
0: वो सब उनको सुनना ज़रूरी था।
1: तो घर में एक रेडियो था।
0: हाँ,
1: जी
0: एक नहीं 2-3 रेडियो थे, क्योंकि तब तो टेलीविज़न भी नहीं था ना, तो रेडियो उनका साथी था। मेरी माँ का अलग साथी रेडियो था और मेरे लिए अलग रेडियो था। तो हमारे घर में 3 अलग-अलग रेडियो बजते थे। तो मैं जो है विविध भारती सुनती थी।
1: अच्छा
0: जैसे मैंने कहा, वो हमेशा अपने आप को अपडेटेड रखते थे कि दिन में कुछ भी अगर समाचार आए तो हमको वो पहले बताते थे। जैसे कैनेडी को गोली मारी गई तो सबसे पहले उन्होंने आके हमको बताया कि देखो ये हो गया है। तो ये अपडेटेड रहते थे हर एक चीज़ में।
1: मतलब पल पल उनका देश के लिए समर्पित था
0: हाँ
1: और
0: हाँ
1: हर कण कण
0: तो
1: में वो देशभक्ति
0: ये
1: का
0: जो
1: जज्बा था।
0: जागरूकता थी ना, वो मुझे नहीं लगता कि सभी परिवारों में रहती है। तो जागरूकता रहने से मैं, माँ, और तब दीदी की शादी भी हो गई थी, वो मुझसे बड़ी थी, तो हम तीनों लोग जागरूकता, मतलब वो क्या आ रहा है सुनने की आदत हो गई कि सबसे पहले समाचार सुनो क्या हो रहा है, समाचार सुन लिए उसके बाद में चाहे कुछ भी करो। तो मेरी माँ भी सुबह मेरे पिता के जाने के बाद सुबह सवेरे वो रेडियो का समाचार पहले सुनती थी।
1: तो मितुल जी, अब एक और गीत हम आपकी पसंद का सुन लेते हैं। बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको।
0: एक हम लोग थोड़ा सा हटके सुनाते हैं, संबंध फिल्म का, अंधेरे में जो बैठे हैं नज़र उन पे भी कुछ डालो,
1: वाह
0: अरे ओ रोशनी वालो।
1: वाह, क्या बात है। महेंद्र कपूर साहब का गाया हुआ गीत है
0: जी
1: ये,
0: जी
1: और बहुत पसंद करते हैं लोग इस गाने को। गाने में बहुत ही दर्शन छुपा है, बहुत ही खूबसूरत गीत। आइए सुनते हैं ये गीत।
2: उत्तर

0: आप दोनों बेटियों ने अपने पिता से क्या सीखा, मतलब उनको जिस करीबी से आपने देखा, क्या क्या लगा आपको कि नहीं हम अपने पिता से ये नहीं सीख पाए, हमें सीख लेना चाहिए था, ऐसा कभी महसूस करते हैं आज उम्र के इस पड़ाव पर आकर?
1: अच्छा गाना नहीं सीख पाए, अच्छा लिखना नहीं सीख पाए, ये दो चीज़ें तो खैर नहीं कर पाए हम। और दीदी तो फिर भी ठीक ठाक गाती थी, और मतलब प्रोफेशनली नहीं ऐसे, लेकिन जागरूकता, सरल जिंदगी, हमें कभी भी कोई कंपटीशन नहीं रहता है कि हमको ये नहीं मिला, हमको ये नहीं मिला, उसके पास ये है, मुझे भी वो चाहिए, वो कभी नहीं रहा। फिल्म इंडस्ट्री के लिए कभी कोई

0: अट्रैक्शन नहीं रहा
1: फिल्मी
0: सबसे
1: दुनिया में
0: बढ़िया,
1: रहते हुए भी,
0: रहते हुए
1: उस
0: भी।
1: माहौल में रहते हुए भी।
0: और आज भी ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी बात हुई कि हमको फिल्म इंडस्ट्री के लिए कोई अट्रैक्शन नहीं रहा कि हमको फिल्म में काम करना है या गाना गाना है या हमको ये करना है, ऐसा नहीं रहा
1: और
0: वो।
1: किसी तरह का कोई आपको मिला भी नहीं वहां से कि कोई व्यक्ति आए और कहा हो कि मितुल जी हमारे लिए कुछ लिखिए अपने पिता की तरह या गा के
0: हाँ
1: बताइए।
0: हाँ नहीं, लिखने के लिए तो मुझे दो तीन लोगों ने अभी भी कहा था, जैसे बप्पी दा ने कहा था मुझे उनके जाने के कुछ सालों पहले कि आप पिताजी की तरह आप भी लिखिए, मैं उसके म्यूज़िक कंपोज करूँगा, बप्पी लाहिरी ने।
1: जी
0: तो वो तो मुझे मिलता रहता है, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं नहीं लिख पाऊँगी, मैं जानती हूँ, तो मैं क्यों अपने आप को उसमें एक्सपोज करूँ, तो वो काम नहीं हो पाया।
1: आप उनकी कोई कविता सुनाना चाहती हैं तो हमारे श्रोता भी सुनना चाहेंगे जो आपको पसंद हो,
0: हाँ हम
1: जो
0: अभी,
1: फिल्मों में नहीं आई और उन अलग से जो उनका संकलन था कविताओं का।
0: हाँ, तो उन्होंने जैसे देशभक्ति के ऊपर कविताएं लिखी, तो एक दो लाइनें उसकी सुनाती हूँ और एक
1: जी
0: दो लाइनें कुछ अलग मूड की सुनाती हूँ।
1: जी
0: तो उन्होंने, मैंने जैसे पहले कहा था कि आज़ाद जब नहीं रहे, चंद्रशेखर आज़ाद, तब कविता लिखी थी। उसी दौरान, उसके बाद में जब हमको आज़ादी मिली,
1: जी
0: तब उन्होंने एक कविता लिखी थी कि लो फिर पुलक उठे, वे जो थे दले गए। लो फिर पुलक उठे, वे जो थे दले हुए, उर्वी पर अपार दुर्वा दल नए नए। कल तक थी जो विकल दैन्य से दबी रही, आज वही खिल उठी शस्य श्यामला मही। निखिल प्रकृति लहलही, विमल वातास वही, पल्लव पल्लव ने नवयुग की कथा कही। मतलब
1: वाह
0: नवयुग में खुशी से आनंदित है
1: जी
0: क्योंकि हमको
1: जी
0: उस वक्त आज़ादी
1: आजादी
0: मिली
1: मिल
0: थी।
1: गई।
0: और आप अगर सुने, एक और उनका गाना है जो आप बाद में बजा सकते हैं कि इंसान का इंसान से हो भाईचारा,
1: भाईचारा यही
0: ये
1: पैगाम
0: वो
1: हमारा।
0: ही तरीके का है कि उसमें उन्होंने लिखा है कि हर एक महल से कहो कि झोपड़ियों में दिए जलाएं,
1: चलाएं
0: छोटों और बड़ों में अब कोई फर्क
1: फर्क न
0: नहीं रह
1: रहने
0: जाए।
1: पाए।
0: तो ये एक गीत भी उनका बहुत देश
1: पॉपुलर
0: के
1: हुआ
0: लिए
1: था
0: पॉपुलर
1: देश
0: है और
1: में।
0: आज भी वो संदेश लोगों में जाना चाहिए कि इंसान का इंसान से हो भाईचारा
1: ये
0: और कुछ नहीं,
1: यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको हम ठुकरा नहीं सकते
0: ठुकरा नहीं
1: हैं,
0: सकते।
1: भुला नहीं सकते हैं,
0: हाँ
1: झुटला नहीं सकते
0: हाँ
1: हैं। तो आप कहें तो यही गीत हम
0: ये
1: सुन
0: गीत
1: लें।
0: ये जरूर बजाइए, बहुत अच्छा गीत है।
1: आइए सुनते हैं ये गीत।

0: मितुल जी, जब देश आजाद हुआ, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने उन लोगों के लिए लिखा जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण गंवा दिए, और एक ऐसी ज्वाला देश में उत्पन्न कर दी अपने शब्दों के जरिए, अपने गीतों के जरिए, कि नेहरू जी की भी आंखें नम हो गई और सुनने वालों की आंखें नम हुई। तो जब देश स्वतंत्र हुआ, उस समय क्या माहौल था और किस तरह का माहौल घर में था? हमें पता है तब आपका जन्म नहीं हुआ था, लेकिन जब आप बड़ी हुई और इस तरह की बातें घर में चली होंगी, तो माँ के द्वारा ये बातें आप तक आई होंगी, उसके बारे में हमें बताइए।
1: मेरी माँ बताती थी कि जिस दिन ये 1947 15 अगस्त, ये इतना बड़ा दिन था
0: जी
1: पूरे देश के लिए, तो वही माहौल हमारे घर में था। हमारे घर के बाहर रंगोलियां बनाई गई। मेरी माँ बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी, वो बहुत अच्छी रंगोली बनाती थी, तो उन्होंने बहुत बढ़िया भारत माता की रंगोली बनाई। उन्होंने बहुत सुंदर से फूलों से पूरा आंगन सजाया, और बापू को तो हमारा जो वो शीरा रहता है ना आटे का, वो बहुत पसंद था हमेशा, हलवा। तो वो उन्होंने स्पेशली बोलती है कि मैंने बहुत सारा बनाया और प्रदीप जी ने भी खाया और आसपास के लोगों को भी हमने खिलाया। तो एक तो हलवा बना घर में, और बंधेज अपने तोरण बनाए हाथों से, गेंदे के फूल लेके हाथों से। मतलब तब ये था कि जितना हाथ से बना के करेंगे वो आनंद का एक दिखा सकते हैं कि हम कितने खुश हैं। तो घर घर में वो बना, मतलब हमारे घर में, आसपास के घरों में, तो माहौल बहुत ही सुंदर था और बहुत ही खुशबूदार था, क्योंकि इतने सारे फूल थे, इतने सारे पत्तियां थी और गाने बज रहे थे। उस वक्त तो ऐसा माहौल नहीं था कि लोग बड़े बड़े डीजे बनाएं और वो करें, लेकिन रेडियो में गाने बज रहे थे और लोग एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे।
0: और ऐसे में अगर कभी प्रदीप जी के गीत बज रहे होंगे, जन जन तक पहुंच रहे होंगे, तो क्या माहौल होगा?
1: बहुत बढ़िया, बहुत। और उस वक्त भी लोग बधाइयां देने आते थे कि प्रदीप जी, आपका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आपके गीतों के द्वारा हम लोगों ने
0: जागृति
1: मिली हमको,
0: जो बीज था वो वहीं से उत्पन्न हुआ।
1: हाँ, मतलब इस प्रकार का माहौल था, ये जो हमको माता पिता ने दोनों ने बताया।
0: जी जी।
1: और लेकिन प्रदीप जी इसमें भी थोड़े आश्वस्त नहीं थे।
0: अच्छा।
1: जब मिल गई आज़ादी, उसके 2-4 साल के बाद उनको लगा कि आज़ादी तो मिल गई है, लेकिन क्या आप इसको संभाल पाओगे क्या?
0: बहुत बड़ा सवाल।
1: हाँ, तो ये उनके मन में उसी वक्त उठा था कि हमने तो आज़ादी दिलवा दी, हम तो चले जाएंगे, उसके बाद में क्या, क्या आप इस देश को आज़ाद रख पाओगे? तो उन्होंने बच्चों को पूछा कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के,
0: इस देश को रखना मेरे
1: बच्चों संभाल के, तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के। ये कितनी बड़ी बात उन्होंने कही, क्योंकि उनको वही चिंता रही कि एटम बमों के जोर पे ऐठी है दुनिया, तुम क्या करोगे? तुम खुद कुछ भी करना चाहो पूरी दुनिया में बम से? और आज वही माहौल नहीं है क्या? हाँ, आज जो इतने बड़े बड़े लोग लड़ रहे हैं, इतने बड़े बड़े देश, आज भी वही बात है। तो वो उन्होंने उस वक्त यही सोचा था कि आगे क्या होगा।
0: जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, यानी कवि प्रदीप जी वहां पहुंच गए जो आज हम देख रहे हैं। उस समय वो उस बात तक पहुंच गए और उन्होंने चिंता व्यक्त की जो आज सच साबित हो रही है।
1: हर एक लाइन सुनिए आप
0: जी।

0: मितुल जी, आज प्रदीप जी के बारे में हमें इतनी बातें पता चल रही हैं और हम इतने अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि आपको बता नहीं सकते हैं। बहुत सी बातें उनके बारे में हमने पढ़ी, जैसा कि आपने भी कहा कि वो बहुत साहसी थे, दबंग थे और जो कहना होता था सामने कह देते थे। कवि प्रदीप जी ने तो असंख्य गीत लिखे हैं। जब कोई फिल्म वाले या निर्माता पहले से बनाई गई धुन लेकर उनके पास आते थे और कहते थे कि इस धुन पर प्रदीप जी आप कोई गीत लिख दीजिए, तो वो कहते थे कि भाई मुर्दे का कफन पहले खरीदे हुए, मतलब मुर्दे को उसकी साइज का काटना पड़ेगा, तो मैं ये काम नहीं कर सकता। और इस तरह से वो सही बात कह देते थे। क्या इस तरह से उनका सही कहना कहीं आपको लगता है कि उनके गीतों में कटौती हुई या कुछ और गीत, बहुत सारे गीत जो आ सकते थे नहीं आए उनकी इस बेबाकी से और बहुत ही सही रवैये से?
1: हाँ, ये आप मुझे लगता है ऐसा मतलब हुआ होगा, क्योंकि उनको कभी भी, जैसे आपने कहा कि पहले से बनाई

0: हुई धुन पे उन्होंने कभी नहीं लिखा, उन्होंने लिखा वो अपनी खुद की धुन पे लिखा, और इसलिए कई बड़े बड़े संगीतकार भी उनसे थोड़ा दूर रहते थे कि भाई ये तो हमको काम नहीं करने देंगे, वो खुद गाएंगे और प्रोड्यूसर कहेगा कि यही धुन ठीक है। तो उसमें ओपी नैयर के साथ भी ऐसा एक वाकया हुआ था,
1: जी
0: संबंध फिल्म जिसमें कवि प्रदीप जी के गीत और ओपी नैयर का संगीत।
1: संगीत
0: तो जब प्रोड्यूसर राम मुखर्जी, उन्होंने कहा कि प्रदीप जी लिखेंगे गीत और आप म्यूज़िक देंगे, तो नैयर साहब ने कहा कि नहीं नहीं मैं म्यूज़िक नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि प्रदीप जी को आदत है कि खुद अपनी धुन बनाते हैं और फिर आप लोग हमको कहते हैं कि इस धुन पे आप अपना संगीत दीजिए। तो राम मुखर्जी ने कहा ऐसा हम कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो। तो वो आए घर पे और कहा कि प्रदीप जी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हो रहा है, तो आप अपनी धुन इसमें मत दीजिएगा। बोलता मैं कोशिश करूँगा, लेकिन फिर भी मेरी आदत तो वैसी है, ओपिनियर चाहे तो बदल दे, हाँ मैं नहीं बोलूँगा कि मत बदलो, ठीक है। तो वो भी अपने घर पे ही हुए इतने रिहर्सल्स, ओपिनियर आते थे, आशा भोसले दीदी आती थी, महेंद्र कपूर, बहुत बढ़िया माहौल था, और कहीं पर भी कुछ ऊंच नीच नहीं हुआ। और नैयर साहब ने बापू के बनाई हुई धुन पे भी एक दो थोड़ा ऊपर नीचे करके संगीत दिया, और वो धुन को थोड़ा सा चेंज किया, जिसमें है चल अकेला तेरा मेला पीछे
1: पीछे
0: छूटा
1: छूटा
0: राही
1: राही
0: चल
1: चल
0: अकेला।
1: अकेला।
0: ये गीत बहुत पॉपुलर हुआ, संबंध के कई गीत बहुत पॉपुलर हुए। तो ये फिर ये एक प्रोजेक्ट बहुत सुंदर हुआ, और ओपिनियर को भी जो टेंशन था वो खत्म हो गया कि नहीं नहीं प्रदीप जी के साथ काम कर सकता हूँ।

0: अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का ये था दूसरा भाग। तकनीकी सहयोग अनुश्री गुप्ता का था, संपादन सहायक झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
1: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

जंजीरे जुल्फ में जकड़ा हुआ हूँ मैं, अब कहाँ जाऊँगा भला, सोचता हूँ शाम व सहर अब यहीं गुजरेंगी।

मोहब्बत है क्या चीज़, बस कुछ तैरते हुए साए, कुछ ख्वाबों के घरों दे और हवाओं पे लिखे हुए कुछ प्यार भरे पैगाम।

जिसके साथ जीने की चाहत बढ़ जाए आखिरी हद तक, तो लगता है वक्त रुक क्यों नहीं जाता दिलों की धड़कनें सुनने के लिए।

मेरा कोई अक्स नहीं पहचान तुम हो, जिस सांस से मेरी सांस चले वो सांस तुम हो, ये जान लो तुम मेरी जान।

0: अंधेरे का इशारा समझो, अब तेरा दिल का जलाना होगा।
1: तुम बड़े वो हो, मुझे जाने दो।
0: जा सकोगी?
1: मुझे जाना होगा।
0: जाओ।
1: छोड़ो
0: नहीं।
1: छोड़ो ना
0: आज की रात, तो दिल तोड़ो ना।

किसी को देखा, चाहा, प्यार किया, एक से दो हुए, दो से तीन, और फिर खुशियों का मेला। भला कौन नहीं याद करना चाहेगा ऐसे दिलकश

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी के स्थानीय प्रसारण सेवा का छिंदवाड़ा केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है युवा साथियों का अपना कार्यक्रम युववाणी।

आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो सखी अर्पणा पाटकर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। दोस्तों, जब हम बाजार जाते हैं और किसी दुकान पर सजी हुई रंग बिरंगी मिठाइयाँ, चाट, पकौड़े, समोसे या अन्य खाने पीने की चीज़ें देखते हैं, तो हमारा ध्यान अक्सर उनके रंग, उनकी सजावट और उनके स्वाद की ओर जाता है। लेकिन क्या हम कभी ये सोचते हैं कि जो कुछ भी हम खा रहे हैं वो स्वच्छ है या नहीं? अक्सर हम उसकी स्वच्छता पर उतना ध्यान नहीं दे पाते, जबकि सच तो यह है कि भोजन का स्वाद हमें कुछ पल की खुशी दे सकता है, लेकिन उसकी स्वच्छता हमारे स्वास्थ्य को लंबे समय तक सुरक्षित रखती है। दोस्तों, स्वास्थ्य और भोजन का रिश्ता बहुत गहरा है। यदि भोजन स्वच्छ और पौष्टिक हो तो वो शरीर को शक्ति देता है, लेकिन यदि उसमें स्वच्छता का अभाव हो तो वही भोजन कई बीमारियों का कारण बन सकता है। और इसी महत्वपूर्ण विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारी आज की बात का विषय है स्वच्छ भोजन और अच्छा स्वास्थ्य। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, हमारा शरीर एक मशीन की तरह काम करता है। जिस तरह किसी मशीन को सही ढंग से चलाने के लिए अच्छा ईंधन चाहिए होता है, उसी प्रकार हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए स्वच्छ और पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है। स्वच्छ भोजन का अर्थ केवल साफ सुथरे दिखने वाले भोजन से नहीं है। इसका मतलब है ऐसा भोजन जो अच्छी गुणवत्ता वाले सामान से बनाया गया हो, साफ वातावरण में तैयार किया गया हो, जिसे सुरक्षित तरीके से रखा गया हो और जिसमें हानिकारक जीवाणु या दूषित पदार्थ ना हो। साथियों, कई बार भोजन देखने में तो बिल्कुल ठीक लगता है, लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक रखे जाने पर उसमें सूक्ष्म जीवाणु पनपने लगते हैं। यही जीवाणु पेट दर्द, उल्टी, दस्त, फूड पॉइजनिंग और कई अन्य बीमारियों का कारण बन सकते हैं। इसीलिए भोजन की स्वच्छता पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, स्वच्छ भोजन की शुरुआत हमारे अपने घर से होती है। खाना बनाने से पहले हाथों को अच्छी तरह धोना, सब्जियों और फलों को साफ पानी से धोना, रसोई घर को साफ रखना और खाद्य पदार्थों को ढककर रखना कुछ ऐसी सरल आदतें हैं जो हमें अनेक बीमारियों से बचा सकती है। इसके साथ ही हमें पीने के पानी की स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यदि भोजन स्वच्छ हो लेकिन पानी दूषित हो तो स्वास्थ्य पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए हमेशा साफ और सुरक्षित पानी का उपयोग करना चाहिए। आज के समय में पैकेट बंद और तैयार खाद्य पदार्थों का चलन काफ़ी बढ़ गया है। ऐसे में किसी खाद्य सामग्री को खरीदते समय उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट और पैकेजिंग की स्थिति अवश्य जांचनी चाहिए। दोस्तों, अच्छा स्वास्थ्य हमारी दैनिक आदतों का परिणाम होता है। यदि हम नियमित रूप से स्वच्छ और संतुलित भोजन का सेवन करते हैं तो हमारा शरीर मजबूत बनता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और हम विभिन्न संक्रमणों से बेहतर तरीके से लड़ पाते हैं। बच्चों के लिए स्वच्छ भोजन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि बचपन में ही शरीर का विकास तेजी से होता है। यदि इस समय पौष्टिक और स्वच्छ भोजन मिले तो उनका शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर होता है। वहीं अस्वच्छ भोजन बच्चों को जल्दी बीमार बना सकता है। केवल बच्चे ही नहीं बल्कि बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के लिए भी स्वच्छ भोजन अत्यंत आवश्यक है। इन वर्गों की रोग प्रतिरोधक क्षमता अपेक्षाकृत कम होती है, इसीलिए उन्हें दूषित भोजन से अधिक खतरा हो सकता है। दोस्तों, हमें ये भी याद रखना चाहिए कि स्वाद और स्वास्थ्य दोनों का संतुलन ज़रूरी है। कभी कभार बाहर का भोजन करना गलत नहीं है, लेकिन ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि भोजन साफ सुथरी जगह पर तैयार किया गया हो और उसकी गुणवत्ता अच्छी

0: अच्छी हो। साथियों, आइए हम सभी एक छोटा सा संकल्प लें कि भोजन की स्वच्छता को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे, क्योंकि स्वस्थ भोजन जीवन की शुरुआत किसी बड़ी चीज़ से नहीं बल्कि ऐसी ही छोटी छोटी आदतों से होती है। याद रखिए, स्वच्छ भोजन केवल एक आदत नहीं बल्कि अच्छे स्वास्थ्य की मजबूत नींव है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की बात, आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: UPSC, MPPSC, SSC तैयारी कहाँ से शुरू करूँ यार?
2: चिंता छोड़, सीधे निधिश्री एकेडमी चल, छिंदवाड़ा की बेस्ट कोचिंग।
1: पर नए बैचेस कब से हैं?
2: इसी 1 जून से, अनुभवी टीचर्स और बेहतरीन नोट्स के साथ। आज ही अपनी सीट पक्की करें। पता, निधिश्री एकेडमी, ट्राइबल म्यूजियम के पास, छिंदवाड़ा।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: यूपीएससी एमपीपीएससी एसएससी तैयारी कहाँ से शुरू करूँ यार?
1: चिंता छोड़, सीधे निधिशी एकेडमी चल, छिंदवाड़ा की बेस्ट कोचिंग।
0: पर नए बैचेस कब से हैं?
1: इसी 1 जून से, अनुभवी टीचर्स और बेहतरीन नोट्स के साथ। आज ही अपनी सीट पक्की करें। पता, निधिशी एकेडमी ट्राइबल म्यूजियम के पास, छिंदवाड़ा।
2: साथियों, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर आइए सुनते हैं आकाशवाणी छिंदवाड़ा की युवा श्रोता निधि दुबे से वार्ता का संपादित अंश।
3: दोस्तों, ये आवाज़ जो आप अभी अभी सुन रहे थे, सच बताइए, क्या इस आवाज़ को किसी चेहरे की ज़रूरत है? क्या इसे सचमुच अपना नाम बताने की ज़रूरत है? नहीं ना, क्योंकि कुछ आवाज़ें ऐसी हैं जो पहचान से नहीं, अपनेपन से जानी जाती हैं। और ऐसे ही एक आवाज़ है आकाशवाणी की आवाज़। नमस्कार दोस्तों, मैं भी आपकी तरह आकाशवाणी छिंदवाड़ा की एक श्रोता हूँ। मेरा नाम निधि दुबे है। आज आकाशवाणी अपने गौरवशाली 90 वर्ष पूर्ण कर रही है और इस विशेष अवसर पर मुझे अपने भाव व्यक्त करने का अवसर मिला है। इसके लिए मैं आकाशवाणी परिवार की हृदय से आभारी हूँ। सोच रही हूँ कि आखिर क्या कहूँ, फिर सोचा क्यों ना आज आपको एक कहानी सुनाई जाए, एक सच्ची कहानी। जी हाँ, हमारी 3 पीढ़ियों की कहानी, और उस कहानी का सबसे सुंदर पात्र है आकाशवाणी। मेरी माँ बताती है कि उनके बचपन में पूरे गांव में एक ही रेडियो हुआ करता था, जो नाना जी के घर रखा रहता था। उस समय ना बिजली थी, ना टेलीविज़न और ना ही मोबाइल फ़ोन, लेकिन जैसे ही शाम ढलती, नाना जी के आंगन में लोगों का जमावड़ा सा लग जाता था। बच्चे, बूढ़ी, महिलाएं सभी जमीन पर बैठ जाते थे और बीच में रखा रहता था वही रेडियो। कई लोग तो आश्चर्य से पूछते थे, आखिर इसमें बोलता कौन है? कुछ तो यह भी कहते थे, क्या इसमें सचमुच आसमान से कोई आवाज आती है? आज ये बातें सुनकर मुस्कान जरूर आती है, लेकिन सच तो यह है कि उस समय रेडियो किसी चमत्कार से कम नहीं था। समय बदला, माँ का बचपन बीता और फिर हमारी पीढ़ी आई। जब भी हम छुट्टियों में नाना जी के घर जाते, हमारे आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र वही रेडियो हुआ करता था। रेडियो चालू होते ही हम बच्चों में मानो प्रतियोगिता शुरू हो जाती थी। किसी को गीत सुनना होता था, किसी को कहानियाँ, तो किसी को नाटक पसंद होते थे। जिस उम्र में बच्चे टॉफियां, खिलौने के लिए झगड़ते हैं, उस उम्र में हम इस बात पर बहस किया करते थे कि रेडियो के सबसे पास कौन बैठेगा। और फिर जैसे ही वह परिचित स्वर सुनाई देता, यह आकाशवाणी है, तो चारों ओर सन्नाटा सा छा जाता था। तब सचमुच लगता था कि यह आकाश की वाणी ही है। दोस्तों, आकाशवाणी ने मुझे केवल योग ही नहीं सिखाया, जब समाज लड़कियों को सीमाओं में बांधने की कोशिश करता था, तब आकाशवाणी ने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता घर घर तक पहुंचाई। महिला जगत में जैसे कार्यक्रमों ने हमें बताया कि हमारे विचार भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, हमारी भी आवाज़ भी मायने रखती है और हमारे सपने को भी उड़ान मिलनी चाहिए, आकाशवाणी ने हमें शोर मचाना नहीं सिखाया, बल्कि आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना सिखाया है। उसने हमें अपने तरीकों से जीना सिखाया। आज समय बहुत बदल चुका है, हर हाथ में मोबाइल है।

0: दुनिया की लगभग हर जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध है। हम जो चाहें सुन और देख सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद लाखों लोग आज भी आकाशवाणी को पत्र लिखते हैं। जी हाँ, मैं भी पत्र लिखती हूँ उसी उत्साह के साथ। और जब कार्यक्रम में उद्घोषिका दीदी कहती हैं छिंदवाड़ा से निधि दुबे का पत्र प्राप्त हुआ, तो मानो सच में ऐसा लगता है जैसे परिवार का कोई सदस्य मेरा नाम लेकर पुकार रहा हो। और आकाशवाणी ने अपने श्रोताओं से ऐसा ही रिश्ता बनाया है। मेरे लिए आकाशवाणी की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यहाँ विश्वास मिलता है। यहाँ सूचना है, संस्कृति है, संवेदना है और सबसे बढ़कर सच्चाई है। ना कोई दिखावा, ना कोई शोर, जो जैसा है वैसा ही हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है। आज जब आकाशवाणी अपने 90 वर्ष पूर्ण कर रही है तो मन गर्व से भर उठता है। इन 9 दशकों में ना जाने कितने परिवर्तन आए, लेकिन आकाशवाणी की आवाज़ नहीं बदली। वह आज भी उतनी ही सच्ची, उतनी ही सहज और उतनी ही आत्मीय है। आकाशवाणी केंद्र छिंदवाड़ा का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आपने मुझे कार्यक्रम नहीं दिए, आपने मुझे मेरा बचपन दिया है। और आज आप मुझे जिम्मेदारियों को समझने और निभाने की सीख दे रहे हैं। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, आकाशवाणी तुम केवल एक रेडियो नहीं थे, तुम मेरी दादी की गोद हो, तुम मेरी माँ की लोरी हो, तुम मेरी सुबह की पहली सांस हो। इसी तरह आगे बढ़ते रहो और अपने 100 वर्ष इसी गौरव के साथ पूर्ण करो। सभी श्रोता मित्रों को मेरा स्नेहपूर्ण नमस्कार।
1: साथियों, हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास में कुछ आवाज़ें ऐसी हैं जो केवल कानों तक नहीं बल्कि सीधे दिल तक पहुंचती हैं। एक ऐसी ही बुलंद, ओजपूर्ण और भावनाओं से भरी आवाज़ थी महेंद्र कपूर की। देशभक्ति गीतों की बात हो, प्रेम गीतों की या फिर भक्ति संगीत की, महेंद्र कपूर ने अपनी गायकी से हर शैली में अमिट छाप छोड़ी। आज के इस क्रम एक फनकार में हम जानेंगे उनके जीवन की कहानी, उनकी उपलब्धियां और सुनेंगे उनके कुछ सदाबहार गीत। महेंद्र कपूर का जन्म 9 जनवरी 1934 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। बचपन से ही उन्हें संगीत में गहरी रुचि थी। विभाजन के बाद उनका परिवार मुंबई आकर बस गया। संगीत के प्रति उनका लगाव इतना था कि वे महान गायक मोहम्मद रफ़ी को अपना आदर्श मानते थे और उन्हीं की तरह गायक बनने का सपना देखते थे। उन्होंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्राप्त की और अपनी प्रतिभा निरंतर निखारते रहे। साल 1957 में उन्हें एक बड़ा अवसर मिला जब उन्होंने प्रसिद्ध गायन प्रतियोगिता मेट्रो मर्फी ऑल इंडिया सिंगिंग कॉन्टेस्ट जीती। इसके बाद फिल्म जगत के दरवाजे उनके लिए खुल गए। उनकी संगीत यात्रा की शुरुआत करते हैं उनके एक लोकप्रिय गीत के साथ।

0: यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, तैयारी कहाँ से शुरू करूँ यार?
1: चिंता छोड़, सीधे निधिश्री एकेडमी चल, छिंदवाड़ा की बेस्ट कोचिंग।
0: पर नए बैचेस कब से हैं?
1: इसी 1 जून से, अनुभवी टीचर्स और बेहतरीन नोट्स के साथ। आज ही अपनी सीट पक्की करें। पता, निधिश्री एकेडमी, ट्राइबल म्यूजियम के पास, छिंदवाड़ा।

0: यूपीएससी एमपीपीएससी एसएससी तैयारी कहाँ से शुरू करूँ यार?
1: चिंता छोड़, सीधे निधिशी एकेडमी चल, छिंदवाड़ा की बेस्ट कोचिंग।
0: पर नए बैचेस कब से हैं?
1: इसी 1 जून से, अनुभवी टीचर्स और बेहतरीन नोट्स के साथ। आज ही अपनी सीट पक्की करें। पता, निधिशी एकेडमी ट्राइबल म्यूजियम के पास, छिंदवाड़ा।
2: दोस्तों, ये गीत महेंद्र कपूर की लोकप्रियता को नई ऊंचाइयों तक ले गया। उनकी स्पष्ट उच्चारण शैली और दमदार आवाज ने उन्हें एक अलग पहचान दिलाई। 1960 के दशक में महेंद्र कपूर संगीतकार रवि और गीतकार साहिर लुधियानवी की पसंदीदा आवाज़ बन गई। इसी दौर में उन्होंने कई यादगार गीत गाए।

महेंद्र कपूर की गायकी की सबसे बड़ी विशेषता थी भावनाओं को पूरी गहराई के साथ प्रस्तुत करना। यही कारण है कि उनके गीत आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं जितने अपने समय में थे। दोस्तों, यदि महेंद्र कपूर का नाम लिया जाए और देशभक्ति गीतों का उल्लेख ना हो तो बात अधूरी रह जाती है। उनकी आवाज़ में ऐसा जोश और राष्ट्रप्रेम झलकता था कि सुनने वाले भाव विभोर हो जाते थे। उनके करियर का सबसे प्रसिद्ध देशभक्ति गीत माना जाता है

इस गीत ने महेंद्र कपूर को घर घर में लोकप्रिय बना दिया। इसके लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। ये गीत आज भी राष्ट्रीय पर्व पर बड़े सम्मान के साथ सुना जाता है। महेंद्र कपूर अभिनेता और निर्देशक मनोज कुमार की आवाज के रूप में भी खूब

महेंद्र कपूर ने केवल फिल्मों में ही नहीं बल्कि भक्ति संगीत, गजलों और क्षेत्रीय भाषाओं के गीतों में भी अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने हिंदी, पंजाबी, मराठी, गुजराती सहित कई भाषाओं में हजारों गीत गाए। अपने लंबे संगीत सफर में महेंद्र कपूर को अनेक सम्मान प्राप्त हुए। उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्मफेयर पुरस्कार और भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उन्होंने संगीत जगत को अनमोल धरोहर दी है और नई पीढ़ी के गाय

27 सितंबर 2008 को वे इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनके गीत आज भी करोड़ों श्रोताओं के दिलों में जीवित है। इसी के साथ क्रम एक फनकार में आज बस इतना ही। बढ़ते हैं अगले क्रम आज के इतिहास की ओर। आज के दिन यानी 7 जून को 1939 में बक्सर के निकट चौसा की लड़ाई में शेरशाह सूरी ने मुगल बादशाह हुमायूं को हराया था। 1993 में महात्मा गांधी ने अफ्रीका में पहली बार सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। ये था क्रम आज का इतिहास। दोस्तों जान लेते हैं कल के आकर्षण। कल के आकर्षण में होगी आज की बात, जिसका विषय है महासागर, पृथ्वी की जीवन रेखा, करियर कामयाबी का, तरुणों की पसंद, आज का इतिहास, कल के आकर्षण और होगी अमृतवाणी। दोस्तों जान लेते हैं आज की ज्ञानमयी अमृतवाणी।

0: वाणी, सिर्फ उतना ही विनम्र बनिए जितना आवश्यक हो। बेवजह की विनम्रता दूसरों के अहम को बढ़ावा देती है। इन्हीं शब्दों के साथ अब इजाजत दीजिए आपकी रेडियो सखी अर्पणा पाटकर को। फिर मिलेंगे नई बातों, नई कहानियों, नई जानकारियों और सुरीले नगमों के साथ। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। शुभ संध्या।
1: अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का अपना कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी का छिंदवाड़ा केंद्र है FM 102.2 MHz पर। शाम के 6 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए गैर फिल्मी गजलें।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

कार्यक्रम की पहली पेशकश में आपने सुनी ये गजल अनुराधा पौडवाल की आवाज में। कलाम राहत इंदौरी के थे और मौसिकी थी परवेज अख्तर की।

0: 90.
1: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।

0: Akashvani at 90.
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
1: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।

हरिहरन की गाई इसी गज़ल के साथ गैर फिल्मी गज़लों का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से। शाम के 6:30 होने को है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे ये गीत राघव, असीस कौर और तनिष्क बागची की आवाजों में ये गीत। गीत के बोल लिखे थे नीना माथुर ने, संगीत राघव और तनिष्क बागची का था। फिल्म का नाम था तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया और ये थी कार्यक्रम फिल्म संगीत की पहली प्रस्तुति।

कार्यक्रम की ये प्रस्तुति आप सुन रहे थे तुलसी कुमार की आवाज में। गीत के बोल लिखे थे हरमनजीत और कुणाल वर्मा ने, संगीत तनिष्क बागची का था और फिल्म का नाम था लुका छिपी।

कार्यक्रम का ये नगमा आप सुन रहे थे बी प्राक, तुलसी कुमार और नेहा कक्कर की आवाजों में। गीत के बोल लिखे थे देव गोहली ने, संगीत विशाल और शेखर का था और फिल्म का नाम था मुसाफिर।

कार्यक्रम का ये गीत आप सुन रहे थे बादशाह आसीस कौर और जुबीन नौटियाल की आवाजों में। गीत के बोल लिखे थे बादशाह और तनिष्क बागची ने। संगीत तनिष्क बागची का था और फिल्म का नाम था लव यात्री।

कार्यक्रम की प्रस्तुति आप सुन रहे थे आस्था गिल और सचिन सांघवी की आवाजों में। गीत के बोल लिखे थे वायु ने, संगीत सचिन जिगर का था और फिल्म का नाम था स्त्री। और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

0: संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से। लीजिए अब सुनिए आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर छिंदवाड़ा जिले के कलेक्टर श्री हरेंद्र नारायण IAS से विशेष बातचीत।
1: नमस्कार श्रोताओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आकाशवाणी अपनी यात्रा के 90 वर्ष पूरा कर रहा है। इस सफर में हमने कई गणमान्य नागरिकों और समाज सेवियों के साथ आपको भेंटवार्ताएं सुनवाई हैं। आज इसी क्रम में आकाशवाणी स्टूडियोज में उपस्थित हैं माननीय जिलाध्यक्ष श्री हरेंद्र नारायण जी। सबसे पहले तो कलेक्टर साहब, आपका स्वागत है आकाशवाणी स्टूडियोज में।
2: थैंक यू।
1: जैसा कि हमने सर बताया कि हमारा आकाशवाणी 90 वर्ष पूरा कर चुका है, तो इन 90 वर्षों की विकास यात्रा को बतौर छात्र, बतौर विद्यार्थी, बतौर लोक सेवक आप किस तरह से देखते हैं?
2: सभी श्रोताओं को शुभकामनाएं देता हूं कि आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं और टीवी तो भारत में बहुत काफी लेट आया, उसके काफी साल पहले से आकाशवाणी काम कर रहा है। मैं जब छोटा था तो मुझे याद है कि हम लोग रेडियो पे ही बहुत सारे कार्यक्रम सुना करते थे। मेरे फादर रेडियो पे मैचेस सुनते थे, तो मेरी जो सबसे पहले क्रिकेट की समझ जो बनी थी, क्रिकेट के प्रति जो रुचि बनी थी, वो रेडियो से ही बनी थी। मुझे याद है कि मैं 93-94 में मैं रेडियो पे टेस्ट मैच भी सुना करता था। मतलब आप समझ सकते हैं कि टेस्ट मैच आजकल वैसे भी लोकप्रियता में थोड़ा कमी आ गई है और लोग जो है उतना टाइम नहीं दे पाते हैं, लेकिन इसके अलावा जब मैंने स्टूडेंट के तौर पे जब मैंने तैयारी भी की, उस समय भी कुछ कार्यक्रम जैसे रेडियो BBC लंदन आया करता था, तो उसमें समसामयिक और करंट अफेयर्स की बहुत सारी अच्छी न्यूज़ भी आ जाती थी, जानकारियां मिल जाती थी। तो आकाशवाणी हमेशा से ही मतलब छात्रों के लिए, लोगों के लिए जानकारी का जरिया रहा है और मनोरंजन का जरिया रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण जरिया रहा है। तो इसलिए मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं आशा करता हूं कि आगे ऐसे ही हमेशा आकाशवाणी काम करता रहेगा।
1: बहुत ही अच्छी बातें बताई आपने, अपनी बचपन की यादें भी बता दी कि आप टेस्ट मैच सुना करते थे, तो इस तरह की बहुत सारी यादें आकाशवाणी से सभी की जुड़ी हुई हैं। अब जैसा हम देखते हैं कि बतौर लोक सेवक आप आकाशवाणी को कहाँ देखना चाहते हैं, आपकी क्या अपेक्षाएं हैं?
2: बतौर लोक सेवक मैं आकाशवाणी को इस तरह से देखना चाहता हूँ कि देखिए, जो हमारे समय में ये कहा जाता है कि इन्फॉर्मेशन ही पावर है, जो भी ट्रुथफुल इन्फॉर्मेशन होती है वो लॉ एंड ऑर्डर बनाने में, समाज को जागरूक करने में बहुत बड़ा उसका रोल होता है। तो जो ये ट्रुथफुल इन्फॉर्मेशन है वो आकाशवाणी के द्वारा घर घर तक, गरीब से गरीब व्यक्ति तक भी पहुंचाई जा सकती है और सभी लोगों के पास एक सही इन्फॉर्मेशन, ट्रुथफुल इन्फॉर्मेशन रहेगी तो डेफिनेटली ऑर्डर बनाने में, सही लॉ एंड ऑर्डर बनाने में और व्यवस्था बनाने में हम लोगों को लोक सेवक के तौर पे अधिक परेशानी नहीं होती है। तो इसलिए मैं बहुत हृदय से ये चाहता हूँ कि आकाशवाणी इसी तरह से अच्छा काम करता रहे, लोगों तक सही जानकारियाँ पहुँचाता रहे।
1: जैसा कि हम देखते हैं कि आकाशवाणी ने प्रचार प्रसार में बहुत अहम भूमिका निभाई है, जहां भारत सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार होता है, और आकाशवाणी की सबसे बड़ी जो खासियत है वो उसकी विश्वसनीयता है, जिसका आपने अभी जिक्र किया है कि हम जब यदि कोई सूचना का प्रसार करते हैं, प्रचार करते हैं, तो उसे आमतौर पर सभी लोग सत्य मानते हैं कि यहां से अगर प्रसारित हुई है तो बात सच होगी। कलेक्टर साहब, जब हम बात करते हैं कि शासन प्रशासन तरह तरह की योजनाएं आम जनता के लिए संचालित कर रहा है, तो वर्तमान में छिंदवाड़ा जिले में कौन सी योजनाओं को प्राथमिकता के साथ शासन जो है संचालित कर रहा है?
2: देखिए, अलग अलग विभागों की अलग अलग योजनाएं होती हैं। बेसिकली हम उन्हें दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहली तरह की योजनाएं होती हैं जो बेसिक नीड्स को लोगों की पूरा करती हैं, जैसे साफ पानी हो गया, बिजली हो गया, सड़क हो गया, ये बहुत बेसिक नीड्स हैं
1: जी।
2: आवास हो गया। दूसरी तरफ रोजगार परक योजनाएं होती हैं, जिसमें लोगों को रोजगार से जोड़ने की कोशिश की जाती है, जिससे कि वो खुद रोजगार करें और अपना जीवन स्तर को और ऊपर कर सकें। इन्हीं दो कैटेगरीज में बेसिकली शासन की अधिकतर योजनाएं सम्मिलित रहती हैं, और अलग अलग तरह के विभाग हैं, जैसे ट्राइबल विभाग अलग है, रूरल डेवलपमेंट विभाग अलग है, तो ये सारे विभाग जो है मिलके इन्हीं दो तरह के बेसिकली डिवीजन में काम करते हैं
1: जी। अब आपने जो अलग अलग तरह की योजनाएं बताई हैं, यदि हम विशेष रूप से बात करते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर परिवहन, जो हमारी दिनचर्या से जुड़ा हुआ है, इस क्षेत्र में छिंदवाड़ा जिले में कौन सी योजनाओं को विशेष रूप से संचालित किया जा रहा है, जिससे आम जन को अधिक से अधिक लाभ हो सके?
2: देखिए, स्वास्थ्य के अगर क्षेत्र में हम बात करें तो आयुष्मान योजना है, आप जानते ही होंगे
1: जी,
2: 5 लाख रुपए तक का इलाज किसी को भी जो आयुष्मान कार्ड जिसका है उसको फ्री में मिलता है। इसके अलावा उनकी मदद करता है तो उसको 25,000 रुपए पुरस्कार की भी योजना है। इसके अलावा PM राहत स्कीम, जिसकी मैं बात कर रहा था, 1.5 लाख रुपए तक, जैसे ही जब अगर कोई एक्सीडेंटल विक्टिम है वो हॉस्पिटल जाता है, 1.5 लाख रुपए तक का इलाज उसको फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी देश का हो, किसी भी राज्य का हो, मैं यहाँ तक कह रहा हूँ किसी भी देश का भी, अगर वो किसी दूसरे देश का व्यक्ति भी है और हमारे यहाँ आया हुआ है, तो भी उसकी हम 1.5 लाख रुपए तक की मदद PM राहत स्कीम में करते हैं। और कोई भी हॉस्पिटल होगा वो सबसे पहले उसको एडमिट करेगा, स्टेबलाइज करेगा, 1.5 लाख रुपए तक या 1 हफ्ते तक, जो भी मतलब एक हो सकता है कि उसका 1 हफ्ते तक उसका इलाज चले और सिर्फ 1 ही लाख रुपया खर्च हो, मैं वही कह रहा हूँ कि या तो 1.5 लाख रुपया, 1 हफ्ता, जो भी, उसके बाद अगर उसको और अधिक आवश्यकता है तो फिर उसको

0: और एडवांस फैसिलिटी में पहुंचाएगा। लेकिन ये जो मैंने दो स्कीम्स आपको बताई, ये बहुत परिवर्तनकारी स्कीम्स हैं, जिसमें कि जो हमारे यहाँ देश में जो रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स हैं उनको बहुत मदद मिलती है।
1: ये तो हमने बात की सामान्य योजनाएं जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं। अब यदि हम अलग अलग वर्गों की बात करते हैं, तो बतौर जिले के मुखिया आप किस तरह से देखते हैं जो महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ योजनाएं जो चलाई जा रही हैं, साथ ही बुजुर्गों के लिए बहुत सारी योजनाएं शासन चलाता है, उसका क्रियान्वयन किस स्तर तक और कहाँ तक किया जा रहा है?
0: देखिए, महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे स्वरोजगार योजनाएं हैं
1: जी,
0: तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से महिलाओं को जोड़ा जाता है, उनको रोजगार परक जो भी कार्य हैं उसके लिए उनको हैंड होल्डिंग की जाती है, उनको अगर फाइनेंस की ज़रूरत है तो बैंक से फाइनेंसिंग भी कराई जाती है, इसके अलावा कुछ फंड्स उनको दिए जाते हैं, उन फंड्स का यूज़ करके महिलाएं अपना खुद का रोजगार चलाती हैं। इसके अलावा अगर आवास की बात करें, तो अगर घर की महिला मुखिया है तो उसके नाम से आवास उपलब्ध है, और स्वच्छ भारत मिशन में आपको पता है कि सभी लोगों के घर घर में शौचालय बनवाए गए हैं, और आज जिले में कोई भी घर ऐसा नहीं है जहां शौचालय ना हो, पूरी तरह से पूरा जिला हमारा, बल्कि अब तो हम ये कह सकते हैं कि पूरा प्रदेश ही ODF है, ओपन डेफिकेशन फ्री है। तो ये सब योजनाएं हैं जो आम आदमी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव लाती हैं।
1: सर, कहा जाता है कि भारत गांवों में बसता है, गांव जो है हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, हमारी आबादी भी सबसे अधिक गांव में होती है। ग्रामीण विकास के लिए तरह तरह की योजनाएं भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार लाती रहती है, और ग्राम पंचायत के स्तर पर जिस तरह से संविधान ने ग्राम पंचायतों को सशक्त किया है, तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो गाँव के इर्द गिर्द घूमती है। तो वर्तमान में ग्रामीण विकास के लिए किस तरह की योजनाएं चलाई जा रही है, और यहाँ पे किस तरह की अपेक्षाएं आप रखते हैं कि रेडियो जो है इसमें एक सार्थक भूमिका निभाए?
0: गांव के लेवल पे देखिए, चाहे निर्माण कार्य हो या रोजगार के कार्य हो, ये सारी जो भी स्कीम्स हैं उसको लागू करने का काम ग्राम पंचायत का है। जैसे आज अगर हम बात करें तो 25 लाख तक के कार्य की पावर जो होती है वो ग्राम पंचायत को होती है, वो अपने पंचायत में 25 लाख रुपए तक के कार्य उसको ग्राम पंचायत लेवल पे ही उसका सैंक्शन करना होता है, उसके लिए उसको कहीं भी ऊपर लेवल पे फाइल भेजने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा ये अमाउंट होता है ग्राम पंचायत लेवल
1: जी,
0: पे
1: जी।
0: तो ग्राम उनके गाँव की जरूरतों के हिसाब से वो अपनी ग्राम सभा में अपनी जरूरतें, जो ग्राम सभा में जो सुझाव आएंगे, जो डिमांड्स आएंगी, उसके अनुसार वो अपने प्रायोरिटीज़ को सेट कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक उनका एक स्ट्रेंथनिंग है जो ग्राम पंचायत लेवल पे की गई है
1: जी, और बहुत ही अच्छी व्यवस्था है ये। जैसे हम बात करते हैं कि गांव तो मतलब हर जगह है, और हमारा जो छिंदवाड़ा है एक आदिवासी जिला है, आदिवासी बहुल जिला है, जिसमें जनजाति जनसंख्या बहुत अधिक है, तो जनजातियों के उत्थान के लिए और जनजातियों को, जैसे हम पातालकोट की बात करते हैं, इन्हें मुख्य धारा में और अधिक लाने के लिए, सारी शासकीय सुविधाएं वहां तक पहुंचाने के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं निकट भविष्य में की जाने की योजनाएं हैं?
0: देखिए, ट्राइबल डिपार्टमेंट की योजनाओं को भी हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक तो ट्राइबल ग्रुप्स के लिए जो डिपार्टमेंट के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है इन जनरल, इसके अलावा भारतीय जनजाति है जो PVTG ग्रुप, जिसको पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप बोला जाता है
1: जी।
0: कुछ प्रदेश में ऐसी जनजातियों को चिन्हित किया गया है, तो यहाँ पे छिंदवाड़ा में भारतीय जनजाति है, तो उनके लिए PM जनमन स्कीम है, एक जनरल जो बाकी सभी जनजातियों के लिए जो स्कीम है, उसके अलावा एक पर्टिकुलर इस ग्रुप के लिए। अच्छा, इस ग्रुप में ये क्राइटेरिया नहीं है कि सारे सिर्फ उन्हीं को उस गांव को ही मिलेगा, उसका क्राइटेरिया ये है कि अगर 50% या उससे अधिक उस जनजाति के लोग उस गांव में रहते हैं तो उसको हम PM जनमन स्कीम में हम कवर कर सकते हैं। तो PM जनमन स्कीम में आपको मैं बताना चाहूंगा कि जैसे जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके लिए वहाँ पे 2 लाख रुपए स्पेशली मिलते हैं, मतलब वैसे 1.5 लाख रुपए की लिमिट है प्रधानमंत्री आवास योजना की, लेकिन PM जनमन स्कीम में उन लोगों को 2 लाख रुपए दिए जाते हैं।
1: मतलब क्योंकि आदिवासी जो हमारा बहुल एरिया है और इसमें ये स्पेशल ट्राइब ग्रुप है,
0: स्पेशल ट्राइब ग्रुप है, और इसके अलावा उन गांवों को जोड़ने के लिए, क्योंकि वो बहुत देखा गया कि रिमोट एरियाज में भी है, तो उन गांवों को जोड़ने के लिए PM जनमन में स्पेशल रोड सैंक्शन की गई
1: जी।
0: इसके अलावा इन जनरल भी, क्योंकि आप जानते हैं ट्राइबल जो हमारी पॉपुलेशन है वो गांव में एक जगह पे घने रूप में ना रह के अलग अलग पॉकेट्स में टुकड़ों में रहती है, मजरे टोले जिनको बोलते हैं, गांव तक तो सड़क पहुंच जाती थी लेकिन उसके बाद वो मजरे टोले में रह रहे हैं तो वहां पे थोड़ा उनको परेशानी होती थी, तो उसके लिए शासन ने फिर ये योजना की कि अगर 20 परिवार तक भी अगर किसी ग्रुप में रह रहे हैं कहीं एक जगह पे, उसके अलावा और भी कुछ 3-4 उसके क्राइटेरिया हैं, वहां तक भी अब सड़क बनाने का प्लान, और वो सड़कें बन रही हैं, और वो मुझे लगता है निकट भविष्य में वो सभी इस तरह के जो हैमलेट्स हैं वो कवर हो जाएंगे
1: जी। जैसा कि हम देखते हैं पातालकोट के आखिरी गाँव तक हमारी जो है सड़कें जाती हैं और
0: जी
1: आसानी से वहां पहुंचा जा सकता है, यातायात के सुगम साधन उपलब्ध हैं, तो ये इस तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे हमारे यहाँ जो है विकास कार्य तेजी से बढ़ रहा है। अब हम देखते हैं कि विगत कुछ वर्षों में छिंदवाड़ा ने स्वच्छता सर्वेक्षण में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, और विगत वर्ष का जो प्रदर्शन रहा काफी सराहनीय रहा, तो छिंदवाड़ा को Tier 3 सिटीज में जब हम गिनते हैं तो यहाँ पे किस तरह से देश के सबसे स्वच्छ शहरों में लाने की योजनाएं हैं, क्या हम स्वच्छता सर्वेक्षण भी विशेष करने वाले हैं इस बार?
0: देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए भारत सरकार की तरफ से बहुत डिटेल्ड गाइडलाइंस होती हैं,

0: कि क्या क्या किया जाना चाहिए किसी भी शहर में, क्या क्या चीजों को वो देखते हैं, किन किन बहुत ही माइन्यूट उसके पॉइंट्स होते हैं और बहुत डिटेलिंग सभी शहरों को दी जाती है
1: जी।
0: तो हम लगातार उसका, अब क्योंकि अभी इस समय उसका सर्वेक्षण हमारा चल भी रहा है
1: जी।
0: इस साल का, तो हम बहुत डिटेल में हम सभी जितने भी नगरीय निकाय हैं और नगर निगम छिंदवाड़ा है इन लोगों के साथ हम लोग, मतलब मैं भी तो कमिश्नर लेवल पे, कमिश्नर नगर निगम लेवल पे, तो वो अपनी समीक्षा करते ही हैं, उसके अलावा मैं भी करता हूँ ताकि जो गाइडलाइंस हैं उन गाइडलाइंस के हिसाब से हम अपनी तैयारी पूरी कर सकें और अच्छा प्रदर्शन कर सकें
1: जी, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस साल छिंदवाड़ा की जो रैंकिंग है और अच्छी आएगी
0: जी।
1: अच्छा सर, जैसा कि आप पहले भी यहाँ छिंदवाड़ा में पदस्थ रहे बतौर सीईओ जिला पंचायत और आप वर्तमान में कलेक्टर छिंदवाड़ा हैं और उस समय भी आप चुनाव प्रचार प्रसार के लिए छिंदवाड़ा आकाशवाणी आए थे, तो आकाशवाणी छिंदवाड़ा से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं कि आकाशवाणी छिंदवाड़ा को किस तरह से प्रचार गतिविधियों में प्रशासन से जुड़ना चाहिए, आपकी क्या अपेक्षाएं?
0: मेरी अपेक्षा ये है कि जो भी शासन योजनाएं चलाता है लोगों के लिए उसकी जानकारी उन तक ठीक से पहुंचे, क्योंकि आकाशवाणी एक बहुत ही सुलभ एक माध्यम होता है जानकारी पहुंचाने का। तो जो आप लोग जानकारी जब पहुंचाते हैं तो जो लोग हैं, जो पात्र लोग हैं, वैसे तो हम आज के समय में जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि डोर स्टेप सर्विस, प्रशासन से ये अपेक्षा की जाती है कि वो डोर स्टेप सर्विस दें जो पात्र लोग हैं। इनफैक्ट हर साल एक दो महीने के लिए इस तरह का अभियान भी चलाया जाता है कि घर घर जाकर और जो पात्र लोग हैं उनको ढूंढ योजनाओं का लाभ दिया जाए। इसके अलावा भी अगर किसी को स्वरोजगार योजनाएं होती हैं, जैसे बहुत सारी जो लोगों को नहीं पता चल पाती हैं, तो आप स्वरोजगार योजनाओं के बारे में इस तरह की जानकारियां दें, क्योंकि अल्टीमेटली जब लोग उसको सुनते हैं फिर कुछ लोग उसमें प्रेरित होकर और लाभ लेते हैं, काम करते हैं, फिर उनको देख के दूसरे लोग मोटिवेट होते हैं, तो अल्टीमेटली इस तरह से एक चेन बन जाती है और जो लाभ है, जो फायदा है, सभी व्यक्तियों तक पहुंच जाता है। तो मेरी यही अपेक्षा है कि आकाशवाणी एक माध्यम बने सभी व्यक्तियों तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने का।
1: जी, बहुत ही अच्छी बातें आपने बताई और आपकी अपेक्षाओं को हम पूरा करने का प्रयास करेंगे बतौर लोक सेवा प्रसारक। अब आकाशवाणी छिंदवाड़ा का चूंकि स्थापना दिवस जो है 8 जून को है, तो आप आकाशवाणी के मंच से छिंदवाड़ा जिले की जनता को संदेश देना चाहेंगे?
0: छिंदवाड़ा जिले की जनता को मैं संदेश देना चाहता हूं कि आप अपने शहर को स्वच्छ रखें, अपने जो यातायात के नियम हैं उनका पालन करें
1: जी।
0: मतलब जो एक नागरिक से जो उनके जो कर्तव्य हैं, जो नागरिक से अपेक्षाएं की जाती हैं, वो उनको ठीक से निभाएं।
1: बतौर जिलाध्यक्ष आज आप आकाशवाणी छिंदवाड़ा में पधारे, आपने हमें अपना बहुमूल्य समय प्रदान किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद।
2: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर छिंदवाड़ा जिले के कलेक्टर IAS श्री हरेंद्र नारायण से विशेष बातचीत। FM 102.2 MHz पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से। शाम के 7 बजने को है, कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार जिसे हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षता सिंह। भारत और इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक आज नई दिल्ली में संपन्न हुई। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ने की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के समस्त पहलुओं पर समीक्षा की। दोनों पक्षों ने राजनीतिक मामलों, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार सहयोग, व्यापार और निवेश, औषधि निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, डिजिटल प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्रों तथा दोनों देशों के बीच संबंध के लोगों के जैसे मुद्दों पर बातचीत की। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेनदेन, भवन निर्माण और संपत्तियों के क्रय विक्रय पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में त्रिपुरा के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। गृहमंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। पश्चिम बंगाल की महिला बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने आज सिलीगुड़ी में एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में नगर पालिका मामलों, महिला बाल विकास, सामाजिक कल्याण, आपदा प्रबंधन, स्वच्छता

जल निकासी, अपशिष्ट प्रबंधन, यातायात नियमन और विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा हुई। सुश्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को जल्द ही 5 हिमालयी शहरों के रूप में विकसित किया जाएगा। इस बीच पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बनने जा रहा है। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच कल नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया है कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया है कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। इस बीच आज घरेलू रसोई गैस की कीमतें में 29 रुपए प्रति सिलेंडर की वृद्धि दर्ज की गई। दिल्ली में 14 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की नई कीमत 942 रुपए है। इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से हॉर्मुज जल डमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लिबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, जो वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है, उसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में इटली के अलेक्जेंडर ज्वेरेव का सामना जर्मनी के फ्लेवियो कोबोली से हो रहा है। इससे पहले कल रूस की मिरा एंड्रीवा ने माजा च्वालिंस्का को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया था। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देश के कई हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश हो सकती है। हालांकि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी राजस्थान और तटीय आंध्र प्रदेश में गर्मी का प्रकोप जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Akashvani at 90.
1: आकाशवाणी का ये छिंदवाड़ा केंद्र है एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:10 होने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
3: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
4: बन गया बजट?
3: हाँ,
4: 5,000 बच गए।
3: तो नई साड़ी ले ले।
4: ना,
3: पिछले महीने तो ली थी।
4: एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
3: बढ़िया,
4: जाओ भाई।
5: RBI कहता है,
6: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
7: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोन। सबसे पहले अब तक के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कहा, कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद देश में मिल रही है सस्ती गैस। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन सुरक्षा आज के दौर की सबसे बड़ी जरूरत। मुख्यमंत्री चौहान ने नशे के खिलाफ एक सामाजिक जागरण करने पर दिया जोर, और 20 जून से पहले दस्तक दे सकता है मानसून। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों में खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। आकाशवाणी से एक विशेष रिपोर्ट।
1: पश्चिम एशिया में हाल के संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए सरकार ने कहा है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा जिसने समुद्री यातायात में गंभीर बाधाओं के बावजूद हॉर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति को निर्बाध

0: बनाए रखा। सरकार के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं हुई और एलपीजी की वितरण व्यवस्था भी सामान्य रूप से चलती रही। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर पर विशेष राहत मिल रही है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी पहले 4 रिफिल पर प्रतिवर्ष 300 रुपए की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी सहायता प्राप्त करते हैं। इसके बाद उन्हें एक सिलेंडर के लिए प्रभावी रूप से 642 रुपए का भुगतान करना पड़ता है, जबकि दिल्ली में सामान्य उपभोक्ताओं के लिए इसी सिलेंडर की खुदरा कीमत 942 रुपए है। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक अधिवक्ता पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान मेजर बराक की अनुकरणीय सेवा और संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में भारत के दीर्घकालिक योगदान की पहचान है। मेजर बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में एंगेजमेंट टीम कमांडर और लैंगिक मामलों की प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि खाद्य सुरक्षा आज के दौर की बड़ी जरूरत है, क्योंकि यह हम सबके उदर पोषण से जुड़ा विषय है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की सार्थकता हर नागरिक को शुद्ध, स्वच्छ, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन मिलने में है। प्राकृतिक खेती अपनाने से इसमें महत्वपूर्ण योगदान होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने विश्व खाद्य सुरक्षा पर यह संदेश देते हुए कहा कि स्वस्थ नागरिक ही सशक्त और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। उन्होंने इस विशेष दिवस पर प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि आइए हम सब खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता और इसके पोषक तत्वों के मानकों के प्रति सदैव जागरूक रहें। भारत और इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक आज नई दिल्ली में संपन्न हुई। इस बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने की। सोशल मीडिया पोस्ट पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक भागीदारी अधिक प्रगाढ़ हुई है। उन्होंने कहा कि बैठक में राजनीतिक, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार, जहाजरानी, निवेश, स्वास्थ्य, औषधि निर्माण, उर्वरक, महत्वपूर्ण खनिज, पर्यटन, शिक्षा और सांस्कृतिक सहित द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर गहन चर्चा हुई। दोनों मंत्रियों ने क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर भी अपने विचार साझा किए। साथ ही बहुपक्षीय समन्वय को आगे बढ़ाने और भारत आसियान संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। इंदौर में 9 से 13 जून तक आयोजित होने वाले ब्रिक्स देशों के महत्वपूर्ण कृषि सम्मेलन की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए कलेक्टर शिवम वर्मा ने रेसिडेंसी में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। बैठक में सम्मेलन से जुड़ी व्यवस्थाओं, सुरक्षा, आवागमन, आवास, स्वच्छता, यातायात प्रबंधन तथा अतिथियों के स्वागत सत्कार सहित अन्य सभी आवश्यक तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि कृषि नवाचार, खाद्य सुरक्षा, कृषि अनुसंधान, सतत कृषि विकास, आधुनिक तकनीकों तथा किसानों की आय वृद्धि जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करेंगे। आयोजन के दौरान विभिन्न तकनीकी सत्र, विशेषज्ञ चर्चाएं, प्रस्तुतियां तथा अनुभव साझा करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। समाचारों वक्त है कब छोटे से विराम का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook, साथ ही X प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचार में पुनः आपका स्वागत है। अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा में आयोजित 2 दिवसीय निशुल्क कैंसर जांच एवं परामर्श शिविर के आज दूसरे दिन भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विदिशा में सेवा का महायज्ञ दूसरे दिन भी जारी है। चिकित्सकों की टीम पूरी निष्ठा से हर नागरिक की जाँच और उपचार में जुटी है। श्री चौहान ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सर्वाइकल कैंसर एक गंभीर बीमारी है, लेकिन इसको वैक्सीन के माध्यम से पूरी तरह से रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ एक सामाजिक सख्ती का जागरण करना पड़ेगा।
3: अलग अलग ढंग के कैंसर देखे, जो तथ्य है वो बेहद चिंताजनक। अब अगर 2598 में से 586 पॉजिटिव जिनको निश्चित कैंसर है निकल, 254 सस्पेक्टेड है, तो आप कल्पना करो कि बीमारी कितने भयानक ढंग से फैल रही है। हो सकता है कई लोग नहीं आए हो और नहीं आ पाए। सबसे ज्यादा है मौके कैंसर वाले। ये मौका कैंसर क्यों होता है? ये अपने आप नहीं होता, ये आफत हम खुद बुलाते हैं। ये होता है तमाकू से। इलाज कराते कराते परिवार टूट जाता है। कई बहनों की मांग का सिंदूर उजड़ जाता है। कई बच्चे अपने पिता का अस्पताल के बाहर इंतजार करते हैं। बसे बसाए घर उजड़ जाते हैं।
1: भारत सरकार खेल मंत्रालय की खेलो इंडिया योजना मिशन के तहत चलाए जा रहे फिट इंडिया साइकिलिंग अभियान और विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर आज संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम तथा फिटनेस रैली का आयोजन धार में किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री

0: एवं सांसद सावित्री ठाकुर ने कहा कि
1: साइकिलिंग इसलिए हमारे जीवन में जरूरी है, एक्सरसाइज, ताकि हमारा जीवन स्वस्थ और समृद्ध रहे, हम ऊर्जा के साथ काम करें और अंदर से व्यक्ति जब मजबूत होगा तो जीवन में वो हर काम को मजबूती से कर पाएगा। और आज इस दिवस की मैं सभी को शुभकामनाएं देती हूँ और जीवन में हर व्यक्ति को साइकिलिंग करना चाहिए, ये सभी से मैं आह्वान करती हूँ।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज उज्जैन जिले के ग्राम टंकारिया पंथ में श्रीमद् भागवत कथा के समापन समारोह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सहभागिता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में ऐसे धार्मिक आयोजनों का विशेष महत्व है, ये समाज को सकारात्मक दिशा देते हैं और सबके जीवन में सद्भाव एवं आत्मिक शांति का संचार करते हैं, साथ ही ये मनुष्य को उसके कर्तव्यों और मानव सेवा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने वाला दिव्य ज्ञानामृत है। भारत ने कल गोवा के मडगांव में साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप के फाइनल में मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार खिताब अपने नाम किया। भारतीय महिला खिलाड़ी की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर्ष व्यक्त करते हुए बधाई दी है। इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने 18 गोल करने की उपलब्धि भी हासिल की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी भारतीय महिला फुटबॉल टीम को चैंपियनशिप जीतने पर बधाई दी। उन्होंने कहा, भारतीय टीम की यह सफलता खेल जगत में प्रेरणा का नया अध्याय लिखेगी। भारत और अफगानिस्तान के बीच न्यू चंडीगढ़ में खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 8 विकेट पर 564 रन बनाकर घोषित की। इसके जवाब में अफगानिस्तान ने अपनी पहली पारी में दिन का खेल समाप्त होने तक 5 विकेट खोकर 113 रन बना लिए हैं। प्रदेश में मॉनसून 20 जून से पहले दस्तक दे सकता है। राज्य के सभी जिलों में मौसम का मिजाज लगातार बदला हुआ है। पिछले एक सप्ताह से कई जिलों में तेज आंधी और बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज अधिकांश जिलों में तेज आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार केरल से देश में प्रवेश करने वाला मॉनसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने 9 और 10 जून को प्रदेश के उत्तरी जिलों में हीटवेव चलने की संभावना भी जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम में संचालित देश के पहले महिला बंदी स्व सहायता समूह को डेयरी से व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण प्रदान किया गया है। ये पहल महिला बंदियों को आत्मनिर्भर बनाने का अनूठा प्रयास माना जा रहा है। खंडवा में प्रदेश के जनजातीय कार्य विभाग के मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने खालवा में लगभग 1,20,00,000 रुपये की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
1: आ गई सैलरी?
2: हाँ।
1: नहीं झुमके?
2: ना, पहले बचत।
1: पहले झुमके।
2: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
1: लेकिन झुमको का क्या?
2: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
3: आरबीआई कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: FM 102.2 MHz पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से। शाम के 7:20 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में किसानों की प्रतिक्रियाओं पर आधारित विशेष चौपाल।

0: सभी किसान भाइयों को रजनीश भैया
1: और सौरभ भैया की
0: राम
1: राम
0: राम।
1: राम।
0: स्वागत है आप सभी किसान भाइयों का आज की इस विशेष चौपाल में।
1: किसान भाइयों, इस वर्ष आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने जा रहे हैं और किसान भाइयों तक कृषि से जुड़ी जानकारियों को पहुंचाने में आकाशवाणी का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो प्रस्तुत है आकाशवाणी का कृषि क्षेत्र में योगदान और किसानों के जीवन में बदलाव पर आधारित विशेष चौपाल।
0: जब देश में हरित क्रांति की नींव रखी जा रही थी, तब खेतों में

0: सिर्फ बीज ही नहीं बोए जा रहे थे, बल्कि हवा में तैरती एक आवाज किसानों की उम्मीद बन रही थी।
1: जी हाँ, वो आवाज़ थी आकाशवाणी की। कृषि जगत और चौपाल जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से रेडियो सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं रहा, बल्कि भारतीय कृषि का सारथी बन गया।
0: दूर दराज के गांव जहां सड़कें नहीं थी, वहां आकाशवाणी की तरंगों ने उन्नत खेती, मौसम के मिजाज और नई तकनीकों की जानकारी पहुंचाई। आइए सुनते हैं आकाशवाणी और हमारे अन्नदाताओं के इस अटूट रिश्ते की कहानी।
1: तो रंजीश भैया, आज की इस विशेष चौपाल में हमने बात की है छिंदवाड़ा जिले के विभिन्न क्षेत्रों के किसानों से।
0: हाँ सौरभ भैया, और ये हैं मोखेड़ विकास खंड के युवा किसान।
2: जी, मेरा नाम नवीन ठाकरे है। मैं ग्राम बड़गुना जोशी, तहसील मोखेड़, जिला छिंदवाड़ा में रहता हूँ। खेती के साथ साथ मैं पशुपालन भी करता हूँ। यूँ तो आकाशवाणी के सभी कार्यक्रम सुनता हूँ, पर मुझे खास तौर पर सबसे ज़्यादा किसान वाणी पसंद है।
0: अच्छा नवीन जी, ये बताइए कि क्या कोई ऐसी याद है जो आप हमसे साझा करने चाहेंगे?
2: जी, किसान वाणी में खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत ही उपयोगी जानकारी दी जाती है। मुझे याद है कि एक बार लंपी वायरस संक्रामक रोग पशुओं में बहुत ज़्यादा फैल गया था और आकाशवाणी में इसके लक्षणों और उपचार की जानकारी दी गई थी। मुझे जानकारी मिली थी कि इस संक्रामक रोग में गायों को गठाने निकलती थी एवं बुखार आता था, तो किसान वाणी सुनने से मुझे तुरंत ही समझ में आ गया था कि हमारे भी पशुओं में कुछ ऐसे ही लक्षण हैं। हमने बिना देर किए पशु चिकित्सालय से संपर्क किया और हमने शुरुआती स्टेज पर ही इलाज करवाना शुरू कर दिया इस चीज़ का, जिससे मेरा काफ़ी नुकसान होने से बच गया। और इस साल आकाशवाणी के 90 साल पूरे हो रहे हैं, तो सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत बधाई।
0: यह है एक युवा किसान जिन्होंने हमें अपनी खेती में आकाशवाणी के महत्व के बारे में बताया।
3: मेरा नाम बिक्की कृष्ण कुमार ठाकुर है। मेरी खेती ग्राम सिहोरामाल में, जो कि चौरई तहसील और छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत आती है। मेरी 30 से 35 एकड़ जमीन है और मैं अपनी जमीन खेती में भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उत्पादन लेता हूँ।
0: आप आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनते हैं?
3: जी हाँ, रेडियो तो दिन भर चलते रहता है, साथ ही खेतीबाड़ी के कार्य भी चलते रहते हैं।
0: तो आकाशवाणी सुनने से आपकी कृषि में, आपकी खेतीबाड़ी में क्या बदलाव आया है?
4: आकाशवाणी सुनने से हमारी कृषि में ये बदलाव आया है। पहले हम एक ही तरह की फसलें लगातार बोते थे। जब हमने किसान वाणी कार्यक्रम में सुना कि हमें फसल चक्र अपनाना चाहिए, अब हम बदल बदल के फसलें बोते हैं। इससे हमारी फसलों में पहले कई प्रकार के रोग और कीट लग जाते थे, उससे हमें राहत मिली है। और जैसे कि किसान वाणी में बताया जाता है कि मिट्टी परीक्षण, तो मिट्टी परीक्षण से भी हमें बहुत फायदा हुआ है। हमारे खेती में किस तत्व की कमी है, जिंक, मैग्नीशियम, हम वो खाद को डालकर उसकी कमी को दूर कर लेते हैं। तो हमारा इससे उत्पादन भी बढ़ा है और हमारी आय भी बढ़ी है।
1: यह है उमरेड तहसील के एक युवा किसान जो अपनी उपज का प्रसंस्करण कर विक्रय करते हैं।
5: वीरेंद्र यादव, ग्राम गाजंडो, उमरेड तहसील।
0: आप अपनी खेती से कौन कौन सी उपज लेते हैं?
5: हमारी खेती से हम उपज लेते हैं, गेहूं है, टमाटर है और आलू वगैरह है। सुपर फूड खेती में चिया सीड है, किनोवा है, लाल सफेद दोनों, और चंद्रसूर जैसी खेती भी हमें करता हूँ।
0: अच्छा, आकाशवाणी रेडियो सुनते हैं आप?
5: आकाशवाणी के सभी कार्यक्रम सुनता हूँ, किसान वाणी खास तौर से पसंद आता है।
0: आकाशवाणी से जुड़ी कोई ऐसी याद है जो आप हमारे श्रोताओं से साझा करना चाहेंगे?
5: मुझे अच्छे से याद है, पहले मैं टमाटर की खेती करता था, उसमें एक रोग लग चुका था। तो मैं इस किसान वाणी से सुना तो मेरे खेत में एक बिल्ड की शिकायत आ गई थी टमाटर पे, तो उन रोग से मैं बहुत परेशान था। तो जब मैं किसान वाणी सुनता था कि उसमें मुझे कुछ विशेष वैज्ञानिकों द्वारा मुझे उपाय मुझे बताया गया, तो मैंने उस उपाय से करने से मुझे टमाटर को किया मैंने, तो उसको मेरे को अच्छा उसका रिस्पांस मिला, लाभ मिला उसको करने से, उपाय से। किसान वाणी अच्छा कार्यक्रम है, इसे मैं हमेशा सुनता हूँ। इसमें नए नए तकनीक मुझे बताया जाता है, उससे को हम खेत में उपयोग में लाते हैं तो हमें अच्छा लाभ मिलता है। आकाशवाणी के 90 साल होने जा रहे हैं और सभी श्रोताओं से ये कहने कि हेलो किसान वाड़ी में कोई भी फसल संबंधित जो समस्याएं रहती हैं वो अपन वहाँ फोन लगाओ तो तुरंत रोग का निदान के बारे में हमें नियंत्रण करने का मदद मिलती है। आकाशवाणी के सभी सुनने वालों को मैं बधाई देता हूँ।
0: यह है ग्राम जमनिया के एक युवा किसान जो आकाशवाणी से जुड़ी अपनी यादों के बारे में हमें बता रहे हैं।
6: मेरा नाम है राधेश्याम सनोडिया, मैं ग्राम जमुनिया से हूँ, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा। मेरे पास 25 एकड़ जमीन है।
0: तो कौन कौन सी फसलें लेते हैं आप अपनी जमीन से?
6: अभी तो मक्का लगाते हैं, धान, सोयाबीन, तुअर से लगाते हैं। आकाशवाणी के तो बहुत फैन है, बहुत सुनते हैं, मनोरंजन का साधन तो बहुत अच्छा है। इससे अपन चालू करके अपने दूसरे काम

0: भी होते हैं, कुछ खेती बाड़ी के काम भी हो जाते हैं चलते चलते। इससे हमें नई नई जानकारी भी मिलती है और मनोरंजन भी होता है।
1: ऐसी कोई याद जो आपको आती हो आकाशवाणी से जुड़ी हुई?
0: एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ था रेडियो किसान दिवस के उपलक्ष में चंदन गाँव पे, तो उस समय मैं गया तो वहाँ बहुत सारे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक लोग आए, उन्होंने बहुत अच्छी तकनीकें बताए। अनुभव जो मिला उससे हमने खेती की है तो बहुत अच्छा लगा। पानी से संबंधित ड्रिप इरिगेशन बताया कि पानी कैसे बचाएं, खेती में हम कैसे कम पानी में ज्यादा उपज लें, लोकगीत और भजन सुनने को मिले। वहाँ हमको एक चीज और भी अच्छा लगा, बहुत सारे किसान जो हमारे आए हुए उनसे भी हम लोगों को बहुत अच्छी चर्चाएं हुई, जिसमें किसी ने बताया कि हमने हल्दी की खेती की है, कुछ ने बताया कि हमने सब्जी की खेती की है, कुछ ने बताया कि हमने भाई ये लगाए थे उससे प्रॉफिट भी अच्छा हुआ। तो वहाँ हमको बारी बारी जो किसान आए हुए थे बहुत अच्छा लगा। आकाशवाणी की ये जो याद है मैं आज भी याद करता हूँ। इस साल आकाशवाणी के 90 वर्ष हो रहे हैं, इसीलिए जो आकाशवाणी सुनने वाले सभी श्रोताओं को, आकाशवाणी परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।
2: यह है प्राकृतिक खेती करने वाले एक किसान जिन्होंने हमें बताया आकाशवाणी से जुड़ी उनकी यादों के बारे में।
3: गुरुदयाल महावरे, पोस्ट कुंडाली कला पड़ता है, तहसील उमरेठ और जिला छिंदवाड़ा। मेरे पास लगभग 10 एकड़ जमीन है और जिसमें से मैं 2.5 एकड़ प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ और बाकी जमीन पे भी जैसा रेगुलर है। किसान वाणी मेरा विशेष है क्योंकि मैं खेती से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरा विशेष लगाव है उससे।
1: जी, कोई ऐसी याद जो आप बताना चाहें आकाशवाणी से, किसान वाणी से जुड़ी हुई?
3: हाँ जी हाँ, मुझे एक बार सुनते हुए मैं देखा कि डॉक्टर साहब आए हुए थे तो उन्होंने देसी नस्लों के बारे में काफी अच्छी जानकारी दी। तब से मैंने देसी नस्ल का पालन चालू किया हूँ और जिससे मैं जैविक खेती भी कर रहा हूँ, जिससे बहुत अच्छा फायदा मिल रहा है। देसी गोवंश जैविक खेती में अनिवार्य होता है, देसी गोवंश के बिना जैविक खेती संभव ही नहीं, क्योंकि देसी गोवंश के गोबर में, गौमूत्र में जो गुण पाए जाते हैं वो अन्य नस्लों में नहीं होता। इसकी जानकारी मुझे किसान वाणी और आकाशवाणी के द्वारा प्राप्त हुई थी। मैं खेत में काम करता हूँ, खेत पे काम करते समय सुनना ही सबसे अच्छा रहता है, इसलिए मैंने अपने खेत पे एक रेडियो लगा रखा हूँ जिसमें निरंतर आकाशवाणी के कार्यक्रम आते हैं, जिससे मनोरंजन तो होता ही है साथ में जानकारियां भी प्राप्त होती है। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर आकाशवाणी के सभी सदस्यों को, आकाशवाणी को और सुनने वालों सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
2: आकाशवाणी से जुड़ी अपनी यादों के बारे में हमें बता रहे हैं मानिए कापा जिला छिंदवाड़ा के युवा किसान मनोज सोनेकर।
4: आकाशवाणी काफी दिनों से, ये सोच लो कि लगभग 30 साल के आसपास से ज्यादा का समय हो गया है हम लोग सुनते हैं। हमारे घर में रेडियो एफएम चल रहा था। कहना चाहिए कि जब से आज किसानवाणी कार्यक्रम हुआ, इससे पहले वो कार्यक्रम चौपाल के नाम से चलता था, उस समय से हम इसको सुनते आ रहे हैं। इसमें कल्लू के दद्दा आते थे।
1: ये याद आपकी जुड़ी है?
4: जी, खेती की एक निःशुल्क और नई जानकारी के तौर में हम आजकल आधुनिक युग में व्यक्ति तरह तरह से अपने मोबाइलों में सर्च करता है, लेकिन पारंपरिक खेती के लिए और बेहतरीन जानकारी के लिए मेरा मानना है कि आज की युवा पीढ़ी को आकाशवाणी से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि उसमें मौसम की जानकारी और हमें अगेती फसल क्या लगाना है, अंतर्वर्ती खेती के लिए ये सारी जानकारियां उपलब्ध होती रहती है। फसल चक्रण अपनाना, मंडी के भाव, मौसम की जानकारी और समय समय पर कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा आकाशवाणी जो आयोजित कार्यक्रम करती है, कृषि वैज्ञानिकों को बुला के उनके द्वारा जो किसानों को सभी प्रकार की जानकारी दी जाती है वो प्राप्त होती है। रेडियो से एक बहुत अच्छी जानकारी कि आपके यहाँ जो विशेषज्ञ लोग आए थे उन्होंने पशुपालन को लेकर, आपको ध्यान होगा सर कि बहुत पहले एक लंपी वायरस पशुओं में एक बीमारी आई थी, तो उसकी पूर्व जानकारी आकाशवाणी के किसानवाणी कार्यक्रम से हमें प्राप्त हुई, जिसका हमने समय रहते पशु चिकित्सक को पशु को दिखवा करके उसका इलाज और समाधान कर लिया था। कई प्रकार की जानकारी आकाशवाणी की ओर से हमें किसानवाणी के माध्यम से प्राप्त होती रहती है, पशुपालन को लेकर के, खेती के फसलों का प्रबंधन को लेकर के, फसल चक्रण को लेकर के हम इसका लाभ लेते रहते हैं। नरवाई के प्रबंधन को लेकर कि भाई नरवाई नहीं जलाना, उसको प्रबंधन करना है, उस पर रोटोवेटर चला के उसको मिट्टी में मिलाना और एक प्रकार से खाद का काम करती है, ऐसी जानकारी आकाशवाणी की तरफ से हम लोगों को जानकारी मिली और हमने उसका पालन किया। आकाशवाणी का 90 वर्ष पूर्ण हो रहा है, इसी उपलक्ष्य में मैं समस्त आकाशवाणी परिवार को और सभी श्रोता भाइयों को, किसान भाइयों को इसकी बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आकाशवाणी इसी प्रकार से हमें नई नई जानकारी, मौसम की जानकारी और आगामी सूचनाएं हमें देते रहे।
1: क्या बदलाव आया आपके जीवन में आकाशवाणी को सुनने से आपकी खेती बाड़ी में?
5: आकाशवाणी को सुनने से बहुत ही ज्यादा बदलाव आया है, जैसे कि हम लोग पहले पूर्णतः रसायन खेती पर डिपेंड थे, आकाशवाणी को सुनते हमने जैविक की ओर ध्यान गया है और थोड़ा थोड़ा जैविक खेती भी करना हमने प्रारंभ कर दिया है। अब हम खाद और उर्वरकों की संतुलित मात्रा में उपयोग करते हैं, तो आकाशवाणी को सुनते हुए ये

0: हमने एक बहुत ही बड़ा बदलाव अपनी खेती में किया है।
1: आकाशवाणी से मिली जानकारियों ने कैसे इन्हें इनकी खेतीबाड़ी में नए बदलाव के लिए प्रेरित किया, ये बता रहे हैं ग्राम बनगांव के अनुभवी किसान।
2: जी, मेरा नाम विनोद साहू है। मैं ग्राम बनगांव से हूँ, जिला छिंदवाड़ा। मेरे पास में 3 एकड़ कृषि भूमि है। तो अभी के समय में तो मेरे पास मूंग लगी हुई है, बाकी अभी बारिश के समय में मक्के की फसल और तुअर की फसल ली जाएगी। इसमें अधिकतर तो हम किसान हैं, तो किसान वाणी सुनते हैं और साथ में और जो सभी कार्यक्रम प्रसारित होते हैं आकाशवाणी से वो भी सुनते हैं, जैसे युववाणी है, हेलो किसान है, शत्रुपा कार्यक्रम है, और भी जो कार्यक्रम है हमारे आकाशवाणी से जो प्रसारित होते हैं वो सभी कार्यक्रम हम सभी को सुनते हैं और हमें बहुत अच्छी इसमें जानकारियां मिलती हैं। आकाशवाणी को 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जो हमारे किसानों के हित के लिए और दूसरे विषय पर जो चर्चाएं होती, जो किसानों के भलाई के लिए होती है, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आकाशवाणी को। किसान वाणी में जो कृषि वैज्ञानिक लोग जो आते हैं, समय समय पे हमें जानकारियां देते हैं, जो जानकारियां हमें देते हैं और हम उनसे जो जानकारियां लेना चाहते हैं वो भी हम सीधा संवाद करते हुए उनसे जानकारियां ले लेते हैं, जिससे कि हमें कृषि से जो भी जुड़ी हुई समस्या है वो हमें उनसे मिल जाती है और उसका समाधान हमारे पास उपलब्ध हो जाता है।
1: किसी ऐसे बदलाव के बारे में बताइए कि जो आपने सुनकर आकाशवाणी के माध्यम से, प्रोग्राम के माध्यम से सुनकर अपनी खेतीबाड़ी में किया हो और जिससे आपको बहुत फायदा हुआ हो।
2: बदलाव तो हुआ है अपने खेतों पे जो वेस्ट मटेरियल निकलता है कृषि से संबंधित या किसी भी और प्रकार का जो वेस्ट मटेरियल निकलता है खेती से संबंधित, उसे मैंने सीधा समय मिलता है, खाली समय रहता है, जमीन खाली रहती है, उस समय उस वेस्ट मटेरियल को खेत में ही मिला के खाद के रूप में उपयोग करता हूँ मैं, जिससे कि मुझे एक तो लागत भी कम लग रही है, आजू बाजू से मेरे जो किसान संबंधित भाई हैं वो भी इस प्रयोग को अपना रहे हैं, जिससे उन लोगों की लागत और जमीन में सुधार आ रहा है। ये सबसे बड़ा मेरा मुख्य एक बदलाव है जो हर किसान को करना चाहिए। हमें जो अभी रासायनिक खाद का उपयोग करते थे वो भी हमारा कम हो गया है जब से चालू किए हैं, तो ये हमें फायदा मिला है इसका। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग जो है धीरे धीरे करके रासायनिक खाद को छोड़ के फिर से आप जो पहले ऑर्गेनिक तरीके से आप जो पहले खेती करते थे उसे आप सतत फिर से लाने की कोशिश करिए, जिससे आपका और प्रकृति का जो है भला हो सके, मिट्टी भी जो है स्वस्थ रहे।
1: आकाशवाणी से जुड़ी हुई अपनी यादों को साझा कर रहे हैं ये सब्जी उत्पादक किसान।
3: जी, क्या नाम है आपका?
4: लक्ष्मण टांडेकर
3: जी। कहाँ पर खेती है आपकी?
4: मेरी खेती है मानिया खापा में।
3: कितनी जमीन है आपकी?
4: 2.5 एकड़।
3: कौन कौन सी उपज लेते हैं आप अपनी खेती बाड़ी में?
4: मैं टोटल सब्जी वर्ग की खेती करता हूँ, जिसमें लौकी है, पालक है, भिंडी है। समय को देखते हुए अपने को सब्जी वर्ग की फसल लगाना होता है, उसका चयन करके अपन लगा लेते। आकाशवाणी तो ऐसा साहब की बहुत पहले से सुनता आया हूँ और आज भी चालू है। सन 1985 से अभी तक आकाशवाणी सुनता रहता हूँ।
3: मतलब बहुत पुराने श्रोता हैं आप, लगातार सुन रहे हैं, तो मतलब आप हमारे नियमित श्रोता भी हैं।
4: जी,
3: ये बताइए कि किसान वाणी सुनते हैं?
4: जी हाँ, बिल्कुल सुनते हैं।
3: कैसा लगता है आपको ये कार्यक्रम?
4: बहुत अच्छा कार्यक्रम है। आकाशवाणी के माध्यम से जो कृषि संबंधित जो चर्चा है, कृषि वैज्ञानिक के द्वारा जो दी जाती है, सब्जी वर्गीय फसल हो या कोई भी फसल के लिए जो वैज्ञानिक लोग बताते हैं, वो तरीका को अपन थोड़ा सा अपनाते हैं। थोड़ा अपनाने से क्या है कि थोड़ा एक प्रयोग के तौर पे करें, उसके बाद अच्छे उत्पादन के लिए और प्रयास करें, उसके बाद यदि अपने को पूरा यानी फुल फायदा मिल रहा है तो बराबर आप उनकी बातों को सुनकर और उनके बताए तरीके से आप खेती करोगे तो बिल्कुल फायदे में रहोगे। क्या है कि जब कोरोना काल चल रहा था, कोरोना काल में आपके आकाशवाणी से कृषि से संबंधित जो चर्चाएं हुई थी किसान वाणी में, कृषि वैज्ञानिक जो अपने चंदन गांव के डॉक्टर पराड़कर साहब, उन्होंने बताया था कि आप तो रासायनिक दवा नहीं मिल पा रही, दुकानें बंद है, उनके लिए उन्होंने एक उपाय बताया था जो आप घर में तैयार कर सकते हो, जैसा कि गौमूत्र हो गया, नीम की पत्ती हो गई, गोबर सड़ा लो, इनका एक टॉनिक बना के आप उसको स्प्रे करो। तो साहब ये मैंने प्रैक्टिकल किया था इसका, तो काफी अच्छा शानदार रिजल्ट मिला। किसान वाणी जो है उसके लिए समय कम है, ज्यादा समय होना चाहिए। तो सारी जानकारी जो वैज्ञानिक लोग देते हैं, ज्यादा याद नहीं होता तो आप एक पेन कागज लेके बैठ जाइए, पेन कागज लेके बैठ जाओ, उसमें लिख लो कि क्या बता रहे हैं। आप अंदाज लगा सकते हो कि कोरोना के समय में कोई दवाई नहीं मिलती इतनी, पर हमने रेडियो के माध्यम

0: से यहाँ तक मंडी में सब्जी नहीं बिकती थी, पर हमने घर बैठे बेचा है। आज के जो किसान लोग किसान वाणी के माध्यम से या रेडियो आकाशवाणी के माध्यम से आप सुनोगे तो वास्तव में आप फायदे में ही जाओगे। आज मेरे को याद है ये चीजें, एक चीज उन्होंने कहा था कि जो अपने यहाँ जो चूल्हे का रखड़ा होता है लकड़ी का, कोई दवाई नहीं मिल रही, यदि आपका ये उस फंगस आ गए, फंगस बोलो तो फफूंद हो गई है सब्जी में, तो उसको घोल कर डाल देना, फफूंद खत्म हो जाएगी। किसान वाणी के माध्यम से ये मालूम हुआ। आकाशवाणी 90 साल पूरा करने जा रहा है, इसके लिए सभी किसान वाणी के श्रोताओं को, किसानों को, सभी को बहुत बहुत बधाई हो। प्रसारण के जितने भी माध्यम है, सबसे ज्यादा लोकप्रिय और सबसे अच्छा वो आकाशवाणी से, इसकी विश्वसनीयता हमेशा है और रहेगी आगे भविष्य तक।
1: यह है एक युवा किसान जो आकाशवाणी से मिलने वाली जानकारियों का लाभ अपनी खेती बाड़ी में लेते हैं।
2: इंद्रसेन चौरिया, ग्राम बमनेतुरा, जिला छिंदवाड़ा, तहसील चौरी। मेरे पास है जी 10 एकड़ खेत। साल भर में तो जी हम फिर भी 3-4 फसल ले लेते हैं।
3: आकाशवाणी छिंदवाड़ा से प्रसारित होते हैं किसानों के लिए कार्यक्रम, वो कैसे लगते हैं आपको?
2: बहुत अच्छा लगता है जी, बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिलता है उससे हमको, मतलब उससे बहुत सीख मिलती है हमको। हम तो नियमित श्रोता हैं आकाशवाणी के और जरूर टाइम निकाल के सुनते हैं जी आकाशवाणी से। तो सर जी बहुत सी जानकारियां मिलती है हमको, विशेष करके जैसे अभी 2-3 साल पहले जो मक्का में रोग आया था, से आकाशवाणी के माध्यम से जो दवा बताई गई थी से हमको बहुत लाभ हुआ और मक्का में तुरंत रोग, मतलब इल्ली का जो प्रकोप है वो हट गया था। ग्रामीण क्षेत्र में हम रहते हैं, बहुत सी जानकारी जो किसानों को उपलब्ध नहीं हो पाती तो किसान मतलब आकाशवाणी के माध्यम से आप ब्लॉक स्तर पर जाइए, बीज लीजिए, अपने फसल बीमा के बारे में जानकारी मिलती है। ऐसी बहुत सी जानकारी आकाशवाणी के माध्यम से किसानों के हित में बात होती है। कृषि उपकरण के बारे में कि भाई अनुदान आपको मिल रहा है, कृषि उपकरण लीजिए, स्प्रिंकलर में सब्सिडी की जानकारी देते हैं।
3: 90 वर्ष का लंबा सफर है आकाशवाणी का, सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का। क्या लगता है ये सफर कैसा रहा और आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में?
2: बहुत अच्छा सफर रहा जी, बहुत अच्छा लगता है सारे कार्यक्रम आकाशवाणी के, चाहे शिक्षा के कार्यक्रम हो, चाहे मनोरंजन के कार्यक्रम हो, चाहे ज्ञानवर्धक कार्यक्रम हो, सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। आकाशवाणी परिवार के लिए बहुत बहुत बधाई है उनके 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में। मैं यही कहना चाहूंगा आकाशवाणी एक दूर दराज के गाँव में रहने वाले व्यक्ति के लिए बहुत ही लाभदायक, प्रेरणादायक कार्यक्रम आकाशवाणी के माध्यम से ज्ञानवर्धक कार्यक्रम प्रसारित होते हैं।
3: कोई ऐसा बदलाव बताइए आपने जो अपने खेतीबाड़ी में किया हो आकाशवाणी के कार्यक्रम में सुनने के बाद में?
2: बदलाव तो बहुत हुआ सर, पहले हम बिना बीज उपचार के बीज को डाल देते सर खेत में
3: जी,
2: बोनी कर देते थे, पर जैसे ही हमको आकाशवाणी के माध्यम से ज्ञान प्राप्त हुआ कि भाई बीज को बिना उपचार के नहीं बोना चाहिए, इससे कीट लगते हैं, फसल पूरी तरह जर्मिनेशन में नहीं आ पाती, आकाशवाणी के माध्यम से हमें बीज उपचार की जानकारी मिली तो हम बीज उपचार करके आज बोते हैं तो हमको अच्छा गुणवत्तापूर्ण उत्पादन मिलता है। मैं तो खासकर आकाशवाणी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और जो आकाशवाणी के जितने श्रोता बंधु हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि भाई आकाशवाणी के सभी कार्यक्रम बड़े नियमित सुने और आकाशवाणी से हमें बहुत ही हर प्रकार की जानकारी मिलती है, हर प्रकार का मनोरंजन भी होता है। चौपाल के माध्यम से हम सुनते हैं और गाँव में तो बड़ा इंतजार रहता है, जैसे किसान वाणी कार्यक्रम का हुआ, समाचार का हुआ, एक सच्चा सुलभ साधन आकाशवाणी है।
1: आकाशवाणी ने हर वर्ग के श्रोताओं तक अपनी पहुंच बनाई है। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर एक अनुभवी किसान ने हमसे बातचीत की।
4: योगेंद्र नागरे, ग्राम गोरखपुर, विकासखंड मुखर, जिला छिंदवाड़ा। कार्यक्रम में हमें बहुत सारी नई नई जानकारियां मिलती है, कीटनाशक के बारे में मिट्टी की जानकारी दी जाती है, कृषि यंत्र के बारे में कि कौन सा यंत्र किसानों के लिए काफी उपयोगी होता है, ऐसी और भी बहुत सारी जानकारी दी जाती है। बताते हैं बीज उपचार के बारे में, बताते किस प्रकार हमें बीज का उपचार करना चाहिए, से शुरू से ही पौधा मजबूत और स्वस्थ हो जिससे किसानों की मतलब उत्पादन बढ़ता है, रोग नहीं लगता।
3: आकाशवाणी अपने 90 वर्षों का सफर पूरा करने वाली है, ऐसा कोई यादगार लम्हा बताइए आप जो आपके लिए यादगार हो और आप यहाँ बताना चाहते हो।
4: जी अभी आकाशवाणी की टीम यहाँ पर आई थी ग्राम गोरखपुर में, पूरे गाँव का भ्रमण किया, कुछ खेत पर भी गए और नई नई जानकारी दी कि किस प्रकार हमें खेतों में मतलब उपकरण या दवाई या जो भी कृषि संबंधी जो भी समस्याएं हैं उन्होंने काफी हद तक हमें बताया और उससे हमें बहुत फायदा भी मिला। हमारे यहाँ पर आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ता सभी से मुलाकात की, सभी से उन्होंने जानकारी ली, फिर गांव पर पूरा कार्यक्रम बना और रेडियो द्वारा उनका प्रसारण किया गया। समस्त गांव वालों ने मिलकर इसे ध्यान सुना। सभी किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि यह कार्यक्रम किसान वाणी या किसान संबंधी जितने भी कार्यक्रम अगर प्रसारण किए

0: जाते हैं,
1: जी
0: तो उसे ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए और खेतों में अमल करना चाहिए, जिससे कि खेती समस्याएं काफी हद तक हमारी कम हो जाती है।
1: ये है जैविक खेती करने वाले एक युवा किसान। आइए इन्हीं से जानते हैं कि ये आकाशवाणी से मिलने वाली जानकारियों का अपनी खेतीबाड़ी में कैसे उपयोग करते हैं।
2: अरविंद कुमार, ग्राम जमुनिया, विकास खंड छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा में रहता हूँ। 18 एकड़ जमीन है हमारे पास। हम सभी प्रकार की फसलें लेते हैं, सीजनेबल लेते हैं, जिनमें मक्का है, गेहूँ है, गन्ना विशेष तौर पर फसल है, और अब सब्जियों की फसलों को भी हम लोग काफी अच्छे रूप में आगे बढ़ा रहे हैं। हम आकाशवाणी के लंबे समय से स्थायी श्रोता है, जिनमें हेलो आकाशवाणी है, भारती है, और फरमाइश कार्यक्रम है, युववाणी है, सखी सहेली है, समाचार है, किसान वाणी। हमें एक बहुत अच्छी चीज है आकाशवाणी के माध्यम से कि मनोरंजन तो होता ही होता है, लेकिन मनोरंजन के साथ साथ जो ज्ञान वर्धक बातें वो मिलती है। साथ में फोन इन कार्यक्रम के माध्यम से या अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से आकाशवाणी जो समय समय पे कृषि विशेषज्ञ है, अन्य विशेषज्ञों का जो मार्गदर्शन देते हैं, उससे हमें घर बैठे ही, हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, घर बैठे ही समुचित जानकारियां मिल जाती है, जिसके बड़े लाभ हम लोग लेते हैं।
1: जी
2: देखो, किसान वाणी में किसान से संबंधित एक जानकारी मिलती है कि समय पे जुताई हो, गहरी जुताई हो। इस समय नरवाई प्रबंधन पे आकाशवाणी ने बहुत अच्छे कार्यक्रम आयोजित करे हैं, जिसका प्रभाव हमारे ग्राम जमुनिया में मिल रहा है कि लोगों ने नरवाई प्रबंधन किया है, जलाने की बजाय रोटावेटर का उपयोग करके उसे मिट्टी में मिलाया है, जो खाद के रूप में कन्वर्ट होगी। पहले उतनी जानकारी नहीं हुआ करती थी, लेकिन आकाशवाणी ने निरंतर इसको एक अभियान के रूप में बढ़ाया, जिसका लाभ हमारे गाँव में बहुत अच्छे रूप में मिला। विषय विशेषज्ञों के साथ जो बीच में रेगुलर जो कार्यक्रम का आयोजन होता है, उसका लाभ हमको ये मिलता है कि हम लोग फसलों को कब बोएं, कैसे बोएं, बीजों का उपचार कैसे करें, जुताई कैसे करें, जैविक के उत्पादन के बारे में अच्छी जानकारी मिलती है, तो रासायनिक खाद का कम से कम उपयोग हो, इस विषय में हमारे आकाशवाणी का बहुत मिट्टी परीक्षण को लेकर के बहुत ही अच्छी जानकारी हमें आकाशवाणी के माध्यम से मिलती है, जिसमें हमारे ग्राम जमुनिया में हमने मिट्टी परीक्षण का बहुत अच्छा उपयोग किया है, और किसान को कौन सी खाद डालनी है, कौन सी खाद कम और ज्यादा करनी, इसके बारे में हमने बहुत अच्छी सीख जो है आकाशवाणी के माध्यम से सीखा। कृषि सिंचाई योजना के बारे में जानकारी दी गई है कि कम सिंचाई में भी आप कम पानी में आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग करके और अच्छी सिंचाई कर सकते हैं, तो जिसके तहत आकाशवाणी ने जो लगातार ड्रिप है, मिनी स्प्रिंकलर सेट है, इन सबके बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी है। तो अभी ये फायदा हुआ है कि जो हम कभी 5 एकड़ में सिंचाई करते थे, आज वही रकबा 10 से 12 एकड़ में बढ़ा है, तो इसमें आकाशवाणी का बहुत बड़ा रोल है।
3: ऐसा कोई बदलाव आपके जीवन में आया हो?
2: जब हम लोग छोटे थे तो उस समय जब भोजन करते थे, जो सब्जियां खाते, उसमें बड़ा अच्छा स्वाद हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे रासायनिक खाद का उपयोग ने स्वाद खत्म किया और बीमारियां बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ी। लेकिन आकाशवाणी में जो निरंतर विशेष विशेषज्ञों के माध्यम से मृदा परीक्षण बारे में, रासायनिक खाद के बारे में जानकारी दी गई, और गंभीर बीमारियों से बचने के लिए जैविक को लेकर के जो अभियान चलाया गया, तो उससे हमने सीखा, और हमारे ग्राम जमुनिया में हमने क्या काम किया कि पोषण वाटिकाओं की ओर काम शुरू किया, तो घर घर हम पोषण वाटिका बनवाने का अभियान शुरू कर चुके हैं। जैविक खाद को लेकर के बहुत ज्यादा हम आगे काम कर रहे हैं, जैविक पोषण वाटिका के हर घर में हो, इसके लिए हमने 5 बेल वाली सब्जियों का अभियान शुरू किया है। जिले में पहला ऐसा गांव है हमारा जमुनिया, जो 100% बेल वाली सब्जी हर घर में मिलेंगी और जो पूर्णतः जैविक होंगे। तो ये स्वास्थ्य और सुपोषण के लिए हमारा जो अभियान है, वो उसको पूरी तरह आकाशवाणी के द्वारा प्रेरित है और हमने आकाशवाणी से सीखा हुआ है। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर मेरी आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।
1: आकाशवाणी से जुड़ी हुई अपनी यादों को हमसे बता रहे हैं एक सब्जी उत्पादक युवा किसान।
4: मेरा नाम दुर्गेश कुमार पंचेश्वर है, मैं ग्राम सारना, विकासखंड छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा का निवासी हूँ। 6 एकड़ जमीन है। जो मौसम के अनुसार, जैसे खरीफ में हम मक्का है, सोयाबीन है, तुअर वगैरह की, और साथ में सब्जियों की खेती करते हैं। सब्जियों में हम टमाटर लगाते हैं, विशेष तौर पे भट्टे लगाते हैं। किसान वाणी, हेलो किसान वाणी, और विविध भारती और सखी सहेली आदि कार्यक्रम हम सुनते हैं। भैया, किसान वाणी के थ्रू हमें जो कार्यक्रम जो आते हैं, उसमें खेती बाड़ी से संबंधित जानकारी हमें प्राप्त होती है, मौसम से संबंधित, और मिट्टी को बचाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम हमें किसान वाणी के माध्यम से मिलती हैं। कृषि से संबंधित जुड़ी योजनाओं को हमें जानकारी मिलती है, और मिट्टी परीक्षण, जैविक खाद, जैविक खेती के बारे में हमें जानकारियाँ मिलती हैं। हमें ये कृषि से संबंधित जो कार्यक्रम आते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। उसके माध्यम से हमको जो कृषि से संबंधित जानकारियाँ मिलती हैं, जैसे खेत में खरपतवार नियंत्रण, कीट प्रबंधन, आने वाली समस्याओं के बारे में हमें पहले से ही जानकारियाँ मिलती हैं, जिससे खेती में उत्पादन पर हमको बहुत ही कम प्रभाव पड़ता है। अगर जिन चीज़ों को अगर किसान करे तो काफ़ी अच्छा लाभ उनको उत्पादन मिल सकता है, लाभ मिल सकता है। हम विशेष तौर पर सब्जी खेती करते हैं, तो किसान वाणी के माध्यम से रोगों की पहचान और उसमें उपयोग में होने वाली दवाइयों के बारे में

0: जानकारी मिलती है, किस बीमारी में किस चीज का स्प्रे हम छिड़काव करेंगे तो उसमें हमें पौधे को सुरक्षित रखा जा सकता है, इससे उत्पादन में कोई प्रभाव ना पड़े। नर्सरी किस प्रकार से डालना है और उसमें कीट प्रबंधन वगैरह कैसे करना है, और बीज दर क्या रहेगी, प्रति एकड़ क्या रेट रहेगा बीज दर, खाद प्रबंधन किस प्रकार से रहेगा कि प्रति एकड़ हमको मिट्टी की जाँच के अनुसार खाद की मात्रा कितनी करनी है, यह जानकारी से हमें बहुत लागत में भी कमी आती है और उत्पादन अधिक मिलता है।
1: आपका यादगार कोई लम्हा जो आप बताना चाहें?
0: मुझे एक हर्ष के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझे किसान वाणी के कार्यक्रम में एक अवसर प्राप्त हुआ कि खेती किसानी से संबंधित जो भी जानकारी है एक दूसरे से साझा करने का मौका मिला मुझे किसान वाणी के माध्यम से। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उसका, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि एक दूसरे से हम जानकारी अगर देते रहेंगे तो किसानी और खेती में हमें फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा। मैं श्रोताओं से कहना चाहूँगा कि जो आकाशवाणी के जो 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो इस सफर में आकाशवाणी के माध्यम से हमको जो भी जानकारियाँ मिली हैं खेती से संबंधित हो, चाहे मनोरंजन से संबंधित हो, चाहे देश से संबंधित जो जानकारियाँ मिल रही हैं वो हमारे लिए बहुत ही अच्छी है। ये सभी जानकारियाँ हमारे लिए बहुत ही लाभप्रद साबित हो रही है। आकाशवाणी को हम अपने कार को करते हुए भी आसानी से सुन सकते हैं, इनके माध्यम से हमें बहुत सारी जानकारियाँ भी मिलती हैं। तो मैं श्रोताओं से कहना चाहता हूँ इस प्रकार हम 90 वर्षों से आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं तो आगे भी इसी प्रकार जुड़े रहें और आकाशवाणी के माध्यम से जो भी हमें जानकारियाँ मिल रही हैं उसका लाभ लें।
2: यह है एक पशुपालक किसान जो आकाशवाणी से जुड़ी अपनी यादों के बारे में हमें बता रहे हैं।
3: भैया मेरा नाम है मदन गोपाल पटेल, मैं ग्राम पांजरा पोस्ट चनिया कला जिला व तहसील छिंदवाड़ा में रहता हूँ। भैया मेरे पास 16-17 एकड़ जमीन है, उसमें रबी और खरीफ की फसल लगाता हूँ। भैया मैं बरसात में मक्का और गेहूँ चना ऐसा लगाता हूँ। आकाशवाणी के तो मैं सारे कार्यक्रम सुनता हूँ भैया, मैं बहुत पुराना श्रोता हूँ। किसान वाणी जो इसमें है वो बहुत ही जोरदार, वहाँ जो वैज्ञानिक लोग नई नई तकनीक के बारे में बताते हैं वो मैं सुनता हूँ। हेलो किसान वाणी जो फोन इन कार्यक्रम होता है वो भी बहुत मस्त रहता है। पिटारा है, विविधा है, सबचित है और समाचार, और एक बढ़िया कार्यक्रम है आपकी पसंद, वो भी मैं सुनता हूँ। इसमें मनोरंजन तो होता ही है भैया, चूंकि कृषक है तो खेती बाड़ी के संबंध में हमें जो वैज्ञानिक वहां से आप लोग बात करवाते हो किसान वाणी में, तो वो हमें उसमें नई चीज मिलती है। पहले हम लोग फसल चक्र नहीं अपनाते थे
1: जी,
3: वहां से सुनने से हमें ये फायदा हो गया कि फसल चक्र अपनाना है और मिट्टी परीक्षण करवाना है, तो उससे हम लोगों की लागत भी कम हो गई और सटीक जानकारी मिलती है उससे, तो हमें उससे फायदा भी है। किस समय पर कौन सी दवाइयों को प्रयोग करना है, जैविक खादों का भी प्रयोग करना है, अपन को जैविक घर में बनाना है वो बोर्ड अपन डालें, उसमें कीटनाशक की जगह में अपना गोमूत्र वाला डालें, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो जानकारी है जो कृषि वैज्ञानिक वहां से देते हैं हमें, तो उससे हमें फायदा होता है। पशुपालन भी मैं करता हूँ, 5-7 गाय है मेरे पास, पशु चिकित्सा है ना, तो वो आप लोग जो उनसे वो करवाते हो ना वहाँ से वार्ता करवाते हो
1: जी।
3: जैसे बारिश के पहले टीकाकरण, गाय को कैसे रखना है, वो सारी चीज जो जानकारी वहाँ से मिलती है पशु चिकित्सक से, तो वो हमारे लिए काम की चीज है, वो हम लोग अपनाते हैं वैसा
1: जी।
3: कैसे गाय को रखना है, कैसे खिलाना है, ठंड में क्या करना है, बरसात में क्या करना, टीकाकरण, वो सारी चीजें हमें जानकारी मिलती है वहां से। एक बार मुझे मेरे को जाने का भी मौका मिला, किसानों को इकट्ठे किए थे वहां सारे वैज्ञानिक लोग थे, तो वो मेरे लिए एक यादगार पल हो गया कि मैं एक किसान होने के नाते मुझे वहां बुलाया गया और मैं गया वहां पे, तो मुझे काफी दूसरे किसानों से, दूसरे क्षेत्र के किसानों से भी मुलाकात हुई, अधिकारियों से भी मुलाकात हुई, कृषि विज्ञानियों से भी मुलाकात हुई, कई प्रकार की मुझे जानकारी हुई। उस समय भी यह किसान दिवस था शायद उस दिन, तो वो किसान दिवस में मुझे आमंत्रित किया गया था और मेरे लिए वो सबसे यादगार दिन है किसान दिवस, वो मुझे सबसे ठीक लगा कार्यक्रम। जितने भी श्रोता है मैं सबसे कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छी जानकारी रेडियो के माध्यम से मिलती है, आप लोग रेडियो सुने, जो ना सुन रहे हैं वो भी सुने, उसमें किसानों से लेके पशुपालन से लेके बकरी पालन मुर्गी पालन सारी चीजों की जानकारी मिलती है अपन किसानों को, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा रेडियो को सुने, उसमें अच्छी जानकारी मिलती है, वो जानकारी का आप इस्तेमाल करें, तो वो मनोरंजन के लिए भी सबसे बेस्ट है रेडियो।
2: आकाशवाणी से प्रसारित खेतीबाड़ी की जानकारियों का उपयोग किस तरह से कृषि में मददगार है और कैसे हम इसका अपनी खेती में लाभ ले सकते हैं, इसके बारे में हमें बताया एकीकृत कृषि करने वाले प्रगतिशील किसान।
4: जी मेरा नाम पूरन लाल इनवाती है, मैं ग्राम भूमका ग्राम पंचायत भूमका विकास खंड हर्रई जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का मैं एक किसान हूँ। जी मेरे पास में 6 एकड़ जमीन है, इसमें मैं थोड़ी थोड़ी करके सारी फसल लगाता हूँ, जिसमें मक्का है, गेहूं है, तुअर है, बरबटी है, चना है, मसूर है, बटाना है, सारी फसल लगाता हूँ अनाज वाली। खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ काम

0: मैं मुर्गी पालन भी करता हूँ, बकरी पालन भी है, पशुपालन भी है। मछली पालन के लिए मैंने एक पंचायत विभाग से खेत तालाब बनवाया हूँ आधा एकड़ में, जिसमें ट्यूबवेल से पानी भरता हूँ, जो उसमें जल संरक्षण भी हो रहा मेरा और मछली पालन भी हो रहा उसमें। सब्जियों की खेती भी करते हैं, सारी सब्जी खेती करते हैं, जिसमें आलू है, भटा है, टमाटर है, मिर्ची है, बरबट्टी है, गोभी है, भिंडी है, प्याज है, लहसुन है, अदरक है, हल्दी है, ये सारी सब्जियों की खेती करता हूँ। ककड़ी है, करेला है, लौकी है, गिलकी है। फलदार वृक्ष भी है, जिसमें आम है, आंवला है, कटहल है, नींबू है, सेब है, सुपारी है, नारियल है, एप्पल बेर है, ड्रैगन फ्रूट है, काजू है, बादाम है, चीकू है, तेजपान है, लौंग है, लाइची है, केला है। 2022 में मैंने छिंदवाड़ा जिले में सबसे पहले केले की खेती शुरुआत किया, तो अभी वर्तमान में मेरे खेत में 1-1.5 एकड़ में केला लगा है। विभागों के माध्यम से मेरे को शासन का सहयोग है, जिसमें कृषि विभाग है, उद्यान विभाग है, आत्मा परियोजना है, पंचायत विभाग है और पशुपालन डेयरी विभाग है। आकाशवाणी के माध्यम से मेरे को इनका मार्गदर्शन मिला है, तब मैं इस कार्यक्रम को कर पा रहा हूँ। मैंने आकाशवाणी के माध्यम से जो प्रकृति खेती चालू की है, तो आकाशवाणी के ही माध्यम से कार्यक्रम मैंने सुना हूँ, उसी के माध्यम से मैंने 2017 से जो प्रकृति खेती प्रारंभ किया हूँ। मेरे पास में देसी 2 गाय हैं, जिनके गोबर गौमूत्र से जीव अमृत, जैविक खाद, जैविक कीटनाशक बना करके मैं और मेरे खेत में स्वयं में उपयोग करता हूँ इसको, जिससे मेरी जमीन की मट्टी की स्वास्थ्य भी ठीक हुआ है और मेरा परिवार को, मेरे को स्वस्थ भोजन, स्वस्थ अनाज मिल रहा है। जो खेती बाड़ी वाला जो कार्यक्रम चलता है, वो ले मेरे लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसमें खेत की तैयारी से लेकर तो बोनी तक, कटाई तक, मतलब उसमें पूरी जानकारी मिलती है कि खेत की कैसी तैयारी करना है, बीज कितना डालना है, कब डालना है, बारिश कब होएगी, कितना पानी लगेगा, पक कितने दिन में तैयार होएगी, भंडारण कैसे करना है, घानी कैसे करना है, बीज कैसे छांटना है, ये मतलब आकाशवाणी के माध्यम से मेरे को पूरी जानकारी मिलती है। अलग अलग समय में डॉक्टरों के माध्यम से मेरे को इन चीजों की पूरी मार्गदर्शन मिलती
1: जी
0: है।
1: जी
0: मनोरंजन जो कार्यक्रम आता है वो भी सुनते हैं, समाचार भी प्रसारित किए जाते हैं वो भी सुनते हैं, आकाशवाणी के माध्यम से जो मौसम की जानकारी मिलती है वो भी ध्यान पूर्वक सुनते हैं। सभी श्रोताओं से छिंदवाड़ा जिले वासियों को मैं उनको एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ कि आकाशवाणी के जो भी कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो खेती से संबंधित हो, चाहे पशुपालन से संबंधित हो, चाहे मुर्गी पालन से संबंधित हो, चाहे बकरी पालन से संबंधित हो, चाहे मछली पालन से संबंधित हो, खुद की स्वास्थ्य से संबंधित हो, इन जानकारियों को बड़े ध्यान पूर्वक सुने, अमल में लाए और उसको अपना खेती में उपयोग करें। आकाशवाणी ऐसी ऐसी नई नई जानकारी हमें बताते रहें। हम आकाशवाणी के सारे छिंदवाड़ा जिले के किसान, मैं मेरे तरफ से आकाशवाणी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, और
1: जी
0: ऐसे ही नए नए कार्यक्रम चलते रहें, चलाते रहें। मैं पूरन लाल इनवाती,
1: जी
0: ग्राम भूमका, ग्राम पंचायत भूमका, विकास खंड हर्रई, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश का मैं एक छोटा सा किसान हूँ।
2: आकाशवाणी की ध्वनि तरंगों ने दूर दराज के क्षेत्रों में भी अपनी व्यापक पहुंच बनाई है। आकाशवाणी द्वारा दी गई ये जानकारियां इन क्षेत्रों में निवास करने वाले निवासियों और किसान भाइयों के लिए सूचनाओं का एक विश्वसनीय माध्यम है। इन जानकारियों का अपनी कृषि में इस्तेमाल कर लाभ लेने वाले ये हैं तामिया क्षेत्र के एक युवा किसान।
3: मेरा नाम शिव कुमार उइके है, मैं ग्राम प्रतला पोस्ट झिरपा तहसील तामिया से हूँ।
4: भैया कितने एकड़ जमीन है आपके पास में?
3: मेरे पास 10 एकड़ जमीन है लगभग।
4: अच्छा, आकाशवाणी से जो कार्यक्रम प्रसारित होते हैं वो आप सुनते हैं?
3: सुनता हूँ।
4: कैसे लगते हैं आपको कार्यक्रम आकाशवाणी के?
3: बहुत अच्छे लगते हैं सर, उसमें नई नई जानकारी मिलती है। शाम को आता है 7:20 पे किसान बाड़ी कार्यक्रम आता है, तो उसमें खेती बाड़ी के विषय में बताते हैं, बीज उपचार कैसे करते हैं, खरपतवार, मतलब बहुत सी जानकारी देते हैं उसमें किसानों के लिए। बहुत
4: जी
3: अच्छा है, तो
4: हाँ
3: फायदा मिलता है
4: उसी
3: किसानों के
4: काम।
3: लिए। बहुत सी जानकारी देते हैं सर, उसमें फायदा होता है किसानों को। इसके अलावा बहुत से कार्यक्रम आते हैं, जैसे मनोरंजन के लिए फरमाइशी कार्यक्रम, फिल्मी गाना है,
4: जी
3: और भी बहुत सी चीज, भजन वगैरह। आकाशवाणी से समाचार सुनने को मिलता है, नई नई खबरें आती हैं उसमें, न्यूज से पता चलता है कि हमारे देश में क्या हो रहा है, और सभी जानकारी मिलती है, मतलब, और मौसम की जानकारी मिलती है किसानों के लिए, जैसे खेती बाड़ी में बीज उपचार कैसे करते हैं, खरपतवार के बारे में, और जो
4: हाँ
3: कीटनाशक का प्रयोग के बारे में बताते हैं,
4: हाँ
3: और विशेषज्ञों से बात होती है वो
4: हाँ
3: बताते हैं कैसा करना चाहिए, बाजार के भाव पता चलते हैं उससे,
4: हाँ
3: फसल में लगने वाली बीमारियां, कीटनाशक और सभी इनकी जान

0: जानकारी मिलती है। उनके लक्षण और उनके उपचार के बारे में पता चलता है। कीट और रोगों के बारे में कैसे पहचान सकते हैं उसके बारे में वो जानकारी देते हैं। बहुत सी जानकारी किसान वाणी कार्यक्रम में आता है जो हम खेती बाड़ी में प्रयोग के लिए पता चलती है। समय समय पर फसल का रखरखाव कैसे करना है इसकी जानकारी भी किसान वाणी कार्यक्रम में बताते हैं। तामिया के अंतर्गत ग्राम बहुत अंदर में है, 108 किलोमीटर 10 किलोमीटर लगभग है, जिससे किसान वाणी कार्यक्रम में के द्वारा हम बहुत से जानकारी प्राप्त करते हैं, जिससे हमको फायदा मिलता है। किसान वाणी कार्यक्रम में जो जानकारी बताते हैं उससे हमको बहुत फायदा मिलता है और उसको हम प्रयोग करते हैं खेती बाड़ी में, जिससे हमारी फसल का उत्पादन अच्छा होता है।
1: तो वो मनोरंजन के लिए भी सबसे बेस्ट है रेडियो।
2: वक्त बदला, तकनीक बदली, आज स्मार्टफोन है और इंटरनेट का दौर है, लेकिन आकाशवाणी की साख आज भी उतनी ही मजबूत है।
3: हल्की मूड थामे किसान भाइयों के लिए आज भी आकाशवाणी पर मौसम का पूर्वानुमान और फसलों के दाम सबसे भरोसेमंद जानकारी है।
2: मिट्टी की खुशबू को तरंगों के जरिए देश के कोने कोने तक पहुंचाने का काम रेडियो ने किया है, उसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। डिजिटल युग में भी आकाशवाणी भारतीय कृषि की रीढ़ बनकर अन्नदाताओं को सशक्त बना रही है।
3: तो ये थी आकाशवाणी का कृषि क्षेत्र में योगदान और किसानों के जीवन में विशेष बदलाव पर आधारित विशेष चौपाल।
2: वाचन स्वर था रजनीश शर्मा और सौरभ पटेल का, और प्रस्तुति थी दीपांकर तिवारी की।
3: तो अनुमति दीजिए आज की इस विशेष चौपाल से,
2: मैं रजनीश शर्मा
3: और मैं सौरभ पटेल
2: कहते हैं आपको
3: राम राम, राम, राम,
2: जय जवान जय किसान।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में किसानों की प्रतिक्रियाओं पर आधारित विशेष चौपाल। FM 102.2 MHz पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से। रात के 8 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद।

कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं का स्वागत है आज के कार्यक्रम आपकी पसंद में। और आज के इस कार्यक्रम में आपके हम सफर है आपकी अपनी रेडियो फ्रेंड मनीषा लॉरेंस। तो स्वीकार कीजिए मेरा स्नेहिल नमस्कार। और अब बिना देर किए चलिए जल्दी से उठाते हैं ये पहला फरमाइशी पत्र। भेजने वाले हमारे श्रोता हैं यादव कॉलोनी छिंदवाड़ा से सीमा सनोडिया, काव्या अनुसुईया और बी एल सनोडिया जी। राम मंदिर के पास परासिया के हमारे श्रोता देवेंद्र बख्शी, मुफी भाई, राजीव यदुवंशी, बसंत वर्मा, शकुन साहू, उवेश और तलत जी। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कागड़ा, बबीता, निखिल, अंकिता और साहिल कागड़ा जी। भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, सरिता और गरिमा शर्मा जी। ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, तारनी, सूरज, ज्योति, गुड़िया और रियांश ठाकुर जी। बेडी से ये पत्र हमें मिला है हुकुम करमरकर, सुनीता, हार्दिक, प्राची और तनु करमरकर जी का। और नॉर्थ चांदा मीटर से ये पत्र हमें भेजा है वर्षा, वीर, निक्की, नेहा, डब्बू, छबी और मोहम्मद असलम जी ने। आप सभी ने सुना चाहा है गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने, संगीत आनंद मिलन का है और फिल्म का नाम है आंटी नंबर 1।

तहसील तामिया से उमा शंकर सरयाम, गोपी चंद, रविशंकर, सचिन, साक्षी और हरी शंकर सरयाम जी। ये अगला पत्र है मुकाम बमली राणा पोस्ट बरसोली के हमारे श्रोता सतीश रघुवंशी, राज रघुवंशी, रामकृष्ण मरसकोले, वीरपाल यादव और शिवराम उइके जी। नंदोरी अमरवाड़ा से ये पत्र है सुखदेव वरकड़े और वर्षा वरकड़े जी का। पिपरिया रोड न्यूटन वार्ड नंबर 1 से हरिराम साहू, तारा साहू, गगन, रोशनी, चंद्रप्रकाश, भवानी, सलीम अंसारी और पप्पू साहू जी। आप सभी ने सुना चाहा है ये गीत उदित नारायण और साधना सरगम की आवाजों में। शब्द रचना है समीर की, धुन बनाई है आनंद मिलन ने और फिल्म का नाम है सूरज।

कार्यक्रम के अगले गीत के लिए हम शामिल कर रहे हैं ये पत्र सिंगोड़ी अमरवाड़ा के हमारे श्रोता श्रीजी साहू, किरण, रामनाथ साहू, बबली, नर्मदा, दीपशिखा, दीपक, पूनम और गुलशन साहू जी, जाटा छापर चौकी लाइन से हमारे श्रोता मोहनलाल देवांगन, रेखा देवांगन, अर्चना होरीलाल, राजू नाग और दया शंकर साहू जी, न्यूटन चिकली नंबर 11 के हमारे श्रोता देवी शंकर गुप्ता, श्रीमती उमा गुप्ता, रोहन, देवेश, ऋतुराज और पप्पू गुप्ता जी, पोस्ट नाग

श्रोताओं, इस वक्त आपने ट्यून किया है आकाशवाणी छिंदवाड़ा और आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद का, आपकी अपनी रेडियो फ्रेंड मनीषा लॉरेंस के साथ। और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम के लिए ये अगला फरमाइशी पत्र। पंचशील नगर छिंदवाड़ा के हमारे श्रोता आयांश, तानुष, आकांक्षा, महिमा और लखन सिंह, इसी गीत के लिए अगली फरमाइश बाबई खुर से संदीप चिमानिया, सचिन, निशा और प्रतीक्षा चिमानिया जी। सागर से इस गीत को सुनना चाहा है लक्ष्मण रायकवार, कमला, ऋषि, अनरत और प्रवीण जी ने। नजरपुर जमकुंडा से ये पत्र हमें मिला है संतोष पाठे, सुमन, वर्षा, मनीषा, अंकिता और प्रांजल पाठे जी ने। गुलाबरा छिंदवाड़ा से ये फरमाइश हमें लिख भेजी है राजू निखाड़े, अनीता निखाड़े, सुरेश, ऋषभ, यामिनी और बंटी कोचर जी ने। दमोह से ये पत्र हमें मिला है रमेश शिवा से, सुमन, संजय, राजीव, प्रतिभा, शिल्पा, सोना, गजानन, कैलाश और पूरा हिवासी परिवार। और इसी गीत के लिए पुराना नागपुर नाका छिंदवाड़ा के हमारे श्रोता अनिल मालूनिया, सुनीता, माया, प्रतिभा, आयुष, अंशिका, मोहित, शुभम और मीना चौकसे जी। इन्हीं के साथ हैं आर के मंडरा, ज्योति, विनोद चौरसिया, बबन पवार और मनीष मोखल गाय जी। आप सभी ने सुना चाहे गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में। तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म का नाम है राजकुमार।

कार्यक्रम के अगले गीत के लिए फरमाइश लिख भेजी है मुकाम तुमड़ी से सोनम नागवंशी, मयंक, महेश, सुनीता और प्रफुल्ल नागवंशी जी ने। खिरसा डो से श्रीमती मीना खरे, अमर राज, दीप राज और अनिकेत खरे जी। इन्हीं के साथ है नैतिक ठाकुर, बंटी ठाकुर, आयुष आर्यन, नितेश शर्मा और विकास नामदेव जी। गीतांजलि कॉलोनी छिंदवाड़ा के हमारे श्रोता लक्ष्मण प्रसाद डहरिया, सूरज नारायण डहरिया, अभिषेक, निखिल, पूजा, स्वाति और रुचि डहरिया जी। उमरेट से ये पत्र हमें मिला है राजेश कस्तूरे, शांतनु कस्तूरे, श्याम, अनुराधा, विक्रम, रेणुका, राम कस्तूरे, राघव जोशी, भूषण, पार्थ और श्रुति कस्तूरे जी ने। नॉर्थ चांदामेटा से मोहम्मद अशफाक, हुमा शायमा, ए जी अंजाना, अब्दुल सत्तार और अब्दुल रजाक जी। और इसी गीत के लिए ये पत्र ताजनगर छिंदवाड़ा के हमारे श्रोता गफ्फार बाबू, रुखसाना बेगम, राहुल पाल, इन्हीं के साथ हैं फूल सिंह मक्कड़, हरेश विश्वकर्मा, आयरा और इनाया जी। आप सभी ने सुनना चाहा है ये गीत अनुराधा पौड़वाल और बाबुल सुप्रियो की आवाजों में। गीत के बोल लिखे हैं फैज अनवर ने, धुन बनाई है मिलन सागर ने और फिल्म का नाम है दीवाना सनम। तो लीजिए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर इसकी इंट्रो।

कार्यक्रम के अंतिम गीत के लिए ये फरमाइश हमें लिख भेजी है भंसाली नगर पारड़सिंगा सौसर के हमारे श्रोता मित्र जहीर अहमद पटेल जी। बड़कुई से ये पत्र हमें मिला है अंकित आर से, अंतिम आर से, कमला और राम प्यारे आर से जी। भोपाल से चमन नायक, पूजा नायक, शकुन, उजाला, भूमि और टुक टुक नायक जी। अमरवाड़ा के हमारे श्रोता शिवलाल जावरिया, रीना जावरिया, पीयूष, उर्वशी और प्रियांशी जावरिया जी। न्यूटन चिकली परासिया के हमारे श्रोता अनिल वाघ, संगीता वाघ, रविंद्र वंदना, अंकेश, अनुवेश, अंकु, सिंकू और ऋतिक वाघ जी। नेपानगर से हमारे श्रोता मित्र सुदर्शन शाह, प्रखर शाह, कुंश, परी, पल्लवी, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन, राजेंद्र शाह और सुषमा कपूर जी। और गोरखपुर उत्तर प्रदेश से ये पत्र हमें मिला है रणजीत सिंह जी का। आप सभी ने सुनना चाहा है गीत अमित कुमार और अलका याग्निक की आवाजों में। गीत के बोल लिखे हैं फैज अनवर ने, संगीत निर्देशन अनु मलिक का है और फिल्म का नाम है इम्तिहान।

अमित कुमार और अलका याग्निक के गाए इस गीत के साथ फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद अब यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम से अब दीजिए अनुमति आपकी अपनी रेडियो फ्रेंड मनीषा लॉरेंस को। नमस्कार।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। ये आकाशवाणी का छिंदवाड़ा केंद्र है FM 102.2 MHz पर। लीजिए अब सुनिए एल्बम गीत।

हंस राज हंस के गाए इस गीत के साथ एल्बम गीतों का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का छिंदवाड़ा केंद्र है FM 102.2 MHz पर। रात के 8:45 होने को है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या, जिसे हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा। उलानबटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन। पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। और क्रिकेट में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान पहली पारी में 451 रन से पीछे। अब समाचार विस्तार से। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सहअध्यक्षता की। बैठक में दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल, ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉक्टर जयशंकर और श्री सुगियोनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल की महिला, बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। एक रिपोर्ट।
2: सुश्री पॉल ने कहा कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने इन शहरों के विकास के लिए समर्थन व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन, व्यापार, चाय उद्योग और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। सुश्री पॉल ने कहा कि राज्य में शहरी बुनियादी ढांचे और स्वच्छता में सुधार के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। 1 जुलाई से पार्किंग की अनुमति केवल निर्धारित

0: क्षेत्रों में ही होगी और अवैध पार्किंग पर जुर्माना लगेगा। पदभार ग्रहण करने के बाद सुश्री पॉल की ये उत्तर बंगाल क्षेत्र की पहली आधिकारिक यात्रा है। बैठक में नगरपालिका मामलों, महिला बाल विकास, सामाजिक कल्याण, स्वच्छता, यातायात नियमन और विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा हुई। कुर्सियोंग से अशोक चौरसिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बन जाएगा। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच कल नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी उपस्थित रहेंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। योजना के लागू होने से राज्य के लाखों लोगों को बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: www.lawlaw.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या वर्ष 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य सरकार की वर्षा की स्थिति पर नजर है और किसानों के हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। नागपुर में उन्होंने कहा कि इस वर्ष सामान्य वर्षा का अनुमान है, लेकिन एलनीनो के प्रभाव के कारण मराठवाड़ा, पश्चिम विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में कम वर्षा हो सकती है। उन्होंने कहा कि किसानों को समय समय पर आवश्यक सलाह दी जा रही है और फसल नुकसान को कम करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोना तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ऑपरेशन गोल्डन नेक्सस के अंतर्गत निदेशालय ने करीब 5 करोड़ रुपए मूल्य का 3 किलो 200 ग्राम विदेशी सोना जब्त किया है। मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें हवाई अड्डे के 3 कर्मचारी भी शामिल हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने आज योगांध्र 2026 अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। 14 दिवसीय इस अभियान का समापन 21 जून को अमरावती में भव्य आयोजन के साथ होगा। इस अभियान के दौरान विभिन्न योग गतिविधियों के माध्यम से 1 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए गांव, मंडल और जिला योग सत्र तथा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने लोगों से योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने और इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देने का आह्वान किया है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा

0: उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल शामिल हैं। इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में आज गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। एक हमलावर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमरीका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमरीकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की और बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। इस बीच सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मानसून आज पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी से कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया। मानसून उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों तथा नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी दस्तक दे चुका है। इसके अलावा त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी मानसून पहुंच गया है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने कल तटीय और आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माही, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड में अगले 4 से 5 दिन बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने दक्षिण कोंकण क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के कुछ हिस्सों में मानसून की बारिश शुरू हो गई है। मंगलवार तक रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों के कुछ हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में आज शाम बारिश हुई। समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
3: न्यू चंडीगढ़ में खेले जा रहे एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने अफगानिस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। भारत के 564 रन के जवाब में मेहमान टीम ने दिन की समाप्ति तक 5 विकेट खोकर 113 रन बना लिए थे। रहमत शाह 43 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। भारत के लिए अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू कर रहे मानव सुथार ने 3 विकेट जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट लिए। अफगानिस्तान अब भी भारत से 451 रन पीछे है। वहीं कुश्ती में मंगोलिया के उलान बटोर ओपन कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। आज पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक भारत ने अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के आसिल एथकिन को 6-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के येदिगे कासिम बेग को 2-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उधर न्यू ताइपेई सिटी एथलेटिक्स ओपन 2026 में आज भारतीय धावक और राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी अनिमेश कुजूर ने पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में 20.47 सेकंड का समय निकालते हुए रजत पदक अपने नाम किया। ये समय उनके करियर का 4th सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।
0: उधर फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव का सामना इटली के फ्लेवियो कोबोली से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक ज्वेरेव और कोबोली ने 1-1 सेट जीत लिया है। इससे पहले कल रूस की मीरा एंड्रीवा ने माया चालिंस्का को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान मेजर बराक की अनुकरणीय सेवा और संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में भारत के दीर्घकालिक योगदान की पहचान है। मेजर

0: इराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में एंगेजमेंट टीम कमांडर और लैंगिक मामलों की प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉ. JPS डबास के साथ खेत बचाव अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए नंबर है 0112331081। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। #AskAIR के साथ एक्स पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा। उलान बटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन। पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। और क्रिकेट में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान पहली पारी में 451 रन से पीछे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से। रात के 9 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए, केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर विशेष द्विभाषीय कार्यक्रम। विषय है वंचितों को वरीयता।
2: दिस इज आकाशवाणी। इन द स्पेशल सीरीज 12 इयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट, नाउ वी ब्रिंग यू एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद अनुप्रिया पटेल, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, on health sector reforms and achievements. The interviewer is Niharika Bhuvania.
3: ये आकाशवाणी है, विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत। आज सुनिए स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार और उपलब्धियों पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं निहारिका भुवानिया।
4: नमस्कार और आपका हार्दिक स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में, जहां हम चर्चा कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण हुए भारत सरकार के 12 साल के कार्यकाल की, और इस कार्यकाल के दौरान हर उस सफलता की जिसने लगातार भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। आज की ये चर्चा स्वास्थ्य के क्षेत्र से संबंधित है, और हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ आकाशवाणी स्टूडियो में उपस्थित हैं भारत की वर्तमान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल। अपनी व्यस्त दिनचर्या में से कुछ समय आपने हमारे लिए निकाला, हम इसके आभारी हैं।
5: बहुत बहुत धन्यवाद।
4: और सबसे पहले बात करते हैं कि 12 साल के इस कार्यकाल के दौरान स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने किस तरह के बदलाव, किस तरह के परिवर्तन देखे, और इस दौरान स्वास्थ्य के क्षेत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है?
5: देखिए, किसी भी देश के नागरिक को अगर समय से किफ़ायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा मिल जाती है तो उस नागरिक की क्षमता और उसके सामर्थ्य का उपयोग राष्ट्र के निर्माण में हो सकता है। इसलिए किसी भी राष्ट्र की प्राथमिकता उसके नागरिकों का स्वास्थ्य ही होना चाहिए, और भारत आज एक बहुत बड़े विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। आज हमने अपनी सरकार के 12 वर्ष पूरे किए हैं, लेकिन 2047 तक भारत कैसे एक विकसित राष्ट्र में तब्दील हो, ये हमारा सपना है। और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो सबसे जरूरी हो जाता है एक स्वस्थ भारत। और भारत की आबादी आप जानती हैं 146 करोड़ है। 146 करोड़ नागरिकों को स्वस्थ रखना ये कोई सामान्य लक्ष्य नहीं है, और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज ये हमारा संकल्प, यानी हर नागरिक को हमें एक्सेसिबल अफोर्डेबल क्वालिटी हेल्थ केयर सुनिश्चित करनी है। तो हमने अपने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण में बहुत बड़ा बदलाव किया है, और मैं समझती हूँ कि ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमने स्वास्थ्य को आज केवल बीमारियों के उपचार तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि हमने प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिशा में कदम बढ़ाया है। तो सबसे ज़रूरी कदम है कि हम बीमारियों की रोकथाम कर सकें, और इसीलिए आज अगर आप देखें तो हमारी जो सबसे प्राथमिक इकाई है एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर।

उसमें आज हम जो गैर संचारी रोग हैं, जैसे कि डायबिटीज है, कैंसर है, ब्लड प्रेशर है, इसकी हम जांच कर रहे हैं ताकि समय रहते पेशेंट्स का ट्रीटमेंट प्रारंभ किया जा सके। तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिशा में हमने कई कदम उठाए हैं। आज अगर प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से मोटापे के खिलाफ अभियान चलाते हैं, या आम जनमानस को 10% तेल कम करने की अपील करते हैं, और हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय ईट राइट इंडिया के तहत कहता है कि आप स्वच्छ खाएं, पौष्टिक खाएं, संतुलित खाएं, तेल, चीनी, नमक, इन सब का सेवन कम करें, तो ये सब प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिशा में बढ़े हुए कदम हैं। तो भारत आज इस पद्धति पर चल चुका है, और इसके साथ ही स्वास्थ्य का ढांचा प्राथमिक, सेकेंडरी और टर्शरी, ये तीनों स्तर पे हम इसको, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ कर रहे हैं। कैसे एक आम नागरिक की जेब पर पड़ने वाला खर्च कम हो, इसकी चिंता हमने की है, और बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं जिससे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस आज कम हुए हैं, जिसमें आज मैं जन औषधि केंद्रों की चर्चा भी करूंगी, अमृत फार्मेसी का उल्लेख भी करूंगी। आज इन केंद्रों पर

0: टर्शरी, ये तीनों स्तर पे हम इसको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ कर रहे हैं। कैसे एक आम नागरिक की जेब पर पड़ने वाला खर्च कम हो, इसकी चिंता हमने की है और बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं जिससे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस आज कम हुए हैं, जिसमें आज मैं जन औषधि केंद्रों की चर्चा भी करूंगी, अमृत फार्मेसी का उल्लेख भी करूंगी। आज इन केंद्रों पर जो दवाएं हैं वो बाजार मूल्य से 50 से 90% तक कम दामों पर देश के आम नागरिक को उपलब्ध हैं। आप एक जिला अस्पताल में जाकर देखेंगी तो राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के तहत एक आम आदमी को निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा मिल रही है। हम आज बड़े पैमाने पर तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। ई संजीवनी के माध्यम से आज दूर दराज के गांव में बैठे हुए एक सामान्य नागरिक को एक विशेषज्ञ चिकित्सक का निःशुल्क परामर्श मिल रहा है। मेडिकल ड्रोन्स जैसे जो हमारे प्रयोग हैं आज दुर्गम इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में क्रांति ला रहे हैं। तो भारत का स्वास्थ्य परिदृश्य इन 12 वर्षों में बहुत तेजी से बदल चुका है।
1: अंग्रेजी में एक कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। शायद हम उसी राह पर चल रहे हैं और उसी को मद्देनजर रखते हमारे ये सारे इनिशिएटिव्स जो हैं आज बखूबी काम कर रहे हैं। आयुष्मान भारत की बात करते हैं और आयुष्मान डिजिटल मिशन की अब बात करते हैं। आयुष्मान भारत जो है उसे ना केवल भारत बल्कि विश्व भर का सबसे बड़ा कार्यक्रम बताया गया है, तो आपके हिसाब से इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है, पहली बात, और दूसरी बात, हर वर्ग के परिवार को इस मिशन ने, इस इनिशिएटिव ने स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने की कोशिश की है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप अगर
0: देखिए, भारत आज एक ऐसा देश है जो स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में डिजिटल टेक्नोलॉजीज का उपयोग करने में अग्रणी है और हमने बहुत सारे डिजिटल टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज का उपयोग किया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एक ऐसी पहल है जिसके तहत हम देश के अंदर एक डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम का निर्माण कर रहे हैं। तो आज मुझे कहते हो खुशी है कि भारत के हर नागरिक के लिए हम एक यूनिक डिजिटल आईडी क्रिएट कर रहे हैं जिसे हम आभा आईडी कहते हैं, और देश के अंदर आज 90 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जिनका हमने ये यूनिक आभा आईडी क्रिएट कर दिया है। ये उनकी एक डिजिटल पहचान है और 100 करोड़ से ज़्यादा जो मेडिकल हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं वो इन अकाउंट्स के साथ लिंकअप हो चुके हैं। अब एक आम नागरिक को इस आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से उसके जीवन में कैसे परिवर्तन आ रहा है, इसको मैं एक उदाहरण देकर समझाऊंगी। कभी भी हमें किसी डॉक्टर का परामर्श लेना है तो हम क्या करते हैं, आमतौर पर एक फाइल होती है, एक फोल्डर होता है, बहुत सारे उसमें दस्तावेज होते हैं, बहुत सारे कागजात होते हैं, हमारे लैब रिपोर्ट्स होती हैं, ब्लड रिपोर्ट्स होती हैं, हमारे तमाम प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं, और वो समय के साथ फोल्डर मोटा होता जाता है, बहुत सारे मेडिकल के कागजात का बंडल बन जाता है। और जीवन में जब भी हमें आवश्यकता पड़ती है तो एक आम नागरिक क्या करता है कि एक जगह से दूसरी जगह उस बड़े से फोल्डर को लेकर घूमता रहता है हर डॉक्टर के पास।
1: शायद कागज खो भी जाते हैं, हाँ, मिलते नहीं,
0: और डॉक्टर्स के लिए बड़ी कठिनाई होती है, मरीज के लिए भी कठिनाई होती है। जब हम इस डिजिटल इकोसिस्टम को क्रिएट करते हैं तो जो भी हमारे ऐसे नागरिक हैं जिन्होंने अपना एक आईडी बना लिया और उसके साथ अपने रिकॉर्ड्स को लिंकअप कर दिया, अब ऐसे नागरिक को वो पूरा पुलिंदा लेकर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वो देश के किसी भी कोने में, किसी भी अस्पताल में, किसी भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाए, वो सिर्फ डॉक्टर को अपनी सहमति प्रदान करेगा, डॉक्टर उसके अकाउंट से उसके जितने रिकॉर्ड्स हैं, उसके प्रिस्क्रिप्शंस, दवाएं, सब कुछ उसको एक्सेस करेगा, उसके आधार पे पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री को समझेगा और पेशेंट को अपना परामर्श दे सकता है। ई संजीवनी का जो नेशनल टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है उसमें भी एक सामान्य गांव में बैठा हुआ व्यक्ति जिस डॉक्टर से बैठकर कंप्यूटर की स्क्रीन पर परामर्श कर रहा है वो भी उस डॉक्टर को बताएगा कि ये मेरा आभा आईडी है, उसे अपनी कंसेंट देगा, अपनी सहमति देगा और डॉक्टर के सामने उस पेशेंट के सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। तो इससे लोगों को बहुत बड़ी सहूलियत हुई है, सुविधा हुई है, और आज हमने जो ओपीडी है उसे भी QR कोड बेस्ड बना दिया है। यानी बड़े बड़े अस्पतालों में अगर आपको ओपीडी सर्विसेज लेनी है तो क्या होता था कि लोगों को लंबी लंबी कतारों में घंटे खड़ा होना पड़ता था, आज ये करने की ज़रूरत नहीं है। आपको स्कैन एंड शेयर की एक सुविधा दे दी गई है, आप QR कोड स्कैन करिए, सेकेंड्स में आपका जो टोकन नंबर होगा वो जेनरेट हो जाएगा और आप आसानी से डॉक्टर का परामर्श ले सकते हैं। तो ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत हम नागरिकों के रिकॉर्ड्स तो बना ही रहे हैं, हमारी कोशिश है कि जितने हॉस्पिटल्स हैं, फार्मेसीज हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, उनकी भी रजिस्ट्री हम तैयार कर रहे हैं। तो ये बहुत

0: बड़ा एक इकोसिस्टम बन रहा है जिसमें आम नागरिक के लिए और यहाँ तक कि हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर्स के लिए ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट और सुविधाजनक और टाइम सेविंग होने जा रहा है।
1: यानी कि अब कोई भी मेडिकल रिकॉर्ड का खो जाना नामुमकिन हो गया है और जमीनी स्तर तक स्वास्थ्य सेवा हर तरीके से पहुंच पा रही है, परिपूर्ण हो पा रही है।
0: बिल्कुल,
1: और इसमें मेरा ख्याल है एआई की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है आगे आने वाले समय में। तो एआई और हेल्थ केयर का आज के टाइम में, आज के दौर में क्या रोल है?
0: देखिए, आजकल हम हर जगह एक शब्द सुनते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और सामान्य व्यक्ति सोचता है कि क्या है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। अभी कुछ समय पहले फरवरी में हमने देखा, हमारे देश ने एक बहुत बड़ा एआई इंडिया इंपैक्ट समिट किया और दुनिया के तमाम देशों से लोग आए, बहुत सारे प्रतिभागी आए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग आज हर क्षेत्र में हो रहा है, एग्रीकल्चर से लेकर हेल्थ केयर से लेकर एजुकेशन से लेकर हर जगह हो रहा है। लेकिन हेल्थ केयर में इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है और भारत जैसे देश में। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हमारे देश की आबादी 146 करोड़ है
1: जी।
0: और इतनी बड़ी आबादी में हमें ये भी देखना है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे दुर्गम आदिवासी दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पहुँचने में बहुत कठिनाई है, जहाँ शायद हमारे पास हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स या अन्य जो हमारा मेडिकल स्टाफ होता है उसकी शॉर्टेज है। और इसके साथ हमारे पास एक दोहरा भार है, यानी हमारे पास एक तरफ डायबिटीज़, कैंसर, हृदय रोग जैसी तमाम गैर संचारी बीमारियां भी हैं जो बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, और दूसरी तरफ टीबी, मलेरिया इस तरीके के रोग भी हैं। इन सारी चुनौतियों के बीच में अगर हम कहते हैं कि हमने तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का लक्ष्य तय कर दिया, यानी देश के हर एक नागरिक के पास किफ़ायती गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा की पहुँच होनी चाहिए, तो उसमें टेक्नोलॉजी की एक बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है। और टेक्नोलॉजी में हमने बहुत सारे डिजिटल टूल्स यूज़ किए, जैसे हमने कोविड पैंडमिक आया तो हमने कोविन का ऐप बना दिया, या आज हम बच्चों का टीकाकरण करते हैं तो यूविन पोर्टल है हमारा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी हम उपयोग आज कर रहे हैं। तो हेल्थ का जो पूरा कॉन्टिन्यूम है, यानी आज बीमारियों की निगरानी करने से लेकर डिजीजेस के डिटेक्शन से लेकर ट्रीटमेंट तक, क्योर तक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हो रहा है।
1: सर्जरीज में भी इसकी काफी
0: बिल्कुल
1: उपलब्धि है,
0: और डॉक्टर्स को ये काफी हद तक मदद कर रहा है। बहुत सारी ऐसी मेडिकल इमेजेस होती हैं, बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स होते हैं जिनको एनालाइज करने में एआई टूल्स का उपयोग किया जाता है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगी, अभी हमने सघन टीबी अभियान चलाया अपने देश के अंदर, 2024 में हमने दिसंबर अंत में शुरू किया स्क्रीनिंग बड़े पैमाने पर देश के अंदर की। उसमें हमने एआई ड्रिवन हैंड हेल्ड एक्सरेस का उपयोग किया। उसका लाभ हमें ये हुआ कि ऐसे बहुत सारे केसेस जो शायद समाज में छिपे रह जाते कि जिनके शरीर में टीबी का बैक्टीरिया है लेकिन लक्षण नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं, हमने बड़े पैमाने पर ऐसे केसेस की पहचान की। तो AI supported, AI driven handheld X-ray devices का आज हम उपयोग कर रहे हैं जिससे बड़ी तेजी से हम मरीजों की स्क्रीनिंग कर पा रहे हैं। इसी प्रकार जो हमारा नेशनल टेलीमेडिसिन नेटवर्क है ई संजीवनी, अब ई संजीवनी पे आप समझिए कि एक मरीज डॉक्टर से वर्चुअल परामर्श कर रहा है। अब अगर डॉक्टर ऐसे तमाम पेशेंट से, हर एक पेशेंट से बैठकर पूछेगा कि आप अपने ये सिम्टम बताओ, ये बताओ, तो ये एक रेपिटेटिव एक्सरसाइज होगी, डॉक्टर को भी कठिनाई होगी। अब यहाँ पे एआई कैसे मदद करता है कि एआई टूल्स के माध्यम से एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जो हमने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बैठाया है, उसके पास कोई रोगी आता है, वो उसका एक स्टैंडर्डाइज पेशेंट फॉर्म भरवा देता है, पेशेंट के सारे लक्षण उसमें कैद हो जाते हैं, एआई टूल्स की मदद से पेशेंट की एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस निकल के आ जाती है, पेशेंट को किस स्पेशलिस्ट को रेफर करना है इसके रेकमेंडेशंस आ जाते हैं। तो अगर एक CHO को ये तय करना है कि इस समय हमारे पास 4-5 स्पेशलिस्ट मुझे नजर आ रहे हैं लाइव, तो क्या AI की रेकमेंडेशन आती है कि पेशेंट को के लक्षण के आधार पे इस स्पेशलिस्ट से कनेक्ट किया जाए, तो पेशेंट को तुरंत कनेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे डॉक्टर का समय बचता है, मरीज का समय बचता है, और हमारा सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट होता है, ज्यादा लोगों को केटर कर पाता है। तो इस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आज बहुत तेजी से उपयोग देश में हो रहा है और जिम्मेदारी के साथ हो रहा है, एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके हो रहा है, अकाउंटेबिलिटी के साथ हो रहा है, जवाबदेही के साथ हो रहा है।
1: यानी AI के माध्यम से आपके पास समय के बचत के अलावा सही गाइडेंस, अप्रोप्रिएट गाइडेंस भी मौजूद है

0: जो कि हेल्थ केयर के मिशन को और आगे लेकर जा रही है.
1: बिल्कुल.
0: आज जो है भारत में 170,000 से ज्यादा आरोग्य मंदिर मौजूद हैं. जमीनी स्तर पर ये क्या बदलाव ला रहे हैं?
1: अब इनकी संख्या बढ़ गई है. 182,000 से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं. और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को कैसे बदल कर रखा जाता है ये कोई हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर के मॉडल को देखकर समझ सकता है. एक समय था कि हमारे देश में ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो थे यहाँ पे केवल मातृ और शिशु स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं मिलती थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं था. आज हमने ये तय किया कि बड़े अस्पतालों पर हमें भीड़ कैसे कम करनी है और एक सामान्य नागरिक को उसके घर के नजदीक ही तमाम जरूरी सेवाएं कैसे देनी है. तो इसके लिए हमारे पास एक फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, हमारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जहाँ पे आज हम 12 सर्विसेज का पैकेज दे रहे हैं. यानी आज व्यक्ति को अगर ENT की जांच चाहिए तो वो भी वहाँ मिलेगी प्रारंभिक, उसको मौखिक जांच ओरल केयर के लिए चाहिए तो वहाँ मिलेगी, उसको न्यूट्रिशन वेलनेस की काउंसलिंग चाहिए, पोषण के संबंधित गाइडेंस चाहिए तो वो भी वहाँ मिलेगा, फर्स्ट लेवल इमरजेंसी ट्रॉमा केयर चाहिए तो वो भी वहाँ मिलेगा, मेंटल हेल्थ को लेकर जो प्रारंभिक एक स्क्रीनिंग होती है उसकी सुविधा भी वहाँ मिलेगी, और NCD की स्क्रीनिंग जो आपको मैंने बताया कि आज आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे 30 वर्ष की उम्र से अधिक हर व्यक्ति की निशुल्क जांच हो रही है कैंसर, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के लिए. तो ये सारी 12 सर्विसेज आज उसे मिल रही हैं. तो एक आम व्यक्ति को छोटी छोटी बीमारियों के लिए किसी बड़े अस्पताल नहीं जाना पड़ता और बड़े अस्पतालों पर भी बोझ कम होता है. और सुनकर आप खुश होंगे कि 540 करोड़ से ज्यादा जो फुटफॉल है वो हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर हो चुका है. यानी लोगों का अब भरोसा भी बढ़ रहा है कि घर के नजदीक इतनी सारी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं. तो ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आयुष्मान आरोग्य मंदिर ला रहे हैं.
0: जब स्वास्थ्य की बात आती है तो शायद शुल्क जो है वो एक तनाव का कारण बन जाता है, लेकिन आज मेरे हिसाब से आरोग्य मंदिर उस तनाव को कम करने में भी काफी सक्षम और सफल हो रहे हैं.
1: बिल्कुल. हमारी सरकार जब आई तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस को कैसे कम किया जाए, देश के अंदर आम नागरिक के स्वास्थ्य के ऊपर जो खर्च होता है, जो उसकी जेब से होने वाला खर्च है
0: जी,
1: वो GDP का 64% हुआ करता था. हमने उस पे धीरे धीरे काम करना शुरू किया, सरकार के खर्च को बढ़ाया. आज स्वास्थ्य के ऊपर सरकार का जो खर्च है बजट का 1,06,000 करोड़ से ज्यादा पहुंच गया है. और बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें मैंने आपको बताया जन औषधि केंद्र से लेकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर से लेकर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से लेकर तमाम ऐसे प्रयास है जिनके कारण ये जो 64% हुआ करता था आज घटकर 39% पर आ गया है. तो बहुत बड़ी राहत जनता को उसके जेब से होने वाले खर्च पर मिली है.
0: पिछले कुछ उत्तरों में बात करते वक्त आपने TB और COVID-19 का भी जिक्र किया, तो आज TB के केसेस को कम करने में और मृत्यु दर कम करने में हम कितने सफल रहे हैं और क्या इस क्षेत्र में ऐसी कोई चुनौती है जो अभी भी हमारे सामने खड़ी हो?
1: देखिए, टीबी के संबंध में मैं जानकारी के लिए थोड़ा सा ये भी कहना चाहूंगी, टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसका बैक्टीरिया हवा से फैलता है, एयरबॉर्न है. यानी कोई भी व्यक्ति यदि संक्रमित है टीबी के बैक्टीरिया से तो उसके बातचीत करने से, खांसने से, छींकने से, बोलने से ये जो बैक्टीरिया होता है ये ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में हवा में प्रवेश कर जाता है. और दूसरा, कोई भी व्यक्ति यदि उसे इनहेल कर रहे तो वो बैक्टीरिया उसके शरीर में पहुंच जाता है. तो टीबी में सबसे बड़ा संकट ये है कि ये एयरबॉर्न है, हवा से फैलता है और भारत देश की आबादी बहुत ज़्यादा है, सघन है. ऐसे में टीबी मुक्त भारत एक बहुत कठिन संकल्प है, लेकिन सरकार ने ये तय किया है कि हम टीबी की रोकथाम से लेकर टीबी की जांच से लेकर टीबी के उपचार तक हर काम करेंगे. और इसके लिए लगातार हम सघन अभियान भी चला रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में हम जागरूकता फैला रहे हैं, उनकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं और जांच के जरिए बहुत सारे जो एसिम्प्टोमैटिक केसेस हैं, जो सिम्प्टोमैटिक हैं उनके साथ साथ जो बिना लक्षण वाले हैं, लक्षण वाले दोनों की पहचान भी हो रही है. टीबी के जांच के लिए हमने अपनी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज को भी अब स्ट्रेंथन किया है, सुदृढ़ किया है. राज्यों को हम टीबी की स्क्रीनिंग के लिए जो तमाम डिवाइसेस की, इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है वो भी हम उपलब्ध करा रहे हैं. और इसके साथ साथ टीबी में जो उपचार के लिए दवाओं की ज़रूरत है वो भी आज तमाम हमारे जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहाँ पर उपलब्ध है.

0: दवा के साथ साथ जांच के साथ साथ एक जरूरी पक्ष ये भी है कि टीबी के रोगी में पोषण का अभाव होता है, इसलिए सरकार ने हर टीबी के मरीज को 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की भी प्रक्रिया प्रारंभ की है उसके पोषण के लिए। और इसके अतिरिक्त बहुत सारे हमारे जन भागीदारी के माध्यम से निक्षय मित्र बन रहे हैं जो टीबी के रोगियों को गोद ले रहे हैं और उन्हें जो पोषण पोटली है वो निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं। हमने टीबी पेशेंट्स के साथ साथ दायरा बढ़ाकर जो उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं, जैसे उनके परिवारजन या उनके साथ रोज काम करने वाले लोग जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं, उनको भी अब प्रिवेंटिव टीबी ट्रीटमेंट देना शुरू किया है। उन्हें भी हम न्यूट्रिशन बास्केट दे रहे हैं कि उनमें कहीं पोषण की कमी के कारण उन्हें ये टीबी का बैक्टीरिया ग्रसित ना कर ले। और चुनौती की जब आप बात करते हैं तो मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी चुनौती अभी भी सोशल स्टिग्मा है, क्योंकि टीबी के बारे में लोग आज बात करने से या किसी को हो जाता है तो एक झिझक रहती है। तो मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आमजन को यह भी अपील करना चाहूँगी कि टीबी एक ऐसा रोग है जिसको हराया जा सकता है, जिसका उपचार संभव है, और बहुत सारे ऐसे आज टीबी चैंपियंस हैं, टीबी विजेता हैं, जो हमारे तमाम कार्यक्रमों के मंच पे आके लोगों को बता रहे हैं कि कैसे वो टीबी से लड़कर जीते हैं। सरकार की तरफ से हर किस्म का सहयोग, पोषण से लेकर दवा से लेकर जांच तक सब कुछ निशुल्क उपलब्ध है। तो यदि किसी भी प्रकार की आपको शंका है तो आप जांच जरूर कराएं और उपचार का लाभ उठाएं।
1: बहुत खूब। और इसी के साथ साथ COVID-19 की भी चर्चा करते हैं। COVID-19 एक ऐसी महामारी थी जिसने दुनिया की काया बिल्कुल बदल दी, और उसी वक्त भारत ने अपने बुनियादी ढांचों को, खासकर हेल्थ केयर के क्षेत्र में, काफ़ी मजबूत किया था। उस वक्त हमने क्या कदम उठाए थे जो आज भी हमारा साथ दे रहे हैं और जो आज भी हमें इस राह पर, हमें अपने हेल्थ केयर गोल्स को अचीव करने में मदद कर रहे हैं?
0: देखिए, COVID-19 पैंडमिक पूरे दुनिया के लिए एक शॉक था और पूरी दुनिया के लिए एक अहम सबक भी लेकर आया कि हमें अब अपने सिस्टम्स को, जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है, उन्हें रेजिलिएंट बनाने की ज़रूरत है। यानी भविष्य की किसी भी ऐसी महामारी से, आपदा से निपटने के लिए हमारे हेल्थ केयर सिस्टम्स तैयार हों। तो भारत ने ये तय किया कि हमारे जो हेल्थ केयर सिस्टम जिला स्तर पे हैं या प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी लेवल पे कहीं भी जो कमियाँ हैं, जो गैप्स हैं, हम उनको फिक्सअप करेंगे। और इसके लिए हमने शुरुआत की नीचे से, यानी हमारे ब्लॉक लेवल पे, जिला स्तर पे जो हमारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं उनको सुदृढ़ करते हुए हमने उसमें क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स बनाए। ये 64,000 करोड़ का पूरा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन हम लेके आए, और इसके तहत क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स हमने इसलिए बनाए कि कोई भी गंभीर रोगी है तो उसे तुरंत उसके ज़िले में ही ये सुविधा मिल सके इलाज की। इसी प्रकार इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी सेटअप किए ताकि जांच की जो सुविधा, जिसके लिए लोग परेशान हुए कोविड के दौरान, भविष्य में ऐसी कोई परिस्थितियां ना हो। जितने भी जांच होनी है, डायग्नोस्टिक टेस्ट होने हैं, वो सुविधा जिले में मौजूद हो। इसके साथ ही बीमारियों की निगरानी करना जरूरी है, तो डिजीज के सर्वेलेंस सिस्टम्स को भी हमने सुदृढ़ किया। और एक बहुत बड़ी तैयारी हमारी वन हेल्थ मिशन के रूप में है, जहां हम ये मानते हैं कि मानव का स्वास्थ्य हो, पर्यावरण का स्वास्थ्य हो, पशु पक्षियों का स्वास्थ्य हो, ये सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारे अलग अलग मंत्रालय हैं जो एक साथ जुड़कर काम कर रहे हैं ताकि हम पूरी तरीके से ये जो हमारा इकोसिस्टम है इसको मजबूत रख सकें और आने वाले किसी भी खतरे से निपटने के लिए हम तैयार हों।
1: जब COVID-19 की शंकाएं उठ रही थी, मेरा ख्याल है तभी हम पूरी तरह से तैयार थे, हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत था कि हम उस आपदा से लड़ पाए और उससे बाहर निकल पाए।
0: देखिए, निश्चित रूप से COVID-19 के दौरान भारत ने न केवल अपने नागरिकों का ख्याल रखा बल्कि दुनिया की भी चिंता की। जी, ऐसे कठिन समय में हमने अपने 2 स्वदेशी वैक्सीन बनाकर तैयार किए, हमने अपने करोड़ों नागरिकों को डबल डोज दिया, बूस्टर डोज दिया, 220 करोड़ टीकाकरण, ये आसान बात नहीं है, आसान लक्ष्य नहीं है। और यहाँ तक कि जब दुनिया के तमाम विकसित देश भी इसका डिजिटल सर्टिफिकेट नहीं दे पाए तो कोरोना वैक्सीनेशन का हमने अपने नागरिकों को डिजिटल सर्टिफिकेट भी दिया। और इसके साथ ही साथ वैक्सीन मैत्री की जो हमारी पहल थी, 100 से अधिक देशों के नागरिकों को भी हमने जरूरी जो दवाएं थी या इक्विपमेंट्स थे या टीके थे, ये हमने तमाम देशों के नागरिकों को भी पहुंचाए। तो भारत एक ऐसा देश

0: है जो अपने साथ साथ वसुधैव कुटुंबकम की भावना के तहत दुनिया की चिंता करता है, और इसका एक बहुत ही उत्तम उदाहरण हमने कोविड जैसी महामारी बहुत बड़े संकट के बीच में प्रस्तुत किया।
1: भारत को दुनिया की फार्मेसी के तौर पर भी जाना जाता है, और क्यों ना हो, आयुर्वेद की भूमि है। तो उस संदर्भ में, उस विषय में आज भारत की वैश्विक स्थिति कैसे मजबूत हो रही है?
0: देखिए, जहां तक फार्मा क्षेत्र की बात है तो भारत अगर हम वॉल्यूम के टर्म्स में देखें तो हम तीसरे नंबर पे हैं, लेकिन अगर वैल्यू टर्म्स में देखें तो हम 14वें नंबर पे हैं। और दुनिया में भारत की एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है कि हम अफोर्डेबल जेनेरिक मेडिसिंस जो हैं वो 200 से अधिक देशों को सप्लाई करते आए हैं। US हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो, लैटिन अमेरिका हो, तमाम देशों में हमारी जेनेरिक दवाइयाँ पहुँचती हैं जिनकी क्वालिटी भी बेहतरीन है और दाम भी बहुत कम है। इसके साथ ही WHO की 70% जो वैक्सीन की मांग है उसकी आपूर्ति भी भारत का फार्मा सेक्टर करता है। ये हमारे लिए गौरव की बात है, लेकिन इसके साथ ही हम आगे की जो नेक्स्ट फेज ऑफ फार्मास्यूटिकल लीडरशिप है उसके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आज दुनिया में, जैसे मैंने बताया कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो हैं, डायबिटीज है, कैंसर है या ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं, आज बीमारियों का पैटर्न बदल रहा है। NCDs का बर्डन दुनिया के तमाम देशों पे बहुत बड़ा बर्डन है। तो केवल जेनेरिक दवाओं में जो हमारी लीडरशिप है, अब हमें उस तक ही सीमित नहीं रहना है, हमें अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है, क्योंकि आने वाले समय में दुनिया के अंदर अगर हम 2031 तक बात करें तो जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होंगे उसमें 60% जेनेरिक की मांग हो सकती है, लेकिन 40% जो मांग होगी वो बायोलॉजिक्स की होगी, बायोसिमिलर्स की होगी। तो अब हमें स्मॉल मॉलिक्यूल ड्रग्स से लार्ज मॉलिक्यूल इनोवेशंस की तरफ बढ़ना है, यानी जो हमारे वॉल्यूम लेड जेनेरिक्स हैं उनसे आगे बढ़ के अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हुए हमें जो वैल्यू लेड बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स हैं उसको बनाने का काम करना है। और इस दिशा में भारत सरकार ने 10,000 करोड़ के बायोफार्मा शक्ति मिशन की घोषणा की बजट में, और उसके तहत आज फार्मा सेक्टर में हमारी जो कंपनीज हैं वो कैसे जेनेरिक से आगे बढ़कर बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स, ये जो नए इनोवेशन ड्रग्स हैं, इसका जो एक नया मार्केट उभर रहा है और इसकी जो मांग बढ़ रही है, इस दिशा में आगे बढ़ें, ऐसा प्रोत्साहन हम दे रहे हैं।
1: चर्चा तो और भी की जा सकती है, लेकिन अब समय इजाजत नहीं दे रहा, तो जाते जाते आपसे बस एक आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूंगी कि 2030 तक हेल्थ केयर के एरिया में ऐसे कौन से गोल्स हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं, और आखिर में भारत के नागरिकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
0: देखिए, भारत तेजी से काम कर रहा है, TB मुक्त भारत बनाना है। मातृ और शिशु स्वास्थ्य पर हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। हमारे अगर आप देखिए तो वैश्विक स्तर पे जो मैटर्नल मोर्टैलिटी में गिरावट आई है, या जो इन्फेंट मोर्टैलिटी, अंडर 5 मोर्टैलिटी या नियोनेटल मोर्टैलिटी में गिरावट आई है, उससे कहीं ज़्यादा तेज़ गिरावट भारत के अंदर है। तो हमें मातृ और शिशु स्वास्थ्य पे और बेहतर काम करना है। इसके साथ ही नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का जो बर्डन है, गैर संचारी रोगों का, इसके खिलाफ हमारी लड़ाई अभी भी तेज़ी से चल रही है, और आगे की भविष्य की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए वन हेल्थ मिशन और इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर के मॉडल्स को भारत एक्सप्लोर कर रहा है। 2030 तक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उन्हें हम प्राप्त करें, इसमें हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और जितने भी श्रोता आज हमें सुन रहे हैं उन सभी को मैं कहूँगी कि भारत सरकार को जो प्रयास करना है, राज्य सरकारों को जो प्रयास करना है, हम पूरी तरह कर रहे हैं, लेकिन हर नागरिक को माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने स्वास्थ्य को अपनी जिम्मेदारी बनाना है, और इसके लिए ज़रूरी है साफ सफाई, स्वच्छता का ध्यान रखें, हमारी हवा साफ हो, हमारा पानी साफ हो, हम संतुलित आहार लें, पौष्टिक आहार लें, मौसमी आहार लें, तेल नमक चीनी का सेवन कम रहें, और इसके साथ ही किसी भी प्रकार के नशे के पदार्थ से, नशे के सेवन से अपने आप को, तंबाकू हो, सिगरेट हो, पान बीड़ी मसाला शराब, इन सब से हम दूर रहें। योग, व्यायाम, किसी भी प्रकार के खेल कूद को अपने जीवन का अंग बनाएं, और सबसे बड़ी बात कि हम नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य की जांच करवाएं। मुझे लगता है कि सभी नागरिक यदि इस प्रकार के जीवन शैली का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से स्वस्थ भारत, और स्वस्थ भारत के माध्यम से विकसित भारत एट 2047 का सपना जरूर पूरा होगा।
1: आज के दिन हमारे जीवन में योग एक अहम भूमिका निभा रहा है, और जैसा आपने बताया आरोग्य मंदिरों में भी योगा की शिक्षा प्रदान की जा रही है, तो योग के माध्यम से इंटरनेशनल योगा डे के रिलेशन में आप हमारी ऑडियंस को, आप हमारे श्रोताओं

0: क्या कहना चाहेंगी?
1: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अब बहुत निकट है। 21 जून को देश में करोड़ों लोगों को हम योग करते हुए देखेंगे और मुझे गर्व होता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने योग को एक बार पुनर्जीवित किया है। न केवल देश में बल्कि दुनिया के तमाम देशों के नागरिक आज योग के फैन हो चुके हैं। मैंने भी कई देशों की यात्रा की है और हर जगह मैंने देखा है कि योग को लेकर लोगों का एक ज़बरदस्त क्रेज है। और हमारे देश के सभी नागरिकों से मैं यही कहना चाहूँगी कि योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि बीमारियों से मुक्त रहना है, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना है, इसके साथ साथ अगर हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें तो ज़रूरी है कि योग का हम पालन करें, क्योंकि योग हमें शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से स्वस्थ रहता है। बहुत सारे तनाव जो आजकल के दौड़ते भागते जीवन में हैं उनसे हमें मुक्त रखता है। और मैं समझती हूँ कि पूरी तरीके से योग हमें एक शांतिपूर्ण जीवन चाहिए और जीवन के लिए एक जो ऊर्जा चाहिए वो हमें योग के माध्यम से मिल सकती है। तो अधिक से अधिक लोग योग करें और योग आपको निरोग भी रखेगा, आपको ऊर्जावान रखेगा, आपको स्वस्थ रखेगा।
0: स्वस्थ रहने का सबसे आसान तरीका है योग करना और साथ ही साथ पौष्टिक आहार।
1: बिना खर्च का तरीका है योग।
0: व्यायाम और पौष्टिक आहार हमारी ज़रूर मदद कर सकता है स्वस्थ रहने में और खुश रहने में, और पहले स्वास्थ्य फिर कुछ और। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनुप्रिया जी, आज हमारे साथ अपना वक्त बिताने के लिए और हमें इतनी सारी बातें बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे श्रोताओं और दर्शकों का शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े रहने के लिए। फिलहाल हम लेंगे आपसे इजाज़त और मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया।
2: इन स्पेशल सीरीज 12 ईयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट, you were listening to an exclusive interview with Anupriya Patel, Union Minister of State for Health and Family Welfare, on health sector reforms and achievements. The interviewer was Niharika Bhuvania. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on EIR. This program is also available on our YouTube channel, News on EIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.
3: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार और उपलब्धियों पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही थी निहारिका भुवानिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर विशेष द्विभाषीय कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का छिंदवाड़ा केंद्र है FM 102.2 MHz पर। रात के 9:32 हुए हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम, जिसका अनुप्रसारण हम मुंबई केंद्र से करेंगे।
5: आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक ऐसी अभिनेत्री की बातें जिनकी शोखी, चंचलता और मासूमियत के लोग दीवाने रहे हैं।

सुनीता राव मुंबई में ही पैदा हुई और यहीं पर पली बढ़ी। आरंभिक शिक्षा दीक्षा अंधेरी के एक स्कूल में हुई और फिर साइकोलॉजी में कॉलेज की पढ़ाई के लिए मुंबई के सोफाया कॉलेज में एडमिशन तो लिया, पर ये पढ़ाई अधूरी छूट गई क्योंकि अमृता राव के कदम बढ़ चले मॉडलिंग की दुनिया में। मॉडलिंग की चमकीली दुनिया अमृता राव के लिए थी या नहीं थी ये उन्हें भी नहीं पता था। परिवार बहुत ही पारंपरिक कोंकणी भाषा बोलने वाला परिवार था और यहाँ परंपराओं और संस्कृति का सम्मान किया जाता था। अमृता राव ने अपने परिवार की इस परंपरा का सम्मान किया और मॉडलिंग की दुनिया में हौले हौले अपने कदम आगे बढ़ाने शुरू किए। शुरुआती तौर पर उन्हें कई विज्ञापनों में काम मिला और टेलीविजन पर वो नजर आने लगी, पर अमृता राव को ख्याति तब मिली जब जानी मानी पॉप गायिका अलीशा चिनॉय के एक एल्बम के गाने वो प्यार मेरा में वो नजर आईं और बस ये लगा कि शायद रुपहले पर्दे पर नजर आना ही अमृता राव का प्यार है। इंतजार था फिल्मों की दुनिया में अपना पहला कदम बढ़ाने का और ये मौका साल 2002 में आया। निर्देशक राज कंवर ने बनाई फिल्म अब के बरस। इस फिल्म में आर्या बब्बर भी रुपहले पर्दे पर अपना पहला कदम रख रहे थे, जो जाने माने अभिनेता राज बब्बर के बेटे हैं। तो आर्या बब्बर और अमृता राव के अभिनय वाली फिल्म अब के बरस आई, जो एक बहुत ही अलग तरह की कहानी पर बनी फिल्म थी। इस फिल्म में अमृता राव ने अमेरिका से लौटी एक लड़की की भूमिका निभाई और लोगों की नजर उन पर गई।

एक बहुत ही महत्वाकांक्षी फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। इस फिल्म में अजय देवगन ने भगत सिंह का किरदार निभाया था और अमृता राव पर आई थी जिम्मेदारी भगत सिंह की प्रेमिका मन्ने वाली का किरदार निभाने की, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया और चारों तरफ उनकी प्रशंसा हुई।

साल 2003 केन घोष ने प्यार मोहब्बत की चाशनी में डूबी एक फिल्म बनाई इश्क विश्क। इस फिल्म के जरिए एक चॉकलेटी सितारे ने फिल्मों की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। जाने माने अभिनेता पंकज कपूर के बेटे शाहिद कपूर की ये पहली फिल्म थी और उनकी पहली हीरोइन बनी अमृता राव।

साल 2004 आया और लाया मस्ती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल बेटा और राजा जैसी फिल्में बनाने वाले जाने माने कमर्शियल निर्देशक इंद्र कुमार की फिल्म की। साल 2004 में आई फिल्मी सितारों से सजी हुई फिल्म मस्ती। इस फिल्म के कलाकार थे अजय देवगन, लारा दत्ता, रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय, आफ्ताब शिवदासानी, अमृता राव, तारा शर्मा और जेनेलिया देशमुख। फिल्म मस्ती में अमृता राव एक चंचल शोख लड़की की भूमिका में थीं। इसके बाद फराह खान ने अमृता राव को कास्ट किया जायद खान के अगेंस्ट। शाहरुख खान और सुष्मिता सेन के अभिनय वाली ये चर्चित फिल्म थी मैं हूं ना। और इस फिल्म में अमृता राव पर फिल्माया गया था ये गाना।

जाने माने निर्देशक मिलन लुथरिया ने अमिताभ बच्चन, संजय दत्त और अक्षय खन्ना जैसे अभिनेताओं को लेकर एक फिल्म बनाई दीवार। जाहिर है कि लोगों को यश चोपड़ा की दीवार जरूर याद आई होगी, पर ये नए जमाने की दीवार थी। इसमें भी अमिताभ बच्चन थे, पर कहानी बिल्कुल अलग थी और इस फिल्म में भी थी अमृता राव।

साल 2005 में आई फिल्म वाह लाइफ हो तो ऐसी, निर्देशक थे महेश मांजरेकर। इस फिल्म में अमृता राव के साथ थे शाहिद कपूर और संजय दत्त। फिल्म सरफरोश बनाने वाले निर्देशक जॉन मैथ्यू माथन लेकर आए फिल्म शिखर। इस फिल्म में अमृता राव के साथ थे अजय देवगन, बिपाशा बसु और शाहिद कपूर।

साल 2006 एक बार फिर इंद्र कुमार लेकर आए फिल्म प्यारे मोहन, जो हॉलीवुड की आर्थर मिलर की निर्देशित फिल्म सी नो इवल हियर नो इवल पर आधारित थी। इस फिल्म में फरदीन खान और विवेक ओबेरॉय थे, ईशा देओल और अमृता राव।

यहाँ तक आते आते अमृता राव की यात्रा ने एक कमाल का मोड़ लिया और वो चली गई तेलुगु सिनेमा की तरफ। उन्होंने महेश बाबू के साथ एक फिल्म की अतिथि। इस फिल्म में महेश बाबू और अमृता राव की जोड़ी की काफी प्रशंसा हुई और फिल्म खूब चली भी। साल 2008 फिल्म आई माय नेम इज एंथनी गोंजाल्विस। और इसी बरस श्याम बेनेगल की एक फिल्म में अमृता राव ने काम किया जिसका नाम था वेलकम टू सज्जनपुर।

अमृता राव एक सादगी और गरिमा वाली अभिनेत्री रही हैं। उन्होंने अपनी फिल्मों का चुनाव बहुत सोच समझ कर किया, इसलिए उन्होंने ज्यादा फिल्में नहीं की और रुपहले पर्दे पर उनकी पारी भी बहुत लंबी नहीं रही, पर उनके चाहने वाले उनकी फिल्मों का इंतजार करते रहे। इस बीच अमृता राव फिल्म शौर्य में बतौर अतिथि कलाकार नजर आईं। 2009 में हरमन बवीजा के साथ वो नजर आईं फिल्म विक्ट्री में। इसी बरस आई नीरज वोरा की फिल्म शॉर्टकट। इसके प्रोड्यूसर थे अनिल कपूर और इस फिल्म में अमृता राव के साथ थे अक्षय खन्ना।

साल 2011 में राजश्री प्रोडक्शंस की एक और फिल्म अमृता राव ने की, जिसका नाम था लव यू मिस्टर कलाकार। इस फिल्म में अमृता राव के साथ थे तुषार कपूर।

इसके बाद कुछ फिल्मों में अमृता राव ने अतिथि कलाकार के तौर पर भूमिका निभाई, जैसे हे बेबी, लाइफ पार्टनर और जाने कहां से आई है। साल 2013 में अरशद वारसी के साथ वो नजर आईं सुभाष कपूर की फिल्म जॉली एलएलबी में। फिर आई अनिल शर्मा की फिल्म सिंह साब द ग्रेट, जिसमें थे सनी देओल। साल 2013 प्रकाश झा की फिल्मी सितारों से सजी फिल्म सत्याग्रह में नजर आईं अमृता राव। अमृता राव ने कुछ टेलीविजन सीरियल भी किए हैं, जैसे मेरी आवाज ही पहचान है। साल 2019 में अभिजीत फंसे की फिल्म ठाकरे में अमृता राव ने मीना ताई ठाकरे की भूमिका निभाई थी। अमृता राव ने आरजे अनमोल से विवाह किया है।

के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेत्री अमृता राव पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। जब से धरती बनी है सूरज उगता है और फिर उफक के उस पार ढुलक जाता है अगली सुबह फिर से आने के लिए। जब से बनी है धरती तब से हो रही हैं शामें, लेकिन हर शाम का रंग अलग अलग होता है। कोई शाम होती है गुलाबी, रूमानी, नाजुक और नरम, तो कोई शाम ऐसी होती है मानो उसमें खुल गया हो उदासी का रंग, आंसुओं का नमक। ऐसी शामों में दिल डूब डूब जाता है। कोई ऐसी शाम होती है जब मन सोच के समंदर में डुबकी लगाने लगता है। कोई उदासी, कोई ख्याल, कोई फलसफा ऐसी शामों का मंजर बन जाता है।

कई बार ऐसे लम्हे आते हैं जब कोई गीत हमारी बात कहता नजर आता है। यूं लगता है कि यही, बस यही तो थी हमारी कैफियत। हमें लफ्ज नहीं मिल रहे थे। कुछ एहसास शब्दों के परे होते हैं। कोई आवाज सीधे दिल में उतर जाती है, क्योंकि ये दिल की आवाज होती है, दिल की पुकार, एक बेचैन दिल की पुकार। गाने इसीलिए हमारे हमदम, हमारे मीत बन जाते हैं।

छाया गीत में हम ऐसे गीत लेकर आते हैं जो दिल के नर्म एहसासों को छुएं, जिन्हें सुनकर लगे कि हाँ बस यही तो मेरा गाना है। विविध भारती इसीलिए आपका हम सफर बन जाता है, क्योंकि हर पल आपका साथ निभाता है। अचानक गूंजता है कोई मधुर स्वर, जैसे रात में जुगनू चमक उठते हैं। अंधेरे में घिरी रात ऐसे चमक उठती है जैसे हजार हजार चराग जल उठे हों।

छाया या गीत जारी रहेगा इस अंतराल के बाद, और अंतराल के बाद जब हम आएंगे आपके लिए लाएंगे ये नगमा। हम अभी हाजिर हुए

मौसम सीधे मन पर असर डालता है, इसीलिए तो दुनिया बदहवास भागी जा रही है पहाड़ों पर अपनी छुट्टियां बिताने। आपने अखबारों में पढ़ा ही होगा कि कैसी भीड़ होने लगी है आजकल पहाड़ों पर। पहाड़ों पर पसरी खामोशी अच्छी लगती है। सदियों से खड़े हैं ये पहाड़ आसमान से बातें करते, हवाओं के कान में कुछ कहते। पहाड़, मौसम, नगमा।

जैसे कहीं दूर से कोई पुकार रहा है, एक बेचैन पुकार, सदियों का इंतजार, सदियों की कशिश, एक आवाज जिसमें है उदासी की लहर। जाने कौन है जो किसी को रोकना चाहता है, जाने नहीं देना चाहता। जाने कौन है जो वक्त को रोक लेना चाहता है। जाने कौन है जो दूर से पुकार रहा है।

0: सुन रहे हैं विविध भारती पिटारा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगी ओनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉक्टर जयशंकर और श्री सुगियोनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल की महिला, बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्नि मित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $9 अरब की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर $45 अरब तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से हॉर्मूज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमरीका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमरीकी सेना ने हॉर्मूज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर LPG की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में LPG सिलेंडर का मूल्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मंगोलिया में उलान बतोर ओपन कुश्ती में भारतीय पहलवानों ने आज पुरुषों की फ्रीस्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के असिल एथकिन को, वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार